0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ सेल्फ को मैनेज करने की बात हम इन दिनों कर रहे हैं, तो बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ा है सेल्फ से। और आई थिंक अभी तक हम जितना भी बातचीत में जुड़े थे, जीवन में जुड़े थे, बाहरी चीज़ों को मैनेज करने में इन्वॉल्व थे। लेकिन जहाँ सेल्फ को मैनेज करना शुरू किया, तो उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि खुद को जानना। और ऐसे में बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जो मेरे से जुड़ी थी, मेरे ही अंदर चल रही थी और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को हम देखते हैं, जहाँ हमने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि उससे जुड़े हमारे पास बहुत सारे सवाल आए लोगों के, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारे सामने जहाँ हम अपने आप को, अब मैं ये कह रही हूँ क्योंकि हमारी पिछली कड़ी के बाद हमारे सामने ये बात आई थी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ हर सिचुएशन को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि कई बार हमें, हमारे सामने आता है सिचुएशन, हमारी प्ली ये होती है कि आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे इस रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के, जब हमने, आपने ये कहा था कि चॉइस तो फिर भी हमारी ही होगी, चाहे कोई भी रास्ता हम अपनाते हैं, तो लोगों के सवाल ये आए बहुत से कि अगर मेरे पास, सपोज़ अत्याचार हो रहा है मुझ पर, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई है, मतलब इन द सेंस कि मुझे ये रास्ता ही जाना पड़ेगा, तो तब मैं उसको कैसे करूं कि ये मेरी चॉइस है, ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों आए, कैसे आए कि भाई मेरी चॉइस है?
1: हम एक्सेप्ट नहीं करें वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी सीन ले लो आप, मतलब यू कैन जस्ट पिक अप एनी सिचुएशन, पिक इट अप रैंडमली, छोटी से छोटी बात से लेकर बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी सिचुएशन
0: लेते हैं कि मैं ट्रेन की जर्नी पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पूरी फैमिली है और रिजर्वेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है, और मुझे जो है सीट मुझे है कि लेनी है, चाहिए ही। अब टीटी आता है, मैं, मुझे देनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं रह जाती मेरे पास, अगेन क्योंकि मैं पूरी अपनी फैमिली को बैठे हुए वो इतना लंबा सफ़र नहीं करा सकती। हाँ,
1: तो आप चूज़ कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपनी फैमिली को बिठा कर नहीं लेकर जाना चाहते, आप चूज़ कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट देना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, I don't have a choice,
0: but I have to give the bribe, you know, like system, फिर हम ये कह देते
1: हैं, have to, see the question is whether we want to accept it or no, उसको साइड पे रखो, actually हर स्टेप पर हम चूज कर रहे हैं, it's just that हम अपने आप को कहते क्या हैं कि I am not choosing, I have to do this. Now why is this very important? Again, like जो हमने पिछली बार कहा, हम इस पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आपको वो ट्रेन में वो चिट्ठी को देना है या नहीं देना है, ईच वन टू देयर ओन, हर एक अपना अपना डिसीशन अपने अपने आप लेता है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, चाहे आप देते या चाहे आप नहीं देते,
0: हु ओन्स द डिसीजन,
1: हु हैज टेकन द डिसीजन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देते हैं एंड हम कहते हैं मेरे पास चॉइस नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है, एक जना देता है, दो जने देते हैं, दस लोग देते हैं, वेरी सून मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट, ओके, जहाँ ट्रेन में मोस्ट ऑफ अस विल स्टार्ट डूइंग दिस, ये कह कह कर कि ऐसा है, ये सिस्टम किसने बनाया, वेयर इज द सिस्टम, हैज इट कम फ्रॉम समवेयर आउट ऑफ द ब्लू, नहीं, एक ने सोचा देकर काम जल्दी करो, दूसरे ने भी सोचा अच्छा इन्होंने दिया इनका काम जल्दी हुआ, तीसरे ने भी कॉपी किया, वेरी सून दैट बिकेम द सिस्टम। टुडे लेट अस डिसाइड कि वी आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सिट एंड टॉक कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, ब्लेमिंग एवरीवन, हम जो भी कर रहे हैं इट्स माय चॉइस। अब जो आपने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, तो दो ऑप्शंस है ना उस टाइम, वी कैन इमीजिएटली पुट डाउन आवर ऑप्शंस कि ऑप्शन क्या है, या तो टीटी से रिक्वेस्ट करो, आप टिकट का अमाउंट अपना जो भी है वो आप दो, आप सीट लो, वो नहीं आपको देता है, आप या तो बैठ कर जाओगे या आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर जाओगे। अब हम एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मुझे कंफर्ट देगा, राइट, डू आई टेक दैट डिसीजन सो दैट इट्स कंफर्टेबल फॉर मी, अगेन इट्स अ चॉइस, दो लोगों के लिए अलग अलग चॉइस होगी, किसी के लिए वो देकर सोकर जाना कंफर्टेबल होगा, लेकिन किसी के लिए वो देना वो कंफर्टेबल नहीं है, लाइक आई कैन से इफ आई गिव दैट मनी टू स्लीप आई एम नॉट कंफर्टेबल, I might lie down, but I am not comfortable with what I have done. सो आई चूज नॉट टू गिव एंड सिट द होल नाइट एंड गो विच इज ओके. आई एम नॉट आस्किंग एनी वन कि हैव आई टेकन द राइट डिसीजन और द रॉन्ग डिसीजन. इट्स माई डिसीजन एंड उसके लिए मुझे जो भी फेस करना पड़ेगा आई विल फेस बिकॉज इट इज माई डिसीजन. अगर हम देते हैं तो भी हमारा डिसीजन, नहीं देते हैं तो भी हमारा डिसीजन. इट्स जस्ट दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि वो हमारा डिसीजन है. इंस्टेड ऑफ अगेन इट्स अ विक्टिम एंड अ मास्टर. जो मास्टर अवेयरनेस से चल रहा है कि मैं चूज कर रहा हूँ, वो अपने जीवन में सशक्त होकर चलेगा, स्ट्रांग होकर चलेगा. आप मतलब ये नॉट टॉकिंग आप बड़े से बड़ा गलत काम कर दो, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर दो, लेकिन ये सोच कर तो करो ना यू आर चूजिंग टू डू इट, ताकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो जो आपने किया है. सो द पॉइंट इज दैट कॉन्शियसली मेक योर चॉइसेस, बिकॉज वैसे भी हम ही चॉइस कर रहे हैं, लेकिन बाय एवरी टाइम टेलिंग माई सेल्फ आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो चॉइस, आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी वीक, क्योंकि देन आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मेरा जीवन तो इन सब चीज़ों पर, इन सब लोगों पर, इन सब सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है. मेरे पास क्या चॉइस है, मैं तो सिस्टम के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो लोगों के हिसाब से चलता हूँ, देन आई डू नॉट हैव द पावर. सो लेट्स बी कॉन्शियस.
0: देन द ब्लेम गेम एक्चुअली आल्सो स्टार्ट्स.
1: नेचुरली
0: सिस्टम की गलती है या मेरी गलती नहीं है.
1: दैट इज व्हाट ना, जहाँ मेरी चॉइस नहीं है तो फिर किसी और के कारण में नहीं. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दिया भी टीटी को रात को सोने के लिए पैसे दिए भी, तो तुरंत क्या किया, किसकी गलती है? वो टीटी की गलती है. उसने मांगा, मैंने दिया. उसने मांगा, दिया किसने? आई चूज टू गिव विच इज ओके, चूज टू गिव इट, बट रिमेम्बर आई चूज और इसका ये अकाउंट मेरा बना. एंड डू व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद डूइंग. हमें जो कंफर्टेबल लगे हमें वो करते जाना चाहिए. एंड रिमाइंडिंग माई सेल्फ आई एम डूइंग इट एंड इसका जो रेपरकशन है दैट इज मोस्ट
0: इम्पोर्टेंट. लेकिन सिस्टर शिवानी हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं कई चीज़ें करते वक्त, क्योंकि हमें हमें लगता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है. यू नो लाइक सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, अगेन मे बी यू नो कि सिचुएशन ज़्यादा हैवी हो गई या लेकिन लॉट ऑफ टाइम
1: उस भी सिचुएशन में. अच्छा ये बताइए आप रात को सीट पर बैठ कर क्यों नहीं जा सकते?
0: नहीं मैं तो बैठ जाऊंगी पर मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे.
1: फैमिली क्यों नहीं बैठ कर जा सकते? क्योंकि अभी अभी आपने उनको क्या सिखा दिया? डोंट गिव देम मॉरल साइंस बुक्स आफ्टर दैट. अभी अभी यू हैव जस्ट टॉट देम दिस इज द वे टू लिव एंड देन वी से मॉरलिटी सेपरेट, स्पिरिचुअलिटी सेपरेट, प्रैक्टिकल लाइफ सेपरेट. वाई आर वी टीचिंग देम ऑनेस्टी एंड व्हाटएवर द होल लिस्ट? प्रैक्टिकल में तो वो देख रहे हैं ना हमें करते हुए. तो क्या एक बच्चे ने अभी अभी ये नहीं सीखा कि जीवन में प्रैक्टिकली चलने के लिए ये सब करना पड़ता है? तो उनकी लैंग्वेज भी आज ऐसे ही हो जाती है, ओ ये सब तो करना पड़ता है, इसके बिना तो नहीं चलता. दैट्स बिकम माई बिलीफ. मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग विद दिस बिलीफ कि ऑनेस्टी के साथ तो चलना पॉसिबल ही नहीं है. हु क्रिएटेड दैट बिलीफ फॉर मी? समवेयर आई सॉ इट हैपनिंग. एंड यही अगर आज एक पेरेंट जाग कर जाए पूरी रात और परिवार भी पूरी रात जागे, हो सकता है वो बहुत रात अनकंफर्टेबल आपकी बीतेगी, बट यू जस्ट मेड योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर. योर चिल्ड्रन जस्ट लर्नड अ लेसन फॉर देयर लाइफ कि भले सिचुएशंस हो हम अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. वैल्यूज ऐसे बोलने वाली चीजें नहीं होती हैं. कई पेरेंट्स कहते हैं हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं. संस्कार देने वाली चीज नहीं होती है, संस्कार जीने वाली चीज होती है. आपने अभी अभी उनके सामने दिए पैसे तो उन्होंने संस्कार सीख लिया, फिर आप उनको बोलो ऑनेस्टी, इट वॉन्ट वर्क. तो भले रात नहीं अच्छी बीती, क्या होगा अगले दिन जाकर सो जाएंगे ना, लेकिन जीवन के लिए कितना बड़ा लेसन लर्न किया. सो अगेन इट्स ओके, इट्स अ चॉइस. बट आज जो हमने किया, जो हमने वो कर्म किया, इसका रिपरकशन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आ रहा, देव जस्ट लर्नड. तो जो मैंने एक्शन किया उस टाइम उसका क्या क्या रिजल्ट आने वाला है.
0: रिपरकशन क्या देखा कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो मैं अनकंफर्टेबल होके गया,
1: क्योंकि हम उस तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि दिस इज अनकंफर्टेबल. अगर हम उनके साथ ये डिस्कस करें कि दिस इज कंफर्टेबल, डिस्कस इट विद देम, डिस्कस इट विद देम, ऑनेस्टी मेक्स यू स्ट्रॉन्ग.
0: दिस इज व्हाट यू नो लाइक सी, यहां पे होता ये है कि अगर मैंने पैसे अपने नहीं दिए, ठीक है, तो या तो वाइफ कह देंगे या कि देखा आप अपनी बातों पे अड़े रहे या अपनी वैल्यूज पे अड़े रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ? कि ये हमें जाग के जाना पड़ा, हाँ, बैठ
1: तो,
0: के जाना
1: तो पड़ा। घर का कल्चर क्या बन रहा है कि वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते हैं, ज्यादा मायने क्या रखता है, काम हो जाए, कंफर्ट्स मिल जाए, धन हम कमाते जाए। इट्स अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ चॉइस कि हमारी फैमिली के लिए वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। सो योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप विद दोस वैल्यूज।
0: इट मींस इट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो मैं चॉइस कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ।
1: That's तो कंफर्टेबल वहां है ना। That's what we said, comfortable की definition क्या आपकी, किसकी comfort? अब हमने सोचा मैं शरीर हूँ तो हमेशा comfort किसका सोचते रहते हैं, इसका। अभी अभी मैंने एक कर्म कर दिया जिसका मुझे अंदर कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस सिर्फ ये है, वो ही कर्म बार बार बार बार करने के बाद वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने गलत किया। झूठ पहली बार बोलो पता चलता है, मैंने झूठ बोला, कहेंगे अंदर से अंदर ना थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने झूठ बोला, उस टाइम भी बोलेंगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। किसने कहा चॉइस नहीं थी झूठ बोलने से पहले? एवरी टाइम आई नो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम चूजिंग टू डू इट। मुझे पता है कि सच बोलने के बाद आप मुझे डांटेंगे, तो आई चूज टू टेल अ लाई। लेकिन हम क्या कहेंगे, वो डांटेंगे इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है इसलिए मैंने झूठ बोला। That's just a way of rephrasing the whole thing. I can say, वो डांटेंगे, लेकिन मैं फिर भी सच बोलूंगी, now let me see what happens, I will be ready to face. लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई choice ही नहीं है, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे आज छुट्टी चाहिए थी ऑफिस से, बॉस ने ऐसे तो देनी नहीं थी, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो हर बार छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। बच्चे भी वही सीख रहे हैं, चॉइस नहीं।
0: लेकिन सपोज मुझे अपनी मदर को डॉक्टर को दिखाना है और मुझे जो बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो मैं फिर कोई बहाना बना के या करके जो छुट्टी लेती हूँ। बट मोर इम्पोर्टेंट इज मुझे, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त ये थी कि मुझे मदर को डॉक्टर को दिखाना है।
1: I'll tell you something. This has to be experimented within life. हम पहले से ही अंदर से डिसाइड कर लेते हैं कि इसने तो मांगना ही है ब्राइब, इसके बिना तो होगा ही नहीं, इसने तो छुट्टी देनी ही नहीं है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। ये जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, ये पहले ही सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। दिस सीम्स टू बी कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो मांगना ही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। योर वाइब्रेशंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वी हैव एंड प्लस आपके अपने प्रिंसिपल्स। ये नहीं कि आप एक जगह बोले मैं नहीं दूंगा, चार जगह वैसे आप देते हैं। सी दैट इज द क्वेश्चन
0: अगेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एवरी टाइम।
1: आपकी थिंकिंग की क्वालिटी क्या है, दैट इज योर वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन ये, लेट्स से मैं सोचूं कि टीटी को मैं पैसे नहीं दूंगा, ही शुड नॉट आस्क मी। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर जब मुझे पुलिसमैन पकड़ता, जबकि मेरी गलती थी और मेरा फाइन था 500 का, मैंने 100 पकड़ा कर काम कर लिया, तो मेरी वाइब्रेशन की क्वालिटी क्या है। Now this same vibration will work now when I come in front of this person because it's basically my thinking quality. Vibration situation specific nahi hota hai. This is something which is very fundamental jo hume samajhna padega. Hamare jo sanskar over a period of time bante ja rahe hain, that is my quality of vibration. Vibration is nahi main inke samne baithi hu aur main bahut positive soch rahi hu, ab inko mere se positive feel hona chahiye. Lekin abhi abhi main sara din mein 10 logon se mili and I was negative towards them, how will you feel positive with me?
0: क्योंकि वो एक्चुअली वो सारी नेगेटिविटी भी तो मुझसे गुजरी
1: है। एब्सोल्युटली, सो इट्स बीन क्रिएटेड हियर। तो जो हमारे एक जीवन को कहें प्रिंसिपल्स, एक लाइफ को लीड करने के प्रिंसिपल्स हैं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक चेंज नहीं हो सकते हैं। आप एक अपने लिए प्रिंसिपल बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव इफ समवन हैज द करेज टू डू दैट, सी हाउ योर लाइफ रन्स। आने दो ना ऊपर नीचे, कितना आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, ठीक है आपका नुकसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन क्या ज्यादा मायने रखता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या वैल्यूज? आज हमारे को अपनी वैल्यूज की वैल्यू नहीं है। दैट इज द थिंग, ऑनेस्टी। ये क्या है, यहाँ 5 लाख, यहाँ ऑनेस्टी, कौन सी साइड ज्यादा भारी लग रही है? तो ये तो कुछ नहीं है, साइड पर रखो। इसकी अपनी ही वैल्यूज की वैल्यू कहाँ है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने में कितना देर लगती है। आज झूठ बोलने के लिए कितनी बार सोच रहे हैं, सोचते हैं वो इजिली इजिली, क्योंकि एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, आफ्टर दैट माय संस्कार। लेकिन हर बार जब बोलते हैं पता है क्या कहते हैं, आई हैव नो चॉइस।
0: यस,
1: आई हैव नो चॉइस, वो सिचुएशन ऐसी थी, वो ऐसे था, वो ऐसे था। तब करते करते करते इस तरह से अपने आप को बहुत कमजोर बनाते जाते हैं, बहुत कमजोर बनाते
0: जाते हैं। I think the statement I have no choice makes me
1: needs to be removed.
0: लेकिन why are we afraid to take responsibility?
1: क्योंकि अगर if I say कि this is my choice, let's say जब मैं I walk into an office जहां मुझे अपना काम करवाना है and मैंने पहले से ये thought create कर लिया कि बिना दिए तो यहाँ काम होने नहीं वाला, तो मुझे पता होता है इधर से इधर तक मुझे ये देना है तब मेरा काम होगा। आई ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन एंड आई ऑल्सो टोल्ड माई सेल्फ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देते वक्त हर एक को पता है व्हाट दैट वर्क, एवरीवन नोस। से राइट एंड रॉन्ग की बात करने का कोई क्वेश्चन नहीं है, हर आत्मा को पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन देते वक्त मुझे अपने आप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी है। जब हम रॉन्ग भी करते हैं हम क्योंकि अपने आप को जस्टिफिकेशन दे देते हैं उसकी, वी कन्वर्ट इट इनटू अ राइट। सो व्हेन आई वॉक इनटू एन ऑफिस,
0: ताकि वो मेरे सर पे कंटिन्यूस हथौड़ा ना मारता रहे कि मेरी कुछ गलत करते हैं,
1: सबकॉन्शियस माइंड या कहें वो कॉन्शियंस जो बोलते हैं ना, मेरी कॉन्शियंस प्रिक नहीं करनी चाहिए मुझे अंदर, तो मैं क्या अपने आप को कहती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काम ही ना होता तुम्हारा, ये सिस्टम ही ऐसा
0: है, इंपॉर्टेंट है ये।
1: एंड देन आई एक्चुअली कैन टॉक टू फोर पीपल, पता है आजकल का सिस्टम देखो कैसा है, ये सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है। अब ये कौन कहेगा मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए, एनीवन वांट्स टू से दैट? नो, एक्चुअली इट्स द ट्रूथ, आई डोंट हैव द करेज, क्योंकि मुझे पता है ऑनेस्टी के रास्ते पर चले तो हो सकता है थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, थोड़ा सा काम जो 5 मिनट में हो जाता वो 5 दिन में होगा, हो सकता है 5 दिन में नहीं 5 महीने में होगा, फाइनली होगा जरूर, होगा जरूर, एंड नहीं भी होगा तो भी व्हाट इज माय प्रायोरिटी, दैट्स अ क्वेश्चन। तो जो लोग अपने जीवन में अपनी वैल्यूज को और अपने प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी रखेंगे वो उसके लिए फिर किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वो कर करके आई टेल यू उनका कभी नुकसान नहीं होता। चॉइस मेरी, डिसीशन मेरा, उसका जो रिपरकशन
0: वो
1: भी मेरा। लेट्स से आई वॉक इनटू एन ऑफिस एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैंने नहीं देने, आई एम नॉट गिविंग, तो आई शुड बी रेडी कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है। उसका रिपरकशन ये हो सकता है कि मेरा काम होगा ही नहीं, एम आई रेडी फॉर दैट रिपरकशन? आप अपने रिपरकशंस को लेकर रेडी होने चाहिए।
0: लेकिन मैं उसके लिए थॉट को लेके जाऊं अगर कि मेरा काम होगा ही नहीं,
1: इसीलिए तो वो वाइब्रेशन ही हमने पहले क्रिएट कर दिया। अब राजयोग से अगर हम वो ताकत ले रहे हैं परमात्मा से, तो परमात्मा की ताकत हमें क्या है, राइट थॉट क्रिएट करना, दैट इज द पावर आई एट लीस्ट फील फ्रॉम मेडिटेशन। तो व्हेन आई एम वॉकिंग इनटू अ सिचुएशन लाइक दिस, इफ आई कैन क्रिएट अ थॉट, वन, मैं नहीं देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं देने वाली हूँ, देने की ऑप्शन को तो आउट ऑफ मतलब अपने जीवन से ही बाहर कर दिया है, वो है ही नहीं ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, सामने वाला मेरे से मांगेगा ही नहीं, इंस्टेड ऑफ सेइंग सामने वाले तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो सिस्टम ही, क्या वाइब्रेशन भेजा सामने वाले के लिए? सामने वाला कौन है जो बैठा हुआ है?
0: वो भी तो एक प्योर सोल है।
1: सामने वाला मांगेगा ही नहीं मेरे से, आई ऑलवेज वॉक इन विद दिस थॉट, सामने वाला मेरे से नहीं मांगेगा, इट वर्क्स एंड द थॉट, काम तो होगा ही, लेट देयर बी ऑब्स्टेकल्स, इट्स ओके। लेकिन मैंने देने वाला ऑप्शन रखा ही नहीं हो अगर लाइफ में, तो फिर वो ऑप्शन आता ही नहीं है। अभी क्या होता है, हम अगर एक आधी बार ट्राई भी करते हैं, लेकिन हमने वो ऑप्शन तो रेडी रखा हुआ ना, अच्छा मैं नहीं देता अभी एक बार, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन,
0: वो ऑप्शन रखी है कि अगर नहीं हुआ तो मैं फिर ये करूंगा।
1: आपने ऑलरेडी वो वाइब्रेशन क्रिएट कर ली है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स, वो चॉइस हम तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी प्रायोरिटीज बहुत राइट सेट की हुई है, कि मेरे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है। एंड दिस इज फंडामेंटल, कि जितना आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी देते जाएंगे तो आप अंदर से क्या होते जाएंगे, इट वर्क्स, इट वर्क्स। लॉट ऑफ पीपल विल से ऑनेस्टी वर्क्स, व्हाई विल इट नॉट वर्क? लॉट ऑफ पीपल विल से विदाउट करप्शन काम होता है, लेकिन वो कौन कौन कह पाएगा जो खुद उसके बिना काम किया होगा? लेकिन जो कर ही उस तरह से रहेंगे वो क्या कहेंगे, उसके बिना तो काम नहीं होता। तो ये क्रिएट किसने किया? हमने किया, चॉइस है, कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्लीज अपने आप को बार बार ये नहीं कहना कि मेरे पास चॉइस नहीं है, ये उसकी वजह से है, ये उसकी वजह से, हम चूज कर रहे हैं ताकि हम रेडी रहें।
0: उसके रेपरकशंस के लिए,
1: रेपरकशंस की भी बात नहीं है, इट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स मी गो थ्रू लाइफ विद द थॉट कि आई एम लीडिंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट. इवन टूडे इफ आई गिव अ ब्राइब, आई एम लीडिंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, नॉट मेरे पास चॉइस नहीं है, द सिस्टम इज लाइक दिस, देन आई एम नॉट लीडिंग द लाइफ द वे आई वॉन्ट.
0: आई बिकम वेरी वीक एक्चुअली, वेरी लो. So, but why I'm not ready to take the responsibility
1: of
0: my you know,
1: because agar maine responsibility li to mujhe change hona padega. Agar maine kaha system responsible hai, the system ko change hona padega, to I can keep waiting for the system to change,
0: which will never,
1: which will whatever chahe wo system ho,
0: system, we've seen system never changes.
1: Nahi, system could be anything. See, system need not be a government office, system could be my husband, system could be my child, for me anything, jiske samne main khade hokar kehti hu mere paas choice nahi hai, main abhi jo soch rahi hu, jo kar rahi hu, wo inki wajah se. To then inko change hone ki zarurat hai agar mujhe theek hona hai. Main agar jaise wo jhoot bolne ka humne example liya, mera boss itna gusse wala hai isliye mujhe jhoot bolna padta hai, to jis din mera boss theek ho jayega,
0: मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी.
1: So wait for the boss to change.
0: Oh my God,
1: wait for the boss to change. And then keep on doing your karma. Just saying that I have no choice. But the repercussion will not go to the boss. Repercussion will come to me.
0: And we have understood karma, karmic philosophy क्या कहती है? कि जैसा जो भी करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी रास्ते पर हम चल रहे हों. Wonderful. I think somewhere जहाँ हमने अभी तक हम सब कुछ manage करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था,
1: कर रहे थे, अपनी choices को भी manage करना,
0: और जैसे ही self management पे आ रहे हैं, नहीं सर शिवानी, जैसे देखा, it means हमने नजर अपनी तरफ जब की तो वहाँ पे इतनी सारी चीजें थी जो हमें पता नहीं था कि हम क्यों decisions ले, हम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं.
1: एक्चुअली हम इसलिए ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं जब उनके सामने कोई बात आती है, जब वो repercussion आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सबके माइंड में आज क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. आई मेट अ लेडी, शी लॉस्ट अ 2-year-old डॉटर, 2 साल का बच्चा, कहती है भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे भगवान ही पसंद नहीं. आई सेड, बहन आपको ज्ञान है ना कार्मिक फिलोसफी. शी सेड, यू नो सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, शी सेड मैं कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं सकती जिसके लिए मेरे साथ ऐसा होना चाहिए. नॉट रेडी, क्योंकि जब वो हिट करता है, वो इतना बड़ा हिट करता है कि हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया होगा, लेकिन नाउ वी नो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो मैंने ही कुछ ना कुछ किया है, सिर्फ करते टाइम
0: पता ही नहीं. यहाँ पे भी तो इनफैक्ट इट्स, आई एम अमेज्ड, यू नो वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट इट, कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि इतना सटल है ये अगर मैं ये कर्म कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, और करती जा रही हूँ क्या, ये जितना करती जाऊंगी उतना संस्कार गहरा होता जाएगा, और अब हर बार हम ये कह के अपने आप को निकाल लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाते हैं कि इट्स नॉट माई चॉइस,
1: तो फिर परिवर्तन की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर नहीं आती.
0: वेरी ट्रू. इनफैक्ट ये बहुत समझ कर देखने की जरूरत है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह से बार बार हम ये कहते हैं कि जहाँ किसी भी सिचुएशन को के लिए जो हमें एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरी तरफ ये भी कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई मुझे पकड़ कर नहीं कह सकता कि आपको इधर ही जाना है या आपको उधर ही जाना है, चाहे आप कितने भी, अगर हम उसमें देखें सोसाइटी में या सिचुएशंस में, कितना भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हों, और आज ज़्यादातर लोग अपने आप को बहुत बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. ओम शांति. सचमुच देखने की बात यह है कि जब सेल्फ की तरफ नजर गई तो बहुत सी अपने अंदर ही इनहरेंट ऐसी बातें थी जिनको हमने स्वीकारा हुआ था कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं ही सिचुएशंस में फंसी हुई हूँ, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है. लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सचमुच समझें जब हम साइलेंस में बैठें, या जब भी जो भी बात अगर कहीं पर भी आपको छू रही है ये बात, तो इस पर ज़रूर मनन करें, ज़रूर चिंतन करें कि क्या मेरे पास चॉइसेस हैं, और आंसर ज़रूर आएगा कि यस आई हैव द चॉइस. आप जानते हुए जब मैं उस रास्ते को चुनती हूँ तो वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और फिर उस कर्म की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, फिर उसका फल मुझे मिलेगा ही, अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, वो तो हमें अपने आप ही पता होगा जब हम उस रास्ते पर चल रहे होंगे। तो आज के इस पूरी बातचीत से जुड़ी कोई ऐसी बात या फिर सेल्फ मैनेजमेंट पे जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कोई आपके पास सवाल है, आपका हम स्वागत करते हैं। उसके अलावा हम आपसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में खुले सेंटर्स पर आप ज़रूर जाएं और राजयोग का जो पूरा अभ्यास जो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं उसे ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हम तलाश रहे हैं वहाँ आपको उसका राह ज़रूर मिलती है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09993446 09873666555 09997445। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और खुद को समझते समझते जब मैनेज करने की बात आ रही है तो बहुत सी बातें खुलती जा रही हैं। आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें। आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद घ्या
2: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: आओ ग

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा नाद आपण ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर हम आपके साथ। इन दिनों हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स से। भाई, जीवन में ऐसा क्या हुआ कि हम जीना ही भूल गए? वो स्किल्स जो शायद अभी तक नहीं जानते थे, हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। कितनी तरह के थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट करते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट क्या है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमने बात की थी कि 7 तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और उनके इम्पैक्ट्स हमारे जीवन पर क्या होते हैं। आगे बढ़ें और हमने जब राइट थॉट्स की बात की तो 10 रॉन्ग थॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रॉन्ग को राइट कैसे करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बार फिर रिकैप करते हैं, क्योंकि जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है, नई स्किल सीख रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हमारे पास रजिस्टर होने में। वो जो 10 आपने कहे थे कि रॉन्ग थॉट्स हैं जिनको राइट करना ज़रूरी है, चाहे हम पॉजिटिव नहीं भी सोच रहे लेकिन ये रॉन्ग जो है वो राइट किया जा सकता है, तो कौन से हैं वो थॉट्स?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार समझ में आ जाए कि ये 10 कौन से हैं, कौन से मिरर्स हम यूज़ करते हैं, और फिर तब अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि भी कौन से मिरर में मैं अपने को देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना करके देखते हैं। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, हम परिस्थिति को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखते हैं, एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो भी बुरा है। वास्तव में परिस्थिति जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे है, उसको सही रूप से देखना चाहिए। तीसरा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ बात हुई तुरंत निर्णय पर आ जाते, फिर उसकी भी बुरी इफेक्ट होती है। हमें थोड़ा वक्त देना है, अच्छी तरह से परिस्थिति को एनालिसिस करें और फिर उसके बारे में आगे हम सोचें तो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। चौथी बात है ऑलवेज मेंटेलिटी, कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब मेरे साथ ही होता है, वो ऑलवेज मेंटेलिटी भी बुरी है। पांचवी बात है वाई मी एटीट्यूड, कि कुछ समस्या हुई तो मुझे ही हुई, हमेशा हमें नहीं होती है। कुछ समस्याएं बल हमें भी होती है लेकिन औरों के सामने भी समस्याएं आती है, उस प्रकार से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए। छठी बात है कि हम देखते हैं कि सर्चिंग नेगेटिविटी, कुछ बात हुई उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ निकालते हैं, बल अच्छा बहुत ज्यादा हुआ है, बुरा तो बहुत थोड़ा हुआ है,
0: तब भी हम वो ढूंढ रहे हैं।
2: हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग में हम पॉजिटिव को ढूंढते हैं, परंतु या सर्चिंग नेगेटिविटी में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। सातवां है नॉटिंग, कि फोर्सिबली कोई बात को भूलने की कोशिश करते, वह हमें नहीं करना है। वास्तव में क्या छोड़ना है वह नहीं सोचो, परंतु क्या पकड़ना है उसको सोचो। हमें कहाँ जाना है उसके बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आठवीं बात है कि डिस्क्वालीफाइंग द गुड, अच्छा ऑलरेडी हुआ है लेकिन आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया। नवीं बात है लेबलिंग, कि हम लोगों को भी लेबल करते हैं और लेबलिंग के कारण भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। और दसवां है फ्लाई मेंटेलिटी, कि जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है, मक्खी कैसे गंदगी पर ही बैठती है ऐसे हमें भी आदत हो जाती है, हम गंदे पर ही बैठते हैं। ये 10 बातें अगर व्यक्ति एक बार याद रख ले अच्छे से और सारे दिन में जो भी घटनाएं होती फिर सोचो कि उसमें से मैंने कौन से मिरर में अपने आप को देखा। कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि एक परिस्थिति में एक के साथ 2 या 3 मिरर में भी आप अपने आप को देख रहे हैं। वो तीनों को पहले पहचाने और फिर उसमें परिवर्तन करें तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव राइट थिंकिंग की भी हमें आदत हो जाएगी।
0: शिवानी, ये जो 10 रॉन्ग सडनली हमारे सामने आए हैं, इट्स एन अमेजिंग रेवलेशन, लेकिन अगर नहीं चेंज हुआ सो व्हाट्स रॉन्ग?
1: क्या ये थॉट नहीं चेंज हुआ तो बहुत सारा उसका आगे बहुत सारा इफेक्ट आएगा। सारा दिन में हम, जैसे भाई साहब ने कहा, 35,000 to 50,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और आज दिन तक हम अवेयर भी नहीं थे कि वो 7 टाइप्स की हैं, उस हर टाइप में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम ये भी अवेयर नहीं थे कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं. इसका मतलब अंदर का जो पूरा प्रोसेस था हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी. एंड फिर जब हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, वी वर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट विदाउट ट्राइंग टू वर्क ऑन द सोर्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट क्रिएट क्यों हुआ. चाहे वो रिजल्ट ये था मैं फील कैसा कर रहा हूँ, चाहे वो रिजल्ट ये था मैंने बात ऐसे क्यों कर दी, चाहे वो रिजल्ट ये था कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, चाहे रिजल्ट ये था कि मैं वर्क में क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा. बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं होते, फिर भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है. सो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग. जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, बिकॉज वी वर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्ट जब वो अंदर डिवेलप हो रहा था. अभी बाहर तो फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट निकला. तो जब हम अपने ऊपर ये चेकिंग करने शुरू करते तो हम देखते कि वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता. थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं, इवन जब रात को सो रहे हैं तो भी चल रहे हैं, इवन दो इट्स एट अ लिटिल स्लो स्पीड. जैसे ही थॉट्स क्रिएट होती, इट इज़ फॉलोड बाई फीलिंग, हमें महसूस होगा. इसीलिए जैसे आपने कहा था कि थॉट तो पता ही नहीं चलती, ये पता चलता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है. इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर आ गया. फर्स्ट स्टेज की तो मैं अवेयरनेस ही नहीं थी. ऑलरेडी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से उठ के सेकेंड डिपार्टमेंट पर आ चुका है, फीलिंग के डिपार्टमेंट पर. लेकिन अगर फीलिंग के डिपार्टमेंट पर भी मैंने चेक कर लिया, यू नो इट्स लाइक अ प्रोसेस प्लांट, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर सेकेंड स्टेज पर भी आपको पता चल गया कि फॉल्टी है, इट्स इजी ना. आप तुरंत फर्स्ट स्टेज पर वापस जाएंगे एंड वहीं के वहीं आप अपने प्रोसेस प्लांट को चेंज कर लेंगे. हम फीलिंग पर भी उसको चेक नहीं करते. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कई बार पूरी दुनिया के बारे में, इट डिवेलप्स माई एटीट्यूड. मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे, जो कई बार हम कहते हैं इसका एटीट्यूड ही बहुत नेगेटिव है, इसको जो देखो इसको ये नेगेटिव दिखाई देता है,
0: एटीट्यूड चिंता वाला है.
1: हाँ, इसका ये एटीट्यूड है. तो ये एटीट्यूड है मतलब क्या, कि ये तो है ही ऐसा, यू नो.
0: जब मैंने एक बार एंग्जायटी की फीलिंग क्रिएट की, घबराहट की हुई, उसके बाद आगे भी वही होती जाएगी, आगे भी. सो अल्टीमेटली हर सिचुएशन में मैं घबराऊंगा.
1: इट माइट नॉट बी इन हर सिचुएशन, बट इट इज डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन. धीरे धीरे वो जाएगा व्हेन इट विल कम टू हर सिचुएशन. अभी एटीट्यूड मतलब, लेट्स से आपसे मैं जितनी बार मिली, मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट क्रिएट किया, तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति जो एटीट्यूड है वो उस क्वालिटी का बन. हाँ, आपके प्रति. अभी वो सबके प्रति नहीं, अभी सिर्फ वो आपके प्रति है. लेकिन अब जैसा मेरा एटीट्यूड आपके प्रति हो जाएगा, वो फिर मेरे एक्शन में आएगा. यू नो, इफ आई से, यू नो, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, नाउ दिस इज माय एटीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली मेरा आपसे बात करने का तरीका, आपकी हर बात को परसीव करने का तरीका, आप कुछ भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, ये बहुत अच्छे है. एंड ये अगर मेरा एटीट्यूड उसका ऑपोजिट हो, आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे, मेरे को उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट डिवेलप हुआ हुआ है. तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम मैंने एटीट्यूड कौन सा डेवलप किया हुआ है आपके बारे में. जैसे भाई साहब ने कहा, कौन से शीशे के थ्रू हम हर चीज को देखते हैं. एटीट्यूड इज अ बिग मिरर दैट वी क्रिएट, जिसके थ्रू हमें हर चीज उस रंग के फिर दिखाई देती है. अब एटीट्यूड लेवल पर जब आ जाती बात, तो हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. यू नो, कई बार कहते हैं इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ही बहुत केयरलेस है, ये सीरियसली लेते ही नहीं है. दैट्स माई एटीट्यूड. लेकिन बना कैसे? Thought, feeling, attitude now comes out into action. Action मतलब कोई word या कोई physical कर्म. Action. अब जैसा मेरा action होगा, पर कई बार मैं वही action को बार बार बार बार repeat करती, then it becomes my habit. Once it has become my habit, जिसको हम कहें, you know, my संस्कार, then it's not with one person,
0: हर एक के प्रति.
1: हाँ, ये अब मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है. शुरू शायद वो किसी एक से हुआ था, जो कई बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं, कि कई बार हमें आदत है कि ऑफिस में काम कराने का तरीका कैसा है, गुस्सा किया, गुस्सा किया, गुस्सा किया, काम करवाया. तो घर पे भी बच्चों से वो कुछ करवाने का तरीका कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा. दोस्तों के साथ भी कैसा हो जाएगा, वैसा. क्यों? बिकॉज गुस्सा करना ये मेरा संस्कार बन चुका है. गुस्से से काम करवाना ये मेरा संस्कार बन चुका है. देन इट विल नॉट रिमेन विद द दैट पर्सन स्पेसिफिक देन इट इज विद मी बिकॉज अब ये मेरा पैकेज है, दिस इज हु आई एम, ये हर एक के साथ ये होगा. एंड आई हैव लॉट ऑफ संस्कार्स, तो ये जो मेरे सारे संस्कार्स हैं दिस इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी. तो हर थॉट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि फाइनली इट इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी. ये मेरा व्यक्तित्व है, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी. अब हम जाते हैं पर्सनैलिटी वर्कशॉप्स के अंदर, हम जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर, क्या करने के लिए, मेरी पर्सनैलिटी चेंज कर दो. फिजिकल नहीं, इट्स दिस पर्सनैलिटी विच इज रेडी, स्टार्ट हुई थी थॉट से. आपको चेंज करना है कुछ भी, यू विल हैव टू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ थॉट्स. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जैसी मेरी पर्सनैलिटी होगी हर स्टेप पे, मैं वो पर्सनैलिटी को लेकर जाऊंगा, तो हर स्टेप पे जैसी मेरी पर्सनैलिटी होगी वो एनर्जी बाहर जाएगी, जो एनर्जी बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आएगी, जब एनर्जी वापस आती है हम उसको डेस्टिनी कहते हैं. मेरे साथ जो होता है वो मेरा भाग्य है, तो मेरी थॉट मेरा भाग्य क्रिएट करती है. और अगर मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूँ तो मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूँ, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य इज जस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, बट दे आर अ रिटर्न ऑफ द एनर्जी दैट आई हैव सेंट आउट. द मिनट आई अंडरस्टैंड दिस दैट आई क्रिएट माई डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द थॉट्स आई क्रिएट, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है उसके ऊपर, क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि सारी पावर आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है. चेंज द कंट्रोल, डेस्टिनी विल चेंज टोटली.
0: आई थिंक द वे ही आल्सो सेड कि आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हो उन सारी घटनाओं.
1: बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कैसे वर्क करता है, वो इस तरह से वर्क करता है कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब जो कर्म आप करोगे, जब हमें लॉ ऑफ कर्मा समझ में आता है कि जो कर्म मैं करूँगा उसी का रिटर्न मुझे मिलेगा. मेरे कर्म की क्वालिटी किस बेसिस पर है, जो मेरी पर्सनालिटी की क्वालिटी है, तो इसका मतलब कर्म की क्वालिटी पर्सनालिटी की क्वालिटी से, वो थॉट की क्वालिटी से, तो कर्म का रिटर्न भी थॉट की क्वालिटी से, तो भाग्य अपने आप आपने ग्रेविटेट कर लिया ना वो भाग्य को अपनी तरफ,
0: जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप दे रहे थे बेसिकली,
1: दैट इज कमिंग बैक टू यू.
0: जैसा मतलब जो मैंने क्रिएट किया वही मैंने पाया.
1: यस, अब थोड़ा सा और एक स्टेप पर देखना है कि अगर थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है तो थॉट्स की सोर्स क्या है. पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ध्यान से कि नेगेटिव न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ बहुत ज़्यादा ना पढ़े, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है थॉट्स पे. गॉसिपिंग की आपने पहले बात की कि क्यों नहीं गॉसिप करें, इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट करती है. सेकेंड है बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. कि जैसे बात हुई कि गुस्से से काम करवाना, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करो तो काम जल्दी हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम है. ये बिलीफ होगा थॉट उसी क्वालिटी की चलेगी, पर्सनालिटी वही बनेगी, डेस्टिनी भी फिर उसी के हिसाब से होगी. तो इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थॉट्स चेंज होती जाएंगी, भाग्य बदलता जाएगा.
0: बिल्कुल, एक बहुत नया एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं हम कि भाग्य, जिसे हम अभी तक कह रहे थे कि बहुत सारी और बाकी चीज़ों पर हैं सिचुएशंस, तो आज जो बात है कि थॉट की पावर जो है वो चेंज कर सकती है.
2: और एक बात ये भी करनी चाहिए कि राइट थिंकिंग अगर हमें डेवलप करना है, सचमुच प्रैक्टिस करनी है, तो एक चार्ट लिखना चाहिए.
0: वो जो रॉन्ग्स हैं, 10 रॉन्ग्स
1: को राइट में करें
2: मिलके, हाँ उसको ऐसे करें कि भी सारे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी पहले पहले लिखो, मेजर ना भी लिखो, तो ये 10 घटनाएं हुई, उस समय मुझे फीलिंग्स क्या हुई, कि निराशा की फीलिंग हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, क्या फीलिंग्स आपको हुई. फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि मेरे रॉन्ग थॉट क्या थे,
0: जो मैंने 10
2: था, जो 10 मिरर्स थे वो कौन से मिरर में मैंने उसको फिट किया, उसको लिखो कि ये मेरे रॉन्ग थॉट थे. फिर ये लिखो कि भी राइट थॉट क्या होना चाहिए, कि भी ये घटना फ्यूचर में हुई तो मैं ये राइट थॉट करूंगा, उसे फिर रिपीट करिए कि बस फ्यूचर में घटना ही मैं यही करने वाला हूँ, तो आत्मा में भी वह जाएगा कि कि फ्यूचर में होगा, आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया कि मैं यही राइट थॉट करने वाला हूँ। ऐसी प्रैक्टिस 3-4 सप्ताह भी करने लगो, ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग करेंगे।
0: तो ये हर रोज शाम को करें या हर एक घंटे बाद करें?
2: एक्चुअली
0: बिकॉज वो याद ही नहीं रहेंगे घटनाएं।
2: टाइम मिले तो भले 2-3 घंटे बाद भी करो। और कोई कहे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, सारा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो बोले शाम को भी करिए।
1: बेसिकली एक छोटी सी नोटबुक अगर आपके पास है, यू शुड जस्ट स्क्रिबल इट डाउन इमीडिएटली,
0: याद नहीं रहता फिर।
1: एक्चुअली उसी टाइम अगर करते हैं ना, तो एक तो उस टाइम आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेते हैं। लेट्स से अभी मेरे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई और मैं आधा पौना घंटा उसी के बारे में सोच रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ माइंड जा रहा है, क्यों नहीं लेट मी डू दिस एक्सरसाइज उसी टाइम, सो दैट आई इवन सेव दैट हाफ एन आवर ऑफ एनर्जी ऑफ डिप्रेशन।
0: पहली चीज तो ये कि ये ब्लेम गेम जब खत्म होगा ना, अभी तक भी जो बहुत मेजर वाले इश्यूज आते हैं, इट्स नेवर लाइक कि मैंने क्रिएट किया।
1: सी, इश्यू बहुत बड़ा हो सकता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, किसी ने चीट किया मुझे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो बच्चा है, चीट किया मुझे, इट्स अ बिग इशू, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी थॉट तो मुझे क्रिएट करना है ना।
0: वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जो फीलिंग आई है, जो फीलिंग ऑफ हर्ट, रिजेक्शन या जो कुछ भी, एंगर जो भी है, वो मैंने क्रिएट की, ये एक्सेप्टेंस और रजिस्टर होना, ये भी अभी वक्त लग रहा है। Why does it take time? I don't want to take the onus or what it is.
1: Because we were not aware also, na? हम देख ही नहीं रहे थे कभी भी। जितना मैं बाहर देखती हूँ, मुझे हर चीज़ सिर्फ बाहर ही दिखाई देती है। मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, कुछ नॉट सो अच्छा, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा, तो ऑटोमेटिकली मैं कंक्लूजन क्या करूँगी कि ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है, ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है। दिस इज़ लाइक एन ऑटोमेटेड मोड, कि ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, आपकी कोई चॉइस नहीं है। मशीन और ह्यूमन बीइंग में क्या फ़र्क है? मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है। ह्यूमन बीइंग मींस एट एवरी स्टेप अ चॉइस, कि भले किसी ने बटन प्रेस किया भी है, आपको ऑन होना है या ऑफ होना है, इट्स योर चॉइस, नाउ डिसाइड। आपको ऑफ होना है, ऐसे होके बैठ जाना है, ऑन होना, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और इस केस में तो सिर्फ दो चॉइसेस नहीं है, ऑन एंड ऑफ, बहुत सारे चॉइसेस है। एंड जितना हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें लगता है कि हर सिचुएशन में एक्चुअली कितनी सारी चॉइसेस थी। हमने हमेशा वो प्रोग्राम्ड चॉइस ले ली कि इन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगना ही है, गुस्सा तो आना ही है। सो वी वर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी, ऑफ एनी अदर चॉइस ऑन दैट।
0: इनोवेशन,
1: क्रिएटिविटी।
2: और कारण है कनुप्रिया बहन की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बस मुख्य बात एक भी, हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इवन मेरे थॉट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल।
0: मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, इसकी जिम्मेदारी अगर मैं ले लूँ,
2: एक ले लो, फिर और सब कुछ
0: सारे हो जाएंगे।
1: और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज स्ट्रगल हो रही है। सी, पेरेंटिंग स्ट्रगल, जॉब स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, हर चीज में, तो एक रिलेशनशिप्स स्ट्रगल, हर एक चीज में क्यों स्ट्रगल हो रहा है? क्योंकि मैं जो ये सारी जिम्मेवारियां उठा रहा हूँ, मैं पहले अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि वो थॉट बीज है, ये पूरा उसका वृक्ष है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। अभी हम निभा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट तरह से निभ रही हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना, लेकिन शायद मेरा ही थॉट और व्यवहार मेरे बच्चे को इमोशनली वीक कर रहा है, तो देन एम आई फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात, शायद आई एम क्रिएटिंग डैमेज, आई एम क्रिएटिंग अ डैमेज, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल फॉर माई चाइल्ड्स ग्रोथ, तो दैट आई हैव टू क्वेश्चन। बट वाई विल आई नॉट बी एबल टू डू दैट? पेशेंस नहीं है, कि मैं नहीं प्यार से समझा सकता, मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी ली है।
0: ओके, अपनी जिम्मेवारी नहीं ली, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ, उसकी नहीं ली। इट्स नॉट दैट ईजी। सी अगेन, अभी भी मैं अगर सोचूं, मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, और मैंने थॉट क्रिएट जाने की भी कोशिश की कि मैं जाके देखूं कि क्या है थॉट, तो वो थॉट जो है वो है, क्योंकि मैं सोच रही हूं कि वो सिचुएशन है वो। अब उसको मुझे ठीक करने के लिए आई विल वेट फॉर द सिचुएशन टू कम, और आई कैन से इधर आई गिव अप देन एंड आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ है वो इशू। ये चेंज कैसे होगा ये थॉट?
2: इसके लिए एक बात जो फाउंडेशन समझना चाहिए कि परिस्थितियों में जान नहीं होती है, जो हम
0: थॉट में जान है।
2: हाँ,
1: एनर्जी तो वही
2: है, सिचुएशन आर लाइफलेस, हम जो उसको लाइफ देते हैं वो अपने थॉट्स से देते हैं। तो तो बस थॉट्स को मुझे चेंज करना है और वो मेरे कंट्रोल में है,
0: क्योंकि हमने उस पे जाके
2: एंगल को तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ. कौन से एंगल से मैं आपको देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट लेट मी चेंज द एंगल.
1: और उसके लिए अगर हम कॉन्शियसली प्योर और पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं जबकि कोई परिस्थिति भी नहीं है, अगेन वी थॉट फर्स्ट स्टेप वॉज जब कोई परिस्थिति नहीं है चेक करो कैसी थॉट्स है, दूसरी स्टेप जब कोई परिस्थिति नहीं है कॉन्शियसली पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं, यू नो चैनलाइजिंग माई माइंड इन द राइट डायरेक्शन. गिरीश भाई ने पहले कहा था एक बार कि जिस डायरेक्शन में थॉट्स फ्लो होंगी ग्रूव्स उसी तरह बनते जाएंगे, पानी जैसे फ्लो होगा. तो अब हम कुछ समय रोज निकालें अपने लिए कि हम पानी को डिलिबरेटली उस तरह से चैनलाइज करें जिस तरह से वी वॉन्ट माई माइंड टू वर्क. अपने आप नहीं हो जाता है, सिचुएशन आने पर नहीं हो पाता है, तो तब करना होगा व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट. और इसीलिए मेडिटेशन हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग में कि सुबह उठ के कुछ पढ़े बिना, किसी से बात करे बिना, कुछ भी और करे बिना, क्योंकि जैसे ही आप यू नो एक्टिविटी में चले गए आपका ये माइंड फिर हो जाता है. कई बार तो आप चेक करें जब आप सुबह उठते हैं पिछले दिन की बातें वो ऑटोमेटिक अभी भी चल रहे हैं, लाइक अ कमेंट्री वो माइंड में चलता जा रहा है.
0: पहली आंख खुलती है और वो सारा का सारा बैकलॉग सामने,
1: एक्चुअली वो सारा का सारा बैकलॉग सामने नहीं आया, नींद में भी वो चल रहा था. अभी तो आंखें खुली सिर्फ, इसीलिए उठने के बाद आप रेस्टेड फील नहीं करते, आप फील नहीं करते कि आप चार्ज थे, क्योंकि रात को सोने से पहले हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया था. आंखें बंद हो गई, शरीर सो गया, माइंड अभी भी चल रहा था. सुबह जैसे ही आंखें खुली वी सी के वही सीडी बज रही है अंदर, वही वाले गाने सारे बज रहे हैं अंदर, वो रात भर भी बज रहे थे. आज मेजोरिटी लोगों से आप पूछो सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है, यू नो जो आपने टाइम का अलार्म लगाया है 5 मिनट और किसका मन करता है सोने को, मेजोरिटी विल से यस,
0: सब बोलेंगे यस.
1: नाउ व्हाई आप 5 घंटा 6 घंटा सो लिए उसके बाद 5 मिनट और क्यों सोना है, क्योंकि जैसे ही उठते हैं वी स्टिल फीलिंग वेरी टायर्ड. बॉडी ठीक है बट माइंड अभी भी बहुत थका हुआ, क्योंकि वह पूरी रात भी चल रहा था कंटिन्यूसली. तो इसलिए अपनी थिंकिंग पर वर्क करें कॉन्शियसली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठते ही. नींद बहुत अच्छी होगी, सुबह की तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो सारा दिन का काम ईजी हो जाएगा उसको करने के.
0: डॉक्टर पटेल, यहाँ हम अलग अलग थॉट्स को देख रहे थे, अभी एलिवेटेड थॉट्स पर हम अभी आ रहे थे कि वो उनमें कौन से थॉट्स शामिल हैं.
2: अभी एलिवेटेड थॉट जैसे हमने देखा टॉक्सिक थॉट, वो नेगेटिव इफेक्ट में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. तो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट को देखें तो एलिवेटेड थॉट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो एलिवेटेड थॉट है वो हाई एनर्जी थॉट है, उसमें ऊर्जा की हमारी एनर्जी भाई होती, आप खुद भी उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं. साथ साथ जो एलिवेटेड थॉट्स है वो जैसे टॉक्सिक थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ऐसे एलिवेटेड थॉट्स है वो पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंडोरफिन्स, नॉरएंडोरफिन्स, डोपामाइन, सीरोटोनिन, यह सब अच्छे केमिकल्स है कि जिसके कारण ये जो फील गुड की बात थी वह फीलिंग्स आती है. तो एलिवेटेड थॉट से एक केमिकल रिलीज होते हैं, इसके कारण यह सबसे ज्यादा पावरफुल है.
0: और इनमें कौन से थॉट्स शामिल होंगे, कौन से वो थॉट्स हैं?
2: अभी एलिवेटेड थॉट्स किसको कहेंगे कि बी नो व्हिच आर रियली एलिवेटेड. एक रियल इसमें हम जो डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, उससे भी जो ऊपर के थॉट है, सबसे पहले तो सेल्फ के बारे में कि भी सेल्फ की एलिवेटेड लेवल क्या है, कि मैं रोल कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं रेस कॉन्शियस भी नहीं हूँ, स्किन कॉन्शियस नहीं हूँ, आई एम अ सोल, आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, उसमें माइंड को स्टेबिलाइज करना वह सबसे पहला एलिवेटेड थॉट है. फिर उससे आगे अगर देखना है कि उससे आगे एलिवेटेड थॉट है कि आत्मा के गुण मेरे कौन से है, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है, शांति को कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम सही चीज को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं. शांति अच्छी चीज है परंतु हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वह है हमारे अंदर ही. यह थॉट अगर कि मैं आत्मा ही शांति से भरपूर हूँ, आत्मा के सातों गुणों का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है, यह दूसरा एलिवेटेड थॉट है. और थर्ड एलिवेटेड थॉट कि परमात्मा से मेरे संबंध क्या है, मेरा सोर्स है वह परमात्मा ही है, बस परमात्मा से मुझे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है, वह सही सोर्स होगा तो भी सब प्राप्तियां सहज हो जाएगी। आज हम टेम्परेरी छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भी किसी को पानी दे दो उससे तो अच्छा है कि भी पानी दिया एक दिन प्यास बुझी, उसको नल दिखा दो कि भी नल कहाँ है तो जीवन भर उसकी प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझना, उससे मन बुद्धि का संबंध जोड़ना, वह सबसे बड़ा एलिवेटेड थॉट है।
1: बहुत सारे भाई बहने जो टीवी का प्रोग्राम ये काफी समय से देख रहे हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये थॉट हम जितनी बार अपने साथ क्रिएट करते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग गुड इमिडिएटली। कोई परिस्थिति भी आती है तो हम तुरंत अपने आप को ये थॉट क्रिएट करते, आई एम अ पीसफुल सोल। तो थॉट चेंज की फीलिंग चेंज हो गई, कर्म चेंज हो गया, डेस्टिनी चेंज हो गई, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम। लेकिन ये आई एम अ पीसफुल सोल उस टाइम कैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे, अगर मॉर्निंग में जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो 5 मिनट बैठकर अपने माइंड को ये तरह की थॉट्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कराए थे। एंड एलिवेटेड थॉट्स क्यों अच्छी लगते हैं, क्योंकि दे आर द ट्रूथ। तीनों बातें जो बताई कि आई एम अ सोल, सोल की क्वालिटीज और आत्मा का पिता परमात्मा कौन, ये तीनों चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी सारी चीज़ें लेबल्स हैं, अक्वायर्ड हैं, ये तीनों चीज़ें परमानेंट हैं। बाकी सब चीज़ें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है, टेम्प्ररी है, इसलिए हमेशा फियर बना हुआ है। जैसे ही आप ट्रुथ पर आ गए जो इटर्नल है, तो फियर एंड डिपेंडेंसी खत्म हो जाती, ऑटोमेटिकली फीलिंग कैसे आएगी, फील वेरी गुड। तो एवरी मॉर्निंग सिट एंड शेयर विद योर सेल्फ, अपने आप को समझाओ मैं कौन हूँ। गुस्सा करने से काम होता है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल। तो पीसफुल सोल काम कैसे कराए,
0: पीसफुली,
1: दिस इज अ सेल्फ टॉक, सेल्फ लर्निंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइफ स्किल्स। कि अपने आप को वो स्किल्स सिखाना कि आज सारा दिन में मैंने जो कुछ करना है मुझे इन स्किल्स को सीख कर फिर करना है, एवरीथिंग विल चेंज देन।
0: तो आप दोनों हमारे साथ हैं, थैंक यू। अभी तक जिस तरह से जैसे शिवानी ने भी कहा कि एक पूरी साइकिल है, तो मेरा अगर एटीट्यूड है, मेरे थॉट्स के कारण मेरा एटीट्यूड है किसी के प्रति, या उस वो कर्म में आता है, उस एटीट्यूड फिर फीलिंग पीछे जाएं और थॉट कैसे बनता है वो उसको देखना शुरू करें। ये है वो स्किल, ये है वो टेक्निक जो अभी तक कहीं मिसिंग थी। लेट्स लर्न इट, लर्न करेंगे उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन परिवर्तित होगा। तो इस परिवर्तन को महसूस करें। कोई बात मन में आ रही है, आप हमारे साथ फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। आहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और पिछली बार हमने आई स्पेशलाइजेशन के बारे में बातें की थी, ऑप्थल्मोलॉजी के बारे में बातें की थी डॉक्टर सचिन जी से, और आज हम लोग करियर इन गायनेकोलॉजिस्ट, जी हाँ, इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ विशेष डॉक्टर दीप्ति दाते हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं। और आप भी इंदौर से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय से गायनेक का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो चलिए डॉक्टर दीप्ति दाते का बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू।
3: कैसे हैं आप?
4: बहुत बढ़िया।
3: जी जी जी, डॉक्टर दीप्ति जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। और मैं चाहूँगा कि आपका गायनेकोलॉजी बनने का जो यात्रा है, आपने कैसे इसको एज ए करियर चुना, या पहले से ही आपको मालूम था कि मुझे गायनेक बनना है, या बाद में आपने अपना डिग्री करते करते या ट्वेल्थ के बाद आपने डिसाइड किया?
4: एक्चुअली मेरा तो, मैं कहूँगी कि सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर दीप्ति दाते MBBS DGO हूँ। गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन PG किया है।
3: अरे वाह।
4: और 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ गायनेकोलॉजी की। तो मेरे केस में तो ऐसा रहा कि मतलब बचपन से ही मेरा सपना था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में डॉक्टर्स थे, मैं उनको देखती थी। और बचपन से ही मतलब स्कूल में जैसे सिखाया जाता है नोबल प्रोफेशन है, तो मेरी भी उस तरह की वृत्ति थी पहले से ही कि मतलब मुझे लोगों की सर्विस करनी है, उनको सुख देना है, उनके सफरिंग्स को दूर करना है, ऐसा मेरे मन में पहले से ही था। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता था कि डॉक्टर बन के ही हो सकता है उस समय में, जब बचपन से। और फिर देखा भी था आसपास डॉक्टर्स को, तो मतलब मुझे यही फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी कि कोई ऐसे सफर होते हुए आए और हम उन्हें ठीक करें, तो उनको जो खुशी मिलती है, तो वही सच्ची कमाई मुझे लगती थी। मतलब तो मैं ऐसे कैरियर के हिसाब से उसको नहीं लिया था, मेरे को तो मतलब एक लाइफस्टाइल वो चाहिए थी कि जिसमें मैं मदद कर सकूं लोगों की। मतलब मैं ऐसा कुछ चुनूं, क्योंकि शुरू से ही मतलब बाबा पहले से ही मतलब मेरे ऊपर हाथ रहा है, मैं हमेशा टॉपर ही रही हूँ, तो मतलब हमेशा से पढ़ाई में अच्छा रहने के कारण मदद मिलती गई। और अपने आप ही मतलब दिमाग में आया कि डॉक्टर बन के ही मेरा जो सपना है कि लोगों की मदद करूं और उनके दुख दूर करने में उनकी सहायता करूं, तो वो इसी के थ्रू हो सकता है। तो इसमें बाबा की मदद मिलती गई, एंट्रेंस

0: एग्जाम जो रहता है उस टाइम पे हमारे टाइम पीएमटी चलता था, तो जैसे आगे बढ़ते जाते हैं 10th 11th में, आजकल सभी को पता लगता रहता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इस तरह से पढ़ाई करनी, इस तरह से अपीयर होना है। तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना रहता है 12th के बाद, फिर उसके बाद कॉलेजेस चूज करना रहता है आपको। तो बाबा हर कदम पे मदद करता गया, अपने आप ही राहें सुलझती गई। मतलब जैसा सिर्फ मेरे मन में ये एक गुड इंटेंशन था कि
1: बिल्कुल
0: मुझे ऐसा ना, तो मैं उस टाइम सोचा था कि मैं इस पे से बहुत पैसा कमाऊंगी या कुछ, मुझे ऐसा कुछ उसके उसके थ्रू पैसा कमाने का मेरा इंटेंशन
1: मकसद
0: नहीं
1: नहीं
0: था।
1: था।
0: तो मतलब मैं यही विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आपके हाई गोल्स हो, मतलब आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो कभी भी पैसा कमाने वाला इंटेंशन रख के नहीं करना। आपके मन में गुड इंटेंशन होना चाहिए उस चीज़ के लिए, तो आपका
1: बिल्कुल।
0: सपना ज़रूर पूरा होता है। मतलब भगवान साथ देता है आपको सपना पूरा करने में, क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मतलब जैसे बचपन से हम सुनते आया था कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट टू गॉड होते हैं,
1: सही बात
0: तो फिर मतलब वही फीलिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि हम भी कुछ सोसाइटी के
1: है।
0: लिए कर पाएँ। तो अगर जो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही मतलब स्टूडेंट्स के लिए संदेश रहेगा कि अपने मन में अच्छी भावना रख के करना, तो यू विल बी अ गुड
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर। सिर्फ एक
1: सही बात है।
0: सक्सेसफुल या बहुत नाम वाला डॉक्टर होने से इतना मतलब नहीं रहता, जितना आप एक अंदर से एक बहुत गुड डॉक्टर हों, जिनको देख के, पेशेंट्स को देख के ही खुशी हो, वो अपनी सफरिंग्स शेयर कर पाएं। क्योंकि जैसे हमें भी MBBS के टाइम पे ये सिखाया गया था कि आपका सिर्फ दवाइयाँ लिखने का काम करना है, बीमारी ठीक करने का, ऑपरेशन करने का काम नहीं है। आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मतलब उनकी जो मेंटल स्टेट है, क्योंकि जैसे ही कोई रोगी भी होता है तो वैसे ही मन से भी कमज़ोर रहता है वो। और जैसे आजकल प्रूव हो गया है कि मतलब साइकोसोमेटिक डिसीजेज जो हैं वो 95% स्ट्रेस के कारण हो रही हैं। तो ये
1: बिल्कुल
0: खाली फिजिकल लेवल पे नहीं है, ये चीज़ें जो हैं वो मेंटली जो वीक रहते हैं वहाँ से शुरू होती हैं बीमारियाँ जो है। तो आपको उनको मानसिक सहारा भी देना बहुत ज़रूरी, तो उसके लिए आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए पहले कि आप उनको इस तरह से संभाल पाएँ। तो मतलब ये सब चीज़ें पॉइंट्स दिमाग में रख के फिर आप करें, और अंदर बहुत स्ट्रांग डिज़ायर होनी चाहिए किसी के कहने के लिए कि पेरेंट्स का प्रेशर है कि डॉक्टर बनना है, या फिर आपका बहुत सपना है कि आप बहुत पेशेंट से पैसा कमाओ, ऐसे इंटेंशन से कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंदर जब स्ट्रांग डिज़ायर रहता है तभी आप इस प्रेशर मतलब, क्योंकि डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी रहती है, कंटिन्यूस मोटिवेशन लगता है और बहुत लंबा कोर्स है, और इतना इजी प्रोसेस नहीं है MBBS करके, PG करके और अपने को मतलब प्रोफेशनल लाइफ में सेटल करना। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो वो मोटिवेशन जो है वो तभी मिलता है जब आपको अंदर से इच्छा हो डॉक्टर बनने की, और उसमें भी अगर आपको अच्छा इंटेंशन हो कि मुझे कुछ सोसाइटी की मैं मदद कर पाऊँ, तो वो आपको बहुत मदद करता है आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके सहारे आप मतलब इजीली ये सब चीज़ें, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं, पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, सभी बोलते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छा मोटिवेशन है तो फिर आप इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। और पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब जैसे अभी तो हमें जैसे ज्ञान मिल गया है ब्रह्म कुमारी, इसमें मैं 11 साल से चल रही हूँ, तो अब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि उस टाइम हम भी स्ट्रेस लेते थे कि भाई कैसे मार्क्स आएंगे, क्या होंगे। तो ये स्ट्रेस के कारण नहीं करना, अपना उस पढ़ाई करते जाना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाना है ड्यूरिंग MBBS, और जहाँ से भी मदद मिले टीचर्स से या फिर अपने सीनियर्स से, उनसे मदद ले लेके आगे बढ़ते जाना है, तो वो ईजी हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली डिफ़िकल्ट कोर्स है, टाइम देना पड़ता है और आपका समय काफ़ी सारा जाता है इसमें। तो जैसे सबसे पहले तो 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम से MBBS करना है, और उस दौरान आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर लें कि क्योंकि क्लिनिकल वो लगती हैं पोस्टिंग्स, उसमें आप सारे डिपार्टमेंट्स में जाके आपको पता चलता है किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, किस तरह का मतलब किस फील्ड में क्या है, तो उस टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसी दौरान आप PG के लिए भी तैयारी कर लें, तो फिर जब PG वाला एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें फिर रैंक के हिसाब से भी आपको चूज़ करना रहता है। तो उसमें मेरा मतलब एक संदेश ये भी रहेगा कि जैसे सपना तो रहता है अपना कि हमें इसी फील्ड में करना है, मतलब इसी ब्रांच में करना है PG, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। आप तो मतलब किसी भी ब्रांच में कर लें, और अगर आपके मन में सेवा भाव है तो आप किसी भी ब्रांच में कर रहे हैं तो आप वो सेवा भाव अपने पेशेंट्स को मतलब उनके प्रति दे सकते हैं। तो उसमें इतना ब्रांच का बहुत ज़्यादा ये नहीं रखना चाहिए कि मुझे तो बस यही ब्रांच में जाना है, दूसरी ब्रांच में नहीं जाना है। कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आप उस फील्ड में अच्छे मतलब क्योंकि रैंक का आजकल बहुत ज़्यादा रहता है, अपने हाथ में चीज़ें नहीं रहती हैं कभी कभी, तो उससे फ्रस्ट्रेट ना हुए कि मतलब मुझे ये फलाना ब्रांच चाहिए थी और नहीं मिली, मुझे उसमें करना पड़ गया। तो आप उसी में करके, यही ईश्वर की इच्छा समझ के उसी में आगे करके उसमें आगे सक्सेस अपनी करें और पूरा मन लगा के करें, और इस इंटेंशन से करें कि मुझे तो बस लोगों की सेवा करनी है, उनकी सफरिंग्स दूर करनी है, तो आप ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके लिए थोड़ा नॉलेज भी अपने आप मिलता ही जाता है सीनियर्स से, मतलब MBBS के दौरान भी, और फिर आपका पोस्टिंग्स जो इंटर्नशिप में भी पोस्टिंग्स लगती हैं उसमें भी पता चल जाता है कि कौन कौन से ब्रांचेस है, आपका किस में इंटरेस्ट है, आपको खुद ही डेवलप हो जाता है उस चीज़ में, उस फील्ड में इंटरेस्ट, तो फिर उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी प्री PG में आप ऐसे बहुत ज़्यादा वो ना रखें कि मुझे बस इसी इसमें करना है। सारी ब्रांचेस अच्छी हैं अगर आप उसको ऑनेस्टी से कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन में आगे जाके भी उसको ऑनेस्टी से कर रहे हैं, तो यू आर सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। तो उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको यही डॉक्टर यही स्पेशलिस्ट बनना है, क्योंकि अभी सारी ब्रांचेस में सारी फील्ड्स में बहुत स्कोप है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग विशेष MBBS के बाद आप जो है स्पेशलाइजेशन किसी में भी कर सकते हैं, वो आपके रुचि के अनुसार। और आपने अपना जो यात्रा है वो आपने बताया कि डॉक्टर फैमिली होने के नाते मुझे भी बचपन से यही सपना था कि डॉक्टर बनूं, और आपने ये भी देखा कि भाई एक सेवा भाव के हिसाब से आपको हमेशा ये दूसरों को हेल्प करने का जो अंदर से भाव था उसको वो आप डॉक्टर के फील्ड में देखते थे। डॉक्टर दूसरों को हेल्प करता है और कोई भी दर्दी आता है डॉक्टर के पास तो वो अच्छा होकर जाता है, तो दुआएं भी देता है और डॉक्टर को भी अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट गॉड इसीलिए डॉक्टर को कहा गया क्योंकि दूसरों के दर्द को कम करते हैं। तो ये भाव जो है आपके अंदर प्योर इंटेंशन था सेवा का, जिसकी वजह से आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम डॉक्टर दीप्ति जी से बातें कर रहे हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है और जो ख़ास इन चीज़ों को कैसे हम लोग समझें, और इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे उन्होंने अभी आपको एक इंटीमेशन तो दे दिया कि पढ़ाई आपको ध्यान से करना है, थोड़ा सा अगर आप हिम्मत करके इन चीज़ों को कर लेते हैं और प्योर इंटेंशन टेक इन एक प्योर भावना से अगर आप करते हैं तो आपको ईश्वर की मदद मिल जाती है और आप इसमें स्पेशलाइज कर ही लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन। जी हाँ, डॉक्टर दीप्ति से बातें हो रही हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे हैं। और डॉक्टर दीप्ति जी से बातें हो रही हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो चलिए डॉक्टर दीप्ति जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी बातें हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये जो गायनेकोलॉजिस्ट है, ये आपने क्यों चॉइस किया? इसके पहले आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे ही, लेकिन फिर भी इसमें स्पेशलाइजेशन करने का कोई कहानी है क्या?
1: एक्चुअली पीपीजी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी। आई स्पेशलिस्ट के लिए भी था, सर्जरी के लिए था, एनेस्थीसिया के लिए था,
0: अच्छा,
1: और एक गायनी के लिए भी था। और उन सब में मुझे डिग्री का कोर्स भी मिल रहा था और इसमें डिप्लोमा का था, क्योंकि मैं जैसे बताया पहले भी कि आजकल तो जो रैंक्स आती है उसके हिसाब से ही हो पाता है। आपके पास आप अपने हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे एमडी करना है तो एमडी ही मिल जाएगा। तो गायनी में डिप्लोमा था मिल रहा था, बाकी सब मुझे डिग्री कोर्स मिल रहा था। तो भी मतलब वो छोड़ के मैंने गायनी इसलिए चूज किया कि कहीं ना कहीं जैसे बचपन से मेरे अंदर संस्कार था, मतलब पेरेंट्स ने मुझे ऐसे कभी लड़की समझ के नहीं ट्रीट किया, क्योंकि मैं शुरू से भी पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो हम मेरे दो बड़े भाई हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये लड़की है, इसको कम पढ़ाना है। तो मैं हमेशा से उसी इसमें रही कि हम बराबर के हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसे गायनेकोलॉजी में तो ये कि प्योर मतलब विमेन्स के लिए है सर, और देखा गया है मतलब समाज में थोड़ा सा दबी हुई रहती है महिलाएं, तो मतलब उनके प्रति मतलब मेरे को एक वो था कि इनका भी वैसी बने पोजिशन सोसाइटी में जैसे मैं खुद हूँ। मतलब मेरे को कभी ऐसे हीन भाव से नहीं देखा गया कभी मेरे फैमिली में।
0: हाँ,
1: तो मैं अपने मन से उनको जितना सपोर्ट दे सकूं, मैं अपने अपने से मतलब उनको मॉरल सपोर्ट, क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ मतलब जैसे आती हैं सारी फीमेल पेशेंट्स ही मेरे पास रहती हैं, तो
0: जी,
1: अपने
0: जी,
1: अपने घर की कहानी सुनाती रहती है। तो मेरे से जितना हो पाता है बाबा की मदद से शक्ति से मैं उनको मॉरल सपोर्ट देती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सफरिंग्स उनकी मतलब रहती ही हैं, तो इस हिसाब से मैं सोचा कि मैं इसी फील्ड में काम करूंगी विमेंस के लिए, तो मतलब डबल वो उसमें सेवा हो जाएगी, एक तो शारीरिक तौर पे भी हो जाएगी और उनको मॉरल सपोर्ट के लिए मिल जाएगा। तो मैं लास्ट मोमेंट पे जाके मैं दूसरा एमडी लेने वाली थी, वो छोड़ के मैं लास्ट मोमेंट पे बाबा ने मुझे शायद डिप्लोमा के लिए टच कर दिया कि ये लो और इसमें आप सेवा करो आगे से। तो इस तरह से गायनेकोलॉजी में मैंने चूज किया।
0: तो इसमें बहुत ही अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी यहाँ पर एक इंसाइट ज़रूर मिल रहा होगा। कई बार हम लोग सोच के कुछ और आते हैं और हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर या ऊपर वाले की जो है कृपा बनी रहती है। आप उसमें अच्छा करेंगे तो शायद उन्होंने आपके लिए कोई सीक्रेट जो है करियर छुपा के रखा होगा जो आपको संतोष और सेटिस्फैक्शन देता है। कई बार हम लोग अपने मन से सोचते हैं कि हम अपने कलीग्स या अपने दोस्तों को देख कर या फिर हम पैसे को देख कर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमें वो चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन अंदर से जो सेटिस्फेक्शन है, संतोष जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। फिर उसके लिए हमारा मन हमेशा जो है एक कमी रह जाती है, सुकून जो पाना चाहते थे वो रह जाते हैं। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि सरकमस्टेंसेस अगर ऐसा कुछ आता है और आपको अपना जो चॉइस है उसको अगर चेंज करना पड़े तो बिल्कुल कीजिएगा आप, और देखिए आपको बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस और सीक्रेट ऑफ गॉड का आपको देखने को मिलेगा। और किसी भी चीज़ को आप करें, दिल से करें, तो अच्छा ही होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और दीप्ति जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज के समय में गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके पास क्या चैलेंजेस रहती हैं? जी,
1: गायनेकोलॉजी का तो जैसे शायद आम लोगों को तो पता नहीं होगा, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी में सभी को पता है कि सबसे स्ट्रेसफुल ब्रांच है।
0: जी, जी, जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: क्या रात बेरात आपको उठ के नींद से उठ के तुरंत भागना है डिलीवरी के लिए, और जब तक मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी गायनेकोलॉजी पे होती है, क्योंकि दो लाइफ से डील करते हैं। तो जिनको भी लेना है अगर गायनेकोलॉजी, तो बहुत कमिटेड रहें और इसके लिए तैयार रहें कि आपको नींद को, अपने आराम को, अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बहुत बार।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अगर इसकी तैयारी है तो ही लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल है। लेकिन आजकल उसमें भी ऐसी थोड़ी सिंपल सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है और उसमें भी गायनिक अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा इतना इमरजेंसी का वो नहीं रहता। लेकिन अदरवाइज टू स्टार्ट विथ अगर आप सिर्फ पीजी डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको इमरजेंसीज तो हमेशा उसके लिए रेडी रहना ही पड़ता है। उसमें भी आपको थोड़ा सा अपने मन को मजबूत भी रखना जरूर रहता है, क्योंकि हर हमेशा आपके हिसाब से चीजें चले ऐसा नहीं होता. समटाइम्स आपको एडवर्स आउटकम्स भी मिलते हैं, तो उसके लिए अपने मन को मजबूत रखना रहता है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, बाकी जो भी रिजल्ट हो वो तो जैसे हम बोलते हैं कि पहले से ड्रामा में सब फिक्स है ही. तो उसके लिए अपने मन की मजबूती रखें, ऐसे मतलब डिसअपॉइंट नहीं हो जाए, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाए. तो बहुत बड़ा मतलब एक गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब मैं अपने 20 साल की प्रैक्टिस में तो ये कहूंगी कि मतलब ज्ञान में आने के बाद ही मैं खुद को संभाल पाई, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी. क्योंकि हम चाहते तो हैं कि अच्छा हो सब, लेकिन एक ये ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी हर बार, जैसा किताबों में लिखा हुआ वैसा नहीं होता है. तो प्रैक्टिस में देखते देखते आप सीखते हैं, लेकिन एक चीज को आप दूसरे पर अप्लाई नहीं कर पाते, हर एक का केस अलग अलग रहता है. तो उसमें जब ईश्वर का सपोर्ट आपके ऊपर रहता है तब आप बहुत स्मूथली चीजें कर सकते हैं. तो इसलिए भगवान में तो आपको भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है. जब हम पीजी में पहली सर्जरी करते हैं तो हमारे सीनियर्स हमें सिखाते हैं कि पहले भगवान का नाम लो, जिसको भी आप मानते हो उनको याद करो, फिर सर्जरी चालू करो. तो उससे एक एक्स्ट्रा शक्ति तो मिलती ही है. तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर्स के प्रोफेशन में तो ईश्वरीय शक्ति काम करती ही है, ये हम स्वयं नहीं इतना मजबूत नहीं है कि जो कर सकते हैं, वो ऊपर से करा रहा होता है. और अगर इस फीलिंग से करेंगे तो जरूर सब कुछ अच्छा ही होता है. और अगर कभी एडवर्स आउटकम हो भी तो आपके ऊपर उसका ऐसा फ्रस्ट्रेशनल इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो तो ड्रामा में जैसा है कभी, ये तो सभी लोग आजकल तो मीडिया के कारण इतना पता चलता भी है कि कभी अच्छा रिजल्ट मिलता है कभी नहीं भी मिलता. तो उसका स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें मतलब जैसा जो होना है उसी के हिसाब से होगा ही, वो बस हम अपनी तरफ से ऑनेस्टी से करते जाएं.
0: डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि इमरजेंसी वाली जो बात है वो गायनेकोलॉजी में हमेशा रहता ही है, क्योंकि मैटरनिटी आप देखेंगे हमेशा रात को होता है 12 के बाद जो है, मोस्टली डिलीवरीज जो है आफ्टर 12 टू मॉर्निंग 6 के पहले ये सारी चीज़ें होती हैं, और उस समय डॉक्टर को जो है जागना ही पड़ता है, उनके स्टाफ को भी जागना पड़ता है. तो ये एक चीज़ है, और इसमें आपने जैसे कहा कि दो जिंदगी के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप, और इसीलिए आपका जो है जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाता है. तो थोड़ा सा कमिटमेंट है इसमें, और आप अगर कर लेते हैं तो अच्छा कमा भी लेते हैं और अच्छा नाम भी होता है, और आपको दुआएं भी बहुत मिलती हैं. तो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनको काफ़ी दुआएँ मिली हैं, और बहुत ही अच्छा एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, एक अच्छा जो है क्रीम नाम जो रहता है, और हमेशा बच्चे का डिलीवरी होने के बाद उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको अगर ठीक करते हैं आप तो ज़िंदगी भर माता पिता याद करते हैं हर बार कि हमारा डिलीवरी इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर ने किया था. वरना कहीं भी अगर जिक्र होता है घर में तो वो आपका नाम ज़रूर लेते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारी आपके पास रहता है. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और उसके बाद डॉक्टर साहिबा से हम उनके कुछ अनुभवों को सुनेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी आज आई है, पहले तो डिलीवरी सभी लोग घर में करते थे और अभी हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी हो गया, ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, और आज गायनेकोलॉजी में टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट के लिए, उसके बारे में जानेंगे. तो कहीं मत जाइएगा, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन डॉक्टर दीप्ति जी से. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति जी हमारे साथ हैं, आप इंदौर से हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी अच्छी बातें आपसे सुनी। और अब मैं चाहूँगा डॉक्टर दीप्ति जी कि गायनेक में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आए हैं। वैसे ही हम लोग स्टोरीज जो सुनते हैं घर में, कि उस समय तो गांव में भी एक माई होती थी, वो सभी का डिलीवरी करती थी और तभी कोई मना सर्जरी की बात नहीं आती थी, ना डॉक्टर की बात आती थी, वो अपने आप ही सब ठीक हो जाती थी। तो वो चीज़ें और अभी जो टेक्नोलॉजियाँ आए, तो मैं चाहूँगा कि दोनों चीज़ें अब बताइए। शुरू शुरू में आप जब नया इस फील्ड में आए तो उस समय कैसे काम करते थे और आज जो टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में बताएं जी।
1: जैसे कि हर फील्ड में मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है। मेडिकल फील्ड में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे पहले तो मतलब एक्सरे से ही पता किया जाता था कि बेबी कैसा पोजीशन कैसी है, तो जबकि वो सेफ नहीं होता था, तो भी अब कुछ ना कुछ जानना है इसलिए एक्सरे से पता किया जाता था। और पहले मतलब जैसे एक्चुअली जो ऑब्स गायनी ब्रांच है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, तो पहले तो वो ऑब्स्टेट्रिक्स ही था, मतलब कि डिलीवरियां कराना, लेकिन अब वो गायनेकोलॉजी का भी पार्ट काफ़ी सारा हो गया, तो काफ़ी लोग डिग्री लेके उसके बाद गायनेकोलॉजी फील्ड में भी चले जाते हैं, जो जिसका डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब चीज़ों में एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले घरों में डिलीवरीज हो जाती थी, लेकिन फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते थे, वो पता नहीं चलते थे, उसमें माँ की जान भी चली जाती थी बहुत बार, बच्चे भी काफ़ी बार नहीं बच पाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी इस तरह से सिस्टम किया था कि भाई जितनी भी डिलीवरीज हों वो हॉस्पिटल डिलीवरीज हों, घर में ना हो, क्योंकि सेफ्टी की दृष्टि से। तो ये पहले चेंज आया कि सब जगह ये प्रचार किया गया भाई हॉस्पिटल पहुँचो, घर में नहीं कराओ डिलीवरीज। फिर उसकी वजह से एक्सरे से पहले डिटेक्ट होता, तो फिर अल्ट्रासाउंड मशीन आई, उससे काफ़ी हेल्प मिली। मतलब 80s में जब अल्ट्रासाउंड मशीन आई तो उसे वो सेफ भी था, तो उसके कारण काफ़ी हेल्प मिली। फिर अभी मतलब फिर उसके बाद भी क्या है, जैसे हम तो रोज़ डिलीवरी वाले पेशेंट्स को देखते हैं, वो बेचारी इतनी दर्द में रहती हैं, उनसे इतनी सिंपथी लगती है। मतलब ये सभी को पता ही है कि मतलब लेबर पेंस बहुत मतलब दर्दनाक होते हैं, तो उसमें भी लेबर एनाल्जेसी वगैरह आ गया, तो मतलब एक डिलीवरी भी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो गया है मतलब महिलाओं के लिए। मतलब उससे डर, जैसे उसका डर बैठा हुआ रहता था महिलाओं की, भाई क्या होगा डिलीवरी के टाइम, इतना दर्द कैसे सहन करेंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ आ गई है कि लेबर एनाल्जेसिया जो आ गया, उसमें दर्द का पता ही नहीं चलता है और बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है माताओं का। फिर उसके बाद में जो दूसरी मतलब ब्रांच से काफ़ी लोग डिग्री लेके फिर गायनेकोलॉजी ब्रांच में चले जाते हैं, उसमें बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं, इनफर्टिलिटी है, लेप्रोस्कोपी है, तो उसमें काफ़ी मतलब एडवांसमेंट बहुत हो गया, रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, तो और उसमें इनफर्टिलिटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है अभी, PRP वगैरह, जो जो ऐसे केस लगते थे कि ये तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो होगा ही नहीं सक्सेसफुल, उसमें भी आजकल सक्सेस रेट मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, 60-70% रेट तक मतलब सक्सेस रेट हो गया है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें पूरा काम कर रहा है अभी, तो उस लेवल पर जाके मतलब जीन के लेवल पर काम कर रहे हैं कि जो ऐसी बीमारियाँ जो कि जन्मजाती रहती थी, जिनको जो बच्चे पैदा हो जाते थे और जिंदगी और माँ बाप उनको संभालते रहते थे वैसी स्टेज में मेंटल रिटार्डेशन और ऐसे, तो उसके लिए जेनेटिक लेवल पे ही वो उसको ठीक कर देते हैं, तो फिर वो सही हो जाता है, वो मतलब जीन के लेवल पे भी करेक्शन कर दे रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काफी सारे मतलब नई नई टेक्नोलॉजी से जो जो गड़बड़ियां उनको सही करते जा रहे हैं। फिर जैसे लेप्रोस्कोपी है तो उसमें की होल सर्जरी है, तो मतलब बिना इंसिशन का बिना टाके का ऑपरेशन हो जाता है, तो उसमें पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है वो, क्योंकि वो एक दिन में ऑपरेशन हुआ दूसरे दिन चल के घर में भी चले जाते हैं और अपना रेगुलर सब काम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, क्योंकि इसका मतलब फायदा बहुत ज्यादा है पेशेंट को। पहले तो 8-8 दिन डिलीवरी तक के पेशेंट पड़े रहते थे, आजकल तो दूसरे दिन ही चलवा देते हैं उनको और 3-4 दिन में घर भी जा सकते हैं। और की होल सर्जरी में तो सभी पेशेंट्स को बहुत आराम मतलब लगता है, मतलब उसके ये क्या उसके कारण ये हो गया टेक्नोलॉजी के कारण कि जो मन में डर था लोगों का ऑपरेशन का कि वो निकल गया कि अरे बहुत दर्द होगा ऑपरेशन के बाद, तो चलना फिरना बंद हो जाएगा, रेस्ट 2-3 महीने लेना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसके कारण ये सारे डर निकल गए, ना आपको ज्यादा रेस्ट करना पड़ता है, दूसरे दिन आप चल के घर जा सकते हैं और दर्द भी बिल्कुल नहीं होता, पेनलेस हो जाती है सर्जरी, तो ये सारे फायदे होते हैं। फिर वो सर्जन फ्रेंडली भी होते हैं, मतलब ऑपरेशन जो सर्जन कर रहे हैं उनको भी इतना ज्यादा थकान नहीं होती उसमें, फिर रोबोटिक सर्जरीज में तो और ही ज्यादा मतलब, और उसके साथ प्रेसिशन भी ज्यादा आ गया है, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा आ गई है, क्योंकि हमको ज्यादा अच्छे से वो चीजें दिखती हैं आंखों की बजाय, और मैग्नीफाई होके दिखती हैं चीजें. तो टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली बहुत फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है लोगों को. तो उनका डर थोड़ा निकलता जा रहा है, मतलब कि सर्जरी के लिए जो डर है ऑपरेशन के लिए, उससे दूर हो रहे हैं.
0: डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया. और ये जो नया टेस्ट टू बेबी का जो आपने जिक्र किया, इसमें क्या AI और फिर जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, थोड़ा सा बताएंगे?
1: उसमें जो है ना, एक जैसे काफ़ी सारे टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए किया जाता है बेसिकली कि जो नेचुरल तरीके से कंसेप्शन नहीं हो रहा, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स रहते हैं. तो उसमें से बहुत सारे अननोन फैक्टर्स रहते हैं जो कि पता ही नहीं क्यों नहीं हो रहा. तो और जैसे पुराना, जैसे अंदर जो लाइनिंग होती है यूट्रस में, उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, तो वो जैसे खराब हो, डैमेज्ड हो, तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए था कि अरे इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनको तो फिर वो अडॉप्ट ही करना पड़ेगा. तो लेकिन अब उसके लिए भी, मतलब जो एंडोमेट्रियम को भी हेल्दी बनाने के लिए, पेशेंट के ही ब्लड से वो लिया जाता है सैंपल, उसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, PRP प्रिपेयर करा जाता है, पेशेंट का ही खुद का, किसी से डोनेट करके नहीं. और फिर उसको डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है एंडोमेट्रियम में, तो वो हेल्दी एंडोमेट्रियम बन जाती है. तो फिर वो एटमॉस्फेयर पैदा करती है कि मतलब वहाँ पे कंसेप्शन का ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है. तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आजकल चल रही है. तो मतलब जो जैसे पुराने TB के केस थे, जिनको पहले TB हुआ रखा है, तो उनका फिर ऐसे नेचुरल तरीके से नहीं हो पाता, तो ये सब टेक्नोलॉजी से उनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. तो मेरे ही 2-3 पेशेंट जिनको मैंने रेफर किया था, उसके लिए वो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया उसमें. तो वो मतलब जहाँ पे नाउम्मीदी थी, वहाँ पे वो पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है उन लोग का. तो इस तरह की काफ़ी सारी, और जिनके जीन के लेवल पे जिनको बीमारियां डिटेक्ट हुई हैं, वो उसी के मतलब प्री जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं उसको. तो उसमें पहले ही वो पेरेंट्स का वो लेके क्रोमोसोम्स लेके स्टडी कर लेते हैं.
0: अच्छा,
1: और उस लेवल में अगर खराबी हो, क्योंकि क्या है, ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है पेरेंट्स पे अगर कोई ऐसा ये रहता है, दिव्यांग बच्चा कोई पैदा हो, तो वो बर्डन बहुत हो जाता है. तो उसको उसी लेवल पे पहले ही, कंसेप्शन के पहले ही मतलब डिटेक्ट कर लिया जाता है कि इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते ऐसा होगा. तो इस तरह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशन या परेशानियों से बचाव के लिए आ गई है, मतलब टेक्नोलॉजीज आ गई है.
0: जी जी जी, डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात है आपने बताया कैसे टेक्नोलॉजी आज जो है हेल्पफुल है हम सभी के लिए, बहुत ही अच्छा मददगार बन रहा है, और जो बाद में आने वाले कॉम्प्लिकेशन है उसको भी ठीक किया जाता है, ये आपने बताया. और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बाद हमारे विद्यार्थी मित्रों को ऑप्शन क्या क्या है, सिर्फ हॉस्पिटल या प्रैक्टिस, इसके अलावा कौन कौन सी जगह पर वो काम कर सकते हैं? जी
1: देखिए, सबसे पहले तो PG करने के बाद फ्रेशर्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस फील्ड में जाएं. तो आजकल जैसे इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे पास भी जैसे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा 50% पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के ही आते हैं. तो उसमें जाना बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके लिए बहुत फेलोशिप्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती हैं, एक्सपीरियंसेस ले लें. फिर किसी किसी को जिनको सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो वो लैप्रोस्कोपी वाला फील्ड ले लें, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है आजकल और बहुत सेटिस्फाइंग है, क्योंकि अब पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट देते हो, पेशेंट खुश होकर जाते हैं, कोई चीरा नहीं लगता, तो कोई दर्द नहीं होता, और वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है वापस. आजकल सब वर्किंग रहती हैं लेडीज भी, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, अपने काम पे वापस जा सकती हैं. तो इसके लिए बाहर से थोड़ा डिग्री वगैरह ले लें तो अच्छा रहता है, मतलब लैप्रोस्कोपी के लिए.
0: जी, जी,
1: एक बार मतलब शुरू में PG के बाद ही निकल, मतलब ये सारे फेलोशिप्स कर लें, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस शुरू करने के बाद फिर उतना टाइम मतलब ऐसा फिर वो नहीं रह जाता इतना ज्यादा अपना, क्योंकि पढ़ाई का उतना थोड़ा बीच में गैप आ जाता है. तो पढ़ाई करते हुए ही जब एक बार PG हो गया, उसके बाद ही सारे फेलोशिप्स कर लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में उतरें, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस भी मिल जाता है. तो फिर इनफर्टिलिटी और लैप्रोस्कोपी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, और आजकल की नीड भी है, ज्यादातर लोग मतलब एक्सपेक्ट भी करते हैं कॉमन पब्लिक कि ये इन्हीं चीजों में ज्यादा जाते हैं. तो मतलब PG होने के तुरंत बाद ये 1-2-3 साल और लगा दें, और इसमें फेलोशिप्स वगैरह करके फिर अपनी प्रैक्टिस चालू करें, तो फिर उसमें ज्यादा मतलब सक्सेस मिलती, क्योंकि इसी के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी. तो उसमें फिर बाद में फिर लगता है एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद कि अरे हम ये वाला कर लेते फेलोशिप तो अच्छा रहता, उससे अच्छा पहले ही कर लें फिर प्रैक्टिस चालू कर दे.
0: हाँ, उसी के साथ हो गया,
1: साथ ही साथ तो, हो जाता है कि पढ़ाई के उसमें रहते ही फ्लो में, तो उसी के साथ हो जाता है,
0: वो भी जाता है, नहीं तो फिर बाद में वापस करने
1: फिर वापस फिर day 1 से शुरू करना पड़ता है, तो उतना वो नहीं रहता ड्राइव.
0: सही बात है. चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया डॉक्टर दीप्ति जी, थैंक यू सो मच. और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप?
1: मैं ये जो विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेरा यही मैसेज है कि आप मन में सेवा भाव रखें, और सच्ची भावना रखें। आप इस हिसाब से नहीं प्रोफेशन को चूज करें कि ये दूसरे प्रोफेशंस जैसा नहीं है कि जहाँ पैसा कमाया जाता है। जैसे मेरे भी जो सब कजिन्स वगैरह हैं जो दूसरे फील्ड्स मतलब जो नॉन मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, वो भले ही मतलब उनका ज्यादा स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उससे कंपैरिजन कभी ना करें कि क्योंकि ये कंपैरिजन मैंने भी देखा अपने फ्रेंड्स में सब में आता ही है कि भाई वो दूसरे प्रोफेशन में है और उनका ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है। तो हम इसके लिए डॉक्टर नहीं, ये प्रोफेशन नहीं चूज करें कि हमें पैसा कमाना है उसे, क्योंकि ये है ही ऐसा प्रोफेशन ही अलग है ये। तो ये कमर्शियलाइज उसको ना करें, मतलब अपने अंदर सेवा भाव रखें, अच्छी भावना रखें और ईश्वर को मतलब ये समझ के कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया ये कार्य करने के लिए, वो मुझसे करवा रहा है। तो इस भावना से करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे और स्ट्रेस फ्री और पीसफुल लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि इस चैलेंजिंग और डिमांडिंग प्रोफेशन में भी आप आराम से पीसफुल लाइफ जी सकते हैं ऐसी भावना के साथ में।
0: जी डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया। और डॉक्टरी पेशा में या मेडिकल फील्ड में जब भी आप आए तो आपका इंटेंसिटी जो है बहुत प्योर होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेस पाते हैं और दुआएं मिल जाती हैं। दूसरों से कंपैरिजन कभी मत कीजिए। तो ये संदेश था डॉक्टर दीप्ति जी का। आप सभी विद्यार्थी मित्र इसे जो है याद रखें और इसी उद्देश्य को लेकर आप जन कल्याण सेवा के लिए आप इस फील्ड में आए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ डॉक्टर दीप्ति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छी बातें आपने बताया गायनेकोलॉजी के बारे में। चलिए विद्यार्थी मित्रों, दीप्ति जी का संदेश और उनका एक्सपीरियंस आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा करियर बनाने में, करियर फ्रेम करने में। तो आप अपना करियर अच्छे से फ्रेम करें, सोच समझ के फ्रेम करें। और मैं चाहूँगा कि एक दो बार इस एपिसोड को ज़रूर सुने आप नेट के माध्यम से और फिर अपने करियर को फ्रेम करें, अपना करियर अच्छा बनाएं, ब्राइट फ्यूचर हो आपकी, अपना और माता पिता का नाम रोशन करें, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए करियर के बारे में आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते। हाँ।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
4: नमस्कार रेडिओ श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडिओ स्टेशन रेडिओ पुणेरी आवाज पर एक खास घोषणा. जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा और बनाइए अपनी जीवन को खास. ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहां हर आवाज है पुनेरी की पहचान. खुश रहो, खुशियां बांटो.
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं. आज का सब्जेक्ट है संस्कारों का जीवन में महत्व. संस्कार एक ऐसा अमूल्य धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है. यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन की नींव है. संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, सुधार या परिष्करण. यह हमें सही और गलत का भेद समझाने में सहायता करता है. यह हमारे चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है. आइए अब हम समझते हैं संस्कारों का अर्थ क्या होता है. संस्कार शब्द संस्कृत के स उपसर्ग और कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है संपूर्णता की ओर बढ़ना या परिष्करण करना. यह नैतिक मूल्यों, आदर्शों और आचरणों का समुच्चय होता है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है. हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में संस्कार की महत्ता होती है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन. संस्कारों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक संस्कार शामिल हैं. धार्मिक संस्कार, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जैसे गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदि आदि. ये व्यक्ति के जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाने में सहायता करते हैं. सामाजिक संस्कार, ये व्यक्ति को समाज के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दूसरों की मदद करना. नैतिक संस्कार, नैतिकता हमारे चरित्र का निर्माण करती है. सत्य बोलना, अनुशासन में रहना, किसी को नुकसान न पहुंचाना आदि नैतिक संस्कारों के उदाहरण हैं. आइए अब हम समझते हैं पारिवारिक संस्कार. परिवार ही संस्कारों की प्रथम पाठशाला होती है. माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार जीवन भर व्यक्ति के व्यवहार में झलकते हैं. बड़ों का सम्मान करना, दया और करुणा रखना, सहयोग की भावना रखना आदि पारिवारिक संस्कारों का हिस्सा है. संस्कार व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सशक्त और सकारात्मक बनाते हैं. यह हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करते हैं. यदि किसी व्यक्ति को अच्छे संस्कार मिले हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से नहीं भटकता. समाज में शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए संस्कारों का होना अति आवश्यक है. संस्कारों के अभाव में व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है. आज के समय में जहां भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ मची हुई है, वहां अच्छे संस्कार ही हमें नैतिक पतन से बचा सकते हैं. हम इस चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संस्कार किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यदि हमें एक सशक्त समाज और सभ्य पीढ़ी का निर्माण करना है तो हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे. संस्कार ही वह आधारशिला है जिन पर सशक्त व्यक्तित्व और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है. इसलिए हमें अपने संस्कारों को सहेज कर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का चिंतन। फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहिए हमेशा की तरह। खुश रहें, खुशियां बांटें। धन्यवाद।
4: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू.
1: आप माइंड की बात कर रहे थे, सोल की बात कर रहे थे और बुद्धि की बात कर रहे थे, तो मैं एक काफी साइंटिफिक चीज पढ़ रहा था. क्योंकि ये जो है थोड़ी सी साइंटिफिक वर्ड्स हैं, लेकिन वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर सेइंग.
2: ओके.
1: कि इट सेज, उसका टाइटल है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. आर ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर. मुझे मालूम नहीं था दे कम्युनिकेट, सेल्स भी आपस में करते हैं वाय सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. वन ब्रेन सेल रिलीज इज अ केमिकल दैट द नेक्स्ट ब्रेन सेल एब्सॉर्ब्स. आपने जैसे कहा ना, एक थॉट भी होती है तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ आर बॉडी
2: गेट्स अफेक्टेड.
1: तो यहां इसका ये कंफर्मेशन है कि दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज न्यूरोनल फायरिंग. न्यूरॉन्स की आपस की जो फायरिंग है. व्हेन ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली द कनेक्शन बिटवीन देम स्ट्रेंथन्स.
2: वेरी इंपॉर्टेंट.
1: हाँ, क्योंकि आप बार बार बोलते हैं एक चीज को बार बार करो, हैबिट बिकम्स योर संस्कार. तो व्हेन ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली द कनेक्शन बिटवीन देम स्ट्रेंथन्स. मैसेजेस दैट ट्रेवल द सेम पाथवे इन द ब्रेन ओवर एंड ओवर एंड ओवर बिगिन टू ट्रांसमिट फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर.
2: अंडरलाइन, ट्रांसमिट्स फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर. तो जो भी चीज रिपीट होगी वो अगली बार फास्टर हो जाएगी. ब्यूटिफुल.
1: और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट हथौड़ा है ये. इसमें इस पैराग्राफ का, विद इनफ रेपिटिशन दे बिकम ऑटोमैटिक. मैंने नहीं कहा था जैसे
2: कि वो ऑटोमैटिक
1: नहीं, जैसे मैंने कहा था कि आदमी जिसको सिगरेट की आदत होती है वो बोलते मेरे को, मुझे पता ही नहीं चलता कब हाथ जाता है कब ऑटोमैटिक हो गया वो. रिपीटेड एक दो दिन.
2: वेरी ट्रू.
1: थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस फॉलो द सेम पैटर्न. द मोर वी थिंक अ नेगेटिव थॉट द मोर एंट्रेंच्ड the thought becomes. Negative and traumatic thoughts also tend to loop.
2: Yes, because you are doing it again and again. Yes.
1: The loop hota beginning se end lagaya, fir main kabhi kabhi gana 10 baar sunna hota to loop mein daba deta hu. Wo shuru hota end hota, shuru hota end hota, bajte hi jata hai wo.
2: Right.
1: Till I stop it. They play themselves over and over until you do something consciously to them. Jo maine bola wahi next line aage.
2: Right.
1: Till I stop. Last line. The more these negative thoughts loop, the stronger the neural pathways become.
2: Okay.
1: And the more difficult it becomes to stop them.
2: Yes. This is, we should read this again and again and
1: इसका
2: again.
1: लूप बना लेते.
2: Yes, because ये देखो, ये साइंटिफिक एविडेंस है, ये मेडिकल साइंस बता रहे है, लेकिन ये किस लेवल पर आकर हमें बता रहे है, वॉट हैपन्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेज. वो उससे पहले का नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने कहा जब दो मैसेजेस, दो सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, हमें इससे पहले की स्टेज पता है कि एवरी थॉट क्रिएटेड बाय द सोल इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू दोज सेल्स. तो जैसे हमने थॉट क्रिएट की, उसका मैसेज गया ब्रेन के सेल्स तक, ब्रेन के सेल्स ने आपस में कम्युनिकेट करना शुरू हुआ, एक वायरिंग सिस्टम बनी जो उसने कहा न्यूरोनल वायरिंग. के दोनों ने इकट्ठे वायरिंग होने लगे,
1: फायर टुगेदर, फायर टुगेदर,
2: मतलब कोई बात थॉट क्रिएट हुई तो वो पूरा सर्किट फायर होगा। अब उस सर्किट में क्या क्या है कि जब वो सर्किट बन गया तो उसने कहा आपका पूरा जो एक्शन होगा ना बाहर वो सेम होने लगेगा। ब्रेन किसको मैसेज देने वाला है?
1: बॉडी को।
2: बॉडी को, विच मीन्स व्हेन द थॉट गोज टू द ब्रेन वायरिंग विल टेक प्लेस, दैट फायरिंग विल हैपन एंड दैट मैसेज विल गो टू द बॉडी एंड द बॉडी विल बिहेव दैट वे। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें उसने लाइन बताई, कोई भी चीज जब रिपीट ज्यादा होगी तो फास्टर होती जाएगी। आप कई बार कहते हैं ना पता ही नहीं चलता हो गया,
1: हाँ।
2: इतना गैप थोड़ी है बीच में कि सोचा फिर बोला फिर किया, वेयर इज द गैप?
1: उसने बोल दिया, मैं डांट दिया,
2: फास्टर हो गया है वो,
1: हाँ।
2: फास्टर मोड में आ चुका है वो,
1: नहीं उसे आगे कहा ना ऑटोमेटिक मोड में आता है।
2: क्यों? फास्टर होते होते होते फाइनली तो गैप ही नहीं बचेगा ना, then you won't find that time space in between. ऐसा लगेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक मोड में आ गया है। All this is at the physical level. और उसने कई बार वो ही तरीका यूज किया तो ब्रेन की वो फायरिंग उसी तरह से होने लग गई, ब्रेन ने वो रिएक्शन बॉडी को ट्रांसमिट किया, बॉडी ने उस तरह से बिहेव किया, मतलब हमने उस तरह से बोला, उस तरह से किया, वो खाया, जो भी हम कर रहे हैं वो होता गया। जितनी बार रिपीट हुआ इट बिकेम फास्टर एंड देन इट सेज वो लूप में चला गया। लेकिन फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इवन इफ इट हैज गॉन इनटू द लूप यू कैन स्टिल कॉन्शियसली
1: स्टॉप इट।
2: स्टॉप इट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेयर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कम्स टूगेदर। ये हमें समझ में आता है कि आध्यात्म जो सिखा रहा है, साइंस हमें उसका एविडेंस देती है कि दिस इज दैट हैपेंस। और फिर उसने लास्ट में कहा कि नेगेटिव थॉट्स भी इसी तरह जब हम बार बार क्रिएट करते जाते हैं तो वो जो प्रिंट है वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। इसीलिए कई बार हमारा वो जो मूड होता है वो परमानेंट होने लग जाता है, डिप्रेसिव मूड, लो फीलिंग मूड, उदास मूड, एजिटेटेड मूड, इरिटेटेड, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होने लग जाता है परमानेंट, क्योंकि कई बार कई बार कई बार होते हुए वो ग्रूव में चला गया। जब ये समझ में आ गया अब यहाँ काम करना और इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमें बता रहा है ये हमें आत्मा की तीसरी फैकल्टी के बारे में बता रहा है जो हम हर बार देखते हैं, संस्कार। माइंड थॉट क्रिएट करती है। थॉट भी किस बेसिस पे हम कई बार क्रिएट करते हैं? कोई स्टिमुलस सामने से आता है उसके रिस्पॉन्स में हम थॉट क्रिएट करते हैं। थॉट हम चूज कर रहे हैं लेकिन स्टिमुलस कोई होगा, कोई चीज खाने की आएगी, कोई कुछ बोल देगा, कोई कोई सीन देखेंगे हम, तो सीन्स सेंस ऑर्गन के थ्रू हम देखते हैं, हम किसी की बात सुनते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम अंदर लेते हैं। हमने पहले भी देखा थॉट का सोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी? कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा
1: एक्सपीरियंस भी,
2: पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम, तीन कैटेगरी। तो इन्फॉर्मेशन कर्म इंद्रियों के द्वारा अंदर आई, हमने उस इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में थॉट क्रिएट किए, कई थॉट्स क्रिएट किए। फिर इंटेलेक्ट ने उन थॉट्स को क्या किया? विजुअलाइज किया, एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये थॉट्स अब हमारे मेमोरी बैंक में स्टोर हो गई, क्योंकि हमने देखा था हर चीज यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है, जो क्रिएट हुआ वो रिकॉर्ड हो गया। अब इंटेलेक्ट ने जो डिसीशन लिया वो हम कर्म में लाए, वही हम कर्म में लाएंगे। कर्म जो हमने किया उसका इंप्रेशन भी यहाँ रिकॉर्ड हो गया। अब अगर हम उस आर्टिकल को लें कि एक बार ब्रेन सेल को वो मैसेज मिला, एक पर्टिकुलर वायरिंग क्रिएट हुई बॉडी के द्वारा, वो कर्म हुआ। अगली बार फिर वो इन्फॉर्मेशन आई, फिर अगर हमने वही थॉट क्रिएट की फिर वही वायरिंग हो गई, फिर बॉडी ने वही किया, और कई बार अगर होता गया तो वो वायरिंग क्या हो जाएगी? वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मतलब वो ग्रूव क्या होता जाएगा, वो पैटर्न क्या होता जाएगा,
1: स्ट्रॉन्गर
2: बनता जाएगा। इसको जो हम कहेंगे ना, जैसे हम आजकल की दुनिया में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड हम अवेयर हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में से निकला, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड
1: में गया, तो कॉन्शियस ही तो गया सब में।
2: कॉन्शियस से ही गया ना सब में, कॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड कौन सी स्टेज है जिसकी हम सारा दिन में अवेयरनेस नहीं रखते हैं? जैसे एक आइसबर्ग होता है,
1: हाँ,
2: है ना, तो आइसबर्ग का कितना थोड़ा हिस्सा दिखाई देता, 1/3 भी नहीं, 10% भी, इतना दिखाई देगा, नीचे 90% होगा। ये 10% क्या है जो हमें और दुनिया को बाहर दिखता है हमारे बारे में? ये 90% क्या है?
1: सबकॉन्शियस,
2: जो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हुआ हुआ है सारा। ये रिकॉर्डिंग कब हुई? अगर हम अभी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग भी देख लें, 2 घंटे में हम क्या क्या देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, ये सब रिकॉर्डिंग घंटे में हो गई। 1 घंटे में कितनी रिकॉर्डिंग? 1 दिन में कितनी रिकॉर्डिंग?
1: 1 जन्म में?
2: 1 जन्म में कितनी रिकॉर्डिंग?
1: और कई जन्म में?
2: कई जन्म में कितनी रिकॉर्डिंग? ये सारा वो 90% ऑफ द आइसबर्ग है। ये 90% ऑफ द आइसबर्ग के बारे में हम अवेयर भी नहीं होते कि इसके अंदर क्या है, इसीलिए कभी कभी कुछ भी निकल आता है बाहर। हमने तो ये तो मेरी नेचर नहीं थी, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो बात मुझे आती नहीं थी, ये कहाँ से आ गई, आती नहीं। कई बार कोई बहुत अच्छी बातें भी आ जाती है, फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दिस नाइस थॉट, ये तो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि ये मेरी वो 10% में नहीं थी, ये मेरे वो 90% के अंदर थी।
1: आई वॉज नॉट कॉन्शियस अबाउट माई सबकॉन्शियस,
2: यस, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट ओनली, ये अंदर थी। तो ये सबकॉन्शियस में ये सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अब जब कोई सिचुएशन आएगी, जैसी रिकॉर्डिंग होगी, अगर हम कॉन्शियसली नया नहीं चूज करेंगे, तो हम वो ही रिकॉर्डिंग के थ्रू प्ले करना शुरू कर देंगे, इज व्हाट दैट आर्टिकल इज सेइंग, विच मीन्स अब वो बन गया हमारा संस्कार,
1: ऑटोमेटिक मोड,
2: ऑटोमेटिक मोड में चला गया। हम वो दिन याद करें जब हम पहले बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, वी लर्न हाउ टू ड्राइव द कार। जस्ट लुक एट आवर सेल्फ ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पर हम एक एक चीज को सीख रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये स्टीयरिंग व्हील है, इधर इंडिकेटर देना है। हम कितने कॉन्शियसली अवेयर हैं,
1: क्योंकि क्लच दबाना है,
2: हमें कितने अटेंशन
1: पकड़ के रखते और ऐसे देखते रहते,
2: यस, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जहां अभी हम इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, माइंड वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है कि हाँ ऐसे दबाना है, ये दबाना है, फिर गियर ऐसे चेंज करना है, ये दिस इन्फॉर्मेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड। इंटेलेक्ट इज ऑल्सो विजुअलाइजिंग एवरीथिंग, एनालाइजिंग, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, डिसीजन लेना है। थोड़े दिन हमें ये काम बहुत अवेयरनेस से करना पड़ेगा, लेकिन जितनी हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग हमारी सबकॉन्शियस में होती जा रही है। थोड़े दिन के बाद क्या होगा, हमें अपने इन कॉन्शियसली ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी।
1: रेड लाइट आई तो पैर खुद ही ब्रेक पे जाता है।
2: लुक एट दिस लाइन, रेड लाइट गई तो पैर खुद ही ब्रेक पे जाता है। जब पहले दिन गाड़ी चला रहे थे
1: तो पता नहीं, कभी क्लच दबा देते थे ब्रेक की जगह, कभी एक्सेलरेटर दबा देते थे,
2: लेकिन हम उस दिन अवेयर थे, हम अवेयर थे ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, मतलब वो उस आइसबर्ग के लोअर पोर्शन में जाके चला गया, अब हमें भी अवेयरनेस नहीं करनी पड़ती है, अपने आप पैर चला जाएगा, टर्न करना है तो अपने आप हाथ इंडिकेटर को टच कर देगा, इंडिकेटर अपने आप, इसको हम कहेंगे सब कुछ अपने आप होने लग गया है। जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डे गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई उस दिन म्यूजिक प्ले करे तो वो म्यूजिक हमें डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि हमारी सारी अटेंशन हमें कहाँ चाहिए, तो हम कहेंगे रेडियो बंद करो, मेरा ध्यान हट रहा है उससे, क्योंकि मुझे अपना पूरा ध्यान कहाँ चाहिए, गाड़ी चलाने में। जब 2 महीना हमने गाड़ी चला ली, उसके बाद हम कहेंगे म्यूजिक चलाओ, बोर होता है ऐसे गाड़ी चलाने में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थोड़े दिन हमारे सेंस ऑर्गन्स अवेयरनेस से काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड अवेयरनेस से काम कर रहा है। थोड़े दिन करने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेगा, हमारे कॉन्शियस माइंड और कर्म इंद्रियों को नहीं पता चलेगा अब क्या करें, हम कहेंगे गाने चलाओ,
1: सैंडविच खाओ, कॉफी पियो,
2: फोन पे भी बात कर लेते हैं, आसपास साथ में जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कार में हो जाती हैं, गाड़ी चलाते चलाते सब कुछ हो जाता है। हु इज ड्राइविंग एंड वॉट आर वी डूइंग? मीटिंग कौन कर रहा है? सैंडविच जो आपने कहा वो कौन खा रहा है? गाने कौन सुन रहा है? बातें कौन कर रहा है? कार कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कार चला रहा है, कॉन्शियस माइंड और सेंस ऑर्गन्स ये सारा काम कर रहे हैं कि ये नया है ये सारा। दिस इज वॉट इज हैपनिंग, विच मीन्स नाउ माई सबकॉन्शियस माइंड कैन डू दिस वर्क, आई एम नॉट नीडेड। इस सबकॉन्शियस माइंड को हम संस्कार कहते हैं, विच मीन्स अब गाड़ी चलाना हमारा संस्कार बन गया है। तो हमारे को उस पे मन थॉट नहीं क्रिएट करना पड़ता, उस पे इंटेलेक्ट का भी कोई काम नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये अब मेरा संस्कार बन चुका है। तो मन और बुद्धि कुछ और कर रही होती है, संस्कार गाड़ी चला लेता है। सारा दिन में देखो कितनी सारी चीजों में ये यूज होगा कि मन और बुद्धि नहीं यूज हो रही है, संस्कार अपने आप काम कर रहा है। अब जो आपने उस दिन कहा कि सिगरेट के पैकेट की तरफ हाथ अपने आप जाता है, हम नहीं सोच के उठाते हैं पैकेट को, वो चीज अपने आप होती है। अपने आप होती है मतलब वो मेरी कौन सी स्टेज में चली गई है? संस्कार में चली गई है। वो लूप बन गया है। अब उसने क्या कहा उस पर वो लाइन, अब लूप को क्या करना पड़ेगा?
1: Unless and until you consciously stop it.
2: Unless now I've learnt one car. ठीक है, सपोज मैंने एक कार सीखी जिसमें 5 गियर हैं, ये करना है, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है। अब 10-20 साल मैंने वो वाली गाड़ी चलाई, अब मेरे पास गाड़ी आई जो ऑटोमेटिक है जिसमें गियर नहीं है। 20 साल गाड़ी चला लिया है तो वो संस्कार बन गया था, लेकिन अब नए तरीके से सीखना पड़ा। कुछ चीजें सेम थी, कुछ चीजें डिफरेंट थी, तो जो पुराना वे ऑफ था उसको स्टॉप करना पड़ा, नए तरीके से चलाना शुरू करना पड़ा। नया करते टाइम भी पुराने तरीके की तरह हाथ जाता है कि हाँ ये करना है, फिर ध्यान आता है नहीं इसमें तो गियर नहीं है।
1: मोटरबाइक में जो मैं चलाता था, हाँ, तो मेरी मोटरबाइक में राइट पे ब्रेक थी, लेफ्ट पे गियर्स थे पैरों में, तो गाड़ी चलाते चलाते एकदम मैं आदत थी। दूसरी मोटरबाइक नई खरीदी, दूसरे मॉडल की, दूसरी कंपनी की, तो उसके गियर्स राइट पे थे, ब्रेक लेफ्ट पे थे, तो जब भी ब्रेक मारना होता था मैं उल्टा पैर दबाता था। फिर इतनी मुश्किल हुई थोड़े दिन तक।
2: कितने दिन?
1: 2-4 दिन, हफ्ता भर।
2: 2-4 दिन हफ्ता भर एक संस्कार चेंज करने के लिए, दैट्स हाउ मच टाइम इज नीडेड। 2-4 दिन, हफ्ता भर ज्यादा से ज्यादा एक संस्कार पे वर्क करने के लिए।
1: अभी मैं अमेरिका जाके गाड़ी चलाता हूँ, हाँ। लेफ्ट हैंड ड्राइव का राइट हैंड ड्राइव
2: करते हैं,
1: एक दो दिन में लग गया, एक दिन में ही हो जाता है, मालूम है
2: क्यों? उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो लूप बन गया है, वो वायरिंग हो रही है, ये ऑटोमेटिक मोड में चला गया है। ब्रेन वही मैसेज बॉडी को देगा, लेफ्ट हैंड इधर जाएगा, राइट हैंड इधर जाएगा, पैर उधर जाएगा। इसको कौन चला रहा है? ब्रेन चला रहा है। ब्रेन को कौन चला रहा है? कॉन्शियस माइंड तो अब ये काम कर ही नहीं रहा, संस्कार सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन को चला रहा है, ब्रेन शरीर को चला रहा है। इट्स गॉन इन टू द लूप टिल नाउ यू कॉन्शियसली स्टॉप एंड क्रिएट अनदर रिकॉर्डिंग। तो आपने कहा कितने दिन लगेंगे? 2 दिन, 3 दिन, चलो कुछ ज्यादा मुश्किल चीज हुई 5 दिन। हमें एक नया फोन मिलता है, उसके ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, उसमें हमें कितना दिन लगता है सीखने में?
1: 1 दिन,
2: 1 दिन, 2 दिन। अब हाथ फिर से पुराने वाले फोन के तरीकों पर जाएगा कि ये उधर था, फिर याद आता है नहीं ये इधर, नहीं ये इधर, ये लूप बन रहा है अंदर। 2 दिन वो कर लिया, वायरिंग चेंज्ड, थोड़े दिन नया वाला यूज करते गए, अगर उसके बाद पुराना वाला फिर से हाथ में आया, याद नहीं रहेगा इमिजिएटली कैसे यूज करना है, फिर 1 दिन लगेगा वापस वो वाले ऑप्शंस को फिर से देखने में, क्योंकि हमारी वायरिंग चेंज हो गई है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी तरह चलाएगा शरीर को। ये अगर आज समझ में आ गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि संस्कार चेंज करना तो बहुत इजी है, और एक बार चेंज कर लिया तो उस वायरिंग में ही चला जाएगा, पुराने तरीके के ऊपर वापस नहीं जाएगा। अब इसको हर चीज में देखें, माइंड थॉट क्रिएट कर रही है, इंटेलेक्ट डिसीजन ले रही है, कर्म में आ रहा है, संस्कार बन रहा है। कर्म संस्कार भी कब बनेगा, जब कोई चीज कर्म में कई बार ले आए। एक बार वो संस्कार बन गया तो जो पहली दो स्टेजेस हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे। जैसे आपने कहा सिगरेट पीना, कोई ऐसी फिजिकल आदत को हम लेते हैं क्योंकि उस पर चेक करना इजी है। पहली बार किसी ने ऑफर किया होगा, आपको भी किसी ने पहली बार कभी ऑफर किया होगा, तो दो थॉट्स तो चले होंगे ना, है ना, दो थॉट्स चले होंगे। पहले कई बार आपने कहा होगा कि नहीं मुझे नहीं लेना, और आपने नहीं लिया होगा, नहीं लिया होगा क्योंकि बुद्धि ने उस दिन निर्णय दिया होगा नहीं लेना। फिर किसी ने ऑफर किया, फिर दो तीन थॉट्स चले, फिर बुद्धि ने कहा नहीं लेना, नहीं लिया। फिर किसी दिन किसी ने ऑफर किया, कुछ ज्यादा कहा, नहीं कुछ नहीं होता, क्या होता है, तो मन ने भी क्या क्या होता है, सब लोग तो लेते हैं, थॉट्स चली, बुद्धि ने उस दिन निर्णय दिया ले सकते हैं। एक बार लेने से क्या होगा, पहली बार हम कर्म में लेकर आए, हमने पहली बार वो कर्म किया है, उस दिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या रिकॉर्ड हुआ, एक कि ये कर्म कैसे किया जाता है ये रिकॉर्ड हुआ, ये सिगरेट कैसी पी जाती है ये कर्म रिकॉर्ड हुआ। पीने के बाद मन को कितना रिलैक्स्ड फील हुआ, लोगों को रिलैक्स्ड फील होता है ना पीने के बाद, वो रिलैक्सेशन का अनुभव भी रिकॉर्ड हो गया, दोनों चीजें रिकॉर्ड हो गई अंदर, कर्म कैसे करना है वो भी रिकॉर्ड हो गया, रिलैक्सेशन का अनुभव भी रिकॉर्ड हो गया। थोड़े दिन के बाद किसी ने फिर ऑफर किया, थोड़े दिन के बाद एग्जाम आया, कोई प्रॉब्लम आई जीवन में, तो मन को क्या याद आया सबकॉन्शियस माइंड से, वो दोनों चीजें कि ये ऐसे पिया था तो क्या हुआ था, ऐसे रिलैक्सेशन फील हुई थी, हमने फिर उठाया,
1: मेरा डल मूड एकदम फ्रेश हो गया।
2: वो रिकॉर्डिंग है, अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं होती तो हमें नहीं पता होता कि ये फ्रेशनेस कैसी थी, हम नहीं जाते उसकी तरफ, वी आर गोइंग बैक फॉर द सेम एक्सपीरियंस, हम उस एक्सपीरियंस को फिर से करना चाहते हैं। अब दो बार, आठ बार, दस बार, पंद्रह बार ये अगर हो गया, अब माइंड दो तीन थॉट्स नहीं क्रिएट करेगा कि पीऊं या नहीं पीऊं, लूं या नहीं लूं, करने के क्या फायदे हैं, नहीं करने के क्या फायदे हैं, ये वाली स्टेज बाईपास हो गई। जब थॉट्स ही नहीं क्रिएट हुई, ऑप्शंस ही नहीं क्रिएट हुए, तो इंटेलेक्ट का डिसीजन लेना
1: कैसे डिसीजन ले,
2: क्या किस पे डिसीजन ले, वो ऑप्शंस ही नहीं है, तो थॉट्स गई, जरूरत नहीं चलेगी, डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होगी, तो संस्कार ऑटोमेटिकली कर्म में आ जाएगा। दिस इज दैट स्टेज व्हेन दैट आर्टिकल इज सेइंग कि वी हैव गॉन इनटू द ऑटोमेटिक मोड, कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग खत्म, चूज करना जो हम कह रहे थे, आई चूज माई थॉट, आई क्रिएट माई थॉट, देन आई डिसाइड माई कर्मा, ये सारी स्टेजेस खत्म,
1: डायरेक्टली ऑटोमेटिक मोड पे,
2: ऑटोमेटिक में आ गया है। अब हमें पता नहीं चल रहा हम ऑटोमेटिक गुस्सा कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिक वैसा बोल रहे हैं, हम ऑटोमेटिक वैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिक वो चीज पी रहे हैं, ऑटोमेटिक वो चीज खा रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारा हाथ वहां जा रहा है जहां वो सिगरेट का पैकेट है, ऑटोमेटिक मिठाई की तरफ हम, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग। आज साइंस कहती है ह्यूमन बीइंग्स 80% ऑफ द टाइम आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स, इसका मतलब सारा दिन में 80% समय हम कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं चूज कर रहे, हम जो हैबिट बनी हुई है उसी पे चल रहे हैं, बिल्कुल कोई नवीनता नहीं, कोई नवीनता नहीं। जैसे उस दिन बात की थी वैसे ही कल बात की थी, वैसे ही आज बात कर रहे हैं, वैसे ही कल बात करेंगे, क्रिएचर ऑफ हैबिट 80% ऑफ द टाइम। एंड फिर उसने कहा कॉन्शियसली स्टॉप, अब हमें क्या करना, इस लूप को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लूप में आ गया है ब्रेन की वायरिंग में, तो शरीर में भी ऑटोमेटिक में आ गया है, इसको कॉन्शियसली स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी उसने क्या कहा, सेल में मैसेज आया, राइट, सेल में मैसेज आया, वायरिंग क्रिएट हुई, वायरिंग क्रिएट हुई, वो इम्प्लीमेंट हो गया, बार बार करने से वो ही पर्टिकुलर वायरिंग क्या हो गई, लूप बन गई,
1: फास्टर भी हो गई,
2: स्ट्रॉन्गर भी हो गई, ऑटोमेटिक मोड में चली गई, लूप बन गई। फिर उसने कहा इस लूप को हमें कॉन्शियसली स्टॉप करना है। सो विच स्टेज विल वी गो बैक टू, कौन से लेवल पर इसको हमें स्टॉप करना होगा?
1: हमको तो बिगनिंग से ही करना पड़ेगा ना,
2: तो कहाँ करना?
1: थॉट लेवल पे।
2: तो हमें वायरिंग को स्टॉप करना है,
1: थॉट से पहले जो संस्कार है।
2: तो मतलब सेल को जो मैसेज जा रहा है उसको स्टॉप करना है, क्योंकि सेल के मैसेज से वायरिंग क्रिएट हो रही थी। सेल के मैसेज को स्टॉप करना है मतलब वो
1: जिस चीज की आदत है,
2: एक नई थॉट क्रिएट करनी है। संस्कार नहीं चेंज कर सकते हम। संस्कार कैसे चेंज होंगे? संस्कार तो कोई चीज करने के बाद क्रिएट होगा ना। अभी वो संस्कार क्रिएटेड है, संस्कार को चेंज करने के लिए कौन से स्टेप पे करना पड़ेगा?
1: बिफोर द संस्कार।
2: बिफोर द संस्कार वॉज द इंटेलेक्ट, बिफोर द इंटेलेक्ट वॉज द माइंड।
1: हाँ तो
2: है ना,
1: माइंड को कोई दूसरा खिलौना देना पड़ेगा।
2: माइंड को दूसरा थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। अब माइंड को दूसरा थॉट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन नई देनी पड़ेगी। सपोज हमारी ये सिंपल हैबिट है कि हम सिगरेट पी रहे हैं, वो आदत बन चुकी है, वो ऑटोमेटिक मोड में भी चली गई है। आज हम उसको चेंज करना चाहते हैं। कुछ लोग उसको बाह्य लेवल से भी चेंज कर लेते हैं कि नहीं, आज से मुझे नहीं लेना, हो गया। अगर हमें उसको मेडिटेशन से करना है तो सिर्फ हमें एक थॉट रोज स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये मेरी आदत नहीं, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम द मालिक ऑफ दिस बॉडी, मैं जो इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा वो ये ही खाएगा, आज मेरा हाथ उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। दिस इज अ न्यू थॉट सेंडिंग अ न्यू मैसेज, अ न्यू केमिकल बाय द ब्रेन, अ न्यू वायरिंग गेटिंग क्रिएटेड। वी हैव टू क्रिएट दिस न्यू वायरिंग। ये न्यू वायरिंग नहीं की और सिर्फ सोचा आज शाम को मैं नहीं लूंगा, कल मैं नहीं लूंगा, जब दोस्तों के साथ बैठूंगा, वहां बैठेंगे सब कुछ सेम होगा, वही वायरिंग फायर हो जाएगी, हम उठाकर वही चीज ले लेंगे, फिर हम कहेंगे सोचा था, करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, वही आदत वापस संस्कार में आ गई, एंड आई हैव डन दिस सेम थिंग। सो वी हैव टू वर्क ऑन हाउ टू हैव चेंज दिस संस्कार।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर, हम इस पर जरूर वर्क करेंगे।
2: थैंक यू।
1: ओम शांति। ओम शांति।
3: Our brain cells communicate with one another. One brain cell releases a chemical that the next brain cell absorbs. When brain cells communicate frequently, the connection between them strengthens. Messages that travel the same pathway in the brain over and over begin to transmit faster and faster. With enough repetition, they become automatic. The more we think a negative thought, the more entrenched the thought becomes. Negative and traumatic thoughts also tend to loop. They play themselves over and over until we do something consciously to them. Information is the stimulus we receive through our sense organs. We take in this information and create thoughts. The intellect will evaluate these thoughts and take a decision. This final thought will be transmitted to the brain and then come into action. Similar habits of thinking will create similar actions, and this will then go into an automatic loop, which is called sanskar. When we create a sanskar, it comes into action automatically, which means we are unaware. We do not need the mind to think or intellect to decide, because we are living out of old habits. We need to now consciously stop the loop and create a new way of thinking to change the habit.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: भारत की प्रशंसा में न जाने कितने गीतकारों ने गीत लिखे, कितने कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता द्वारा अलग अलग तरीके से व्यक्त किया। इस भारत भूमि के ऐसे प्रदेश की बात हम आपसे करने जा रहे हैं, जहां का रंग बिरंगा अंदाज और स्वादिष्ट खाना आपको यहीं बांध लेगा। चलिए आज चलते हैं हम राजस्थान।

राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, और साथ में दिल्ली से भी लगा हुआ है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और गगधर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन पर्वत श्रेणियों में से प्रमुख अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एकमात्र पहाड़ी है जो पर्यटन का केंद्र है, जो कि माउंट आबू और विश्व विख्यात दिलवाड़ा मंदिर को सम्मिलित करती है। पूर्वी राजस्थान में दो बाघ अभयारण्य हैं, रणथंबोर और सरिस्का, और भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षियों की रक्षार्थ निर्मित किया गया है। राजस्थान भारतवर्ष के पश्चिम भाग में अवस्थित है, जो प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है। तब इस प्रदेश में कई इकाइयां सम्मिलित थीं, जो अलग अलग नाम से संबोधित की जाती थीं। आइए अब पलटते हैं कुछ पन्ने राजस्थान के इतिहास के। यहाँ का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। ईसा पूर्व 3000 से 1000 के बीच यहाँ की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी। 12वीं सदी तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुर्जरों का राज्य रहा। गुजरात तथा राजस्थान का अधिकांश भाग गुर्जरात्रा अर्थात गुर्जरों के रक्षित देश के नाम से जाना जाता था। गुर्जर प्रतिहारों ने 300 साल तक पूरे उत्तरी भारत को अरब आक्रांताओं से बचाया। बाद में जब राजपूतों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना आधिपत्य जमा लिया तो यह क्षेत्र ब्रिटिश काल में राजपुताना अर्थात राजपूतों का स्थान कहलाने लगा। 12वीं शताब्दी के बाद मेवाड़ पर गहलोतों ने राज्य किया। मेवाड़ के अलावा जो अन्य रियासतें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख रहीं, वे थीं भरतपुर, जयपुर, बूंदी, मारवाड़, कोटा और अलवर। अन्य सभी रियासतें इन्हीं रियासतों में से बनी थीं। इन रियासतों ने सन 1818 ईस्वी में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि स्वीकार कर ली। सन 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हो गए। सन 1935 में अंग्रेजी शासन वाले भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के बाद राजस्थान में नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन और तेज हो गए। 1948 में इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1956

स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का भी योगदान कम नहीं रहा। यहाँ के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनमें से प्रमुख थे अंजना देवी चौधरी, छगन राज चौपासनी वाला, गंगा सिंह, घनश्याम दास बिडला, घासी राम चौधरी, जमनालाल बजाज, चुन्नीलाल चित्तौड़, जय नारायण व्यास, अब्दुल हमीद कैसर, ठाकुर केसरी सिंह और महात्मा रामचंद्र वीर। आइए इन वीरों की गाथा के बारे में एक छोटा सा गाना सुनते हैं और फिर लौटते हैं राजस्थान की कहानी में।

आइए अब और थोड़ा जानते हैं राजस्थान को। राजस्थान मुख्यतः एक कृषि व पशुपालन प्रधान राज्य है और अनाज व सब्जियों का निर्यात करता है। राज्य की प्रमुख फसलें हैं चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू। अल्प व अनियमित वर्षा के बावजूद यहाँ लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र शुष्क या अर्ध शुष्क है। फिर भी राजस्थान में बड़ी संख्या में पालतू पशु हैं और वह राजस्थान सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है। ऊंटों व शुष्क इलाकों के पशुओं की विभिन्न नस्लों पर राजस्थान का एकाधिकार है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बाजरा, कोटा में ज्वार व उदयपुर में मुख्यतः मक्का उगाया जाता है। इस राज्य में गेहूं व जौ का विस्तार रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर अच्छा खासा है। ऐसा ही दलहन, मटर, सेम व मसूर जैसी खाद्य फलियां, गन्ना व तिलहन के साथ भी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान ने बहुत प्रगति की है। राजस्थान में अनेक शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें राज्य द्वारा संचालित जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व अजमेर विश्वविद्यालय हैं। कोटा खुला विश्वविद्यालय, पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस शामिल हैं। यहाँ अनेक राजकीय अस्पताल और दवाखाने हैं। यहाँ कई आयुर्वेदिक, यूनानी, जड़ी बूटियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी संस्थान हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी हर प्रदेश की नींव होती है। राजस्थान की संस्कृति बहुत निराली है। यहाँ मुश्किल से ही कोई महीना ऐसा जाता होगा जिसमें धार्मिक उत्सव न हो। सबसे उल्लेखनीय व विशिष्ट उत्सव है गणगौर, जिसमें महादेव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उनकी पूजा 15 दिन तक सभी जातियों की स्त्रियों द्वारा की जाती है। बाद में उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन की शोभा यात्रा बाजे गाजे के साथ निकाली

हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। इन अवसरों पर उत्साह और उल्लास का बोलबाला रहता है। जयपुर का गणगौर विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। एक अन्य प्रमुख उत्सव अजमेर के निकट पुष्कर में मनाया जाता है, जो धार्मिक उत्सव व पशु मेले का मिश्रित स्वरूप है। यहाँ राज्य भर के किसान अपने ऊंट व गाय भैंस आदि लेकर आते हैं एवं तीर्थयात्री मुक्ति की खोज में आते हैं। अजमेर स्थित सूफी आध्यात्मवादी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत में मुसलमानों की पवित्रतम दरगाहों में से एक है।

0: राजस्थान का विशिष्ट नृत्य घूमर है, जिसे उत्सवों के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि गेर नृत्य महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। पनिहारी भी महिलाओं का लालित्यपूर्ण नृत्य है, जिसमें पुरुष नर्तक वनवटी घोड़ी पर बैठे होते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध गीत खुरजा है, जिसमें एक स्त्री की कहानी है जो अपने पति को खुरजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजना चाहती है। वह उसकी उस सेवा के बदले उसे बेशकीमती पुरस्कार का वायदा करती है। अब वक्त हो रहा है इसी गीत खुरजा को सुनने का। आइए सुनते हैं खुरजा की कहानी, आखिर क्या बेशकीमती पुरस्कार मिलने वाला है।
1: पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

तो कैसा लगा गाना? राजस्थान ने भारतीय कला में अपना बहुत योगदान दिया है। यहाँ साहित्यिक परंपरा मौजूद है, विशेषकर भाट कविता की। चंद बरदाई का काव्य पृथ्वीराज रासो या चंद रासो विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम ख्याल है, जो एक नृत्य नाटिका है, जिसके काव्य की विषय वस्तु उत्सव इतिहास या प्रणय प्रसंगों पर आधारित रहती है। राजस्थान में प्राचीन दुर्लभ वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हैं, जिनमें बौद्ध शिलालेख, जैन मंदिर, किले, शानदार रियासती महल, मस्जिद व गुंबद शामिल हैं। राजस्थान मेलों और उत्सवों की धरती है। होली, दीपावली, विजयदशमी, क्रिसमस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा अनेक देवी देवताओं, संतों और लोक नायकों तथा नायिकाओं के जन्मदिन यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण मेले हैं तीज, जयपुर का गणगौर, अजमेर शरीफ की उर्स, गलियाकोट के वार्षिक उर्स, बेनेश्वर, डूंगरपुर का जनजातीय कुंभ, श्री महावीर जी, सवाई माधोपुर का मेला इत्यादि। अब इस रंगारंग संस्कृति और त्योहारों का कुछ न कुछ तो आपको झलक देना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना और फिर लौटते हैं राजस्थान की कहानी में।

0: राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावण है, जो आकार में काफी बड़ा तथा वजन में भारी होता है। गोंडावण राजस्थान तथा समीपवर्ती पाकिस्तान के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक दुर्लभतम पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावण उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी है। बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा ही प्रतीत होता है। भारत में गोंडावण जैसलमेर के मरु उद्यान व अजमेर के शोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। यह पक्षी अत्यंत ही शर्मिला होता है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। यह सोहन चिड़िया तथा शर्मीली पक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। यह एक छोटा हिरण है जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है। चिंकारा शर्मीला जीव है और मानव आबादी से दूर रहना ही पसंद करता है। यद्यपि यह अकेले रहने वाला जीव है, किंतु कभी कभी यह प्राणी 1 से 4 के झुंड में भी दिखाई दे जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इस प्राणी की खाल का रंग लाल भूरा हो जाता है और पेट तथा अंदरूनी पैरों का रंग हल्का भूरा लिए हुए सफेद होता है। इतिहास के साधनों में शिलालेख, पुरालेख और साहित्य के समानांतर कला भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके द्वारा हमें मानव की मानसिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मितियों में उनका कौशल भी दिखाई देता है। यह कौशल तत्कालीन मानव के विज्ञान तथा तकनीक के साथ साथ समाज, धर्म, आर्थिक और राजनीतिक विषयों का तथ्यात्मक विवरण प्रदान करने में इतिहास का स्रोत बन जाता है। इसमें स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, मुद्रा, वस्त्राभूषण, श्रृंगार प्रसाधन, घरेलू उपकरण इत्यादि जैसे कई विषय समाहित हैं, जो पुनः विभिन्न भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। स्थापत्य कला राजस्थान में प्राचीन काल से ही हिंदू, बौद्ध, जैन तथा मध्य काल में मुस्लिम धर्म के अनुयायियों द्वारा मंदिर, स्तंभ, मठ, मस्जिद, मकबरे, समाधियों और छत्रियों का निर्माण किया जाता रहा। इनमें कई भग्नावेश के रूप में तथा कुछ सही हालत में अभी भी विद्यमान हैं। इनमें कला की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन देवालयों के भग्नावेश हमें चित्तौड़ के उत्तर में नगरी नामक स्थान पर मिलते हैं। प्राप्त अवशेषों में वैष्णव, बौद्ध तथा जैन धर्म की तक्षण कला झलकती है। धातु मूर्ति कला भी राजस्थान की एक अनोखी कला है। धातु मूर्ति कला को भी राजस्थान में पर्याप्त प्रश्रय मिला है। पूर्व मध्य, मध्य तथा उत्तर मध्य काल में जैन मूर्तियों का यहाँ बहुतायत में निर्माण हुआ। सिरोही जिले में वसूतगढ़ पिंडवाड़ा नामक स्थान पर कई धातु प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शारदा की मूर्ति शिल्प की दृष्टि से दृष्टव्य है। भरतपुर, जैसलमेर, उदयपुर के जिले भी इस तरह के उदाहरणों से परिपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ की बेहद खूबसूरत चित्रकला की ओर। राजस्थान में मुकुंद्रा की पहाड़ियों व अरावली पर्वत श्रेणियों में कुछ शैल चित्रों की खोज हुई है, जिससे यहाँ के लोगों की चित्रकला के प्रति रुचि दिखाई देती है। कोटा के दक्षिण में चंबल के किनारे माधोपुर की चट्टानों से आलनिया नदी से प्राप्त शैल चित्रों का जो ब्यौरा मिलता है, उससे लगता है कि यह चित्र बगैर किसी प्रशिक्षण के मानव द्वारा वातावरण प्रभावित स्वाभाविक इच्छा से बनाए गए थे। इनमें मानव एवं जानवरों की आकृतियों का अधिक्य है। कुछ चित्र शिकार के, कुछ यंत्र तंत्र के रूप में ज्यामितिक आकार के लिए पूजा और टोना टोटका की दृष्टि से अंकित हैं। कोटा के जलवाड़ा गांव के पास विलास नदी के कन्यादाह ताल से बैला, हाथी, घोड़ा सहित घुड़सवार एवं हाथी सवार के चित्र हैं। यह चित्र उस आदिम परंपरा को प्रकट करते हैं, जो आज भी राजस्थान में मांडला नामक लोक कला के रूप में घर की दीवारों तथा आंगन में बने हुए देखे जा सकते हैं। कालीबंगा और आहड़ की खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किया गया अलंकरण भी प्राचीनतम मानव की लोक कला का परिचय प्रदान करता है। मेवाड़ के अनुरूप मारवाड़ में भी चित्रकला की प्राचीन परंपरा पनपती रही है। राव मालदेव उल्लेखनीय हैं कि यहाँ मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप 17वीं शती से मुगल शैली और राजस्थान की परंपरागत राजपूत शैली के समन्वय ने कई प्रांतीय शैलियों को जन्म दिया। इनमें मेवाड़ और मारवाड़ के अतिरिक्त बूंदी, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और नाथद्वारा शैली मुख्य है। राजस्थान धातु एवं काष्ट कला भी अत्यंत लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत तोप, बंदूक, तलवार, म्यान, छुरी, कटारी आदि अस्त्र शस्त्र भी इतिहास के स्रोत हैं। इनकी बनावट, इन पर की गई खुदाई की कला के साथ साथ इन पर प्राप्त सन एवं अभिलेख हमें राजनीतिक सूचनाएं प्रदान करते हैं। ऐसे ही तोप का उदाहरण हमें जोधपुर दुर्ग में देखने को मिला, जबकि राजस्थान के संग्रहालयों में अभिलेख वाली कई तलवारें प्रदर्शनार्थ भी रखी हुई हैं। धातु कला के पश्चात अब यहाँ के लोक कला के बारे में भी कुछ जानते हैं। राजस्थान की लोक कला के अंतर्गत वाद्य यंत्र, लोक संगीत और नाट्य आता है। यह सभी सांस्कृतिक इतिहास की अमूल्य धरोहरें हैं, जो इतिहास का अमूल्य अंग हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक राजस्थान में लोगों का मनोरंजन का साधन लोक नाट्य व नृत्य रहे थे। रासलीला जैसे नाट्यों के अतिरिक्त प्रदेश में ख्याल, रम्मत, राजधारी नृत्य, भवाई, तुर्रा कंगली, घूमर, अग्नि नृत्य, कोटा का चक्री नृत्य, कठपुतली आदि प्रदर्शन के नाम से उल्लेखनीय हैं। लोक वाद्यों में नगाड़ा, ढोलक, मादल, रावण हत्ता, सारंगी, तंदूरा, तासा, खड़ताल आदि भी राजस्थान की देन है। राजस्थान को एक अनोखे रंग प्रदान करती है यहाँ की कठपुतली कला। राजस्थान की कठपुतली काफी प्रसिद्ध है। यहाँ धागे से बांधकर कठपुतली नचाई जाती है। लकड़ी और कपड़े से बनी और मध्यकालीन राजस्थानी पोशाक पहने इन कठपुतलियों द्वारा इतिहास के प्रेम प्रसंग दर्शाए जाते हैं। इसमें अमर सिंह राठौड़ का चरित्र काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें युद्ध और नृत्य दिखाने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा राजस्थान घूमने चलते हैं। यहाँ घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ स्थित हैं राजाओं के महल, ऊंचे पहाड़ और कई दार्शनिक स्थल जैसे जोधपुर, जयपुर, माउंट आबू, बीकानेर और उदयपुर। सभी जगहें बहुत ही खूबसूरत हैं, पर राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर पर्यटन का सर्वोच्च केंद्र है। यह शहर चारों ओर से परकोठों यानी दीवारों से घिरा है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में महाराजा सवाई मानसिंह ने इस शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तभी से ही इस शहर का नाम गुलाबी नगरी अथवा पिंक सिटी पड़ गया। यहाँ के प्रमुख भवनों में सिटी पैलेस, 18वीं शताब्दी में बना जंतर मंतर, हवा महल और नाहरगढ़ किला शामिल हैं। अन्य सार्वजनिक भवनों में एक संग्रहालय और एक पुस्तकालय भी शामिल हैं। यहाँ की भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा भारतीय आर्य भाषाओं तथा बोलियों का समूह है, जो भारत के राजस्थान राज्य में बोली जाती है। यह भाषा हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी भाषा अपनी शब्दावली का लगभग 80% हिंदी से ग्रहण करती है, जबकि 20% शब्द स्थानीय होते हैं। इसके 4 प्रमुख वर्ग हैं: पूर्वोत्तर मेवाती, दक्षिणी मालवी, पश्चिम मारवाड़ी, पूर्वी मध्य जयपुरी। इनमें से मारवाड़ी भौगोलिक दृष्टि से सबसे व्यापक है। भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में कई बोलियां बोली जाती हैं। वैसे तो समग्र राजस्थान में हिंदी बोली का प्रचलन है, लेकिन लोक भाषाएं जन सामान्य पर ज्यादा प्रभाव डालती हैं। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, डारकी, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावटी, खेराड़ी, मोड़वाड़ी, देवड़ावाटी आदि बोले जाने की बोलियां हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में अहिरवाटी, मेवाटी बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढांडी, तोरावटी, जयपुरी, कोटड़ा, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़, नागौर चोल, हड़ौती बोलियां बोली जाती हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में रांगड़ी, सोंधवाड़ी बोली जाती है और दक्षिण राजस्थान की बोलियां निमाड़ी आदि हैं। राजस्थान के बारे में इतना कुछ जानने के बाद यहाँ के स्वाद न चखे तो फिर सफर अधूरा है। राजस्थान में कई प्रकार के मीठे और तीखे व्यंजन पसंद किए जाते हैं। यहाँ का मुख्य व्यंजन है रबड़ी, बाड़ी, केर सांगरी की सब्जी, कढ़ी, सेव टमाटर, मक्की की घाट, दाल चावल कूट और मिठाइयों में गुजिया, सीरो, इमरती, घेवर, फीनी, बेसन, चक्की, बालूशाही। ये सब सुनकर मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है, और दाल बाटी चूरमे को कैसे भूला जा सकता है। राजस्थान आखिर प्रदेश ही इतने रंगों और स्वादों का है। और ये भी गौरतलब बात है कि राजस्थान के किलों के बारे में जब गिनती की जाती है तो राजस्थान के 7 किले विश्व धरोहर गिने जाते हैं। और वैसे ही मशहूर है राजस्थानी खाने भी, और ये भी किसी विश्व धरोहर से कम नहीं है। जिसने राजस्थान के व्यंजन चख लिए, उसके लिए और कुछ चखना बाकी नहीं रहता। राजस्थान के अनेक रंग हैं, उनमें से कुछ हमने आपके सामने रखे, और यहाँ का लोक संगीत, नृत्य, किले, पहाड़ियाँ, पकवान आपको यहीं बांध लेंगे। चलिए राजस्थान के रास्तों से आते हैं अब वापस, पर जारी रहेगा आपका ये सफर 29 राज्य, एक राष्ट्र, एक कहानी में। जय हिंद।
1: उनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण कैसे करें। वृत्ति का अर्थ होता है रुझान, लालसाएं आदि, जो किसी भी विषय किसी भी दिशा में हो सकती है। वृत्ति का निर्माण संकल्पों से होता है और संकल्प हमारी आत्मा में संस्कारों, संबंध, संपर्क, वातावरण, घटनाओं आदि के प्रभाव से निर्मित होते हैं। हमारे चयनित संकल्पों से हमारी वृत्ति का निर्माण होता है। वृत्ति से प्रकंपन, वायुमंडल, वातावरण आदि का निर्माण होता है, जो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ या भ्रष्ट बनाते हैं। जैसे संकल्प आया कि हमारे पास आने वाला व्यक्ति चोर है, इससे हमारी वृत्ति उसके प्रति अशुभ हो सकती है, जो हमारे बोल, व्यवहार व कर्म को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि हम देखते हैं भक्ति मार्ग का सर्वोच्च योग शास्त्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में इसमें वर्णित है कि योगश्चित वृत्ति निरोधक, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यह हमें संकल्प शून्य की अवस्था व निर्संकल्प समाधि की ओर ले जाता है। परंतु संकल्प शून्य होने के कारण ये शून्य से प्रश्न उत्पन्न होता है कि आत्मा गुण व शक्तियों को उनके संकल्पों के चिंतन के बिना कैसे अपने में समाएगी या धारण करेगी, वह आत्मा सत्व प्रधान कैसे बनेगी। शिव परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे सरल ज्ञान व सहज राजयोग को ग्रहण करके ही आत्मा सत्व प्रधान या गुण शक्तियों से संपन्न बन सकती है। अच्छे संकल्पों के माध्यम से श्रेष्ठ वृत्ति विकसित करके हम श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ही सत्व प्रधान बन सकते हैं। वृत्ति के आधार से हम अपने पुरुषार्थ को ज्ञात कर सकते हैं कि किन किन विषयों में हमारी अवस्था क्या है। जिस विषय में हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है उनमें हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। जिस विषय में हमारी वृत्ति कम है उसमें पुरुषार्थ भी कम होगा। कमजोर वृत्ति को श्रेष्ठ बनाकर चारों विषयों के पुरुषार्थ में बैलेंस को हमें बढ़ाना है। शिव बाबा कहते हैं कि संकल्पों से वृत्ति व वृत्ति से दृष्टि, कृति, सृष्टि आदि की रचना होती है। अपनी दृष्टि, कृति व सृष्टि को श्रेष्ठ बनाने के लिए वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना होगा। परंतु कैसे, तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है श्रेष्ठ रीति का निर्माण कैसे करें। एक होता है ऐश्वर्य ज्ञान, जितना हम ज्ञान मुरली को सुनते हैं या हम जितनी भी ही ज्ञान की पुस्तकों को बार बार पढ़ेंगे उतनी ही श्रेष्ठ संकल्पों की रचना अधिक होगी। इससे ही हमारी प्रीति उत्तम बनेगी। इसके लिए इस निश्चय के साथ प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है कि परमात्मा शिव हमें पढ़ा रहे हैं। एक होता है कमजोर संकल्प। संकल्प जो होता है, अगर कमजोर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प के साथ मिक्स होने से वृत्ति खराब बन सकती है। इससे भ्रष्ट गलत व पाप कर्म हो सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प के साथ कई बार विकल्प व कमजोर संकल्प भी आता है। तो यहाँ पे हमें देखना है जो श्रेष्ठ संकल्प को दबा देता है, इस कारण श्रेष्ठ वृत्ति के साथ इसके स्थान पर गंदी वृत्ति बन सकती है। अतः जागरूक रहकर श्रेष्ठ संकल्प को सदा ऊपर रख उसी पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है, तभी श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण व श्रेष्ठ कर्म हो सकती है। ईश्वरीय सेवा भी हमें करनी है। ईश्वरीय सेवा से हम अपना भाग्य बनाते हैं। सेवा करने से पहले यदि हम श्रेष्ठ वृत्ति का भी निर्माण करने की क्वालिटी की सेवा करनी है तो सेवा ज्यादा प्रभावी या फलदायक सिद्ध हो सकती है। मेरा अनुभव है कि कुछ दिन पहले स्कूल सेवा पर जाने से पहले मैंने श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण किया कि बाबा आज मैं जो बोलूं वह विद्यार्थी और टीचर्स को धारण और उनमें समा जाए। इसका यह असर रहा कि प्रोग्राम के जो प्रोग्राम की गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी रही। प्रोग्राम के बाद टीचर ने कहा, सेवा निवृत्ति के बाद मैं आप जैसा जीवन जीना चाहती हूँ। शिव बाबा ने भी अपने एक अव्यक्त संदेश में कहा है कि ऊंची प्रीति के साथ सेवा करो। तो आपने देखा कि ऊंची प्रीति रखने से और सेवा करने से सभी का कल्याण होता है और सभी का इसमें भला भी है। हमारी भलाई भी इसी में कि हम सबको श्रेष्ठ प्रीति के बारे में बताएं और समझाएं। इससे हमारी प्रीति और अच्छी बनेगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है श्रेष्ठ प्रीति का निर्माण कैसे करें। अब हमें सीखना है राजयोग की विधि, शिव बाबा की याद का अभ्यास करते समय श्रेष्ठ गुणों, दिव्य गुणों व शक्तियों के संकल्पों का चिंतन गहराई से व बार बार करना चाहिए। इससे श्रेष्ठ व सुदृढ़ वृत्ति का निर्माण होगा। कर्म योगी की वृत्ति रखकर हम कर्म करें तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा तथा खुशी भी रहेगी। हमें यहाँ पे स्वदर्शन चक्र भी फिराना है। इसका भी क्या है, चुने हुए उत्तम गुण व शक्तियों के श्रेष्ठ संकल्पों को अपने स्वदर्शन चक्र में सुविधा अनुसार पिरो लेना चाहिए। जब कम से कम 8 बार स्वदर्शन चक्र चलेगा तो उतनी ही बार श्रेष्ठ गुणों के संकल्पों पर भी ध्यान जाएगा तथा उनकी धारणा, उनको धारण करने की वृत्ति बन जाती है। सत्संग, सत्संग का अर्थ है ही सत्य का संग। संग का ही रंग चढ़ता है शिव बाबा की दैनिक मुरली, क्लास से पढ़कर सच का संग हुई और हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों के संग से पवित्र वृत्ति का उदय होता है। इसी प्रकार दादा लेखराज, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और सुकरात आदि महापुरुषों की जो जीवन कहानी आदि पढ़ने से भी श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण हो सकता है। इसके लिए श्रेष्ठ मित्रों का ही संग करना चाहिए। एक होता है मन का एक निष्कर्ष होता है श्रेष्ठ वृत्तियों का निर्माण। व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्मों का आधार है। इनका निर्माण करने के लिए लेख में उल्लेखित उपायों का को अपनाना है और उसे अपनाकर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने जीवन को महत्व देने या महान देव की ही श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारी श्रेष्ठ वृत्ति जो है वो किस प्रकार बन सकती है। हमारी वृत्ति हमारे संकल्पों पे ही, उसी के आधार पे हमारी वृत्ति बनती है। और इसे बनाने के लिए हमें थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत होती है और हम ज्ञान मुरली से इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा। तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के इस सफर में। जी हाँ, आज के इस ख्वाबों के सफर को हम लोग बनाएंगे यादगार और बहुत ही मीठी प्यारी बातें आपसे करेंगे और बहुत ही खूबसूरत गाने 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज भी आपको सुनाएंगे। अक्षर है एस। जी हाँ, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से एस अक्षर वाले बहुत ही खूबसूरत गाने आपको आज सुनाने की हमारी कोशिश रहेगी और इस कोशिश को पूरा करने आ गई है विभा जी। जी विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में।
2: नमस्कार सनी, आपको भी और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी प्यार से प्यार भरा नमस्कार।
1: जी,
2: और
1: जी,
2: मैं
1: जी।
2: आ गई हूँ और बहुत ही खूबसूरत गाने लेके अक्षर एस से।
1: क्या बात,
2: और मैं
1: सबसे
2: पहली आपको गजल देना चाहूंगी, बहुत ही प्यारी पंकज उदास की गजल है। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं।
1: अच्छा,
2: सिर्फ
1: अच्छा।
2: एक बार नजरों से नजर मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं।
1: ओह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद किया है। आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। जी
2: जी, बड़ी नशीली गजल है, इसको पूरे सुर में इसको सुने तो और भी मजा आएगा। और इसके बोल जैसे मोहब्बत का भी इजहार कर रहे हैं और पूरे नशे का भी। मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, वो समझ ना पाए तो मैं क्या करूं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आइए सीधे इस गजल की तरफ ले चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद किया है, बड़ी मीठी गजल है, तो हम लोग इस गजल का आनंद उठाएंगे। पंकज उदास साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत गजल है। कहते हैं, मीठी वाणी बोलना काम नहीं आसान, जिसको आती ये कला, जिसको आती ये कला, होता वही सुजान, होता वही सुजान। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो,

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुना पंकज झा का, और विभा जी थैंक यू ये बहुत ही खूबसूरत गजल की शुरुआत करने के लिए खाबों के सफर में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, जीवन में यदि चाहिए सबसे अपना मान, जीवन में यदि चाहिए सबसे अपना मान, वाणी मीठी बोलना सबको अपना जान, वाणी मीठी बोलना सबको अपना जान। जी हाँ साथियों, कभी कभी हम लोग अपना काम निकलवाना चाहते हैं, मीठा भी बोलते हैं, लेकिन उस मीठे में काम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम दूसरों को पराया समझते हैं या टेम्पररी समझते हैं। लेकिन जब हम सबको अपना समझ के मीठी वाणी बोलेंगे तो उसका असर जो है बहुत अच्छी तरह से होगा और आपका काम यूं ही हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत लेकर विभा जी हमारे बीच में है। विभा जी, अगला कौन सी गीत या गजल सुनाएंगे आप?
2: अगला जैसे अगली भी गजल ही है मेरे पास, ये चित्रा सिंह जी की है।
1: अच्छा।
2: सफर में धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, गजल में न्योता भी है और जिंदगी के उतार चढ़ाव भी, एक दूसरे पर पांव रख आगे बढ़ते जाने का भी इसमें इशारा है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम अगर संभल सको तो चलो।
1: क्या बात,
2: बहुत ही बहुत आनंद आएगा, इसको आप मजे से सुन पाएंगे।
1: जी जी, शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत गजल चित्रा सेन का आपने याद कराया है। तो आइए सीधे गजल की तरफ चलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनाया चित्रा सेन का, और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और कहते हैं, मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल, ज्ञानी जन कहते सदा सोच समझ कर बोल। जी हाँ साथियों, कभी कभी हम लोग जो भी शब्द निकालते हैं बिना सोचे समझे या कुछ भी बक देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मुसीबत का काम कर देता है, और कभी कभी हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसलिए हमें जो है इन सारी चीज़ों को, हमारे शब्दों का तोल हमें खुद को करना है, उसका मोल भी हमें करना है, इसलिए हमें सोच समझ कर ही बोल बोलने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सनी, आपने मुझे पूरी उम्मीद है आप इस गजल को भी खूब एंजॉय किया होगा। चित्रा सिंह जी की गजलें काफी जैसे जगजीत सिंह जी के साथ होती हैं क्योंकि उनकी वाइफ है ये, तो इनकी गजलें बहुत ही अच्छी हैं। अगर श्रोताओं को और भी को आगे चल के भी कोशिश करेंगे कि ऐसी गजलें आगे भी लिख के आए, इनकी 60s में गाई गई भी काफी गजलें हैं। अगला गाना है मेरे पास सैया छोड़ दे भैया मोरी पतली कलैया, ये लव सॉन्ग है। इसमें छेड़ा खानी हो रही है, प्यार की मस्ती हो रही है, गाना बहुत ही लाइवली है और म्यूजिक इसका तो बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें आपके पैर थिरकने वाले हैं। इसका म्यूजिक ऐसा है, दो प्रेमियों की शरारत है, और इसमें है वो तेरा हाथ ना छोड़ू तेरा साथ ना छोड़ू कहाँ जाएगी।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपने इशारा किया है। आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये गीत भी पसंद आएगा, और ये राखी इस एल्बम का है जो 1962 में रिलीज हुई थी। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। ये गीत राखी इस एल्बम का था जो अभी आपने सुना, और इस गीत को राजेंद्र कृष्णा साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर ने गाया था मुकेश जी के साथ। रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: अगला गाना मेरे पास है, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। ये वैजयंती माला अपने साजन की फोटो को हाथ में पकड़े हुए हैं और अपने सपने, सुंदर सपने सजा रही हैं अपने पिया के मिलन के। और इस गाने में खुशी है, प्यार है और इंतजार भी है। तुम मेरे पास होगे, गम बड़ी दूर होगा, कहता है जिया मेरा, होगा जरूर होगा। लाना रे लाना, तशरीफ लाना रे।
0: बहुत
1: बहुत खूबसूरत गाना है।
0: ही सुंदर गाना आपने याद कराया, बहार इस एल्बम का जो 1951 में रिलीज हुई थी। और ये एक फिल्म है।

0: अगला गाना मेरे पास है, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुझे छोड़ चला मुख मोड़ चला। इसमें शिकायत हो रही है अपने आप से ही बातें करते हुए, आई थिंक संध्या है इसमें ये गाना गा रही है और कह रही है, कुछ दिनों से पिया हमसे न बोलता, ना हमारा घूंघट का पट खोलता, उसकी गुपचुप का भेद आज निकला, सैया झूठों का सरताज निकला।
1: जी जी जी, अब बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। और ये दो आंखें बारह हाथ 1957 की फिल्म की बात है और ये फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है और लोग इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही जैसे उमड़ पड़ते थे। और इस कहानी जो है थोड़ी सी अलग है, जहाँ पर कुछ डाकुओं को जेल से एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश एक जेलर की यहाँ पर बताई गई है। वी शांताराम ने इसमें काम किया है, संध्या शांताराम धर्मपत्नी ही है और इसके साथ में कुछ विशेष कलाकार है, बाबूराव पोद्दार, वी एम व्यास जी हैं और भी बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में काम किया है। और बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही उस जमाने की। शायद मुझे अपने कुछ जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ बात करते हुए दो आंखें बारह हाथ इस फिल्म के बारे में वो भी चर्चा करते थे। तो यहाँ पर एक जेल वार्डन की कहानी को बताया गया है, किस तरह से वो कैदियों को सुधारने के पीछे अपना पूरा जो है जीवन लगा देता है, इवन उसकी आंखें भी चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर इस फिल्म में बताई गई थी। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने विभा जी याद कराया, तो सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। जैसे मैं कह रहा था कि मीठी वाणी का कितना मोल है, वो हम लोग अगर धीरे धीरे समझ लेते हैं तो जीवन का एक नया आयाम खुल जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है, गांठ बांध लो आज तुम संत जनों का ज्ञान, मीठी वाणी कर सके हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। और विभा जी, कैसे हैं आप?
2: जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके कहे गए लफ्जों को उसका रस ले रही हूँ। और ये जिंदगी की कितनी अच्छी आप लफ्ज लेके आए हैं, ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हर कोई इस पे चले तो जिंदगी हमारी भी आसान हो जाए और हमारे भाई बंधुओं की भी आसान हो जाए, बात हम सब इस पे चल सके। बहुत बहुत ही अच्छे आप बीच बीच में शायरी और लफ्ज जो बता रहे हैं उसको मैं खूब अच्छी तरह से इंजॉय कर रही हूँ। और इसके साथ ही राज कपूर का भी ऐसी मिलता जुलता गाना है, जैसी बातें आप इतनी प्यारी प्यारी कर रहे हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया गाना है।
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत गाना है और बड़ी सादगी से गाया गया है और जिंदगी की सच्चाई को बयान करते हुए सादा लिबास में वो गा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारी।
1: जी, विभा जी, बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपने इशारा किया है, तो आइए सीधे गीत की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना। कहीं ना कहीं हम सभी को मैसेज देता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। जिस तरह से हम भाव प्रकट करते हैं गीत के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन गीत के साथ सिर्फ बह जाना नहीं है, गीत के साथ जुड़ना नहीं है, उसे प्रैक्टिकल में लाइफ में लाने की बात है। और जब प्रैक्टिकल में, व्यवहार में या फिर बोल में हम इनसे उतारने की कोशिश करते हैं, वहाँ बड़ी मुश्किलें आती हैं। उस मुश्किल को आसान करने के लिए मीठी वाणी बोलना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे विभा जी के पास अगला कौन सा गीत है?
1: अगला गाना भी ऐसे ही संदेश देता हुआ गाना है। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भागना बांटे को। ये बहुत ही सच्चाई वाला गाना है। राज कपूर ज्यादातर फिल्मों में, इनके फिल्मों में संदेश होते हैं, और
0: जी जी
1: मुकेश जी की आवाज तो उसमें चार चांद लगा देती है।
0: सही बात है, सही बात
1: ओ, इस गाने के बोल बड़े बहुत ही खूबसूरत है।
0: है।
1: डूब गए हम बीच बवन में करके 16 साल। बहुत ही मजेदार गाना, आपको बहुत आनंद आएगा।
0: जी। अब बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, तीसरी कसम। इसके पहले भी जो हमने गीत सुना था, सजन रे झूठ मत बोलो, वो भी तीसरी कसम इस एल्बम का ही था। शैलेंद्र साहब का लिखा, मुकेश जी का गाया, शंकर जय कृष्ण का संगीत पद। अब ये जो गाना है, सजनवा बैरी हो गई हमार, तो यहाँ पर भी एक जो है बहुत ही खूबसूरत भाव है इस गीत के साथ में। शैलेंद्र साहब के कलम से लिखा हुआ, मुकेश जी का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध, ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आशा करता हूँ आप बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे आखिरी पड़ाव पे भी पहुंच गए हैं। और जैसे मैंने शुरू किया था, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल। तो इस तरह से जीवन में जो है कई बार हम लोग जो है कुछ कुटिल वचन यूज करते हैं, लेकिन संत महात्माओं का कहना है कि अपशब्द या कुटिल वचन सबसे बुरे हैं और ये व्यक्ति को दुश्मन बना देता है। इवन व्यक्ति नहीं, आपको पूरी दुनिया में दुश्मन बना देती है। इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करें, मीठी वाणी बोलकर फैला दो मुस्कान सब जगह, मीठी वाणी बोलकर फैला दो मुस्कान सारे जहां में, और सारे जहां के आप बन जाओ एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे दोस्त। आइए, आखिरी जो गीत है, मुझे लगता है कि हम लोग शुरू किया था गजल से, अगर आपके पास कोई गजल हो एस अक्षर वाले, तो मुझे लगता है कि आखिरी में भी हम लोग गजल सुनाते सुनाते हमारे श्रोताओं से विदा लेना चाहेंगे।
2: जी सलीम, अगली यही ध्यान में रखते हुए कि शुरू जैसे गजल से किया था, गजल से ही इस एपिसोड का आखिरी गजल ही देंगे। सजाए पाई है कुछ ऐसी दिल लगाने की, ना अब है रोने की ताकत ना मुस्कुराने की। इसमें जगजीत सिंह की आवाज है और दिल को छूने वाली गजल है, और उदासी है और महबूब की याद है इसमें, तेरे बगैर किसी तरह जीना पड़े।
1: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुनाया है, याद किया है। तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आज के इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी बातें और अच्छे गीत सुनने को मिला है, और आपने बहुत ही अच्छी तरह से कलेक्शन हम सभी को सुनाया। तो थैंक यू विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी प्यारे से श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, और मुझे पूरी उम्मीद है उनको बहुत मजा आया होगा इस मिक्सचर का, इसमें जो गजलें भी थी और जो गाने भी थे वो भी मोटिवेशनल थे और जिंदगी की सच्चाई को रखने वाले गाने थे। और इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड भी आपको बहुत आनंदित करेंगे और अच्छे अच्छे गीत और गजलें चुनके लेके आएंगे, इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहते हैं।
1: जी जी जी,
2: बहुत प्यार के साथ प्यारा सा नमस्कार।
1: चलिए विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में। और कहते हैं, मधुर शहद से बोल हो, मधुर शहद से बोल हो, उत्तम हो व्यवहार। वो प्राणी बिना युद्ध ही जीते ये संसार, जीते ये संसार। तो इसी के साथ साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले मोड़ पे, यानी अगले एपिसोड पे, इसी तरह ख्वाबों के सफर में। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वो ही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
3: What?
4: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
4: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: सेबेस्टियन।
2: नो
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस एंथनी गोंसाल्विस।
3: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। मी स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंद वाटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि कैसे काशीपुर का घर छोड़ने पर सुरेंद्रनाथ मित्र महाशय की सहायता से नरेंद्रनाथ को बरहापुर का एक टूटा फूटा घर मिला और वहीं उन्होंने प्रथम रामकृष्ण मठ की स्थापना की। कई तरुण सन्यासी उनके साथ आए और जब तब के दिन बिताने लगे। वे दिन उन सभी के लिए बेहद कष्टप्रद थे। कई युवक परिवार के लोगों को ताड़ना से घर लौटना पड़ा। नरेंद्र पहले तो अपने घर के मामलों को लेकर के बहुत व्यस्त थे। जो ही उन्होंने थोड़ी फुर्सत पाई और सन्यास का आदर्श पालन करने के लिए स्वयं को मुक्त अनुभव किया, उस समय जो युवक अपने घर लौट करके पढ़ने लिखने में लग गए थे, उन्हें वरानगर ले जाने के लिए, उनके मन में वैराग्य जगाने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। घंटों उनके साथ वे तर्क वितर्क में रत रहकर अपने उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते थे।
1: नरेंद्र नाथ की उद्दीपनकारी वाक पटुता से उनके गुरु भाइयों के मन में पहले की बात जल उठती और उस समय के लिए सांसारिक वासना प्रभावहीन हो उठती। कोई कोई नरेंद्र की पुकार पर अध्ययन आदि छोड़कर वराहनगर जाते, किंतु व्यथित नहीं थे। घर लौटकर नरेंद्र नाथ के फिर आने के भय से जब वे सब बंद कमरे में अध्ययन में निहित रहते, तभी नरेंद्र नाथ अचानक आंधी की तरह उपस्थित होकर घर के दरवाजे को हाथ से थपथपाकर दरवाजा खुलवाते और गुरु भाई को राजमार्ग पर खींचकर अभिभावक के पीछे अग्निमयी वाणी का स्रोत बहा देते। वे कब किसके घर उपस्थित होते, इसका कोई ठिकाना नहीं था।
0: आठपुर के बाद त्याग की आकांक्षा तीव्र होकर स्थिति दूषित रह हो गई। क्रमशः शशि, निरंजन, राखाल, शरद, शारदा और सुबोध मठ में ही रहने लगे। कुछ महीने बाद ही वृंदावन से लौटकर लाटू ने भी योगदान किया। हरि के आने में भी देर नहीं हुई। श्री माँ के वृंदावन से लौट आने पर योगेंद्र का भी मठ जीवन शुरू हो गया। गंगाधर सन 1887 ईस्वी के फरवरी महीने में गृह त्याग कर हिमालय और तिब्बत का भ्रमण करने निकले। इसलिए वे स्थायी रूप से मठ में 1890 ईस्वी के मध्य में आए और सबके अंत में स्वामी विवेकानंद के अमेरिका से लौटने के बाद हरिप्रसन्न आए थे। एक और व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक है, वे हैं तुलसी। ये श्री रामकृष्ण को एकाधिक बार देखने पर भी उनसे घनिष्ठ रूप से नहीं मिले और इसलिए अपने को श्री रामकृष्ण का शिष्य नहीं कहकर स्वामी विवेकानंद के शिष्य के रूप में अपना परिचय देने में ही गर्व का अनुभव करते थे।
1: समाज उन दिनों शंकराचार्य द्वारा अनुमोदित वैदिक संन्यास और अद्वैत वेदांत से भलीभांति परिचित नहीं था। वे लोग महाप्रभु श्री चैतन्य द्वारा प्रवर्तित श्रेवस्थधारी बैरागी संप्रदाय को जानते थे। गंगा सागर के यात्री या जगन्नाथ के यात्री जटाजूटधारी नागाओं अथवा सामान्य गेरुआ वस्त्रधारी दो चार सन्यासियों को उन्होंने देखा था। चैत्र संक्रांति के मेले के सन्यासी और विरल मुट्ठी भर कौल सन्यासियों को वे पहचानते थे, किंतु शिक्षित मध्य वर्गीय परिवार के युवक वृंद दल के माता पिता को रुलाकर और सांसारिक संपन्नता को ठुकराकर संघबद्ध रूप से मठ जीवन यापन करेंगे तथा अनुष्ठान के रूप में एकमात्र गुरु पूजा के सहारे वेदांत सम्मत साधना मार्ग में अग्रसर होंगे। ये एक नई बात थी। इस धारा की पुष्टि होने में समाज का कल्याण होने के बदले अकल्याण होने की आशंका थी। इसीलिए पहली अवस्था में श्री रामकृष्ण मठ लोकप्रिय नहीं हुआ।
0: मोहल्ले के लोग उन दिनों मठ के विरोध में थे, झूठी निंदाएं किया करते थे। जब साधुगण गंगा स्नान करने जाते तो दुष्ट लड़के बगुले दिखाते और कहते, अरे सब राजहंस जा रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का संदेह कितना प्रबल और अश्लील था, इसका परिचय एक घटना से मिलता है। स्वामी विवेकानंद के गले की आवाज नारियों की भांति कोमल थी। वे जब गाते तो दूर से सहसा नारी के स्वर का भ्रम होता। एक रात वे मठ में गाना गा रहे थे। उसी समय मोहल्ले के कुछ लोग यह निश्चय कर बैठे कि निश्चित ही मठ में किसी स्त्री का आगमन हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारों को हाथों हाथ प्रमाणित कर भ्रष्ट साधुओं को समुचित दंड देने की मंशा से कुछ लोग इस प्रयास में अग्रसर हुए और बाहरी दरवाजा बंद रहने के कारण दीवार फांदकर संगीत सभा में अचानक उपस्थित हो गए, किंतु उन्होंने देखा कि ये तो नारी नहीं पुरुष है। इसके बाद स्वयं ही पराजित होकर सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा याचना की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि साधुओं ने लेश मात्र क्रोध या शोक प्रकट किए बिना उन लोगों को हंसते हुए विदा की।
1: नरेंद्र नाथ और उनके साथी इन घटनाओं से विचलित नहीं होते थे। वे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और वक्त मिलते ही दानव कमरे में इकट्ठा होकर नरेंद्र रचित भजन गाते।
0: हम पहले भी जान चुके हैं कि मठ में सन्यासी कितनी तकलीफ और भुखमरी सहते थे। भिक्षा के सहारे भोजन मिलता था, वह भी 1 जून का। सन 1890 ईस्वी के 13 अप्रैल को बलराम बाबू को और 25 मई को सुरेंद्र बाबू के देहांत पर स्थिति अत्यंत संकटजनक हो गई थी। ऐसी कि एक बार मठ के खर्च के लिए शशि को शिक्षक का कार्य करना पड़ा था। हाँ, यह कुछ ही दिनों तक करना पड़ा था। विपत्ति के उन दिनों में गिरीश बाबू ने निसंकोच भाव से दान दिया था।
1: वराह नगर की दरिद्रता को नरेंद्र सहन नहीं कर पाते थे। कभी कभी तो शशि से झगड़ा भी हो जाता था।
2: शशि, मुझसे ये दुर्दशा और देखी नहीं जाती। छोटे छोटे सन्यासियों को हम भरपेट खाना भी नहीं दे पाते।
3: आप नाहक परेशान हो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा क्या?
2: कोई कहेगा तब मुझे मालूम पड़ेगा। अंधा तो नहीं हूं मैं। दिनों दिन बेचारे नमक और चावल खा रहे हैं।
3: क्यों? कभी कभी कुंदरू के उबले हुए पत्ते भी तो मिल जाते हैं।

0: लिए लज्जा की बात थी। और श्री रामकृष्ण के नाम पर जिन्होंने ग्रह त्याग किया है, वे क्या इतना भी उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते? भगवान ने तो स्वयं ही गीता में प्रतिज्ञा की है, योग क्षेम वहाम्यहम। फिर भी सुरेंद्रनाथ सामर्थ्य के अनुसार खोज खबर रखते और व्यवस्था भी करते। दूर रहने के कारण सर्वदा आना जाना उनके लिए संभव नहीं था। दूसरी ओर रोग से शय्याग्रस्त हो जाने के कारण वह असंभव हो गया था।
1: सब सोचकर उन्होंने छोटे गोपाल को ये कहकर मठ में रहने के लिए राजी करा लिया था, मैंने तुम्हारे परिवार के सारे खर्चे अपने कंधे पर ले लिए हैं, तुम मठ में रहकर घर के कार्य आदि करना और नित्य या एक दिन के बाद मेरे पास आकर मठ के भाइयों का समाचार देना। खासकर ये ध्यान रखना कि जो ही उन लोगों के भोजन आदि का अभाव देखो, क्यों ही मुझे ये मालूम हो जाए। गोपाल ने परमहंस देव का सानिध्य पाया था एवं सन्यास ग्रहण करने की भी उन्हें इच्छा थी, किंतु दो छोटे छोटे भाइयों और विधवा माता के भोजन वस्त्र का भार कंधे पर रहने के कारण वो नहीं हो पाया। अब भोजन वस्त्र की दूसरे प्रकार से व्यवस्था होगी और वे सभी साधु रूप में मठ में रहने का सुयोग पाएंगे। ये देखकर गोपाल सुरेंद्र बाबू के प्रस्ताव से सहमत हुए थे।
0: मठ में जो ही अभाव या अनाहार की स्थिति होती, वे सुरेंद्र बाबू को सूचित कर देते और सुरेंद्र बाबू भी उन्हें तभी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए दे देते, साथ साथ सतर्क कर देते कि उनका नाम प्रकट ना होने पाए, क्योंकि वे जानते थे कि बात फैल जाने पर मठ के भाईगण उनकी सहायता लेने में संकोच करेंगे। गोपाल उन वस्तुओं को मठ में ले जाते और साधुओं के पूछने पर कहते कि यह सब एक भद्र व्यक्ति ने भेज दिया है, मैं तो किसी तरह नहीं लेता, किंतु वे बहुत अनुरोध करने लगे, क्या करता, इसी से लेना पड़ा।
1: और दूसरे मददगार थे श्री बलराम बसु। वे एक दिन अचानक मठ में आ अपनी आंखों से साधुओं के उपवास का हाल देखकर इतने मर्माहत हुए कि घर लौटकर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि वे उस दिन कुंदरू के पत्ते के सुक्तो यानी एक तरह का व्यंजन जो बंगाल में प्रचलित है उसे छोड़कर कुछ नहीं खाएंगे। पत्नी ने सोचा ये तो पेट के मरीज हैं, संभव था आज रोग बढ़ गया है, किंतु बाद में ये जानकारी मिली कि मठ के भाइयों की दुरावस्था देखने के बाद उन्हें और खाने में रुचि नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद बलराम बाबू सुविधानुसार बीच में कुछ साग सब्जी और भोजन की सामग्री आदि मठ में भेज दिया करते थे।
0: अभाव के इन दिनों में एक तीसरे मित्र का भी आगमन हुआ था, उनका नाम था योगेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वे बहुत फुर्तीले थे और बहुत कहानियां जानते थे, काफी उदार स्वभाव था, खाने और खिलाने में प्रेम था। लोग कहते कि वे खा खा कर दरिद्र हो गए थे, मठ के सभी लोगों से वे प्रेम करते थे। आगे चलकर जब कई अवसरों पर मठ में खाने के लिए प्राय कुछ भी नहीं रहता तो यह जान लेने पर बाजार से स्वयं सामान खरीद कर ला देते थे।
1: मठ में वस्त्र आदि भी अत्यंत दरिद्र के समान थे, पहनने के लिए प्रत्येक को मिला एक कौपीन और एक गेरुआ चादर। बाहर जाने के समय आवश्यक होने के कारण सबके लिए एक मात्र उजली धोती और एक उजली चादर दीवार पर टंगी रहती थी, जिसको जब जरूरत होती वे उसे ले जाते। गृह सज्जा के उपकरणों में प्रत्येक के लिए एक चटाई पर बिछी चादर, कुछ जप मालाएं, दीवार पर लगी कुछ श्री राम कृष्ण और देवताओं की तस्वीरें और मित्रों के द्वारा दी गई प्रायः 100 के लगभग बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकें थी। ये व्यवस्था बहुत दिनों तक बनी रही थी। सन्यासी मठ में केवल कौपीन पहनते, बाहर जाने के समय चादर धारण करते, महीने में एक बार सिर, मूछ और दाढ़ी मुंडवाते। सबके जो थोड़े बहुत कपड़े लत्ते थे फिर रस्सी की अर्गनी पर लटकते रहते, कोई बक्सा नहीं था। विवेकानंद ने लिखा है,
2: श्री रामकृष्ण के देह त्याग के बाद हम वराह नगर के मठ में कितना जप ध्यान किया करते थे। सुबह 3 बजे सब जाग उठते थे, शौच

0: शादी के बाद कोई स्नान करके और कोई कपड़े बदलकर मंदिर में जाकर जप ध्यान में डूब जाया करता था। उस समय हम लोगों में क्या वैराग्य का भाव था, दुनिया है या नहीं, इसका पता ही न था। शशि 24 घंटे श्री रामकृष्ण की सेवा करता रहता था, घर की गृहिणी की तरह भिक्षा मांगकर श्री रामकृष्ण के भोग आदि की और हम लोगों के खिलाने पिलाने की सारी व्यवस्था वो स्वयं करता था। ऐसे भी दिन गए हैं जब सवेरे से 4-5 बजे शाम तक जप ध्यान चलता रहता था। शशि फिर खाना लेकर बहुत देर तक बैठा रहता और अंत में किसी तरह से घसीटकर हमें जप ध्यान से उठा दिया करता था। आहा, शशि की कैसी निष्ठा देखी है।
1: हाँ, यह बात निश्चित ही स्वीकार करने योग्य है कि श्री रामकृष्ण संघ की स्थापना के पीछे गुरु भाइयों का सम्मिलित प्रयास तो था ही, प्रत्येक की निजी देन भी थी। उस प्रारंभिक अवस्था में शशि की निपुणता अपूर्व थी। हमने देखा है कि नरेंद्रनाथ ने भी इसे स्वीकार किया है और एक बार उन्होंने अमेरिका में लिखा था।
0: आहा, शशि ने मठ को कैसा जागृत बना रखा है। उसकी निष्ठा एक बहुत सुदृढ़ आधार है। मठ के भाईगण जब ईश्वर प्राप्ति की आकुल आकांक्षा से इधर उधर तीर्थ दर्शन को जाते या दूर दूरांतर में तपस्या में लीन रहते, तब शशि ही मठ की ठाकुर पूजा आदि को लेकर अटल अचल सुमेरु की भांति वराह नगर में रहा करते। अभाव के दिनों में सन्यासी गण भिक्षा के लिए बाहर निकलते, किसी दिन केवल थोड़ा सा अन्न लेकर या किसी दिन खाली हाथ लौटते। ऐसे में एक दिन 4 साधु लौटकर जब श्री रामकृष्ण के भोग के लिए कुछ नहीं दे पाए, तब निश्चय किया गया कि उस दिन भूखे रहकर दिन भर भजन किया जाएगा। जैसी बात वैसा कार्य। किंतु श्री रामकृष्ण के भोग की व्यवस्था नहीं कर पाने से शशि को तो शांति नहीं थी। दूसरों को बिना बताए वे एक परिचित पड़ोसी के घर गए। उस घर के अन्य सब लोग मठ के विरोधी थे, अतः उस पड़ोसी मित्र ने शशि का वृतांत सुनकर खिड़की से एक पाव चावल, कुछ आलू और थोड़ा सा घृत दिया। उस दिन उसी से श्री रामकृष्ण को भोग दिया गया। अंत में प्रसाद के कुछ पिंड बनाकर शशि ने दानवों के घर में प्रवेश किया और भजन में निरत साधुओं में से प्रत्येक के मुख में एक एक पिंड घुसा दिया। साधुओं ने खाकर आनंद पूर्वक पूछा, ये अमृत तुझे कहां मिला शशि भाई। वे मानो मठ की मां थे। सबको सुख सुविधा देना, सभी विषयों की देखभाल करना और सारे सामानों को ठीक से रखना उनका स्वेच्छा से स्वीकृत कर्तव्य था और श्री रामकृष्ण की सेवा का प्रत्येक अंग जिससे त्रुटिहीन रूप से संपन्न हो उस ओर भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी।
2: पैसे के अभाव के कारण नौकर रखना संभव नहीं था, इसी से गृहस्थी के सारे कार्य उन लोगों को अपने हाथों से करना होता था। झाड़ू लगाना, पाखाना साफ करना, बर्तन मलना, पानी ढोना, यहाँ तक कि बीच बीच में रसोई आदि भी बनानी होती थी। नरेंद्र नाथ को तनिक भी अवकाश ना था। वे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर गुरु गंभीर ध्वनि से गुरु भाइयों को पुकार कर कहते, हे अमृत के पुत्रगण, अमृत का पान करने के लिए जागो जागो। फिर जप ध्यान आदि समाप्त कर वे सब एक कमरे में सम्मिलित हो जाते। नरेंद्र नाथ किसी दिन गीता का तो किसी दिन टॉमस कैंपिस लिखित ईशानुसरण का पाठ करते, कभी उन्हें अनुप्रमाणित करने के लिए कहते,
0: कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
1: या कभी गीता बंद करके कह उठते,
0: क्या होगा गीता पाठ करके। गीता शब्द 10 बार कहने से जो होता है वही गीता गीता गीता। त्यागी त्यागी त्यागी, चाहिए त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, त्याग ही गीता का आदर्श है।
1: इसके बाद दोपहर दैनिक कार्य, जप ध्यान, सत्संग आदि में बिता देने पर तीसरे पहर में शशि उन लोगों को खींचकर भोजन करने के लिए बिठा देते। थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर शाम तक इसी प्रकार 2 घंटों तक चलने वाली श्री रामकृष्ण की आरती शुरू होती और सभी उसमें सम्मिलित होते। आरती के समाप्त होने पर छत पर बैठकर देर रात तक सीताराम नाम गान या दूसरे प्रकार के भजन आदि चलते रहते।
2: सभी समान भाव से सभी कार्यों में सहयोग करते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक अध्ययन आदि में ही प्रायः सारा समय बिता देते। और घर के कामों में असुविधा होते देखकर जब आलोचना काफी मुखर हो जाती, तब नरेंद्र नाथ ने एक दिन क्षुब्ध होकर कहा,
3: तुम्हारा एक भाई यदि पढ़ने में ही मन लगा रहा है तो इतनी जलन क्यों? लाओ तुम्हारे सारे बर्तन, मैं अकेला मांज दूं।
2: व्यक्तिगत आलोचना भी बंद हो गई।
1: नरेंद्र नाथ के संगीत प्रेम की बात हम पहले भी कह चुके हैं। उनका उत्साह दूसरों में भी संचारित होता। शरद उनसे संगीत सीखते और काली सीखते वाद्य वादन, और उनके संगीत और संगत साथी अन्य कई लोग होते, खासकर बूढ़े गोपाल और तारकनाथ। गोपाल दादा बाजा तबला बजाते। पखावज बजाने वाले की कमी दूर करने के लिए काली ने उस्ताद की सहायता से यह विद्या थोड़ी बहुत सीख ली थी। बीच बीच में भक्तों के घर पर भी नरेंद्र नाथ के गाने की मजलिस लगती है।

0: भूतों का कमरा कभी कभी देश विदेश की अनेक विचारधाराओं के विवेचन, विश्लेषण, ग्रहण, त्याग, तुलना इत्यादि से झूम उठता। कांट, हेगेल, स्पेंसर आदि दार्शनिक गण, यहाँ तक कि नास्तिक भौतिकवादी और अज्ञेयवादी भी इस वाद विवाद से नहीं बचते। गीता, उपनिषद, तंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध मत, वैष्णव मत, शैव मत आदि अनेक विषय इस सभा के विवेचन प्रसंग में आ जाते थे। वस्तुतः वो घर एक शिक्षा केंद्र या महाविद्यालय में परिणित हो गया था और इस केंद्र के मध्य मणि थे नरेंद्रनाथ। विवेचना शुरू करने पर वे इस प्रकार किसी एक पक्ष में झुकाव दिखाते कि प्रायः अन्य सभी प्रतिपक्ष अविलंबन करने को विवश हो जाते। वे भी तर्क प्रस्तुत कर उन लोगों के मत का खंडन करते। फिर जब वे सब तर्क नहीं ढूंढ पाते तब उन लोगों के पक्ष को ही अपने मत से काट कर छिन्न छिन्न कर देते।
1: यदि यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है कि नहीं, तो नरेंद्रनाथ पूर्व पक्ष ग्रहण कर लेते और कहते ईश्वर नहीं है, वह मन की कल्पना मात्र है। फिर वे ही बाद में प्रमाणित करते कि ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है। इस प्रकार शंकर का दर्शन कभी नरेंद्र के पूर्व पक्ष के आघात से मिट्टी में मिल जाता और दूसरे ही क्षण उसके उत्तर के पक्ष में तर्क बल से खड़ा हो जाता था। साख्य, योग्य, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांता, इस षट दर्शन में नरेंद्र विलक्षण पंडित तो दिखते ही साथ साथ दूसरों का ज्ञान भंडार भी समृद्ध करते। फिर हिंदू धर्म के विभिन्न शाखाओं की रीति रिवाज, पूजा साधना आदि की भी चर्चा करते।
0: हीनयान और महायान, इन दोनों संप्रदायों की नव प्रकाशित अनेक पुस्तकों का उस अध्ययन कक्ष में अध्ययन और विवेचन होता। भारत के मध्यकालीन धार्मिक नेताओं के जीवन और उपदेशों से वहाँ घनिष्ठ परिचय प्राप्त हुआ। तदुपरांत ही ईसा मसीह ने उन लोगों के हृदय को आकृष्ट किया। साथ साथ बाइबल और ईशानुसरण आदि ग्रंथों का भी उन लोगों ने भली भांति अध्ययन कर लिया। आनुषंगिक रूप से ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक सेंट फ्रांसिस, इग्नेसियस लायला आदि संतों के जीवन और उपदेश का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। उन दिनों नरेंद्र नाथ ने प्रमदा बाबू को जाकर सारे पत्र लिखे थे। उससे ज्ञात होता है कि संस्कृत भाषा विशेषकर वैदिक शिक्षा के प्रति भी उन दिनों उन लोगों में विशेष आग्रह था।
1: नरेंद्र बीच बीच में भारतीय इतिहास अथवा समाज व्यवस्था की विवेचना से भी उन्मुख हो जाते। भारतीय सभ्यता की एकता कहाँ है? श्री रामचंद्र से लेकर के सम्राट अकबर तक भारत की संततियों ने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को संपुष्ट किया है आदि विषयों के विचार में वे दिनों दिन निरत रहते। विदेशों का इतिहास, जैसे गिबिन की रोम साम्राज्य के अधपतन की कहानी, कालाइन का फ्रांस की क्रांति का इतिहास, उन लोगों की विवेचना में एक विशिष्ट स्थान पाता। जॉन ऑफ आर्क के जीवनी की वे विवेचना करते और फिर भारतीय वीरांगना झांसी की रानी का भी वे अत्यधिक सम्मान करते।
0: उस समय विभिन्न धर्मों के बड़े बड़े पर्वों को सादर मनाया जाता, जैसे बड़े दिन की रात में धूनी के चारों ओर अधलेटी अवस्था में ईसा मसीह के अविभाव और उपदेशों के प्रचार का प्रसंग चलता। एक दिन गुड फ्राइडे के उपलक्ष में उन लोगों ने सारा दिन उपवास कर व्यतीत किया। उसी समय दरवाजे पर एक यूरोपीय अतिथि का कंठ स्वर सुनाई पड़ा, कौन है ईसा की दुहाई, दरवाजा खोलो। तभी द्वार खोलकर सभी उन्हें घेर कर बैठ गए। इस शुभ दिन में एक ईसाई के मुंह से ईसा मसीह की कहानी सुनेंगे, किंतु उस व्यक्ति ने कहा कि वे सिलेक्शन आर्मी का सदस्य है और वो सब मात्र दो पर्वों को मनाते हैं, ईसा मसीह और जनरल बूथ का जन्मदिन। गुड फ्राइडे आदि के संबंध में वे कुछ ना कह सकेगा। सन्यासियों ने आश्चर्यचकित होकर कहा,
2: ये क्या, जिस दिन आपके भगवान ने क्रूस पे धोकर शरीर त्याग किया उस दिन की कहानी भी नहीं जानते?
0: और वे विदेशी लज्जित होकर जल्दी से चला गया।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसका effect कितना लंबा जाएगा? तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं, उसका brain पर असर पड़ रहा है। ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अगरबत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती।

चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो, इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं, भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: कहा जाता है दोस्तों कि जहां चाहा है वहां राह निकल ही आती है। चाहे कितने भी अंधेरे में आप हो, अगर अंदर में वो चाहत है रोशनी के प्रति, तो उजाला आ ही जाता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती हैं जिनके जीवन में उनकी चाहत ने

0: उनकी श्रेष्ठ मनोकांक्षा ने न केवल उन्हें हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया, लेकिन उनके साथ साथ अनेकों के जीवन में उजाला लाने का एक माध्यम भी उन्हें बनाया है। आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं नेहा पवस्कर जी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सम्मानित नेहा पवस्कर जी दृष्टि बाधित होते हुए भी अपने आप में एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने भारत देश का नाम न जाने कितने ही अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में उजागर किया है। नेहा जी, आपका हमारे आज के सशस्त्र भारत कार्यक्रम के शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज समय निकाला और आज आप हमारे बीच आए हैं, आपका दिल से स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: नेहा जी, आपका नाम पहले रत्न प्रभा था और फिर अभी आपका नाम नेहा है, लेकिन रत्न प्रभा नाम एक जैसे रत्न होता है, एक डायमंड होता है, उसकी प्रभा होती है, उसका एक रोशनी होता है जो चारों तरफ बिखेरता है और जो चारों तरफ से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज आप में वो हुनर है, आप में वो हौसला है, आपका जो आज जो आप कर रहे हैं उससे पूरा देश आपकी ओर आकर्षित होता है। तो मैं समझता हूँ आपके माता पिता ने जो आपको नाम दिया रत्न प्रभा, वो चरितार्थ हुआ है और आप आज पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्या लगता है आपको, आप में ऐसी वो कौन सी खास बात है जो आप हीरे की चमक को बढ़ाता है? अगर आप एक हीरा है, रत्न है, तो आपकी प्रभा क्या है? क्या लगता है आपका वो गुण कौन सा है जिसकी वजह से आप आज जो मुकाम पे हैं उस मुकाम पे आप पहुंच पाई हैं?
2: ओम शांति। मेरा अपना अच्छा नाम का आपने विश्लेषण किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक हमारे यहाँ एक परंपरा है कि शादी के बाद नाम बदला जाता है, तो मेरे शादी के पहले का ये नाम है रत्न प्रभा और हमारे पापा का मीन्स फादर का नाम रहता है और बाद में सर नेम रहता है। ये महाराष्ट्रीयन परंपरा है और शादी के बाद हस्बैंड नाम चेंज करता है और उनके हस्बैंड के साथ वो नाम लिख के उनका सरनेम लगाया जाता है। तो लेकिन आपने जो बताया तो मैं सचमुच धन्य हो गई कि आपने मेरे माता पिता को भी धन्य करवाया ये बता के कि मेरे नाम का मैंने सार्थक किया है। और मैं बचपन से ही यही चाहती थी कि समाज में जो महिलाओं के प्रति जो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि महिला कुछ नहीं है, पुरुष ही सब कुछ है, तो वो बचपन से हमें बताया गया कि महिलाओं से पुरुष वर्चस्व है। तो मैं ये और हम चार बहना थे हमारे घर में और एक भाई था हमारा, तो था यानी अभी मैं हमारा भाई नहीं है हमारे बीच, तो हम जो चार बहना थे उसमें से हम दो बहना ब्लाइंड है। अनफॉर्चुनेटली हमारा बचपन में कुछ भी हमारे आंखों में एक बीमारी है, उसका नाम है मैकुलरा डीजेनरेशन। तो ये बीमारी 1,00,000 लोगों में एक परिवार को हो जाती है और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे परिवार के हम दो बहनों को हो गई। लेकिन मैं उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूंगी, शायद भगवान ने ये कुछ विशेष किया होगा कि हमारी हमको ही वो जो 1,00,000 में जो एक व्यक्ति परिवार को दिया है बीमारी, वो मेरे और मेरे सिस्टर के आंखों को दिया और उससे ही हमने प्रेरणा ली। ये मैं आपको मीन्स भगवान का मेरे पास और बहुत ही आशीष है कि उससे प्रेरणा रह के मैंने कि समाज की कोई भी महिला किसी से कम नहीं है और अंधा महिला है तो महिला तो कम नहीं है, लेकिन अंधा दिव्यांग जो है तो वो महिला भी किसी से कम नहीं है। आपने हमें इस प्रोग्राम में जो विशेष महिला करके बुलाया तो आपको मालूम होगा कि हमने वैली क्रॉसिंग गिरियारोहण ये क्षेत्र में मेरा 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। बचपन से हमें नहीं दिख, हम ब्लाइंड है करके हमें घर से बाहर जाने के लिए भी या और कहाँ भी अकेला नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, ऐसी कौन सी भी बात करनी नहीं जिससे हमको इंजरी हो जाए, हमारा अपघात हो जाएगी। इसलिए बहुत हमारे पेरेंट्स हमें संभालते थे, लेकिन हम तो चाहते थे कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे समाज में जो महिलाओं के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। और भगवान ने उसके लिए हमें मदद भी की और हमने जो भी चैलेंज स्वीकारा वो सक्सेस करने के लिए भगवान ने हमें प्रेरणा दी, हमें शक्ति दी और हमने वो साबित भी करके दिखाया है कि बहुत, हाँ बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि एक ब्लाइंड है, विजुअली चैलेंज है, तो उनको चलने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैं ब्लाइंड होने के बावजूद मैंने वैली क्रॉसिंग ये एडवेंचर में मेरा 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है
1: जी। मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया कि हीरे को चाहे कितने भी अंधकार में कोई भी छुपाने की कोशिश करे, एक पतली सी किरण रोशनी की काफी होती है उस हीरे से उसकी प्रभा को निकालने के लिए, और उसकी प्रभा से पूरा कमरा तो क्या पूरा जहान रोशन हो जाता है। इसलिए आपने जो कहा कि भले दिव्यांगता आई आपके परिवार में, आपके परिवार को एक कठिन समय देखना पड़ा, लेकिन आपके अंदर की जो निष्ठा थी कि परमात्मा या ऊपर वाला मुझे थोड़ी भी मदद करे तो मैं अपने हौसले से आगे बढ़ सकती हूँ, और लोगों के बीच की ये जो गलत फहमी है कि दिव्यांगता या किसी भी प्रकार का अपघात जो है जीवन में बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट करता है, उसको आपने बहुत बखूबी गलत सिद्ध किया कि ये तो कोई बात नहीं है, हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। और केवल आप आगे ही नहीं बढ़ी, आपने विश्व के कई कीर्तिमानों को तोड़ा भी है और नए कीर्तिमान बनाए भी हैं। तो इसके लिए तो हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
2: धन्यवाद।
1: नेहा जी, मुझे एक चीज आपसे जानना था कि जब आपको इन कीर्तिमानों से और कितने ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से और सम्मानों से नवाजा जाता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? मतलब अच्छा महसूस होता तो होगा ही, लेकिन कौन सी वो एक बात है जो आपके दिल को छू जाती है हर बार जब कोई आपके कर्तव्यों को, जब कोई आपके एक्शंस को, आपके उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि भाई ये है आयरन लेडी प्राइड इंडिया की। जैसे फ्रांस से आपको ये टाइटल प्राप्त हुआ कि आप इंडिया की आयरन लेडी हैं, तो जब कोई दूसरा देश भारत देश की एक बेटी को ऐसे ऐसे कीर्तिमान और नाम और रिकॉर्ड से नवाजता है, तो एक भारतीय होने के नाते आपको कैसा महसूस होता है?
2: सर, आपको ये बताने के लिए और सभी श्रोताओं को बताने के लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं जिस गांव से बिलोंग्स करती हूँ, मैं सिंधुदुर्ग जिला के सरंबल गांव से बिलोंग करती हूँ, कुडाल तालुका है हमारा। तो उस विलेज में हर घर का एक आदमी मिलिट्री में है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि गांव के हर घर से एक व्यक्ति जो है वो मिलिट्री में सेवा करता है।
2: ये फेमस है हमारा गांव, और उसी गांव की मैं बच्ची हूँ और मेरे मम्मी पापा की मैं बड़ी बेटी हूँ। तो मैं बचपन से वो मैंने देखा है, मेरे चाचा मिलिट्री में है, मेरे मामा मिलिट्री में है, और मेरी भी चाहत थी कि मुझे भी मिलिट्री में जाना है। तो मैं जब भी 10 साल की हो गई, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड मीन सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, तब से ऐसा मालूम पड़ा कि मेरा विजन प्रॉब्लम है। तो मुझे फिर मैं बोलती थी चाचा को मुझे भी मिलिट्री में आना है, तो वो बोलते कि नहीं, उधर मीन्स मेरे आंखों की परेशानी है, उनको मालूम था ना, तो बोले ऐसे लोगों के नहीं

0: मुझे ये दिव्यांगता आई, फिर मैं मायूस तो हो गई थी, लेकिन मेरे में जिद थी कि नहीं, मैं कुछ भी करके भारत देश का नाम और मैं भारतीय होने का फर्ज निभाऊंगी। और इस प्रकार मैंने ऐसे ऐसे कर्तृत्व किए कि मुझे ये आयरन लेडी प्राइड इंडिया ये किताब फ्रांस ने दिया। उसके बाद तो मैं सचमुच, अभी मुझे जिंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया है और मैंने जो मेरा भारतीय होने का कर्तव्य है वो मैंने एक ब्लाइंड लेडी होने के बावजूद ये सब अलग अलग जागतिक विक्रम करके मैंने सबके सामने एक प्रेरणा रखी है कि आप सब महिलाओं को भी बताया है और समाज को भी कि महिला किसी से कम नहीं है, वो अगर से थान ले तो कुछ भी कर सकती है
1: जी। और आपने ना केवल भारत देश को लेकिन पूरी नारी शक्ति को सम्मानित किया है, क्योंकि भारत को भी हम माता ही कहते हैं। और आज पूरे विश्व में आपने ये खिताब हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जहाँ नारी शक्ति अपने अंदर के शक्ति को पहचान ले फिर कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला कि मैं दिव्यांगता के साथ रहते हुए भी मैंने मेरे देश के प्रति कर्तव्य को निभाया कि मैंने मेरे देश की छवि को पूरे विश्व के सामने उज्जवल किया है। तो नेहा जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा तीसरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो दिव्यांग हो या ना हो, लेकिन उसके पास भी कई मौके आते होंगे जब वो कोई बड़ा काम करके अपने देश का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन आम तौर पे हर एक के पास ऐसे रोज बड़े मौके नहीं आते हैं। ज्यादातर लोग दिन भर अपना काम करते हैं, अपने घर पे जाते हैं, अपना घर संभालते हैं और जो उनको जॉब मिली हुई है वो करते हैं। क्या ऐसे हर कोई अपने देश के लिए कुछ कर सकता है? क्या करे, कैसे जीवन को जिए कि वो देश को भी रोशन कर सकता है, अपने देश के प्रति कर्तव्य निभा सकता है?
0: मैंने देखो, आप अगर से ठान ले, यही मैंने बताया कि आप अगर से ठान ले कि मेरे भारत देश के लिए मुझे कुछ करना है। और हमेशा मैंने सब चैलेंज स्वीकारा है कि मैं किसी में राहत तकती नहीं। मुझे जब भी मालूम पड़ा कि नॉर्मल लोगों के लिए ये सब है एक्टिविटीज, तो मैंने उनको जाके बोला मैं करना चाहती हूँ, तो मुझे एक मौका दो अगर से। और आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि भगवान ने हमेशा मुझे साथ दिया है, जो भी मैंने, क्योंकि अभी जो भी मैंने एडवेंचर किया है वो किसी भी हैंडीकैप या दिव्यांगों के लिए इसके पहले अलाव नहीं था। देखो, स्विमिंग के लिए जब भी मैं पहले बार स्विमिंग के लिए परमिशन लेने गई, जब भी उन्होंने बोला अरे आप ब्लाइंड है, नहीं आप स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमको रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट से भी समाज से भी, तो मैंने उनको बोला कि देखो सब लोग जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उनके साथ बहुत सारी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, वो दिव्यांग ना होने पर भी उनके उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो तभी तो मुझे आप एक मौका दो। और मैंने हर बार यही किया कि जहां भी मुझे रोका गया कि आप ये नहीं कर सकते, ब्लाइंड है और महिला है इसलिए, तभी मैंने उनको बोल दिया है आप लिख के लो मुझसे कि ये मैं मेरे जवाबदारी पे कर रही हूँ, मैं अपने जिम्मेदारी पे ये सब चैलेंज कर रही हूँ और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा अगर से कुछ दुर्घटना होती है। तो वो आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेकिंग के लिए गए हैं, हिमालय में गए हैं या वैली क्रॉसिंग करने गए हैं, उनका उनकी दुर्घटना में मौत हो गई है, लेकिन आपने बहुत कम बार सुना होगा कि इस सब दुर्घटना में कोई हैंडीकैप या दिव्यांग वो दुर्घटना में गुजर गया है। तो हम आपको ये भगवान पे जरूर विश्वास, मुझे तो 100% है, 99% भी नहीं, कि भगवान हमें बहुत बार हमारे साथ रहता है जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं। और जब भी ये समाज को जब प्रेरणादायी काम करते हैं तो मीन्स अपने साथ आप दूसरों का भी भला या उसमें कुछ भी

0: अच्छा सोच के आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको भगवान हमेशा साथ देता है, ये मेरा तजुर्बा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है
1: जी। तो नेहा जी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, आप अपने तजुर्बे से ये कहना चाहती हैं कि अगर एक साधारण देश का एक साधारण नागरिक भी अगर देश के लिए कुछ महान करना चाहता है, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ महान करना चाहता है, तो उसे केवल दो चीजों की जरूरत है। एक तो अंदर की जिद कि मुझे करना ही है, और दूसरा परमात्मा पे निश्चय। कि कहावत भी है ना कि एक कदम आप हिम्मत का बढ़ाए तो हजार कदम मदद की ऊपर वाला देता ही है। तो मतलब आपने, आपका मैसेज यही है हमारे श्रोताओं के लिए कि आप अगर कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, तो हिम्मत का सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है, बाकी ऊपर वाला आपके लिए हजार कदम की मदद लेके बैठा हुआ है। ये बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने नेहा जी, आपको उसके लिए तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आपने अपने अंदर एक आपकी जिद थी, आप में एक हुनर था, साथ साथ परमात्मा का आपके ऊपर आशीष था कि आपने जो सोचा था वो करके दिखाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आप न केवल खुद ये सारे काम कर रही हैं, लेकिन आपने औरों को भी जो किसी न किसी प्रकार से विकलांग है या दिव्यांग है, आपने उनको भी ट्रेन किया है इस प्रकार की क्रियाओं में, जैसे कि स्विमिंग हुआ या वैली क्रॉसिंग हुआ या जो भी, उसमें आपने उनको भी सिखाया है। तो अपने अंदर तो आपको आत्मविश्वास था, लेकिन किसी और के अंदर आत्मविश्वास जगा कर उनको ऐसे चैलेंजिंग काम कराना, ये तो एक डिफिकल्ट चीज है, ये कैसे किया आपने?
0: सर आपको ये शायद मेरे को गॉड गिफ्ट होगा कि मैं जब भी किसी को बोलती हूँ कि ये आप करो, तो वो उस करने के लिए जब तैयार होता है ना, तो वही गॉड गिफ्ट है कि मैं सामने वाले को विश्वास करके कोई चीज करना, तो शायद ये मेरा गॉड गिफ्ट है। और मैंने उनको पूरा सपोर्ट किया, जिनको भी ये नया अलग से कुछ करना है। आपको मैं बताने के लिए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत देश का मैंने 3 बार रिप्रेजेंटेशन किया है स्पोर्ट्स में। एक चेस में किया है मैंने, इंग्लैंड में 2004 में इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है मैंने, भारत देश का रिप्रेजेंटेशन किया है चेस के लिए। उसके बाद नेपाल में एथलेटिक्स के लिए गई हूँ, तो वहाँ तो मैंने ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप और ब्लाइंड, ये दो टीम लेके वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो अभी 2018 में मैंने 1976 से जो ओलंपिक गेम है गोल बॉल, जिसमें अपने भारत देश ने अभी तक नॉर्मल लोगों ने भी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, वो गेम के लिए हम 6 ब्लाइंड महिला जाके उस महिला इंटरनेशनल गोल्ड बॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया है। क्योंकि अगर से आप कौन से भी कंपटीशन में आप नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन जाएंगे तो अपने देश का नाम वहां लिख के आते हैं। तो वो मुझे खुशी है कि मैंने 3 बार अपने भारत देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स में लिखा है ब्लाइंड होने के बावजूद। इसके लिए मेरे जो गवर्नमेंट है उसने हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद हमने रिप्रेजेंट करके अभी कोई भी इंडियन ये तीनों स्पोर्ट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसकी मुझे खुशी हो रही कि वो जाके मैं खेल के आई, उससे ज्यादा कि अभी भारत देश उस गेम्स में रिप्रेजेंट कर सकता है। और महिलाओं को हमेशा कौन से भी कंपटीशन में आप जब भी देखेंगे तो स्टार्टिंग में पहले जेंट्स जाते हैं, उसके बाद महिलाओं के लिए फिर वो लोग अपॉर्चुनिटी संधि दे रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये सब जगह मैंने मीन्स जो गोल बॉल कॉम्पिटिशन में हमने पहले बार भारत के इतिहास में पहले बार अंध महिलाओं की टीम पार्टिसिपेट की है।
1: तो इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं को कि मन में ठान लो और आगे बढ़ो, फिर परमात्मा से आपको इतनी मदद मिलेगी कि कोई भी काम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि ये आपको लगता है कि आपका गॉड गिफ्ट है कि आप किसी से कहती हैं तो उसके अंदर भी वो उमंग उत्साह आ जाता है, तो मैं समझता हूँ ऐसा गॉड गिफ्ट पाना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि आपके कहने मात्र से सामने वाले व्यक्ति में वो जोश वो हिम्मत आ जाती है कि वो भी ऐसे चैलेंजिंग काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और तीसरा मैं आपको मुबारक देना चाहूंगा कि भाई आपने देश के लिए एक नया रास्ता खोल दिया कि गोल बॉल में अब जो भी चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपने आपके हिम्मत ने वो दरवाजा खोल दिया जो पहले बंद था हमारे देश के लिए। और मैं समझता हूँ इसके बाद कई लोग गोल बॉल गोल बॉल को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। जी नेहा जी बोलिए।
0: मुझे एक बात और बतानी है, जब गोल बॉल खेलने के लिए हम गए तो ना गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, उसका मुझे दुख भी नहीं है क्योंकि उसके मुझे यानी उन्होंने वही चैलेंज हमारे लिए था कि लोग ऐसा सोचते हैं ना ये मुझे हेल्प करेगा वो मुझे हेल्प करेगा तो मैं ये करूंगी, और हमेशा ये बातें भी बनाते हैं, उसने मुझे ये नहीं किया इसलिए मैंने ये नहीं किया। लेकिन भारत सरकार ने हमको नहीं सपोर्ट किया उस, इसलिए हमने कोच और मैनेजर नहीं लेके गए क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। हम उसमें से 3 लड़कियां हम जॉब करते थे तो हमने ऑफिस से कर्जा लेके ये टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट किया, और 3 लड़कियों को हमने छोटे छोटे डोनर अरेंज किए क्योंकि वो जॉबलेस थे। तो ये मैं आपको ये स्पेशली श्रोताओं को बता रही हूँ कि हम 6 के 6 ब्लाइंड लड़कियां अपना भारत देश छोड़ के थाईलैंड में गए, ना उनकी हमें भाषा मालूम है ना कोई हम किसी से उधर पहचानते हैं, उसके बावजूद सिर्फ मेरे भरोसे ये सब महिला वो के पेरेंट्स ने उस टूर्नामेंट के लिए हमको भेजा। और मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि वहां जाने के बाद सिर्फ उनके लेटर पे जो फोन नंबर था उस, क्योंकि उधर जाने के बाद हमारे सबके फोन बंद हो गए।
1: जी जी।
0: और हम जब इंडिया छोड़ते तो अपना इंडिया का सिम बंद हो जाता है, उधर जाने के बाद जो विमान के उतरने के बाद एक हमको असिस्टेंट दिया था गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। हम 6 ब्लाइंड लड़कियां जा रही थी और अपना सामान अपने को वो उधर लगेज में जाता है वो भी ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे किसी को, हमको 6 लड़कियों को दिखता नहीं है अपना सामान किसी के मदद के सिवा, क्योंकि उसके ऊपर टैग लगा होता है नाम लिखा रहता है। तो उधर जाने के बाद वो मैम जो थी उसको सिर्फ हमने बताया कि ये पेपर जो निकाला जो आया हुआ था हमको उसके ऊपर एक फोन नंबर था, उसको सिर्फ बोला कि दिस इतना ही, उनका भाषा भी हमको नहीं आ रहा था और उनको भी इंग्लिश वगैरह इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला प्लीज फोन दिस नंबर, मत उसने अपने मोबाइल से वो नंबर पे फोन करके अपने भाषा में बोल दिया कि उसके पूरे संवाद में सिर्फ इतना समझ में आया कि इंडियन लेडीज टीम, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया, और सिर्फ वो कि हाँ हमारे बारे में ही ये बोल रही है। और उसने बोला कि वेट हाफ एन आवर, इतना इंग्लिश बोला, और उन्होंने जाके हमारा सबका लगेज हमको दिया, उनका हमारा वो हाफ एन आवर वैन आया तब तक वो हमारे साथ थे और हमको वैन में बिठा के दिया। अभी देखो उधर जिधर जा रहे उधर भी हमको कुछ मालूम नहीं है किधर लेके जा रहे वो लोग, क्योंकि उनका भाषा भी नहीं समझ में आता है। उधर जाने के बाद जो हमारे जो चंडीगढ़ से हमारे आर्बिटर आए थे वो वहां मिल गए, लेकिन तब तक हम 6 लड़कियां सिर्फ परमात्मा के विश्वास पे और नेहा के साथ आए करके उनके पेरेंट्स ने हम सब वहां सुखरूप पहुंच के वापस हम वहां हम पार्टिसिपेट करने के बाद भी हमको इतना वो लोग ने अप्रिशिएट किया कि इनका सभी देश के लोग जो आए थे उनको पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, उनका खाना पीना रहना आना जाना सब खर्चा उनके गवर्नमेंट ने किया था, और उसके बाद उनको बाकी सब फैसिलिटीज भी मिलती है जब आप इंटरनेशनल अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग बोले कि इंडिया इनको कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है उसके बावजूद इनके मन में अपने देश के लिए जो प्रेम है यहाँ दिखाई देता है, वो सब जो ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड बैंकॉक यहाँ के सब लोग जो आए थे फॉरेन से, वो फॉरेनर लोग सब हमें आके मिलके हमें आशीष दे रहे कि आप कितना देश, ये भी एक देश प्रेम है। तो मुझे सचमुच मीन्स आपने ये आप मुझे भारत का सम्मान के इसमें आप हमारा इंटरव्यू ले रहे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे मन की बात आपको बता सकती हूँ और सब श्रोताओं को भी बता सकती हूँ कि जो मुझे इतने 2018 जाके आई हूँ, तो उसके बाद मुझे बताना है मैं कि मुझे मैंने ये क्यों किया कि अपना 80,000 रुपया हर एक को हमको खर्चा आया, उसके बावजूद हमने ये किया, लेकिन वो पैसा क्या आज नहीं तो कल हम कमा सकते हैं, लेकिन जो हमने भारत देश का रिप्रेजेंटेशन किया और हमारे भारत का वहाँ सम्मान किया, वो उसके लिए मुझे भगवान को सचमुच थैंक्स बोलना है कि जिन्होंने ये मौका मुझे दिया ये महिलाओं को लेके जाने का, और उनको भी वो जो सम्मान दिया तो उनको भी उससे बहुत वो खुश है। अभी अभी ये संडे हमारा रोटरी क्लब ने, हम जो इंटरनेशनल गोल बॉल प्लेयर थे, हमारा बड़ा एक सम्मान किया कि एसके सोमैया ग्राउंड में। तो मींस देखो ये सब विधि लिखित है बोलते वो ऐसा है कि सच आपका इंटरव्यू लेना, उधर मुझे हमें इतने साल के बाद सम्मान करना, ये सब मींस ये सब परमात्मा ने लिखा हुआ है कि ये सब हमारा हो रहा है
1: जी। और मैं समझता हूँ परमात्मा ने तो केवल आपको वरदानों से भरा हुआ है, लिख तो आप ही रहे हैं अपना भविष्य, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने अपने हौसले से दूसरों के अंदर उमंग उत्साह भरा है, इसलिए आपको भी इसका बहुत श्रेय जाता है। मैं ये समझता हूँ कि भले शुरुआत में सरकार का आपको आपको पहचानने में कुछ कम रह गया होगा सरकार की तरफ से या जो भी, लेकिन दिसंबर में जब राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया तब आपको कैसे महसूस हुआ? मुझे लगता है उस समय तो जरूर दिल में ये आया होगा कि चलो पहले नहीं पहचाना हो लेकिन अभी तो पहचान रहे हैं, क्या कैसा रहा होगा आपको?
0: सबसे पहला वो उनके मींस हमने अप्लाई किया था तो कोई ब्लाइंड ये सब चीज मींस वैली क्रॉसिंग या एडवेंचर या हिमालय में जाना, ट्रेकिंग करना, ये सब ब्लाइंड कर सकता है, उनको विश्वास ही नहीं था
1: जी।
0: कि उन्होंने 2 साल तक वो मेरा एप्लीकेशन बाजू में ही रखा था। तीसरे साल एक प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ विजुअली चैलेंज एक संस्था है दिल्ली की, उन्होंने मुझे बोला कि हम पूछेंगे उनको कि ये क्या क्यों ये आपको ये राष्ट्रपति पुरस्कार डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो मैं बोले ऐसा हम नहीं बोल सकते ना कि हमें ये सम्मान दे दो करके जी। तो जब भी हम उधर जाके हमने इंक्वायरी किया तो उन्होंने बोला, वो जो सर मुझे हमें अटेंड किया वो बोलते हैं क्या मैडम, कोई भी ब्लाइंड है उसको चलने के लिए किसी मदद की जरूरत होती है, और आप क्या बोलते हैं वैली क्रॉसिंग आपको समझता है क्या, एक बड़ी खाई रहती है उसके ऊपर एक रोप से क्रॉसिंग करना होता है, तो वो जेंट्स का तो हम समझ सकते हैं, लेडीज कैसा जा सकती है
1: जी।
0: लेडीज को तो कितने मीन्स एक तो वो जा भी नहीं सकती और उनके पेरेंट्स मीन्स कोई उनको समाज भी अलाउ नहीं करेगा ये सब ऐसे एडवेंचर करने के लिए, तो तब तक उन्होंने ऊपर देखा नहीं था कि सामने कौन है करके, सिर्फ वो सुन रहे थे नीचे कि हमने फाइल बताई ना हमारी और सब बताए। बाद में उनको मैंने मोबाइल में मेरा वीडियो था, वो लाइव वीडियो निकाला हुआ था, तो मैंने वो मेरे व्हाट्सएप सुन के वीडियो में जाके उनको वीडियो बताया, तो वीडियो देखने के तब उनको क्या मन में आया तो ऊपर उन्होंने मेरे पास देखा, तो एक बार मुझे देख रहे थे एक बार वीडियो को देख रहे थे कि अरे ये लेडी तो यही है तो कि ये अपने को सिद्ध करना है कि हम ये सब करके लोगों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करना है, और यही मेरा जीवन का ध्येय है कि कोई जो जिनके मन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका उनको दूर करना है कि किसी को हाँ कमजोर मत समझो, हर एक के अंदर भगवान ने दिया हुआ एक है स्फूर्ति है प्रेरणा है,
1: जो शक्ति परमात्मा ने हर एक में दी हुई है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, दिव्यांग हो साधारण हो, जो भी है हर एक में परमात्मा ने वो शक्ति भरी हुई है, सिर्फ रुकावट यहाँ आती है अपने मन की रुकावट आती है, जहाँ हम अपने मन से हार जाते हैं वहां पर ही हमारी हार होती है, इसलिए कहते भी है ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और आपको अपने अंदर इतना निश्चय था इसलिए आपके निश्चय ने आपको आगे बढ़ाया है। तो इसलिए नेहा जी मैं इस पूरे इंटरव्यू को समाप्त करने के लिए कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, ये हमारा इंटरेस्टिंग राउंड है, इसको हम रैपिड फायर कहते हैं। तो इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको केवल एक शब्द में इसका जवाब देना होगा, या तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में, ठीक है? आप तैयार हैं? आपने तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लिए हैं, मैं समझता हूँ ये रैपिड फायर आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज है ही नहीं।
0: भगवान का मेरे को पूरा साथ रहेगा उस सवाल को जवाब देने के लिए।
1: बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे नेहा जी कि सबसे पहली बार जब आप वैली क्रॉसिंग कर रही थी तो आपके दिल में क्या था, आपकी स्थिति, मन की स्थिति कैसी थी, अगर एक शब्द में बोलना हो तो?
0: मैं खुश थी।
1: क्या बात है, खुशी जैसी खुराक नहीं, आप खुश थी इसलिए आपने सक्सेसफुली उसको निभा लिया। दूसरा सवाल, जब आपको भारत का सम्मान प्राप्त हुआ तब आपको कैसा महसूस हुआ?
0: मैं समाज की प्रेरणा हूँ, ये मेरा मीन्स हर बार मुझे खुशी ही हुई।
1: अच्छा, कर्तव्य क्या है आपके हिसाब से?
0: अपने ऐसे कर्म करो कि जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, ये अपना कर्तव्य है, परम कर्तव्य।
1: वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। भारतीयता क्या है, देशभक्ति या भारतीयता क्या है?
0: समर्पण।
1: ब्यूटीफुल,
0: आत्मसमर्पण।
1: भारत क्या है?
0: सम्मान है।
1: वाओ, अगर हर देशवासी इस चीज को समझ जाए कि मेरा भारत मेरा सम्मान है, मेरा गौरव है, तो मैं समझता हूँ वो सबसे ज्यादा धनवान होगा जिसके अंदर ये भावना होगी। तो मेरा आखिरी सवाल नेहा जी आपसे ये है, नेहा क्या है, नेहा या नेहा, नेहा क्या है या कौन है?
0: नेहा एक दृष्टिकोण है।
1: वाओ, वंडरफुल। मैं समझता हूँ भगवान आपका असिस्टेंट होगा, क्योंकि हर जगह हर सवाल में आपने उसको, आपने पहले भी बोला था कि मैं भगवान को यहाँ लेके आती हूँ और मैं देखती हूँ मैं रैपिड फायर राउंड को कैसे निभाती हूँ, एंड यू डिड इट सो वेल, वंडरफुल। मतलब मुझे तो लगता है भगवान आपका असिस्टेंट है, नहीं तो इतना अच्छा इतना पावरफुल जवाब कि हर एक शब्द से मुझे इतना एनर्जी और शक्ति का अनुभव हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों को भी सुनते हुए बहुत गर्व बहुत एनर्जी फील हो रही है। आप
0: एक भगवान का अंश ही है ना सर?
1: जी जी। तो नेहा जी, आपके इन छोटे छोटे लेकिन जबरदस्त और पावरफुल जवाबों ने इस शो का तो रंग ही एकदम निखार दिया है, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई मैसेज है जो आप पूरे देशवासियों को पूरे श्रोता साथियों को देना चाहते हैं तो यशस्वी भारत के इस मंच से आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
0: परमात्मा आपके अंदर है, आप कुछ भी अच्छा करो तो आपको परमात्मा हमेशा सपोर्ट करेगा ही।
1: जी, तो साथियों सुना आपने कि अगर कुछ भी शुभ करना है, कुछ भी अच्छा करना है तो परमात्मा आपको मदद जरूर करेगा। नेहा जी, आपके इस सशक्तिकरण करने जैसे या आपके इस प्रेरणादायी शब्दों से मैं समझता हूँ प्रत्येक श्रोता आज अपने को बहुत बहुत धनवान महसूस कर रहा है कि आपके रत्न प्रभा जैसे नाम की चमक और आपके नेहा जो कि दृष्टिकोण है, एक नया दृष्टिकोण है जो जीवन को बदल सकता है, जो देश को बदल सकता है, ऐसे दृष्टिकोण से आपने हमको अवगत कराया, हमें देश की उस बेटी से मिलने का मौका दिया जिस बेटी ने हर समय हर श्वास केवल देश के लिए ही जीवन जिया है। तो ऐसे नेहा जी आपको हमारे श्रोता साथियों की तरफ से, रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से और यशस्वी भारत टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय, कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं आपके।
0: धन्यवाद सर, जय भारत।
1: जय हिंद।

0: अहो ऐकलत का, हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: मंगलयान भारत की शान।
2: लेखिका सुधाकुरी।
3: पात्र परिचय
4: उन्नति
1: वेदांत
5: आदित्य
6: दृष्टि
7: सैंडी
8: पंकज
9: आकाश
10: आदित्य प्रकाश
11: यश।
12: कितने मजे आए हैं इस बार की दिवाली मनाने में। मुझे तो ढेर सारे पैसे मिले सब बड़ों से पूजा के बाद।
13: मुझे तो हर साल मम्मी नए कपड़े भी लेके देती है।
14: मुझे भी, अब हम फटाके तो बिल्कुल भी नहीं चलाते।
1: क्यों, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या?
14: नहीं, दुर्घटना तो नहीं। हाँ, पर एक तो प्रदूषण का ख्याल आता है। साथ में मैंने सुना है कि जो लोग फटाके बनाते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाता है।
15: कहते हैं उनके हाथों में छाले और कई तरह के त्वचा के रोग हो जाते हैं।
16: मेरी मम्मी तो कहती हैं कि अगर मैं पटाखे नहीं खरीदूंगा तो वो मेरी पसंद की कोई भी चीज उन पैसों से खरीद लेंगी।
5: अच्छा, तो तुमने इस बार क्या लिया था?
16: इस बार मैंने एक साइंस के फैक्ट की बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बुक ली है, जिसमें हमारे यूनिवर्स के बारे में डिटेल में सब समझाया हुआ है।
12: तुम्हें कब से अंतरिक्ष में दिलचस्पी आने लगी?
13: अरे वो तो मुझे हमेशा से ही थी, पर अब जब से हमारे देश ने मंगलयान अंतरिक्ष में भेजा तब से।
14: मैं बताऊं क्या, अभी दीदी आ रही हैं, उन्हें चंद्रयान के बारे में बहुत कुछ पता है।
1: चंद्रयान या मंगलयान?
14: ओह सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है मंगलयान। चंद्रयान तो हमने 2008 अक्टूबर में भेजा था और इसने 2009 अगस्त तक ऑपरेट किया था।
1: यह भी वहीं से भेजा गया था जहां से मंगलयान भेजा गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, नेलोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर की ओर।
15: और क्या, उसी से तो पता चला था कि चांद पर पानी है।
16: मैंने कहीं पढ़ा था कि चंद्रयान ने 312 दिनों तक ऑपरेट किया था, जबकि उसे 2 सालों तक के लिए तैयार किया गया था।
5: पर कहते हैं इस मिशन ने अपने 95% तक वो सब उद्देश्य पूरे कर लिए थे जो प्लान किए थे।
12: पर मंगलयान को भेजने का कारण क्या है?
13: पता नहीं, ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए होगा।
14: आ गई दीदी।
1: सब खेलेंगे कोई नई गेम।
15: उनसे चंद्रयान, ओह मेरा मतलब है मंगलयान के बारे में नहीं पूछना क्या?
10: हाँ हाँ ठीक है। आहा, यहाँ तो बड़ी रौनक है, लगता है तुम सबको भाई दूज की छुट्टी है।
5: दीदी हम सब आपकी ही वेट कर रहे थे, प्लीज मंगलयान के बारे में कुछ बताइए ना।
10: क्यों नहीं, हाँ हाँ पूछो, क्या जानना चाहते हो? अरे ये तो हमारे देश के लिए बड़े ही फक्र की बात है। दिल तो करता है मैं बस इसी के बारे में बात करती जाऊं। पता है ये मंगलयान इसरो ने 5 नवंबर को लॉन्च किया था, दिवाली के ठीक 2 दिन बाद। ऐसा लगा जैसे हम सब मिलकर त्योहार मनाते ही जा रहे हो।
12: इसरो क्या?
13: अरे इसरो नहीं पता क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
10: बिल्कुल ठीक, इस मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 500 वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है।
15: वाव, साउंड्स ग्रेट। और मैंने पढ़ा था कि ऐसा ही प्रयास चीन और जापान ने भी किया था, पर वो कामयाब नहीं हो सके थे।
10: बिल्कुल ठीक, इस यान को अंतरिक्ष में भेजकर भारत एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक ग्रह से दूसरे तक ऐसा यान भेजा हो।
1: पर दीदी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
10: इसका मुख्य उद्देश्य मीथेन गैस का पता लगाना था, जिससे वहाँ जीवन था या संभव है कि नहीं पता चल सकता है,
14: और मार्स यानी मंगल ग्रह के केमिकल कंपोजिशन का पता लगाना था।
10: और एक और बात, संसार को यह दिखा देना कि हमारे देश की भी क्षमता है एक अंतर्ग्रह मिशन की परिकल्पना करने की, उसे विकसित करने की, उसका परीक्षण करने की और उसके कार्य नियंत्रित करने की।
13: इस बार हमारा यह मंगलयान हमारे ही देश में डिजाइन किया गया था ना?
10: हालांकि इसके कुछ की कंपोनेंट्स हमने आयात भी किए थे। पर सब कुछ एकदम से नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हमें।
12: क्या?
10: जैसे शुरू में ही ये शेड्यूल्ड था अक्टूबर 19 को लॉन्च होने के लिए, पर सब पोस्टपोन करना पड़ा।
13: क्यों?
10: क्योंकि एक जरूरी टेलीमेट्री जहाज अपने निर्धारित स्थान जो कि फिजी द्वीपों के पास था पहुंच ही नहीं पाया।
12: क्यों?
10: प्रशांत महासागर में साइक्लोन्स के कारण।
12: फिर
10: पूरे अभियान को यानी लॉन्च को रीशेड्यूल किया और फिर इट वेंट ऑफ स्मूथली।
1: दीदी, टेलीमेट्री शिप कैसी होती है?
10: टेलीमेट्री शिप मतलब ऐसी शिप या ऐसा जहाज जिसमें से किसी दूर के स्रोत से मिलने वाले डाटा का मेजरमेंट हो सके। एक और जरूरी बात, मंगल ग्रह से संबंधित अभियान सिर्फ 26 महीनों में ही एक बार ही प्लान किए जा सकते हैं, ओनली वंस इन 26 मंथ्स।
15: वो क्यों?
10: वो इसलिए ताकि यह उस समय से मेल खा जाए जब मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट होता है।
16: हाँ, यानी कि मंगल ग्रह 26 महीने में एक बार अपनी सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसी प्रकार सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी के सबसे निकट होता है।
5: सब कितना रोमांचकारी है ना?
12: मंगल ग्रह को द रेड प्लैनेट भी कहते हैं ना?
13: करेक्ट, वो इसलिए है क्योंकि पृथ्वी से देखने पर यह लाल रंग का दिखता है।
10: और इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है।
1: वो क्या?
10: इस ग्रह पर बहुत बड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट है जो इसे इसका रेड ऑरेंज जैसा रंग देता है।
15: इसी कारण से ये धरती से दिख पाता है चमकीले लाल रंग में।
16: इस ग्रह से बस सूर्य, चंद्रमा और वीनस ही अधिक चमकीले हैं।
5: दीदी, हमें और बताइए ना मंगल ग्रह के बारे में।
10: अभी आप लोगों के लिए बस ये जानना काफी होगा कि यह ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है,
15: यानी पृथ्वी का पड़ोसी।
10: हाँ, इसका रेडियस पृथ्वी से केवल आधा ही और घनत्व या डेंसिटी में भी कम है।
12: मैंने पढ़ा था इसकी मिट्टी में कई एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स भी है।
10: जैसे क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। मजेदार बात तो यह है कि इसमें सोडियम भी है जो कि प्राणियों के बढ़ने में काम आता है।
1: अच्छा।
10: हमारा अंतरिक्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य है देश को संचार और मौसम की जानकारी प्रदान करना, पर हम इससे और भी कई तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम या अभियान चला पाते हैं।
0: नारे जैसे भारत माता की जय।
10: चलो बस भी करो, अब सबको भूख लग रही होगी।
16: एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने साबित कर दिया है कि वह बहुत ही किफायती ढंग से लॉन्च व्हीकल्स बना सकता है।
2: हाँ, और ये भी तो देखो दीदी कि हमने इस मंगलयान पर जितना खर्चा किया है उसी के जैसे यान पर नासा ने तिगुने खर्चे किया है।
12: बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भारत ने दिखा दिया है कि और देश भी जो इस तरह के अंतरिक्ष में अभियान चलाना चाहते हों हमसे ही सामान खरीदें या सलाह लें।
0: बचत करना, थोड़े में गुजारा करना तो कोई हमसे सीखेगा।
3: सुनो मेरे साथियों, जानते हो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? चांद और सूरज, धरती और आसमां, इन सब की भी एक कहानी है। क्यों ना इन्हीं की जुबान से ही सुने इनकी कहानी। आओ सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ सेल्फ को मैनेज करने की बात हम इन दिनों कर रहे हैं, तो बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ा है सेल्फ से। और आई थिंक अभी तक हम जितना भी बातचीत में जुड़े थे, जीवन में जुड़े थे, बाहरी चीज़ों को मैनेज करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन जहाँ सेल्फ को मैनेज करना शुरू किया, तो उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि खुद को जानना। और ऐसे में बहुत सी बातें ऐसी सामने आईं जो मेरे से जुड़ी थी, मेरे ही अंदर चल रही थी और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को हम देखते हैं, जहाँ हमने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि उससे जुड़े हमारे पास बहुत सारे सवाल आए लोगों के, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारे सामने जहाँ हम अपने आप को, अब मैं ये कह रही हूँ क्योंकि हमारी पिछली कड़ी के बाद हमारे सामने ये बात आई थी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ हर सिचुएशन को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि कई बार हमें हमारे सामने आता है सिचुएशन, हमारी प्ली ये होती है कि आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे इस रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के, जब हमने, आपने ये कहा था कि चॉइस तो फिर भी हमारी ही होगी चाहे कोई भी रास्ता हम अपनाते हैं, तो लोगों के सवाल ये आए बहुत से कि अगर मेरे पास सपोज़ अत्याचार हो रहा है मुझ पर, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई है, मतलब इन द सेंस कि मुझे ये रास्ता ही जाना पड़ेगा, तो तब मैं उसको कैसे करूं कि ये मेरी चॉइस है, ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों आए, कैसे आए कि भी मेरी चॉइस है?
1: हम एक्सेप्ट नहीं करें वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी सीन ले लो आप, मतलब यू कैन जस्ट पिक अप एनी सिचुएशन, पिक इट अप रैंडमली, छोटी से छोटी बात से लेकर बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी सिचुएशन
0: देते हैं कि मैं ट्रेन की जर्नी पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पूरी फैमिली है और रिजर्वेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है, और मुझे जो है सीट मुझे है कि लेनी है, चाहिए ही। अब टीटी आता है, मैं मुझे देनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं रह जाती मेरे पास अगेन, क्योंकि मैं पूरी अपनी फैमिली को बैठे हुए वो इतना लंबा सफ़र नहीं करा सकती।
1: हाँ, तो आप चूज़ कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपनी फैमिली को बिठा कर नहीं लेकर जाना चाहते, आप चूज़ कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट देना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं आई डोंट हैव अ चॉइस,
0: बट आई हैव टू गिव द ब्राइब, यू नो, लाइक सिस्टम। अगर फिर हम ये कह देते हैं
1: हैव टू, सी द क्वेश्चन इज whether we want to accept it or no, उसको साइड पे रखो, actually हर स्टेप पर हम चूज कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट हम अपने आप को कहते क्या हैं कि आई एम नॉट चूजिंग, आई हैव टू डू दिस। नाउ व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लाइक जो हमने पिछली बार कहा, हम इस पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आपको वो ट्रेन में वो चिट्ठी को देना है या नहीं देना है, ईच वन टू देयर ओन, हर एक अपना अपना डिसीशन अपने अपने आप लेता है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज चाहे आप देते या चाहे आप नहीं देते,
0: हु ओन्स द डिसीजन,
1: हु हैज टेकन द डिसीजन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देते हैं एंड हम कहते हैं मेरे पास चॉइस नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। एक जना देता है, दो जने देते हैं, दस लोग देते हैं, वेरी सून मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट, ओके। जहाँ ट्रेन में मोस्ट ऑफ अस विल स्टार्ट डूइंग दिस, ये कह कह कर कि ऐसा है, ये सिस्टम किसने बनाया, Where is the system? Has it come from somewhere out of the blue? नहीं, एक ने सोचा देकर काम जल्दी करो, दूसरे ने भी सोचा अच्छा इन्होंने दिया इनका काम जल्दी हुआ, तीसरे ने भी कॉपी किया, वेरी सून दैट बिकेम द सिस्टम। टुडे लेट अस डिसाइड के वी आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू सिट एंड टॉक कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, ब्लेमिंग एवरी वन। हम जो भी कर रहे हैं इट्स माई चॉइस। अब जो आपने ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया, तो दो ऑप्शन है ना उस टाइम, वी कैन इमिजिएटली पुट डाउन आर ऑप्शन कि ऑप्शन क्या है, या तो टीटी से रिक्वेस्ट करो आप टिकट का अमाउंट अपना जो भी है वो आप दो, आप सीट लो, वो नहीं आपको देता है, आप या तो बैठ कर जाओगे या आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर जाओगे। अब हम एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मुझे कम्फर्ट देगा, राइट? Do I take that decision so that it's comfortable for me? Again, it's a choice. दो लोगों के लिए अलग अलग choice होगी। किसी के लिए वो देकर सोकर जाना comfortable होगा, लेकिन किसी के लिए वो देना वो comfortable नहीं है। Like I can say, if I give that money to sleep, I'm not comfortable. I might lie down, but I'm not comfortable with what I have done. सो आई चूज नॉट टू गिव एंड सिट द होल नाइट एंड गो विच इज ओके. आई एम नॉट आस्किंग एनी वन कि हैव आई टेकन द राइट डिसीजन और द रॉन्ग डिसीजन. इट्स माई डिसीजन एंड उसके लिए मुझे जो भी फेस करना पड़ेगा आई विल फेस बिकॉज इट इज माई डिसीजन. अगर हम देते हैं तो भी हमारा डिसीजन, नहीं देते हैं तो भी हमारा डिसीजन. इट्स जस्ट दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि वो हमारा डिसीजन है. इंस्टेड ऑफ अगेन इट्स अ विक्टिम एंड अ मास्टर. जो मास्टर अवेयरनेस से चल रहा है कि मैं चूज कर रहा हूँ, वो अपने जीवन में सशक्त होकर चलेगा, स्ट्रांग होकर चलेगा. आप मतलब ये नॉट टॉकिंग आप बड़े से बड़ा गलत काम कर दो, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर दो, लेकिन ये सोच कर तो करो ना यू आर चूजिंग टू डू इट, ताकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो जो आपने किया है. सो द पॉइंट इज दैट कॉन्शियसली मेक योर चॉइसेस, बिकॉज वैसे भी हम ही चॉइस कर रहे हैं, लेकिन बाय एवरी टाइम टेलिंग माई सेल्फ आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो चॉइस, आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी वीक. क्योंकि देन आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मेरा जीवन तो इन सब चीज़ों पर, इन सब लोगों पर, इन सब सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है. मेरे पास क्या चॉइस है, मैं तो सिस्टम के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो लोगों के हिसाब से चलता हूँ. देन आई डू नॉट हैव द पावर. सो लेट्स बी कॉन्शियस.
0: देन द ब्लेम गेम एक्चुअली आल्सो स्टार्ट्स.
1: नेचुरली
0: सिस्टम की गलती है या मेरी गलती नहीं है.
1: दैट इज व्हाट ना, जहाँ मेरी चॉइस नहीं है तो फिर किसी और के कारण में नहीं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये दिया भी टीटी को रात को सोने के लिए पैसे दिए भी, तो तुरंत क्या किया, किसकी गलती है? वो टीटी की गलती है. उसने मांगा, मैंने दिया. उसने मांगा, दिया किसने? आई चूज टू गिव विच इज ओके, चूज टू गिव इट, बट रिमेम्बर आई चूज और इसका ये अकाउंट मेरा बना. एंड डू वॉट यू आर कम्फर्टेबल विद डूइंग. हमें जो कम्फर्टेबल लगे हमें वो करते जाना चाहिए. एंड रिमाइंडिंग माई सेल्फ आई एम डूइंग इट एंड इसका जो रेपरकर्शन है दैट इज मोस्ट
0: इम्पोर्टेंट. लेकिन सिस्टर शिवानी हम कभी भी कम्फर्टेबल नहीं होते हैं कई चीज़ें करते वक्त, क्योंकि हमें हमें लगता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है. यू नो लाइक सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, अगेन मे बी यू नो कि सिचुएशन ज़्यादा हैवी हो गई या लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स
1: उस भी सिचुएशन में. अच्छा ये बताइए आप रात को सीट पर बैठ कर क्यों नहीं जा सकते?
0: नहीं मैं तो बैठ जाऊंगी पर मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे.
1: फैमिली क्यों नहीं बैठ कर जा सकती? क्योंकि अभी अभी आपने उनको क्या सिखा दिया? डोंट गिव देम मॉरल साइंस बुक्स आफ्टर दैट. अभी अभी यू हैव जस्ट टॉट देम दिस इज द वे टू लिव. एंड देन वी से मॉरलिटी सेपरेट, स्पिरिचुअलिटी सेपरेट, प्रैक्टिकल लाइफ सेपरेट. व्हाई आर वी टीचिंग देम ऑनेस्टी एंड व्हाटएवर द होल लिस्ट? प्रैक्टिकल में तो वो देख रहे हैं ना हमें करते हुए. तो क्या एक बच्चे ने अभी अभी ये नहीं सीखा कि जीवन में प्रैक्टिकली चलने के लिए ये सब करना पड़ता है? तो उनकी लैंग्वेज भी आज ऐसे ही हो जाती है, ओ ये सब तो करना पड़ता है, इसके बिना तो नहीं चलता. दैट्स बिकम माई बिलीफ. मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग विद दिस बिलीफ कि ऑनेस्टी के साथ तो चलना पॉसिबल ही नहीं है. हु क्रिएटेड दैट बिलीफ फॉर मी? समवेयर आई सॉ इट हैपनिंग. एंड यही अगर आज एक पेरेंट जाग कर जाए पूरी रात और परिवार भी पूरी रात जागे, हो सकता है वो बहुत रात अनकंफर्टेबल आपकी बीतेगी, बट यू जस्ट मेड योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर. योर चिल्ड्रन जस्ट लर्नड अ लेसन फॉर देयर लाइफ कि भले सिचुएशंस हो हम अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. वैल्यूज ऐसे बोलने वाली चीजें नहीं होती हैं. कई पेरेंट्स कहते हैं हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं. संस्कार देने वाली चीज नहीं होती है, संस्कार जीने वाली चीज होती है. आपने अभी अभी उनके सामने दिए पैसे तो उन्होंने संस्कार सीख लिया, फिर आप उनको बोलो ऑनेस्टी, इट वॉन्ट वर्क. तो भले रात नहीं अच्छी बीती, क्या होगा अगले दिन जाकर सो जाएंगे ना, लेकिन जीवन के लिए कितना बड़ा लेसन लर्न किया. सो अगेन इट्स ओके, इट्स अ चॉइस. बट आज जो हमने किया, जो हमने वो कर्म किया, इसका रिपरकशन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आ रहा, दे जस्ट लर्नड. तो जो मैंने एक्शन किया उस टाइम उसका क्या क्या रिजल्ट आने वाला है.
0: रिपरकशन क्या देखा कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो मैं अनकंफर्टेबल होके गया,
1: क्योंकि हम उस तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि दिस इज अनकंफर्टेबल. अगर हम उनके साथ ये डिस्कस करें कि दिस इज कम्फर्टेबल, डिस्कस इट विद देम, डिस्कस इट विद देम. ऑनेस्टी मेक्स यू स्ट्रॉन्ग.
0: दिस इज व्हाट यू नो लाइक यहाँ पे होता ये है कि अगर मैंने पैसे अपने नहीं दिए, ठीक है, तो या तो वाइफ कह देंगे या कि देखा आप अपनी बातों पे अड़े रहे या अपनी वैल्यूज पे अड़े रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ? कि ये हमें जाग के जाना पड़ा, हाँ, या बैठ
1: तो,
0: के जाना
1: तो पड़ा। घर का कल्चर क्या बन रहा है कि वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते हैं, ज्यादा मायने क्या रखता है, काम हो जाए, कंफर्ट्स मिल जाए, धन हम कमाते जाए। इट्स अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ चॉइस कि हमारी फैमिली के लिए वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। सो योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज।
0: इट मींस इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो मैं चॉइस कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ।
1: That's तो कंफर्टेबल वहाँ है ना। That's what we said, comfortable की डेफिनेशन क्या आपकी, किसकी कंफर्ट? अब हमने सोचा मैं शरीर हूँ तो हमेशा कंफर्ट किसका सोचते रहते हैं, इसका। अभी अभी मैंने एक कर्म कर दिया जिसका मुझे अंदर कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस सिर्फ यही है, वही कर्म बार बार बार बार करने के बाद वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने गलत किया। झूठ पहली बार बोलो पता चलता है, मैंने झूठ बोला, कहेंगे अंदर से अंदर ना थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने झूठ बोला। उस टाइम भी बोलेंगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। किसने कहा चॉइस नहीं थी झूठ बोलने से पहले? एवरी टाइम आई नो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम चूजिंग टू डू इट। मुझे पता है कि सच बोलने के बाद आप मुझे डांटेंगे, तो आई चूज टू टेल अ लाई। लेकिन हम क्या कहेंगे, वो डांटेंगे इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोला। That's just a way of rephrasing the whole thing. I can say, वो डांटेंगे, लेकिन मैं फिर भी सच बोलूंगी, now let me see what happens, I will be ready to face. लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई choice ही नहीं है, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे आज छुट्टी चाहिए थी ऑफिस से, बॉस ने ऐसे तो देनी नहीं थी, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो हर बार छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक choice नहीं है, choice नहीं है, choice नहीं है। बच्चे भी वही सीख रहे हैं, चॉइस नहीं।
0: लेकिन सपोज मुझे अपनी मदर को डॉक्टर को दिखाना है और मुझे जो बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो मैं फिर कोई बहाना बना के या करके जो छुट्टी लेती हूँ। बट मोर इम्पोर्टेंट इज मुझे, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त ये थी कि मुझे मदर को डॉक्टर को दिखाना है।
1: I'll tell you something. This has to be experimented within life. हम पहले से ही अंदर से डिसाइड कर लेते हैं कि इसने तो मांगना ही है ब्राइब, इसके बिना तो होगा ही नहीं, इसने तो छुट्टी देनी ही नहीं है।

0: एक सिग्नल पर जब मुझे पुलिसमैन पकड़ता, जबकि मेरी गलती थी और मेरा फाइन था 500 का, मैंने 100 पकड़ा कर काम कर लिया, तो मेरी वाइब्रेशन की क्वालिटी क्या है? नाउ दिस सेम वाइब्रेशन विल वर्क नाउ व्हेन आई कम इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज इट्स बेसिकली माई थिंकिंग क्वालिटी. वाइब्रेशन सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होता है. दिस इज समथिंग विच इज वेरी फंडामेंटल, जो हमें समझना पड़ेगा. हमारे जो संस्कार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते जा रहे हैं, दैट इज माई क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन इज नहीं मैं इनके सामने बैठी हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ, अब इनको मेरे से पॉजिटिव फील होना चाहिए. लेकिन अभी अभी मैं सारा दिन में 10 लोगों से मिली एंड आई वॉज नेगेटिव टूवर्ड्स देम, हाउ विल यू फील पॉजिटिव विद मी?
1: क्योंकि वो एक्चुअली वो सारी नेगेटिविटी भी तो मुझसे गुजरी है.
0: एब्सोल्युटली. सो इट्स बीन क्रिएटेड हियर. तो जो हमारे एक जीवन को कहें प्रिंसिपल्स, एक लाइफ को लीड करने के प्रिंसिपल्स हैं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक चेंज नहीं हो सकते हैं. आप एक अपने लिए प्रिंसिपल बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव इफ समवन हैज द करेज टू डू दैट. सी हाउ योर लाइफ रन्स. आने दो ना ऊपर नीचे, कितना आएगा? एक बार आएगा, दो बार आएगा, ठीक है आपका नुकसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन क्या ज्यादा मायने रखता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या वैल्यूज? आज हमारे को अपनी वैल्यूज की वैल्यू नहीं है. दैट इज द थिंग. ऑनेस्टी, ये क्या है? यहाँ 5 लाख, यहाँ ऑनेस्टी, कौन सी साइड ज्यादा भारी लग रही है? तो ये तो कुछ नहीं है, इसे साइड पर रखो. इसकी अपनी ही वैल्यूज की वैल्यू कहाँ है? तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने में कितना देर लगती है? आज झूठ बोलने के लिए कितनी बार सोच रहे हैं? सोचते हैं वो इजीली, इजीली, क्योंकि एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, आफ्टर दैट माय संस्कार. लेकिन हर बार जब बोलते हैं, पता है क्या कहते हैं? आई हैव नो चॉइस.
1: यस,
0: आई हैव नो चॉइस. वो सिचुएशन ऐसी थी, वो ऐसे था, वो ऐसे था. तब करते करते करते इस तरह से अपने आप को बहुत कमजोर बनाते जाते हैं. बहुत कमजोर बनाते जाते हैं.
1: आई थिंक दिस स्टेटमेंट आई हैव नो चॉइस
0: needs to be removed.
1: लेकिन why are we afraid to take responsibility?
0: क्योंकि अगर if I say कि this is my choice, let's say जब मैं I walk into an office जहाँ मुझे अपना काम करवाना है, and मैंने पहले से ये thought create कर लिया कि बिना दिए तो यहाँ काम होने नहीं वाला, तो मुझे पता होता है इधर से इधर से इधर तक मुझे ये देना है, तब मेरा काम होगा. I've already created the vibration and I've also told myself इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देते वक्त हर एक को पता है व्हाट दैट वर्क, एवरीवन नोस. से राइट एंड रॉन्ग की बात करने का कोई क्वेश्चन नहीं है, हर आत्मा को पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. लेकिन देते वक्त मुझे अपने आप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी है. जब हम रॉन्ग भी करते हैं, हम क्योंकि अपने आप को जस्टिफिकेशन दे देते हैं उसकी, वी कन्वर्ट इट इनटू अ राइट. So when I walk into an office,
1: ताकि वो मेरे सर पे continuous हथौड़ा ना मारता रहे, मेरे कुछ गलत करके
0: subconscious mind या कहें वो conscience जो बोलते हैं ना, मेरी conscience prick नहीं करनी चाहिए मुझे अंदर, तो मैं क्या अपने आप को कहती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काम ही ना होता तुम्हारा, ये system ही ऐसा है.
1: काम important है ये.
0: And then I actually can talk to 4 people. पता है आजकल का system देखो कैसा है, ये system को change होने की जरूरत है. अब ये कौन कहेगा मैं कमजोर हूं, मेरे पास ताकत नहीं है सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए? एनीवन वांट्स टू से दैट? नो, एक्चुअली इट्स द ट्रुथ. आई डोंट हैव द करेज, क्योंकि मुझे पता है ऑनेस्टी के रास्ते पर चले तो हो सकता है थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं. थोड़ा सा काम जो 5 मिनट में हो जाता, वो 5 दिन में होगा. हो सकता है 5 दिन में नहीं, 5 महीने में होगा. फाइनली होगा जरूर, होगा जरूर. एंड नहीं भी होगा तो भी व्हाट इज माय प्रायोरिटी, दैट्स अ क्वेश्चन. तो जो लोग अपने जीवन में अपनी वैल्यूज को और अपने प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी रखेंगे, वो उसके लिए फिर किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है. लेकिन वो कर करके आई टेल यू उनका कभी नुकसान नहीं होता. चॉइस मेरी, डिसीशन मेरा, उसका जो रिपरकशन वो भी मेरा. लेट्स से आई वॉक इनटू एन ऑफिस एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैंने नहीं देने, आई एम नॉट गिविंग, तो आई शुड बी रेडी कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है. उसका रिपरकशन ये हो सकता है कि मेरा काम होगा ही नहीं. एम आई रेडी फॉर दैट रिपरकशन? आप अपने रिपरकशंस को लेकर रेडी होने चाहिए.
1: लेकिन मैं उसके लिए थॉट को ही लेके जाऊं अगर कि मेरा काम होगा ही नहीं,
0: इसीलिए तो वो वाइब्रेशन ही हमने पहले क्रिएट कर दिया. अब राजयोग से अगर हम वो ताकत ले रहे हैं परमात्मा से, तो परमात्मा की ताकत हमें क्या है? राइट थॉट क्रिएट करना. That is the power I at least feel from meditation. So when I'm walking into a situation like this, if I can create a thought,

0: वन, मैं नहीं देने वाली हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं देने वाली हूं। देने की ऑप्शन को तो आउट ऑफ, मतलब अपने जीवन से ही बाहर कर दिया है, वो है ही नहीं ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, सामने वाला मेरे से मांगेगा ही नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग सामने वाले तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो सिस्टम ही, क्या वाइब्रेशन भेजा सामने वाले के लिए? सामने वाला कौन है जो बैठा हुआ है?
1: वो भी तो एक प्योर सोल है।
0: सामने वाला मांगेगा ही नहीं मेरे से। आई ऑलवेज वॉक इन विद दिस थॉट, सामने वाला मेरे से नहीं मांगेगा। इट वर्क्स एंड द थॉट, काम तो होगा ही। लेट देयर बी ऑब्स्टेकल्स, इट्स ओके, लेकिन मैंने देने वाला ऑप्शन रखा ही नहीं हो अगर लाइफ में, तो फिर वो ऑप्शन आता ही नहीं है। अभी क्या होता है, हम अगर एक आधी बार ट्राई भी करते हैं, लेकिन हमने वो ऑप्शन तो रेडी रखा हुआ है ना, अच्छा मैं नहीं देता अभी एक बार, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन।
1: वो ऑप्शन रखी है कि अच्छा अगर नहीं हुआ तो मैं फिर ये करूँ।
0: आपने ऑलरेडी वो वाइब्रेशन क्रिएट कर ली है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स, वो चॉइस हम तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी प्रायोरिटीज बहुत राइट सेट की हुई है, कि मेरे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है। एंड दिस इज फंडामेंटल, कि जितना आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी देते जाएंगे, तो आप अंदर से क्या होते जाएंगे? इट वर्क्स, इट वर्क्स। लॉट ऑफ पीपल विल से ऑनेस्टी वर्क्स, व्हाई विल इट नॉट वर्क? लॉट ऑफ पीपल विल से विदाउट करप्शन काम होता है, लेकिन वो कौन कौन कह पाएगा जो खुद उसके बिना काम किया होगा? लेकिन जो कर ही उस तरह से रहेंगे, वो क्या कहेंगे? उसके बिना तो काम नहीं होता। तो ये क्रिएट किसने किया? हमने किया। चॉइस है, कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज अपने आप को बार बार ये नहीं कहना कि मेरे पास चॉइस नहीं है, ये उसकी वजह से है, ये उसकी वजह से। हम चूज कर रहे हैं ताकि हम रेडी रहें
1: उसके रेपरकशंस के लिए।
0: रेपरकशंस की भी बात नहीं है, इट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स मी गो थ्रू लाइफ विद द थॉट कि आई एम लीडिंग माय लाइफ द वे आई वांट। इवन टुडे इफ आई गिव अ ब्राइब, आई एम लीडिंग माय लाइफ द वे आई वांट, नॉट मेरे पास चॉइस नहीं है, द सिस्टम इज लाइक दिस, देन आई एम नॉट लीडिंग द लाइफ द वे आई वांट।
1: आई बिकम वेरी वीक एक्चुअली, वेरी लो। सो बट व्हाई आई एम नॉट रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी
0: ऑफ
1: of my, you know,
0: because
1: my choices.
0: अगर मैंने responsibility ली तो मुझे change होना पड़ेगा। अगर मैंने कहा system responsible है तो system को change होना पड़ेगा, तो I can keep waiting for the system to change.
1: Which will whatever.
0: चाहे वो system हो।
1: system, we've seen system never changes.
0: नहीं, system could be anything. See, system need not be a government office. System could be my husband. System could be my child. For me, anything. जिसके सामने मैं खड़े होकर कहती हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं अभी जो सोच रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो इनकी वजह से। तो देन इनको चेंज होने की ज़रूरत है अगर मुझे ठीक होना है। मैं अगर, जैसे वो झूठ बोलने का हमने एग्जाम्पल लिया, मेरा बॉस इतना गुस्से वाला है इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो जिस दिन मेरा बॉस ठीक हो जाएगा,
1: मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी।
0: सो वेट फॉर द बॉस टू चेंज।
1: ओह माय गॉड,
0: वेट फॉर द बॉस टू चेंज एंड देन कीप ऑन डूइंग योर कर्मा। Just saying that I have no choice, but the repercussion will not go to the boss. Repercussion will come to me.
1: And we have understood karma of karmic philosophy. क्या कहती है कि जैसा जो भी करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी रास्ते पर हम चल रहे हों। Wonderful. I think somewhere जहाँ हमने अभी तक हम सब कुछ मैनेज करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था,
0: कर रहे थे अपनी choices को भी मैनेज करना,
1: और जैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट पे आ रहे हैं, नहीं सर शिवानी, जैसे ही देखा, इट मीन्स हमने नज़र अपनी तरफ जब की तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं था कि हम क्यों डिसीजन ले, हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं।
0: एक्चुअली हम इसलिए ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं जब उनके सामने कोई बात आती है, जब वो रेपरकशन आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सबके माइंड में आज क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई मेट अ लेडी, शी लॉस्ट अ 2-year-old डॉटर, 2 साल का बच्चा, कहती है भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे भगवान ही पसंद नहीं। ऐसे बहन, आपको ज्ञान है ना कार्मिक फिलोसफी? शी सेड, यू नो सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, शी सेड मैं कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं सकती जिसके लिए मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, नॉट रेडी। क्योंकि जब वो हिट करता है, वो इतना बड़ा हिट करता है कि हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया होगा, लेकिन नाउ वी नो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो मैंने ही कुछ ना कुछ किया है, सिर्फ करते टाइम
1: पता ही नहीं। यहाँ पे भी तो इनफैक्ट इट्स, आई एम अमेज्ड, यू नो वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट इट कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, आई डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि इतना सटल है ये अगर मैं ये कर्म कर रही हूँ, करती जा रही हूँ और करती जा रही हूँ, क्या ये जितना करती जाऊँगी उतना संस्कार गहरा होता जाएगा, और अब हर बार हम ये कह के अपने आप को निकाल लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाते हैं कि इट्स नॉट माई चॉइस,
0: तो फिर परिवर्तन की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर नहीं आती।
1: वेरी ट्रू, इनफैक्ट ये बहुत समझ कर देखने की ज़रूरत है
0: एक्सपेरिमेंट
1: कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह से बार बार हम ये कहते हैं कि जहाँ किसी भी सिचुएशन को के लिए जो हमें एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरी तरफ ये भी कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मुझे पकड़ कर नहीं कह सकता कि आपको इधर ही जाना है या आपको उधर ही जाना है, चाहे आप कितने भी अगर हम उसमें देखें सोसाइटी में या सिचुएशंस में कितना भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हों, और आज ज़्यादातर लोग अपने आप को बहुत बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी, ओम शांति। सचमुच देखने की बात यह है कि जब सेल्फ की तरफ नज़र गई तो बहुत सी अपने अंदर ही इनहरेंट ऐसी बातें थी जिनको हमने स्वीकारा हुआ था कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं ही सिचुएशंस में फंसी हुई हूँ, मेरे सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि मैं मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सचमुच समझें जब हम साइलेंस में बैठें, या जब भी जो भी बात अगर कहीं पर भी आपको छू रही है ये बात, तो इस पर ज़रूर मनन करें, ज़रूर चिंतन करें कि क्या मेरे पास चॉइसेस हैं, और आंसर ज़रूर आएगा कि यस आई हैव द चॉइस। अब जानते हुए जब मैं उस रास्ते को चुनती हूँ तो वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और फिर उस कर्म की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, फिर उसका फल मुझे मिलेगा ही, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो, तो हमें अपने आप ही पता होगा जब हम उस रास्ते पर चल रहे होंगे। तो आज के इस पूरी बातचीत से जुड़ी कोई ऐसी बात या फिर सेल्फ मैनेजमेंट पर जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कोई आपके पास सवाल है आपका हम स्वागत करते हैं। उसके अलावा हम आपसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में खुले सेंटर्स पर आप ज़रूर जाएं और राजयोग का जो पूरा अभ्यास जो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं उसे ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हम तलाश रहे हैं वहाँ आपको उसका राह ज़रूर मिलती है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और ख़ुद को समझते समझते जब मैनेज करने की बात आ रही है तो बहुत सी बातें खुलती जा रही हैं। आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें, आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक।

0: विवेकानंद के जीवन चरित्र में अब तक आपने जाना कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव के बीमार पड़ने पर सब शिष्य मिलकर उन्हें कलकत्ता के काशीपुर उद्यान में ले आए और सन 1886 के अगस्त के महीने में उनका देहांत हो गया। काशीपुर में पुराने भक्तों के अलावा अनेक तरुण सन्यासी गण भी रहते थे जो गुरुदेव की सेवा करने के लिए घर छोड़कर पढ़ाई छोड़कर वहां रहते थे।
1: श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के थोड़े ही दिन बाद काशीपुर का उद्यान भवन छोड़ना पड़ा। अब नरेंद्र ने सोचा कि युवक सन्यासी गण यदि चारों ओर विच्छित्र होकर चले जाएंगे तो इस महापुरुष के आदर्श के प्रचार में विघ्न उपस्थित होगा। श्री गुरुदेव के साथ रहकर उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग रूप में जो साधना और आदर्श प्राप्त किया है उसे केंद्रीभूत करना होगा। कुछ ग्रही भक्तों ने नरेंद्र के इस मत का समर्थन किया। वे सब वैराग्यशील तरुण सन्यासी आश्रय विहीन होकर भटकते रहेंगे, ये बात उन्हें पसंद न आई।
0: यह बातें सुनकर के रामकृष्ण देव के एक ग्रही भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र ने आकर के नरेंद्र से कहा, भाई एक आश्रम बनाओ जहाँ श्री रामकृष्ण देव का चित्र, भस्मादि और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को रख करके नियम अनुसार पूजा अर्चना हो सके, जहाँ काम कुंचन त्यागी तुम भक्तगण एक स्थान पर रह सको। कभी कभी हम लोग भी वहाँ आएंगे। मैं काशीपुर के बगीचे में रामकृष्ण सेवा के लिए जो कुछ मैं दिया करता था वहाँ भी दूंगा।
1: ये बात सुनकर नरेंद्र नाथ आनंद से आत्मविभोर हो गया और एक मकान की खोज में लग गए। नरेंद्र नाथ और उनके वराहनगर निवासी मित्र भवनाथ के अदम्य प्रयास से वराहनगर के गंगा तट के समीप भुवन दत्त का एक जर्जर उद्यान भवन 11 रुपए मासिक किराए पर लिया गया। भुवन दत्त का मकान असल में ताकी के जमींदार मुंशी बाबुओं का था। ये मकान जीर्ण और परित्यक्त था, इसी से लोग उसे भुतहा मकान कहा करते थे। इस जीर्ण भुतहा मकान में केवल 6 कमरे थे। टैक्स के लिए निर्धारित 11 रुपए के अतिरिक्त रसोइये को 6 रुपए महीना और मठवासियों के अन्य खर्चों के रुपए भी सुरेंद्रनाथ देते। इस प्रकार उनके माहवार दान की रकम लोगों के बढ़ाने के साथ साथ बढ़कर 100 रुपए तक हो गई।
0: मटवरा नगर के परामाणिक घाट रोड में टाकी के मुंशियों के ठाकुर घर के पीछे पश्चिम के हिस्से के भग्न जर्जर मकान के ऊपरी तल्ले के भीतरी हिस्से में था। रास्ते पर एक दरवाजे से घुसकर थोड़ी खुली जमीन को पार करने पर सीढ़ियों से चढ़कर के लकड़ी की रेलिंग और खंबे वाले बरामदे के दक्षिण दिशा के सामने का बड़ा घर पहले किराए पर था, बाद में ऐसे ही खुला पड़ा रहता। भीतर के मठ का हिस्सा बाहर के रास्ते से दिखाई नहीं पड़ता था, काफी निर्जन था। अभी पूरा मकान धराशाही हो गया है। बाहरी हिस्से को छोड़कर के भीतर के मठ के हिस्से का कोई भी चित्र नहीं मिलता है। पीछे की ओर साग सब्जी का बगीचा था, सहजन के पेड़, एक बेल वृक्ष और कुछ नारियल तथा आम के पेड़ थे। एक तालाब भी था। बगीचे में कोई खास साग सब्जी नहीं होती थी, बस डेंगू के डंठल, 2-4 कुमड़े, खीरे और केले आदि होते। एक कुड़िया माली था, उसे केलों के नाम से पुकारा जाता था।
1: कोई तरकारी भाजी नहीं रहने पर शशि महाराज बीच बीच में बगीचे में घुसकर डेंगू, कुमड़े का साग, सहजन के डंठल या झड़े हुए फूल माली जो कुछ पाते पल भर में तोड़कर या हसुए से काट कर ले आते और उड़िया भाषा में अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं लो कहते हुए पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता। कभी गाली देता, चिल्लाता, किंतु शशि महाराज इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। अपनी जिद पर अड़े हुए अपने मन से चले आते। इसे लेकर सभी आपस में खूब हंसी मजाक करते। वैसे मठ में निवास करने वाले सबके साथ माली की काफी दोस्ती थी।
0: एक समय कान किसी दिन मिल जाता था तो किसी दिन नहीं। थाली बर्तन आदि कुछ भी न थे, अतः घुया के पत्ते पर भात रख करके उसे ही खाना पड़ता। और भोजन भी क्या था, केवल उबले हुए कुंदरू के पत्ते और भात, और वह भी घुया के पत्तों पर रखकर, जिससे मुंह में खुजली हो जाती थी।
1: इतने कष्ट, फिर भी कोई चिंता ना थी। भक्तों की संख्या एक एक दो दो करके बढ़ती रही। कैसा उत्साह था। पूजा, जप, ध्यान सदा चलता रहता था। कभी कीर्तन भी शुरू हो जाता था। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आनंद से कीर्तन हो रहा है। फिर तो ऐसा रंग जमता कि बाहर आदमियों की भीड़ लग जाती थी।

0: कीर्तन बंद होने पर भी बाहर लोग खड़े रहते और चिल्लाते,
1: अरे बंद मत कीजिए, बंद मत कीजिए,
2: बहुत आनंद आ रहा है। नीचे की मंजिल के भीतर कमरों की ओर बहुत दिनों की गंदगी और झाड़ झंकार इस तरह हो गए थे कि वहाँ सियारों और सांपों का बसेरा था। ऐसी धारणा थी कि बहुत दिन पहले टाकी के खूंखार जमींदार के जमीन में वहाँ बहुत नर हत्याएं हुई थी। इसी से उसे भूत घर कहा जाता था और कोई उसे किराए पर नहीं लेता था। इसी कारण से मठवासियों ने इसे 10 रुपए के किराए पर प्राप्त कर लिया था। ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी से चढ़ने पर काली तपस्वी का कमरा था। बाद में एक छोटे जीने से चढ़ और उतर कर पूजा के आयोजन का घर था, जिसमें फर्श पर एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा एक चौकोर मिट्टी का हवन कुंड था। वहां से ठाकुर घर जाया आया करता था। सीधे जाने पर बरामदे के सामने रसोई घर था। बाईं ओर लंबा हॉल था, जिसे दानवों का कमरा कहा जाता था। इसके बाद बगल में ही भोजन करने और हाथ मुंह धोने का कमरा था। इसके बाद एक अंधेरी गली पार कर शौचालय और सीढ़ी से नीचे उतरकर बगीचे के अंदर से तालाब में जाने का रास्ता था।
0: हाल में दीवारों पर अनेक देवी देवताओं, अवतारों और क्रास पर बंधे ईसा मसीह के चित्र टंगे हुए थे। ठाकुर घर में धूनी देकर के उन सब चित्रों के आगे शशि महाराज संध्या समय एक हाथ में धूनी दानी में जलाकर और दूसरे हाथ से दीप लेकर के जय गुरुदेव श्री जय गुरुदेव कहकर धूप दिखाया करते थे। हाल में एक किनारे पर एक लकड़ी के तख्त पोश के ऊपर कुछ संस्कृत, बंगला और कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें रखी हुई थी। शेष जगह में मिट्टी का खोल, तबला, मृदंग, करताल रखा था। निकट की दीवार पर तानपुरा टंगा था। हाल ही साधुओं का शयन गृह था। दर्शकों और भक्तों के आने पर उसी में बैठकर के बातचीत होती थी, किंतु उस हाल का सभी कार्यों में उपयोग होता था। बिछावन में एक छोटे तकिए के साथ एक चटाई एक व्यक्ति के लिए क्रमबद्ध रूप में बिछी रहती। आगंतुकों के लिए अथवा दूसरी जगह बिछाने के लिए कोई 2-4 चटाइयां थी जो फर्श पर ही बैठते थे।
2: ठाकुर घर के बीच में श्री राम कृष्ण का बिस्तर, धरती पर चटाई, गद्दी, चादर और उस पर तकिया लगा था और श्री राम कृष्ण का चित्र उस पर रखा था। बिस्तर के पैर की तरफ श्री राम कृष्ण की अस्थि का ताम्र कलश और उनकी पादुका एक चौकी पर रखी थी। पूजा के पात्र के सामने बैठकर शशि महाराज नित्य पूजा आदि करते थे। शशि महाराज के द्वार संध्या में आरती करना एक अपूर्व कार्य था, जो देखने लायक दृश्य था।
0: जब वे धूप धूना, खोल, करताल, वाद्य यंत्रों के साथ आरती के अंतिम चरण में चामर ढुलाते हुए भाव में उन्मुक्त होकर के जय गुरुदेव श्री गुरुदेव कहकर के भीष्ण हुंकार करते हुए ताल ताल पर नृत्य कर एक ओर से दूसरी ओर तक नाच नाच कर घूमते फिरते, तब से भीतर जिस अपूर्व भक्ति भाव का संचार होता उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता मानो पूरा मकान कांप रहा है। दर्शकगण श्री रामकृष्ण के भंडार घर से उनके साथ स्वर मिला करके जय गुरुदेव श्री गुरुदेव का उच्चारण करते करते आवेग में नृत्य करने लगते।
2: मठ के गुरु भाई अपने आप को भूत तथा दानव कहते थे, क्योंकि भूत दानव शिवजी के अनुयायी हैं और जिस कमरे में सब एक साथ बैठते थे उसे भूत का कमरा कहते थे। जो लोग एकांत में ध्यान धारणा और पाठ आदि करते थे वे लोग दक्षिण की ओर के कमरे में रहते थे। काली द्वार बंद करके अधिकतर उसी कमरे में रहते थे, इसलिए मठ के गुरु भाई उस कमरे में और उत्तर की ओर जो कमरा था उसमें नैवेद्य रखा जाता था। उसी कमरे में खड़े होकर लोग आरती देखते और वहीं से भगवान श्री राम कृष्ण को प्रणाम करते थे। नैवेद्य वाले कमरे से उत्तर में दानवों का कमरा था। भूतों के कमरे के उत्तर की तरफ एक और छोटा सा कमरा था, वो पानघर के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ भक्तगण भोजन करते थे। भूतों के कमरे के पूर्व कोने में दालान थी। उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी। दालान के ठीक उत्तर की तरफ रसोई घर था। पूजा घर और काली तपस्वी के कमरे के पूर्व की ओर बरामदा था। बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में वराह नगर की एक समिति का पुस्तकालय था।
0: ये सब कमरे दुमंजिले पर थे, जीने दो थे, एक तो पुस्तकालय और काली तपस्वी के कमरे के बीच से और दूसरा भक्तों के भोजन करने वाले कमरे के उत्तर की तरफ। नरेंद्र आदि भक्तगण इसी जीने से शाम को कभी कभी छत पर जाते थे। वहां बैठकर वे लोग ईश्वर संबंधी अनेक विषयों की चर्चा करते थे। कभी श्री रामकृष्ण की बातें, कभी शंकराचार्य की, कभी रामानुज की और कभी ईसा मसीह की बातें होती थी। कभी हिंदू दर्शन की बातें भी होती थी, तो कभी यूरोपियन दर्शन का प्रसंग चलता था, कभी वेदों, कभी पुराणों और कभी तंत्रों की कथाएं हुआ करती थी।
2: भूतों का कमरा ही उन लोगों के साधन भजन और वार्तालाप विवेचना आदि का मुख्य केंद्र था। यहाँ नरेंद्र नाथ के देव दुर्लभ स्वर का संगीत सुनकर सभी मुग्ध हो जाते, भाव विभोर हो जाते, हरि नाम कीर्तन आदि भी यही होते। फिर संगीत शिक्षा, शास्त्र अध्ययन, भक्तों से सत चर्चा आदि से भी ये कमरा गूंजता रहता और इन सभी कार्यों के केंद्रीय रत्न स्वयं नरेंद्र नाथ थे। सुंदर सुगठित उनका सबल शरीर, उनकी ज्योतिर्मय देह कांति, प्रशस्त ललाट पर प्रतिभा के चिन्ह, प्रशांत बदन में अंकित वीरत्व और दृढ़ संकल्प, विशाल युगल नयनों की अपूर्व मोहिनी शक्ति, बोलचाल में प्रस्फुटित एक स्वच्छंदता और आत्मविश्वास, तथापि वेशभूषा में वैराग्य की सुस्पष्ट छाप तथा आचार व्यवहार में निश्चलता, सहृदयता और दूसरों के प्रति श्रद्धा सदा व्यक्त होती रहती थी।
0: उनके चिंतन में अभ्युत साहस, गंभीर्य और प्रचुर ज्ञान का समावेश था। उनके कार्य में महावीर के समान क्लांतिहीनता और गुरु भक्ति थी। कुल मिलाकर यह नवीन युवक स्वतः ईश्वर निर्दिष्ट नेता प्रतीत होता और बिना कहे भी किसी को उन्हें पहचानने में देर नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार नरेंद्र नाथ के प्रति अगाध्य प्रेम के फलस्वरूप और नरेंद्र के व्यक्तित्व के प्रभाव से युवक भक्तों ने बिना मीन मेक के और निर्विरोध रूप में उन्हें उच्च आसन प्रदान कर दिया था।
2: श्री रामकृष्ण की सेवा करने के लिए दीर्घ काल तक एक साथ रहने तथा साधन भजन आदि के द्वारा वे आपस में प्रेम के जिस बंधन में बंध चुके थे, वे छिन्न नहीं हो सकता था। विशेष रूप से श्री रामकृष्ण के आदर्श की रक्षा करने के लिए नरेंद्र संगबद्ध होने की आवश्यकता समझकर बालकों को सदा उत्साह देने लगे। कोई कोई गृही भक्त उन लोगों को फिर से संसार में लौट जाने के लिए परामर्श देने लगे। कुछ बालक परीक्षा आदि के कारण अभिभावकों के अनुरोध से फिर से घर लौटने के लिए बाध्य हुए। नरेंद्र नाथ उस समय तक आर्थिक विषयों की भली भांति व्यवस्था ना कर सके, इसलिए उन्हें हर समय मठ में रहने का अवसर नहीं मिलता था। उनके मकान के बारे में जो मुकदमा शुरू हुआ था वो अभी समाप्त नहीं हुआ था, अतः नरेंद्र को बाध्य होकर ही घर में रहना पड़ता था। नरेंद्र की अनुपस्थिति में अभिभावक गण उनका उदाहरण देकर संसार में लौटने के लिए बालकों से आग्रह करने लगे। नरेंद्र स्वयं अपने परिवार की देखभाल करते थे, इसलिए उतने जोर के साथ वे प्रतिवाद ना कर सके।
0: इसी बीच एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। महात्मा रामचंद्र दत्त आदि कुछ भक्तों ने प्रस्ताव किया कि तुम लोग साधु सन्यासी हो, कब कहां रहोगे निश्चित नहीं है, श्री गुरुदेव के देहावशेष हमें दे दो, हम उसे उचित स्थान पर स्थापित करके मंदिर निर्माण करेंगे। राम बाबू ने काकुड़गाची के अपने बगीचे वाले मकान को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था, पर बालक भक्तों ने किसी भी तरह गुरुदेव के देहावशेष को ग्रही भक्तों को देना स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप एक बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ। शशि और निरंजन उस ताम्र पात्र के रक्षक थे, वे किसी भी तरह से किसी दूसरे को देने को राजी न हुए। राम बाबू भी उसे पाने के लिए दल बल के साथ प्राण प्रण से चेष्टा करने लगे। झगड़े की संभावना को निकट देख बुद्धिमान नरेंद्र ने अपने गुरु भाइयों को बुला करके कहा,
3: महापुरुषों के देहावशेष के बारे में शिष्यों के विवाद धर्म जगत में कई बार हुए हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु इसलिए उसी पथ का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम सन्यासी हैं। श्री रामकृष्ण के पवित्र जीवन से हमें जो महान आदर्श मिला है, उसी आदर्श को सामने रखते हुए जीवन को गढ़ना ही इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है और यही हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इस प्रकार की एक लज्जाजनक घटना की स्मृति कि श्री रामकृष्ण के शिष्यों ने देहावशेष पर कलह किया था, भविष्य की संतानों के लिए छोड़ जाना बहुत ही अनुचित है, अतः उन्हीं लोगों की इच्छा के अनुसार काम होने दो। यदि हम श्री रामकृष्ण का आदर्श कार्य रूप में परिणित कर सकें तो देखोगे समग्र जगत हमारे पैरों पर लौटेगा।
0: शशि महाराज ने नरेंद्र की इस बात का प्रतिवाद नहीं किया। देहावशिष्ट भस्म और अस्थि का कुछ भाग रख करके बाकी को तांबे के पात्र के साथ लौटाने के लिए वे सहमत हुए। अंत में शुभ दिन देख करके रामकृष्ण के ग्रही एवं सन्यासी भक्तों ने सम्मिलित होकर के काकुड़गाछी के योग उद्यान में पवित्र ताम पात्र को स्थापित कर दिया। इस तरह गुरु भाइयों में प्रेम प्यार का जो सूत्र पात्र हुआ था, उसे प्रशंसनीय उदारता के द्वारा नरेंद्रनाथ ने अंकुर अवस्था में ही निवशिष्ट कर दिया।
2: इस प्रकार एक प्रबल विरोध को दूर कर नरेंद्रनाथ कुछ निश्चिंत हुए। नरेंद्रनाथ सांसारिक अभाव आदि के कारण बाध्य होकर घर में रहते तो जरूर थे, पर रात्रि और दिन का अधिकांश समय वो वराहनगर के मठ में बिताया करते थे। कलकत्ते में भी नरेंद्रनाथ केवल घर के ही काम में लिप्त न रहते थे। जो सब सन्यासी युवक अभिभावकों के शासन से घर लौटकर परिवार वालों के साथ रहते थे तथा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, अवसर पाते ही नरेंद्र उनसे भी मिल लेते थे और संसार के साथ सभी प्रकार का संबंध छिन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते थे। नरेंद्र के उपद्रव से अभिभावक गण चिंतित और अधीर हो उठे। भय तथा धमकी आदि से वे नरेंद्र नाथ को रोक न सके।
0: नरेंद्र के उत्साह और आदर से प्रेरित होकर के युवक गण फिर से एक एक करके मठ में लौट आए। नरेंद्र नाथ भी जहाँ तक संभव था तत्परता के साथ परिवार की व्यवस्था करने लगे। मकान के अधिकार को लेकर के उनके संबंधियों ने जो मुकदमा चलाया था, उसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। खैर, उक्त मुकदमे की अपील में भी नरेंद्र की विजय हुई। इसके साथ दिसंबर महीने के शुरू में संसार के साथ सभी संबंधों को छिन्न कर वे स्थायी रूप से मठ में आकर के रहने लगे। बाबू बलराम बासु, नाट्य सम्राट गिरीश चंद्र बोस, श्री रामकृष्ण वचनामृत के मूल लेखक महेंद्र नाथ गुप्त और सबसे बढ़कर सुरेंद्र नाथ मित्र प्राण प्रण से नवीन सन्यासियों को सहायता और उत्साह प्रदान करने लगे।
2: बिना भोजन, बिना बिस्तर, सभी प्रकार से शारीरिक सुख की उपेक्षा करते हुए दिव्य भाव में विभोर कुमार सन्यासी गण श्री गुरुदेव के पवित्र चरित्र और उपदेशों की चर्चा, दर्शन शास्त्र, वेदांत, पुराण, भागवत आदि का पाठ तथा जप, ध्यान, कठोर तपस्या आदि में रत हो गए। श्री गुरुदेव के मृत्यु से व्यथित भक्तों के लिए अब नरेंद्रनाथ ही एकमात्र सहारा, आशा और भरोसे के केंद्र थे।
0: वे ही नव प्रतिष्ठित मठ के माता, पिता, रक्षक, भृत्य, पालक सभी कुछ थे। कभी धर्म चर्चा में लगे हुए भाइयों को डरा धमका कर भोजन करने के लिए बाध्य करते, कभी किसी को जबरदस्ती स्नान कराते, तो कभी लगातार रात भर से जागते हुए किसी ध्यान मग्न सन्यासी को बलपूर्वक पकड़कर बिस्तर पे लाकर के सुला देते। यदि वे इस प्रकार से प्रत्येक का ख्याल न रखते तो उनमें से कई कठोर तपस्या के कारण शरीर छोड़कर चले गए होते।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, सहमी हुई खामोशियों को जो साहस की आवाज दे क्रांति है, लालची चुप्पियों को जो इनकार की आवाज दे क्रांति है, घने अंधेरों के खिलाफ जो रोशनी की बात करे, सोए हुए वक्त को जो जाग उठने की आवाज दे क्रांति है। क्रांति का ऐसा ही उद्घोष लेकर आया 160 वर्ष पहले सन 1857 का साल। बैरकपुर बंगाल से उठा वो भूकंप राजस्थान की आग उगलती धरती को भी हिला गया। अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियां तो शुरू से ही चल रही थीं, जिससे आम जनता प्रभावित थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और सेना में चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग ने राजाओं और सैनिकों को भी झकझोर कर रख दिया। अंग्रेज राजस्थानियों की वीरता और शौर्य से भली भांति परिचित थे। उन्होंने राजस्थान प्रदेश पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नसीराबाद और नीमच में छावनियां स्थापित कर उनमें कंपनी के सैनिकों को तैनात किया। एरनपुरा और देवली में भी टुकड़ियां रखी गईं। क्रांति शुरू होने से पहले राजस्थान में कंपनी के 5,000 सैनिक थे, जो सभी भारतीय थे। 10 मई के मेरठ विद्रोह ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। राजस्थान के AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने स्थिति को भांपते हुए पत्र भेजकर राजाओं से सहायता मांगी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जानता था कि देश में जो स्थान दिल्ली का है, वही स्थान राजस्थान में अजमेर का है। वो चिंतित था कि अगर अजमेर को विद्रोहियों ने हथिया लिया तो फिर केंद्रीय ब्रिटिश सत्ता को बचा पाना कठिन हो जाएगा। पैट्रिक की चिंता सच साबित हुई। 28 मई सन 1857 को नसीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। नसीराबाद विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार ने अजमेर की 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया था, क्योंकि सरकार को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। नसीराबाद विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार ने अजमेर की 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया था, क्योंकि सरकार को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने बंबई के सैनिकों को नसीराबाद बुलवाया और पूरी सेना की जांच पड़ताल करवाई। सरकार ने नसीराबाद में कई तोपें भी तैयार करवाईं। इन बातों से नाराज सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नसीराबाद राजपुताने में 6 सैनिक छावनियों में सबसे प्रमुख छावनी थी। इन सैनिकों के पास भी रक्त कमल और रोटी का संदेश पहुंच चुका था। 28 मई को दोपहर 2 बजे नसीराबाद में तोप का गोला दाग कर सैनिकों ने युद्ध का डंका बजा दिया। नसीराबाद में मौजूद 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने अन्य भारतीय सैनिकों को साथ लेकर तोप खाने पर कब्जा कर लिया। इसका नेतृत्व बख्तावर सिंह कर रहे थे। वहां मौजूद अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने अश्वारोही सेना तथा लाइट इन्फेंट्री को स्वतंत्रता सैनिकों पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन आदेश मानने के स्थान पर दोनों टुकड़ियों के जवानों ने अंग्रेज अधिकारियों पर ही बंदूक तान दी। कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटवुड को वहीं ढेर कर दिया। इस संघर्ष में लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी बुरी तरह से घायल हुए। छावनी का कमांडर ब्रिगेडियर फेनविक भाग खड़ा हुआ और ब्यावर में जाकर शरण ली। नसीराबाद छावनी में अब भारतीय सैनिक ही बचे। वे सब के सब स्वातंत्र सैनिकों के साथ हो गए। इस क्रांति में सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम जनता, महिला और पुरुष सभी शामिल हो गए, जिसकी वानगी राजस्थान के लोक स्वरों में आज भी सुरक्षित है।

अंग्रेजों ने राजपूताने में 6 सैनिक छावनियां बना रखी थीं। नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, एरनपुरा और खैरवाड़ा। इन्हीं की सहायता से उन्होंने राजपूताना के लगभग सभी राजाओं को अपने वश में कर रखा था, लालच देकर उनसे संधि कर रखी थी। नसीराबाद विद्रोह की सूचना तुरंत ही नीमच पहुंच गई और 3 जून की रात नीमच के सैनिकों ने भी शस्त्र उठा लिए। रात 11 बजे 7वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने तोप से 2 गोले दागे। ये सैनिकों के लिए संकेत था। गोलों की आवाज आते ही छावनी को घेरकर आग लगा दी गई। नीमच किले की रक्षा के लिए तैनात सैनिक टुकड़ी भी विद्रोही सैनिकों के साथ हो गई। सरकारी खजाने पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। नीमच के क्रांतिकारियों ने सूबेदार गुरेस राम को अपना कमांडर, सुदेही सिंह को ब्रिगेडियर और दोस्त मोहम्मद को मेजर तय किया और देवली की ओर कूच किया। उन्होंने रास्ते में चित्तौड़, हमीरगढ़ तथा बनेड़ा में मौजूद अंग्रेज सेना को मार भगाया। शाहपुरा के महाराजा ने उनकी अस्त्र शस्त्र देकर मदद की। रास्ते में निम्बाहेड़ा की जनता और जागीरदारों का सहयोग भी मिला। जैसे ही भारतीय सेना देवली पहुंची, वहां मौजूद महीदपुर ब्रिगेड उनके साथ हो गई। अंग्रेज पहले ही वहां से भाग खड़े हुए थे। अब क्रांतिकारियों का लक्ष्य टोंक था, जहां का नवाब अंग्रेजों का वफादार था, लेकिन टोंक की जनता और सेना क्रांतिकारियों के साथ थी। जनता ने नवाब को उसके महल में ही बंद कर वहां पहरा लगा दिया। भारतीय सैनिकों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वे आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे दुखद पक्ष ये था कि जनता और छोटे ठिकानेदार तो क्रांतिकारियों के साथ थे, लेकिन अधिकांश राजघराने अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। कोटा के उस समय के महाराव अंग्रेजों के साथ थे। इस बात से जनता और कोटा कंटिजेंट की सैनिक टुकड़ी क्षुब्ध थी। 15 अक्टूबर सन 1857 को लगभग 3,000 सैनिकों के साथ लाला जयदयाल और मेहराब खान ने मेजर बर्टन के निवास को घेरकर गोलाबारी शुरू कर दी। संघर्ष में मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों सहित कई अंग्रेज मारे गए। रेजिडेंसी पर अधिकार कर क्रांतिकारियों ने राज्य के भंडार, शस्त्रागार और कोषागार पर कब्जा करते हुए पूरे राज्य को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। अब पूरे राजतंत्र पर लाला जयदयाल और मेहराब खान का नियंत्रण था। 6 महीनों तक कोटा राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों का ही अधिकार रहा। इस बीच कोटा के महाराव ने करौली के शासक मदन सिंह से सहायता मांगी और उधर मेजर जनरल रॉबर्ट्स भी कोटा पर अपनी सेना के साथ चढ़ आया। 5 दिन तक भारतीय सैनिकों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और अंग्रेज कोटा में घुसने में सफल हुए। लाला हरदयाल और मेहराब खान अपने साथियों के साथ अलग अलग दिशाओं में निकल गए। 1.5 साल अंग्रेजों को चकमा देने के बाद मेहराब खान गुड़गांव में

जिस तरह वीर कुंवर सिंह ने भारत की आजादी के लिए अपना रणरंग दिखाया, उसी तरह राजस्थान में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने भी अनुपम वीरता का परिचय दिया। ठाकुर कुशाल सिंह तथा मारवाड़ का संघर्ष 1857 की क्रांति का स्वर्णिम पृष्ठ है। पूरे राजस्थान में अंग्रेजों को धूल चटाने की एक व्यापक रणनीति ठाकुर कुशाल सिंह ने बनाई थी।

नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे से उनका संपर्क हो चुका था। छोटे ठिकानों से जोधपुर लीजन को जोड़कर कुशाल सिंह और केसरी सिंह अंग्रेजों के खिलाफ एक अजीय मोर्चाबंदी करना चाहते थे। इसीलिए जब जनरल मेहरबान सिंह की कमान में जोधपुर लीजन के जवान पाली के पास आउवा पहुंचे तो ठाकुर कुशाल सिंह ने सैनिकों का भव्य स्वागत किया। इसी के साथ आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गूलर के ठाकुर बिशन सिंह और आलय नियावास के ठाकुर अजित सिंह भी अपनी सेना सहित आउवा आ गए। लांबिया, बंतावास, रुदावास, रूपनगर और लासाणी जैसे अनेक स्थानों से सेनाएं आ गईं। आउवा स्थानीय सैनिकों की विशाल छावनी सा बन गया। सैनिकों ने मिलकर ठाकुर कुशाल सिंह को अपना प्रमुख चुन लिया। अंग्रेज चिंतित हो उठे। उन्होंने जोधपुर नरेश को आउवा पर हमला करने का हुक्म दिया। भयंकर युद्ध हुआ। जोधपुर सेना को भारी नुकसान हुआ। इस सेना की दुर्गति का समाचार मिलते ही जॉर्ज लॉरेंस ने ब्यावर में एक सेना खड़ी की और 18 सितंबर को आउवा पर हमला कर दिया। कुशाल सिंह किले से निकले और अंग्रेजों पर टूट पड़े। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह और स्वातंत्र वाहिनी के वीरों ने अद्भुत वीरता दिखाई। चेलावास के पास हुए इस युद्ध में लॉरेंस की करारी हार हुई। मॉकमेसन युद्ध में मारा गया। इस बीच डीसा की भारतीय सेना भी क्रांतिकारियों से मिल गई। कुशाल सिंह योजनाएं बनाकर युद्ध करते रहे। जनवरी में मुंबई से एक अंग्रेज फौज सहायता के लिए अजमेर भेजी गई, जिसके सहयोग से 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने ठाकुर कुशाल सिंह पर धावा बोला। दोनों ओर से भीषण गोलाबारी होती रही, लेकिन अंग्रेज अधिक संख्या में मर रहे थे। होम्स ने पैसे का लालच देकर रात में किले का दरवाजा खुलवाया और किले पर कब्जा कर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह आगे युद्ध जारी रखने का संकल्प लिए दूसरे दरवाजे से निकल गए। कोटा और आउवा में हुई पराजय से राजस्थान में स्वातंत्र सैनिकों का अभियान लगभग समाप्त हो गया, लेकिन कुशाल सिंह ने हार नहीं मानी। वो अंत तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। इसीलिए कुशाल सिंह मारवाड़ में एक महानायक की तरह याद किए जाते हैं, जिनकी उपस्थिति आज भी वहां के लोकगीतों में वीरता का चटख रंग घोल रही है। वड़िया वाली गोचर माए कालो लोग पड़ियों ओ, राजा जीरे भेड़ो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो हारे काली टोपी रो। इस तरह 1857 के संघर्ष में नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, आउवा, देवली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, टोंक, कोटा, अजमेर और जोधपुर के पराक्रम ने राजस्थान के योगदान को अमिट बना दिया। राजस्थान में 1857 के संघर्ष का सबसे दुर्भाग्यशाली पक्ष ये था कि यहाँ स्वराज्य सैनिकों को अधिकांशतः अपने ही राजाओं से युद्ध करना पड़ा। लेकिन इसका सबसे अच्छा पक्ष ये था कि आम जनता हमेशा क्रांतिकारियों के साथ थी। जनमानस में आजादी का स्वप्न जाग चुका था और अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद उस रोशन सपने का सच हमारे सामने आया 15 अगस्त 1947 की तारीख बनकर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।
1: ये वतन का।
2: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
3: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्यों रे शैतान, तूने क्यों बताया मैं गाना जानती हूँ?
1: जरा तारीफ कर रही थी, वरना तुम गाती क्या हो? रोती हो पिया बिन नाही चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय।
0: क्यों रे, मैं ऐसा गाती हूँ?
1: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ।
0: और तुम?
1: मैं

0: किससे सीखा तूने ये?
1: अच्छा है?
0: हाँ बहुत अच्छा है।
1: हेडमास्टर साहब से?
0: तब तो बहुत बुरा है।
2: नमस्कार, मी मोनाली सावगत। तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ। इन दिनों हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स से। भाई, जीवन में ऐसा क्या हुआ कि हम जीना ही भूल गए? वो स्किल्स जो शायद अभी तक नहीं जानते थे, हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। कितनी तरह के थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट करते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट क्या है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमने बात की थी कि 7 तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और उनके इम्पैक्ट्स हमारे जीवन पर क्या होते हैं। आगे बढ़ें और हमने जब राइट थॉट्स की बात की तो 10 रॉन्ग थॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रॉन्ग को राइट कैसे करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बार फिर रिकैप करते हैं, क्योंकि जब भी पढ़ाई शुरू की जाती है, नई स्किल सीख रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हमारे पास रजिस्टर होने में। वो जो 10 आपने कहे थे कि रॉन्ग थॉट्स हैं जिनको राइट करना ज़रूरी है, चाहे हम पॉजिटिव नहीं भी सोच रहे लेकिन ये रॉन्ग जो है वो राइट किया जा सकता है, तो कौन से हैं वो थॉट्स?
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार समझ में आ जाए कि ये 10 कौन से हैं, कौन से मिरर्स हम यूज़ करते हैं, और फिर तब तो अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि भी कौन से मिरर में मैं अपने को देख रहा हूं। सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग, कि हम छोटी बात को बड़ी बना करके देखते हैं। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच। हम परिस्थिति को ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं, एक्सट्रीम्स में देखते हैं, जो भी बुरा है। वास्तव में परिस्थिति जो है वो शेड्स ऑफ ग्रे है, उसको सही रूप से देखना चाहिए। तीसरा है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ बात हुई तुरंत निर्णय पर आ जाते, फिर उसकी भी बुरी इफेक्ट होती है। हमें थोड़ा वक्त देना है, अच्छी तरह से परिस्थिति को एनालिसिस करें और फिर उसके बारे में आगे हम सोचें तो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। चौथी बात है ऑलवेज मेंटेलिटी, कि जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब मेरे साथ ही होता है, वो ऑलवेज मेंटेलिटी भी बुरी है। पांचवी बात है वाई मी एटीट्यूड, कि कुछ समस्या हुई तो मुझे ही हुई, हमेशा हमें नहीं होती है। कुछ समस्याएं बल हमें भी होती है लेकिन औरों के सामने भी समस्याएं आती है, उस प्रकार से हमें परिस्थिति को देखना चाहिए। छठी बात है कि हम देखते हैं कि सर्चिंग नेगेटिविटी, कुछ बात हुई उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ निकालते हैं, बल अच्छा बहुत ज़्यादा हुआ है, बुरा तो बहुत थोड़ा हुआ है,
0: तब भी हम वो ढूंढ रहे हैं।
2: हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग में हम पॉजिटिव को ढूंढते हैं, परंतु या सर्चिंग नेगेटिविटी में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। सातवा है नॉटिंग, कि फोर्सिबली कोई बात को भूलने की कोशिश करते, वह हमें नहीं करना है। वास्तव में क्या छोड़ना है वह नहीं सोचो, परंतु क्या पकड़ना है उसको सोचो। हमें कहाँ जाना है उसके बारे में विचार करो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आठवीं बात है कि डिसक्वालीफाइंग द गुड, अच्छा ऑलरेडी हुआ है लेकिन आपने उसको डिसक्वालीफाई किया। नवीं बात है लेबलिंग, कि हम लोगों को भी लेबल करते हैं और लेबलिंग के कारण भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस होते हैं। और दसवां है फ्लाई मेंटेलिटी, कि जीवन में अच्छा भी है बुरा भी है, मक्खी कैसे गंदगी पर ही बैठती है ऐसे हमें भी आदत हो जाती है, हम गंदे पर ही बैठते हैं। ये 10 बातें अगर व्यक्ति एक बार याद रख ले अच्छे से और सारे दिन में जो भी घटनाएं होती, फिर सोचो कि उसमें से मैंने कौन से मिरर में अपने आप को देखा। कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि एक परिस्थिति में एक के साथ 2 या 3 मिरर में भी आप अपने आप को देख रहे हैं, वो तीनों को पहले पहचाने और फिर उसमें परिवर्तन करें, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव राइट थिंकिंग की भी हमें आदत हो जाएगी।
0: शिवानी, ये जो 10 रॉन्ग सडनली हमारे सामने आए हैं, इट्स एन अमेजिंग रेवोल्यूशन, लेकिन अगर नहीं चेंज हुआ सो व्हाट्स रॉन्ग?
1: क्या ये थॉट नहीं चेंज हुआ तो बहुत सारा उसका आगे बहुत सारा इफेक्ट आएगा। सारा दिन में हम, जैसे भाई साहब ने कहा, 35,000 to 50,000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और आज दिन तक हम अवेयर भी नहीं थे कि वो 7 टाइप्स की हैं, उस हर टाइप में भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं। हम ये भी अवेयर नहीं थे कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर का जो पूरा प्रोसेस था हमें अवेयरनेस ही नहीं थी उसकी। एंड फिर जब हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, वी वर ट्राइंग टू चेंज द रिजल्ट विदाउट ट्राइंग टू वर्क ऑन द सोर्स ऑफ दैट रिजल्ट, कि वो रिजल्ट क्रिएट क्यों हुआ। चाहे वो रिजल्ट ये था मैं फील कैसा कर रहा हूँ, चाहे वो रिजल्ट ये था मैंने बात ऐसे क्यों कर दी, चाहे वो रिजल्ट ये था कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, चाहे रिजल्ट ये था कि मैं वर्क में क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा। बहुत बार लोग कहते हैं मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं होते, फिर भी मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। सो वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग। जब वो प्रोडक्ट बाहर निकल कर आया, बिकॉज वी वर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्ट जब वो अंदर डिवेलप हो रहा था अभी, बाहर तो फिर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट निकला। तो जब हम अपने ऊपर ये चेकिंग करने शुरू करते तो हम देखते कि वो एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरता। थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हैं, इवन जब रात को सो रहे हैं तो भी चल रहे हैं, इवन दो इट्स एट अ लिटिल स्लो स्पीड। जैसे ही थॉट्स क्रिएट होती, इट इज़ फॉलोड बाई फीलिंग, हमें महसूस होगा। इसीलिए जैसे आपने कहा था कि थॉट तो पता ही नहीं चलती, ये पता चलता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर आ गया। फर्स्ट स्टेज की तो मैं अवेयरनेस ही नहीं थी, ऑलरेडी प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज से उठ के सेकेंड डिपार्टमेंट पर आ चुका है, फीलिंग के डिपार्टमेंट पर। लेकिन अगर फीलिंग के डिपार्टमेंट पर भी मैंने चेक कर लिया, यू नो इट्स लाइक अ प्रोसेस प्लांट, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर सेकेंड स्टेज पर भी आपको पता चल गया कि फॉल्टी है, इट्स ईजी ना। आप तुरंत फर्स्ट स्टेज पर वापस जाएंगे एंड वहीं के वहीं आप अपने प्रोसेस प्लांट को चेंज कर लेंगे। हम फीलिंग पर भी उसको चेक नहीं करते। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कई बार पूरी दुनिया के बारे में, इट डिवेलप्स माई एटीट्यूड, मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड धीरे धीरे, जो कई बार हम कहते हैं इसका एटीट्यूड ही बहुत नेगेटिव है, इसको जो देखो इसको ये नेगेटिव दिखाई देता है, एटीट्यूड
0: चिंता वाला है,
1: इसका ये एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड है मतलब क्या कि ये तो है ही ऐसा, यू नो
0: मतलब मैंने एक बार एंजाइटी की फीलिंग क्रिएट की, घबराहट की हुई, उसके बाद आगे भी वही होती जाएगी, आगे भी। सो अल्टीमेटली हर सिचुएशन में मैं घबराऊंगा।
1: इट माइट नॉट बी इन हर सिचुएशन बट इट इज डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन। धीरे धीरे वो जाएगा व्हेन इट विल कम टू हर सिचुएशन। अभी एटीट्यूड मतलब लेट्स से आपसे मैं जितनी बार मिली मैंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट क्रिएट किया, तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति जो एटीट्यूड है वो उस क्वालिटी का बन, हाँ आपके प्रति, अभी वो सबके प्रति नहीं, अभी सिर्फ वो आपके प्रति है। लेकिन अब जैसा मेरा एटीट्यूड आपके प्रति हो जाएगा वो फिर मेरे एक्शन में आएगा। यू नो इफ आई से यू नो शी इज अ वंडरफुल पर्सन, नाउ दिस इज माई एटीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली मेरा आपसे बात करने का तरीका, आपकी हर बात को परसीव करने का तरीका, आप कुछ भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये है, ये बहुत अच्छे हैं। एंड यही अगर मेरा एटीट्यूड उसका ऑपोजिट हो, आप कितनी भी अच्छी बात कहेंगे मेरे को उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड डिफरेंट डिवेलप हुआ हुआ है। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम मैंने एटीट्यूड कौन सा डेवलप किया हुआ है आपके बारे में। जैसे भाई साहब ने कहा कौन से शीशे के थ्रू हम हर चीज़ को देखते हैं, एटीट्यूड इज़ अ बिग मिरर दैट वी क्रिएट, जिसके थ्रू हमें हर चीज़ उस रंग के फिर दिखाई देती है। अब एटीट्यूड लेवल पर जब आ जाती बात तो हम कहने लगते हैं मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज़ माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। यू नो कई बार कहते हैं इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ही बहुत केयरलेस है, ये सीरियसली लेते ही नहीं है, दैट्स माई एटीट्यूड। लेकिन बना कैसे? Thought, feeling, attitude now comes out into action. Action मतलब कोई word या कोई physical कर्म, action. अब जैसा मेरा action होगा, पर कई बार मैं वही action को बार बार बार बार repeat करती, then it becomes my habit. Once it has become my habit, जिसको हम कहें, you know, my संस्कार, then it's not with one person,
0: ऐसी ही हूँ.
1: ये अब मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है। शुरू शायद वो किसी एक से हुआ था, जो कई बार हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि कई बार हमें आदत है कि ऑफिस में काम कराने का तरीका कैसा है, गुस्सा किया, गुस्सा किया, गुस्सा किया, काम करवाया। तो घर पे भी बच्चों को से वो कुछ करवाने का तरीका कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों के साथ भी कैसा हो जाएगा, वैसा। क्यों? बिकॉज गुस्सा करना ये मेरा संस्कार बन चुका है, गुस्से से काम करवाना ये मेरा संस्कार बन चुका है, देन इट विल नॉट रिमेन विद दैट पर्सन स्पेसिफिक, देन इट इज विद मी, बिकॉज अब ये मेरा पैकेज है, दिस इज हु आई एम, ये हर एक के साथ ये होगा. एंड आई हैव लॉट ऑफ संस्कार्स, तो ये जो मेरे सारे संस्कार्स हैं, दिस इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी. तो हर थॉट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि फाइनली इट इज़ क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी, ये मेरा व्यक्तित्व है. थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी. अब हम जाते हैं पर्सनैलिटी वर्कशॉप्स के अंदर, हम जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर, क्या करने के लिए, मेरी पर्सनैलिटी चेंज कर दो. फिजिकल नहीं, इट्स दिस पर्सनैलिटी विच इज़ रेडी, स्टार्ट हुई थी थॉट से. आपको चेंज करना है कुछ भी, you will have to start at the level of thoughts. And then the most important part, ki jaisi meri personality hogi, har step pe main wo personality ko lekar jaunga, to har step pe jaisi meri personality hogi, wo energy bahar jayegi, jo energy bahar jayegi wohi energy wapas aayegi, jab energy wapas aati hai hum usko destiny kehte hain. Mere saath jo hota hai wo mera bhagya hai, तो मेरी थॉट मेरा भाग्य क्रिएट करती है. और अगर मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूँ तो मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूँ, क्योंकि भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य इज जस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी, बट दे आर अ रिटर्न ऑफ द एनर्जी दैट आई हैव सेंट आउट. द मिनट आई अंडरस्टैंड दिस, दैट आई क्रिएट माई डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू द थॉट्स आई क्रिएट, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है उसके ऊपर, क्योंकि फिर आपको रियलाइज होता है कि सारी पावर आपके पास है, सारा कंट्रोल आपके पास है. चेंज द कंट्रोल, डेस्टिनी विल चेंज टोटली.
0: आई थिंक द वे ही आल्सो सेड कि आप एक्चुअली अट्रैक्ट करते हो उन सारी घटनाओं.
1: बहुत सारे भाई बहने कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये कैसे वर्क करता है, वो इस तरह से वर्क करता है कि जैसे थॉट आप क्रिएट करोगे, धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब जो कर्म आप करोगे, जब हमें लॉ ऑफ कर्म समझ में आता है कि जो कर्म मैं करूँगा उसी का रिटर्न मुझे मिलेगा. मेरे कर्म की क्वालिटी किस बेसिस पर है, जो मेरी पर्सनालिटी की क्वालिटी है. तो इसका मतलब कर्म की क्वालिटी पर्सनालिटी की क्वालिटी से, वो थॉट की क्वालिटी से, तो कर्म का रिटर्न भी थॉट की क्वालिटी से. तो भाग्य अपने आप आपने ग्रेविटेट कर लिया ना वो भाग्य को अपनी तरफ,
0: जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप दे रहे थे बेसिकली,
1: दैट इज कमिंग बैक टू इन रिटर्न.
0: मतलब जो मैंने क्रिएट किया वही मैंने पाया.
1: यस, अब थोड़ा सा और एक स्टेप पर देखना है कि अगर थॉट्स मेरी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है, तो थॉट्स की सोर्स क्या है. पहले भी हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ध्यान से कि नेगेटिव न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ बहुत ज़्यादा ना पढ़े, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है थॉट्स पे. गॉसिपिंग की आपने पहले बात की कि क्यों नहीं गॉसिप करें, इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट करती है. सेकेंड है बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारी हमारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. कि जैसे बात हुई कि गुस्से से काम करवाना, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करो तो काम जल्दी हो जाता है, एक बिलीफ सिस्टम है. ये बिलीफ होगा, थॉट उसी क्वालिटी की चलेगी, पर्सनालिटी वही बनेगी, डेस्टिनी भी फिर उसी के हिसाब से होगी. तो इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थॉट्स चेंज होती जाएंगी, भाग्य बदलता जाएगा.
0: बिल्कुल, एक बहुत नया एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं हम कि भाग्य, जिसे हम अभी तक कह रहे थे कि बहुत सारी और बाकी चीज़ों पर हैं सिचुएशंस, तो आज जो बात है कि थॉट की पावर जो है वो चेंज कर सकते हैं.
2: और एक बात ये भी करनी चाहिए कि राइट थिंकिंग अगर हमें डेवलप करना है, सचमुच प्रैक्टिस करनी है, तो एक चार्ट लिखना चाहिए.
0: वो जो रॉन्ग्स हैं, 10 रॉन्ग्स
1: उसको राइट में करें,
2: मिलके हाँ उसको ऐसे करे कि भी सारे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी पहले पहले लिखो, मेजर ना भी लिखो, तो ये 10 घटनाएं हुई, उस समय मुझे फीलिंग्स क्या हुई, कि निराशा की फीलिंग हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या हुई, क्या फीलिंग्स आपको हुई. फिर थर्ड कॉलम में लिखो कि मेरे रॉन्ग थॉट क्या थे,
0: जो मैं 10
2: हाँ, जो 10 मिरर्स थे वो कौन से मिरर में मैंने उसको फिट किया, उसको लिखो कि ये मेरे रॉन्ग थॉट थे. फिर ये लिखो कि भी राइट थॉट क्या होना चाहिए, कि भी यह घटना फ्यूचर में हुई तो मैं ये राइट थॉट करूंगा, उसे फिर रिपीट करिए कि बस फ्यूचर में घटना ही मैं यही करने वाला हूँ, तो आत्मा में भी वजह आएगा कि फ्यूचर में होगा, आपने अपने आप को प्रोग्राम दिया कि मैं यही राइट थॉट करने वाला हूँ। ऐसी प्रैक्टिस 3-4 सप्ताह भी करने लगो, ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग करेंगे।
0: तो ये हर रोज शाम को करें या हर एक घंटे बाद करें?
2: एक्चुअली
0: बिकॉज़ वो याद ही नहीं रहेंगे घटनाएं।
2: टाइम मिले तो भले 2-3 घंटे बाद भी करो। और कोई कहे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, सारा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो बोले शाम को भी करिए।
1: बेसिकली एक छोटी सी नोटबुक अगर आपके पास है, यू शुड जस्ट स्क्रिबल इट डाउन इमीडिएटली,
0: क्योंकि याद नहीं रहता फिर।
1: एक्चुअली उसी टाइम अगर करते हैं ना, तो एक तो उस टाइम आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होने से बचा लेते हैं। लेट्स से अभी मेरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई और मैं आधा पौना घंटा उसी के बारे में सोच रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ माइंड जा रहा है। क्यों नहीं, लेट मी डू दिस एक्सरसाइज उसी टाइम, सो दैट आई इवन सेव दैट हाफ एन आवर ऑफ एनर्जी ऑफ डिप्रेशन।
0: पहली चीज तो ये कि ये ब्लेम गेम जब खत्म होगा ना, अभी तक भी जो बहुत मेजर वाले इश्यूज आते हैं, इट्स नेवर लाइक कि मैंने क्रिएट किया।
1: सी, इशू बहुत बड़ा हो सकता है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, किसी ने चीट किया मुझे, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो बच्चा है, चीट किया मुझे, इट्स अ बिग इशू, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी थॉट तो मुझे क्रिएट करना है ना।
0: वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जो फीलिंग आई है, जो फीलिंग ऑफ हर्ट, रिजेक्शन या जो कुछ भी, एंगर जो भी है, वो मैंने क्रिएट की, ये एक्सेप्टेंस और रजिस्ट्री होना, ये भी अभी वक्त लग रहा है। Why does it take time? I don't want to take the onus or what it is.
1: Because we were not aware also, na? हम देख ही नहीं रहे थे कभी भी। जितना मैं बाहर देखती हूँ, मुझे हर चीज़ सिर्फ बाहर ही दिखाई देती है। मुझे अभी तक दिखाई दे रहा था, कुछ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, कुछ नॉट सो अच्छा, मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा। तो ऑटोमेटिकली मैं कंक्लूजन क्या करूँगी कि ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है, ये सिचुएशन ऐसी फीलिंग लाती है। दिस इज़ लाइक एन ऑटोमेटेड मोड, कि ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, आपकी कोई चॉइस नहीं है। मशीन और ह्यूमन बीइंग में क्या फ़र्क है? मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है। ह्यूमन बीइंग मींस एट एवरी स्टेप अ चॉइस, कि भले किसी ने बटन प्रेस किया भी है, आपको ऑन होना है या ऑफ होना है, इट्स योर चॉइस, नाउ डिसाइड। आपको ऑफ होना है, ऐसे होके बैठ जाना है, ऑन होना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और इस केस में तो सिर्फ दो चॉइसेस नहीं है, ऑन एंड ऑफ, बहुत सारे चॉइसेस है। एंड जितना हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें लगता है कि हर सिचुएशन में एक्चुअली कितनी सारी चॉइसेस थी। हमने हमेशा वो प्रोग्राम्ड चॉइस ले ली कि इन्होंने ऐसा कहा तो बुरा तो लगना ही है, गुस्सा तो आना ही है। सो वी वर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी, ऑफ एनी अदर चॉइस ऑन दैट।
0: इनोवेशन,
1: क्रिएटिविटी।
2: और कारण है कनुप्रिया बहन की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बस मुख्य बात है कि हर बात के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इवन मेरे थॉट के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल।
0: मैं कैसा फील कर रही हूँ, कैसा वो थॉट क्रिएट कर रही हूँ, इसकी जिम्मेदारी अगर मैं ले लूँ,
2: बस एक ले लो, फिर और सब कुछ
0: सारे हो जाएंगे।
1: और अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज स्ट्रगल हो रही है। सी, पेरेंटिंग स्ट्रगल, जॉब स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, हर चीज़ में, तो एक रिलेशनशिप्स स्ट्रगल, हर एक चीज़ में क्यों स्ट्रगल हो रहा है? क्योंकि मैं जो ये सारी जिम्मेवारियाँ उठा रहा हूँ, मैं पहले अपना ध्यान नहीं रख रहा। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि वो थॉट बीज है, ये पूरा उसका वृक्ष है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। अभी हम निभा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो राइट तरह से निभ रही है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना, लेकिन शायद मेरा ही थॉट और व्यवहार मेरे बच्चे को इमोशनली वीक कर रहा है, तो देन एम आई फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात, शायद आई एम क्रिएटिंग डैमेज, आई एम क्रिएटिंग अ डैमेज, आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्स्टिकल फॉर माई चाइल्ड्स ग्रोथ, तो दैट आई हैव टू क्वेश्चन। बट वाई विल आई नॉट बी एबल टू डू दैट? पेशेंस नहीं है, कि मैं नहीं प्यार से समझा सकता, मुझे गुस्सा तो आ ही जाता है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी ली है।
0: ओके, अपनी जिम्मेवारी नहीं ली, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कैसे थॉट क्रिएट कर रही हूँ, उसकी नहीं ली। इट्स नॉट दैट ईजी। सी अगेन, अभी भी मैं अगर सोचूं, मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, और मैंने थॉट क्रिएट जाने की भी कोशिश की कि मैं जाके देखूं कि क्या है थॉट, तो वो थॉट जो है वो है, क्योंकि मैं सोच रही हूं कि वो सिचुएशन है। वो अब उसको मुझे ठीक करने के लिए आई विल वेट फॉर द सिचुएशन टू कम, और आई कैन से इधर आई गिव अप देन एंड आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स। लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ है वो इशू। ये चेंज कैसे होगा ये थॉट?
2: इसके लिए एक बात जो फाउंडेशन समझना चाहिए कि परिस्थितियों में जान नहीं होती है, जो हम
0: थॉट में जान है।
2: हाँ,
1: एनर्जी तो
2: वही है ना। सिचुएशन आर लाइफलेस, हम जो उसको लाइफ देते हैं वो अपने थॉट्स से देते हैं। तो बस थॉट्स को मुझे चेंज करना है और वो मेरे कंट्रोल में है।
0: क्योंकि हमने उस पे जाके
2: एंगल को
0: देखा।
2: तो मैं चेंज कर ही सकता हूँ, कौन से एंगल से मैं आपको देख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट लेट मी चेंज द एंगल।
1: और उसके लिए अगर हम कॉन्शियसली प्योर और पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, जबकि कोई परिस्थिति भी नहीं है, अगेन वी थॉट फर्स्ट स्टेप वॉज जब कोई परिस्थिति नहीं है चेक करो कैसी थॉट्स है, दूसरी स्टेप जब कोई परिस्थिति नहीं है कॉन्शियसली पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं, यू नो चैनलाइजिंग माई माइंड इन द राइट डायरेक्शन। गिरीश भाई ने पहले कहा था एक बार कि जिस डायरेक्शन में थॉट्स फ्लो होंगे ग्रूव्स उसी तरह बनते जाएंगे, पानी जैसे फ्लो होगा। तो अब हम कुछ समय रोज निकालें अपने लिए कि हम पानी को डिलिब्रेटली उस तरह से चैनलाइज करें जिस तरह से वी वॉन्ट माई माइंड टू वर्क। अपने आप नहीं हो जाता है, सिचुएशन आने पर नहीं हो पाता है, तो तब करना होगा व्हेन एवरीथिंग इज साइलेंट। और इसीलिए मेडिटेशन हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, कि सुबह उठ के कुछ पढ़े बिना, किसी से बात करे बिना, कुछ भी और करे बिना, क्योंकि जैसे ही आप यू नो एक्टिविटी में चले गए आपका ये माइंड फिर हो जाता है। कई बार तो आप चेक करें जब आप सुबह उठते हैं पिछले दिन की बातें वो ऑटोमेटिक अभी भी चल रहे हैं, लाइक अ कमेंट्री वो माइंड में चलता जा रहा है।
0: पहली आंख खुलती है और वो सारा का सारा बैकलॉग सामने।
1: एक्चुअली वो सारा का सारा बैकलॉग सामने नहीं आया, नींद में भी वो चल रहा था। अभी तो आंखें खुली सिर्फ, इसीलिए उठने के बाद आप रेस्टेड फील नहीं करते, आप फील नहीं करते कि आप चार्ज थे, क्योंकि रात को सोने से पहले हमने उसको स्लो डाउन नहीं किया था, आंखें बंद हो गई, शरीर सो गया, माइंड अभी भी चल रहा था। सुबह जैसे ही आंखें खुली वीसी के वही सीडी बज रही है अंदर, वही वाले गाने सारे बज रहे हैं अंदर, वो रात भर भी बज रहे थे। आज मेजोरिटी लोगों से आप पूछो सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन किसका करता है, यू नो जो आपने टाइम का अलार्म लगाया है 5 मिनट और किसका मन करता है सोने को, मेजोरिटी विल से यस,
0: सब बोलेंगे यस।
1: नाउ व्हाई आप 5 घंटा 6 घंटा सो लिए उसके बाद 5 मिनट और क्यों सोना है, क्योंकि जैसे ही उठते हैं वी स्टिल फीलिंग वेरी टायर्ड, बॉडी ठीक है बट माइंड अभी भी बहुत थका हुआ, क्योंकि वह पूरी रात भी चल रहा था कंटिन्यूसली। तो इसलिए अपनी थिंकिंग पर वर्क करें कॉन्शियसली रात को सोने से पहले एंड सुबह उठते ही, नींद बहुत अच्छी होगी, सुबह की तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो सारा दिन का काम ईजी हो जाएगा उसको करने के।
0: डॉक्टर पटेल, यहाँ हम अलग अलग थॉट्स को देख रहे थे, अभी एलिवेटेड थॉट्स पर हम अभी आ रहे थे कि वो उनमें कौन से थॉट्स शामिल हैं।
2: अभी एलिवेटेड थॉट जैसे हमने देखा टॉक्सिक थॉट, वो नेगेटिव इफेक्ट में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट को देखें तो एलिवेटेड थॉट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो एलिवेटेड थॉट है वो हाई एनर्जी थॉट है, उसमें ऊर्जा की हमारी एनर्जी भाई होती, आप खुद भी उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं। साथ साथ जो एलिवेटेड थॉट्स है वो जैसे टॉक्सिक थॉट्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, ऐसे एलिवेटेड थॉट्स है वो पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एंडोरफिन्स, नॉर एंडोरफिन्स, डोपामाइन, सीरोटोनिन, यह सब अच्छे केमिकल्स है कि जिसके कारण ये जो फील गुड की बात थी वह फीलिंग्स आती है, तो एलिवेटेड थॉट से एक केमिकल रिलीज होते हैं, इसके कारण यह सबसे ज्यादा पावरफुल है।
0: और इनमें कौन से थॉट शामिल होंगे, कौन से वो थॉट्स हैं?
2: अभी एलिवेटेड थॉट्स किसको कहेंगे कि बी नो व्हिच आर रियली एलिवेटेड, एक रियल इसमें हम जो डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं, उससे भी जो ऊपर के थॉट है, सबसे पहले तो सेल्फ के बारे में कि भी सेल्फ की एलिवेटेड लेवल क्या है, कि मैं रोल कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं रेस कॉन्शियस भी नहीं हूँ, स्किन कॉन्शियस नहीं हूँ, आई एम अ सोल, आई एम दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, उसमें माइंड को स्टेबिलाइज करना वह सबसे पहला एलिवेटेड थॉट है। फिर उससे आगे अगर देखना है कि उससे आगे एलिवेटेड थॉट है कि आत्मा के गुण मेरे कौन से है, कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, शांति का खुट खजाना मेरे में समाया हुआ है, शांति को कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम सही चीज को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, शांति अच्छी चीज है परंतु हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वह है हमारे अंदर ही। यह थॉट अगर कि मैं आत्मा ही शांति से भरपूर हूँ, आत्मा के सातों गुणों का अखूट खजाना मुझ में समाया हुआ है, यह दूसरा एलिवेटेड थॉट है। और थर्ड एलिवेटेड थॉट कि परमात्मा से मेरे संबंध क्या है, मेरा सोर्स है वह परमात्मा ही है, बस परमात्मा से मुझे सर्व शक्तियों को प्राप्त करना है, वह सही सोर्स होगा तो भी सब प्राप्तियां सहज हो जाएगी। आज हम टेम्परेरी छोटी छोटी चीजें लेने के लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भी किसी को पानी दे दो उससे तो अच्छा है कि भी पानी दिया एक दिन प्यास बुझी, उसको नल दिखा दो कि भी नल कहाँ है तो जीवन भर उसकी प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को समझना, उससे मन बुद्धि का संबंध जोड़ना, वह सबसे बड़ा एलिवेटेड थॉट है।
1: बहुत सारे भाई बहने जो टीवी का प्रोग्राम ये काफी समय से देख रहे हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। ये थॉट हम जितनी बार अपने साथ क्रिएट करते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग गुड इमिजिएटली। कोई परिस्थिति भी आती है तो हम तुरंत अपने आप को ये थॉट क्रिएट करते, आई एम अ पीसफुल सोल। तो थॉट चेंज की, फीलिंग चेंज हो गई, कर्म चेंज हो गया, डेस्टिनी चेंज हो गई, हमने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम। लेकिन ये आई एम अ पीसफुल सोल उस टाइम कैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे, अगर मॉर्निंग में जब कोई परिस्थिति नहीं थी तो 5 मिनट बैठकर अपने माइंड को ये तरह की थॉट्स क्रिएट करने की प्रैक्टिस कराई थी। एंड एलिवेटेड थॉट्स क्यों अच्छी लगती हैं, क्योंकि दे आर द ट्रूथ। तीनों बातें जो बताई कि आई एम अ सोल, सोल की क्वालिटीज और आत्मा का पिता परमात्मा कौन, ये तीनों चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है। बाकी सारी चीज़ें लेबल्स हैं, अक्वायर्ड हैं, ये तीनों चीज़ें परमानेंट हैं। बाकी सब चीज़ें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती है, टेम्प्ररी है, इसलिए हमेशा फियर बना हुआ है। जैसे ही आप ट्रुथ पर आ गए जो इटर्नल है, तो फियर एंड डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ऑटोमेटिकली फीलिंग कैसे आएगी, फील वेरी गुड। तो एवरी मॉर्निंग सिट एंड शेयर विद योर सेल्फ, अपने आप को समझाओ मैं कौन हूँ। गुस्सा करने से काम होता है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल। तो पीसफुल सोल काम कैसे कराएगा,
0: पीसफुली।
1: दिस इज सेल्फ टॉक, सेल्फ लर्निंग, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट लाइफ स्किल्स। कि अपने आप को वो स्किल सिखाना कि आज सारा दिन में मैंने जो कुछ करना है मुझे इन स्किल्स को सीख कर फिर करना है, एवरीथिंग विल चेंज देन।
0: तो आप दोनों हमारे साथ हैं, थैंक यू। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: अभी तक जिस तरह से जैसे शिवानी ने भी कहा कि एक पूरी साइकिल है, तो मेरा अगर एटीट्यूड है, मेरे थॉट्स के कारण मेरा एटीट्यूड है किसी के प्रति या उस वो कर्म में आता है, उस एटीट्यूड फिर फीलिंग पीछे जाएं और थॉट कैसे बनता है वो उसको देखना शुरू करें। ये है वो स्किल, ये है वो टेक्निक जो अभी तक कहीं मिसिंग थी। लेट्स लर्न इट, लर्न करेंगे उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जीवन परिवर्तित होगा। तो इस परिवर्तन को महसूस करें। कोई बात मन में आ रही है, आप हमारे साथ फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो। चल,

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: आला आला आला
4: अहो काय आला
3: आला आला आवाज रेडियो 106.8।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडिओ स्टेशन. खुश रहो, खुशियां बांटो.
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
3: थैंक यू.
2: हम लोग बात कर रहे थे आदतों की, जैसे कि संस्कार, हैबिट्स, नया ग्रुव बनाना, उसको नई आदत से रिप्लेस करना. तो मैं सोच रहा था कि जब मैं भी कॉलेज में, स्कूल में सीख लिया था सिगरेट पीना, फिर फिल्म इंडस्ट्री में तो पैकेट भी रखने लग गया था, तो जब से ये आप लोगों के साथ ज्वाइन हुआ और सुन रहा हूं आपकी बातें, मेडिटेशन के साथ कब छूटी, कैसे छूटी, वो मुझे मालूम नहीं है. उसमें मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि मुझे तड़पना पड़ा, उसके बदले में च्युइंग गम खाना पड़ा. हाँ, उसके बदले में दूसरी आदत आ गई थी, पान के अंदर तंबाकू. यस. क्योंकि टोबैको की हैबिट थी, फिर वो भी छूट गई. लेकिन पहले पहले क्या होता था, कोई जब जिस जगह पे जाता था ना मैं, जो दोस्त लोग जहाँ सिगरेट पी रहे हैं, एक कॉर्नर है जहाँ स्मोकर्स कॉर्नर, तो मेरा भी मन करता था, मैं भी पी लेता था. फिर जैसे जैसे मेडिटेशन किया और दूसरी चीजें दी, उसको ज्ञान दिया, तो अब ये हालत है कि कोई सिगरेट दूर से भी पिए ना तो नाक जलती है.
3: मतलब अब वो उसकी प्रेजेंस भी सूट नहीं कर रही.
2: ऑपोजिट हो गया.
3: ऑपोजिट हो गया. ये स्टेज कब आई? अगेन वी शुड सी वो जो लास्ट टाइम आपने आर्टिकल पढ़ा
2: जी,
3: कि पहले हम कर रहे थे उसको तो हमारी कर्म इंद्रियों को भी ऑटोमेटिक मोड में चली गई थी कि वो लिया पिया लिया पिया. सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्डिंग थी. जब डिसीजन भी लिया छोड़ने का, मेडिटेशन करना भी शुरू किया, नहीं ले रहे थे, लेकिन जब ऐसी वातावरण में जा रहे थे जहां और कोई ले रहा है, या जहां पहले ली थी, या जब कोई प्रॉब्लम आ गई, माइंड टेंशन में है, मतलब जब भी स्टिमुलस कोई वैसा हुआ जो पहले का रिकॉर्डिंग है, तो वो ही इन्फॉर्मेशन कर्म इंद्रियों के द्वारा जाएगी और वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग तो है ही. तो वो सबकॉन्शियस से वो मैसेज क्रिएट होगा, वो वायरिंग हो जाएगी और वो कर्म में आ जाएगा. इसीलिए जब कोई ऐसी आदत छोड़नी होती है, स्थूल आदतें, मतलब क्या हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या हमें राय दी जाती है, कुछ दिनों के लिए, जीवन भर नहीं, कुछ दिनों के लिए उस जगह से जहां आप वो करते थे, वो लेते थे, या उन लोगों से जो वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, डोंट बी देयर नियर देम फॉर अ फ्यू डेज. व्हाई फॉर अ फ्यू डेज? क्योंकि वो वायरिंग चेंज होने में फ्यू डेज लगेंगे. अगर वो वायरिंग चेंज करने से पहले हम उस जगह पर फिर चले गए, या वो जैसे आपने कहा वो खुश
2: मांग लेता था, उनसे
3: मांग लेते थे
2: क्योंकि वो उनके साथ हूँ.
3: हाँ?
2: वो पी रहा है.
3: हाँ?
2: तो मेरा भी मन कर जाता था, मतलब मुझे भी दे दे.
3: मन कर जाता था, मतलब क्या होता था, सबकॉन्शियस माइंड से, मतलब वो संस्कार से वो वाइब्रेशन क्रिएट हुई, वो केमिकल रिलीज हुआ, ब्रेन के सेल को वो मैसेज मिला, वो वायरिंग फायर हो गई, हाथ उस तरफ गया, मांगा और ले लिया. अगर बार बार उन लोगों के पास जाते रहेंगे तो वही वाली फिर वायरिंग बार बार फायर होती रहेगी. हम कहेंगे आदत नहीं छूटती.
2: इसीलिए लोग कहते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं और किताबें भी कहती हैं कि यू आर जस्ट वन सिगरेट अवे. एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी का रेडियो का, मतलब मैं उसको मानता था, उसका फैन था.
3: हाँ.
2: एंड आई सॉ हिम स्मोकिंग. तो मतलब सर, आप इतनी अच्छी आवाज है और रेडियो पे तो आप कमाल करते, आप सिगरेट पीते हो, आपकी आवाज खराब हो जाएगी. तो बोलता है, सुरेश मैंने 15 साल सिगरेट नहीं पिया. छोड़ के 15 साल छोड़ने के बाद किसी दोस्त से मैंने एक मांगी और उसके बाद अब नहीं छोड़ती.
3: मतलब वो वायरिंग क्या हो गई फिर से.
2: मतलब इतना इजीली नहीं है जो आपने कहा, जो स्टॉप स्मोकिंग और वायर चे, यू आर जस्ट वन सिगरेट अवे. जैसे अल्कोहल के लिए भी कहते हैं, यू आर जस्ट वन ड्रिंक अवे.
3: इफ यू हैव क्रिएटेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटर्नली देन यू आर वन सिगरेट अवे. एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है. दैट इज द डिफरेंस. साइकिल क्या था?
2: एक्सटर्नल करो तो 15 साल छूट जाती है.
3: आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज से नहीं लेनी. आपने नहीं ली. हेल्थ रीजन हो सकता है, कोई अपने आप को रियलाइजेशन आ गई है, जैसे आपने कहा आवाज बहुत अच्छी है, प्रोफेशन आवाज का है, कांट अफोर्ड टू टेक रिस्क विद दैट रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग. तो हमने कहा आज से मैंने ये नहीं लेना. हम कर सकते हैं, हम जीवन भर भी हाथ नहीं लगाएंगे उसको फिर से. लेकिन कॉन्शियसनेस में, सोल कॉन्शियस नहीं हुए, अटैचमेंट उस चीज से नहीं हटी है, वो अनुभव अभी भी अच्छा लगता है क्योंकि अपने आप को कोई और अनुभव दिया नहीं है.
2: तो मुझे क्यों
3: अभी आपने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा? मेडिटेशन डेली करने से जो सुख, जो वो रिलैक्सेशन, जो फीलिंग,
2: अच्छा उसको एक बेटर चॉइस दी है,
3: उसको एक सब्स्टिट्यूट दे दिया है.
2: सब्स्टिट्यूट दिया है,
3: अ सब्स्टिट्यूट विच इज हेल्दी. जैसे कोई कहता था पहले कि नॉनवेज खाओ उसमें प्रोटीन्स है, पर किसी ने आकर कहा वो ही प्रोटीन्स इस चीज में भी है तो नॉनवेज क्यों खाना आपको? आप प्रोटीन्स के लिए खा रहे हो ना, टेस्ट के लिए नहीं खा रहे ना, एडिक्शन के लिए नहीं खा रहे ना, आप प्रोटीन के लिए खा रहे हो. तो आप पनीर खाओ, आप सोया खाओ, नॉलेज देंगे. अब हमने क्या किया? जो हमें चाहिए था जब हमें दूसरी जगह से मिल गया तो हम जीवन भर उस तरफ नहीं जाएंगे. हो गया. सिगरेट क्यों पी रहे हैं? अल्कोहल क्यों ले रहे हैं? कोई भी ऐसी चीज क्यों कर रहे हैं? माइंड को वो अनुभव चाहिए, वो ब्लिस चाहिए एक्चुअली. तो वो स्टिम्युलेंट हमें वो दे रहा था, वो रिलैक्सेशन. हमें अपनी टेंशन भूल जाती थी, जो चिंता मन पे चल रही है वो भूल जाती थी, चाहे थोड़े घंटे के लिए, चाहे वो थोड़ी देर के लिए. लेकिन हम क्या करना चाहते थे? थोड़ी देर के लिए उन थॉट से हटकर रिलैक्स्ड होना चाहते थे. अगर हमने इसको सिर्फ बाह्य लेवल पे किया कि मैं आज से नहीं लूंगा, विल पावर है स्ट्रांग, हमने नहीं ली, कई साल नहीं ली, लेकिन हमने अपने आप को वो अनुभव कहीं और से नहीं
2: जैसे
3: दिया.
2: कई लोग व्रत रखते हैं और जो सबको खाते देख के तड़पते हैं, ये बाहर करके अंदर से कितनी,
3: ये बाहर से ट्रांसफॉर्मेशन है ना. ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन कौन से लेवल पर लाया? एक्शन के लेवल पर. कॉन्शियसनेस थॉट्स फीलिंग्स एटीट्यूड में चेंज नहीं लाया, एक्शन पर चेंज लाया है. एक्शन पर चेंज ला के भी कुछ आत्माएं जीवन भर उस ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है.
2: लेकिन कितना सप्रेशन है,
3: डिफिकल्ट है. लेकिन अब जब मेडिटेशन भी करना शुरू किया, ज्ञान भी मिला, आत्मा को जो सुख चाहिए था वो अनुभव हुआ, एंड असली सुख अनुभव हुआ, परमानेंट हुआ. ये नहीं कि कुछ घंटे हुआ, कुछ घंटे के बाद वो सुख खत्म हो गया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आत्मा की किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं थी, तो आत्मा की विल पावर बढ़ी. अगर ये कुछ दिन, कुछ महीने ये चला तो वायरिंग चेंज हो जाएगी.
2: सपोजिंग मैं स्ट्रेस में सिगरेट पीता हूँ, या कोई टेंशन में सिगरेट पीता हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो पीता हूँ, तो उस इफेक्ट को ठीक करने के लिए पीता हूँ. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो मेडिटेशन है उससे वो सिचुएशन ही नहीं आ रही है जिससे वो पीऊं.
3: ब्यूटीफुल.
2: वो जो स्ट्रेस ही नहीं आ रहा है,
3: ब्यूटीफुल,
2: तो उसका कारण ही नहीं आ रहा है ना.
3: क्योंकि अब क्या हो रहा है, परिस्थिति को हम फेस ही अलग तरह से कर रहे हैं. पहले स्ट्रेस यहाँ क्रिएट हो रहा था ना,
2: तो मैग्नीफाइड आता था,
3: मैग्नीफाइड आता था. अच्छा, अभी भी
2: अगर अभी भी वही परिस्थिति, वही स्ट्रेस छोटा लगता है,
3: छोटा लगता है. अच्छा, अब अगर बात आती भी है, कुछ थॉट्स चलती भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारी कोई नेगेटिव या वेस्ट थॉट नहीं चली, चलती भी हैं, लेकिन अब हम उसको सोल्यूशन कैसे देते हैं? क्योंकि अब हमें ज्ञान से सोल्यूशन देते हैं ना. स्ट्रेस क्रिएट हो भी सकता है, कोई बड़ी बात आ जाए, छोटी बातों का अब नहीं क्रिएट होता, कोई बड़ी बात आ जाए, स्ट्रेस क्रिएट हुआ. स्ट्रेस क्रिएट हुआ मीन्स अनकंफर्टेबल थॉट्स क्रिएट हुई. अब हम उस अनकंफर्टेबल थॉट्स को साइलेंस करने के लिए क्या करते हैं? हम ज्ञान को यूज करते हैं, मेडिटेशन की पावर को यूज करते हैं. वो परमानेंट रिजॉल्व हो जाता है. जब हम सिगरेट को यूज करते थे, अल्कोहल को यूज करते थे, टेलीविजन को यूज करते थे, शॉपिंग को यूज करते थे, फोन पे लोगों से बात करने को यूज करते थे कि मुझे अपने माइंड को शांत करना है, आई हैव टू डू समथिंग, थोड़ी देर के लिए होता था, कोई कहेगा कॉफी पी लो, कुछ भी, कोई एक्सटर्नल चीज चाहते थे, कोई भी एक्सटर्नल
2: गोली खा लो,
3: गोली खा लो, या सी
2: लोगों को हाई करने के लिए भी गोलियां टू फील हाई.
3: यस, सो वी वर यूजिंग एक्सटर्नल सब्सटेंसेस टू क्रिएट दैट फीलिंग. नाउ वी आर यूजिंग इनर मेथड टू क्रिएट दैट सेम फीलिंग, इनफैक्ट अ मोर एलिवेटेड हायर प्योर फीलिंग. और ये फीलिंग हम इटर्नल पकड़ सकते हैं, और ये फीलिंग किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है. तो ये एक वायरिंग नहीं क्रिएट हो जाएगी अंदर. अब ये वायरिंग इतनी स्ट्रांग हो गई आपकी कि अब अगर कोई और ले रहा है तो वो स्मेल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अब हमारा सिस्टम हमारे संस्कारों से वो चीज बिल्कुल निकल चुकी है. लेकिन ध्यान,
2: बचपन में भी स्मेल अच्छी नहीं लगती थी बिफोर आई स्टार्टेड. अब आई हैव कम बैक टू दैट बचपन.
3: वी हैव कम बैक टू द ओरिजिनल संस्कार.
2: बीच में जो गया गया.
3: वी हैव कम बैक टू द ओरिजिनल संस्कार. अब हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमने जो ज्ञान और मेडिटेशन का मेथड यूज किया है ये हमेशा चलना चाहिए. रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती,
2: दूसरी चीज रिकॉर्ड हो जाती है.
3: दूसरी चीज रिकॉर्ड होती है. अगर आपने 6 महीने मेडिटेशन की, आपको वो पावर मिली, वो चीज छूट चुकी है, 6 महीने से नहीं ली, 2 साल बीत गए नहीं ली, अब धीरे धीरे चलते चलते कहीं आपने मेडिटेशन करना छोड़ दिया, ज्ञान रोज स्टडी करना छोड़ दिया, मतलब वो अनुभव क्रिएट करना छोड़ दिया, वो नॉलेज जो इंटेलेक्ट को मिली थी

0: करते करते उससे बोला 5-6 महीने तक तो नहीं, तो 6वें महीने में कुछ स्ट्रेस आया, सिचुएशन आई एंड मैंने बॉटल खोली, स्मेल किया, इतनी गंदी लगी इसमें।
1: अच्छा।
0: लगने के बावजूद भी, क्योंकि वो बाहर से ही हुआ था, उसके बाद भी 15 मिनट सोचा, आधा घंटा सोचा, 1 घंटे तक लड़ता रहा अपने आप से कि, लेकिन आई वेंट बैक अगेन।
1: व्हाई डिड वी गो बैक अगेन दैट टाइम? अगर वो सिचुएशन ना आती तो शायद हम उस पर वापस ना जाते, लेकिन जीवन में सिचुएशंस तो आनी ही है। उस दिन ना आती, अगले दिन आ जाती, फिर कोई और आ जाती। अब आपने कहा मैंने 1 घंटा लगाया, ये 1 घंटा किस में बीता? माइंड ने थॉट्स क्रिएट की, लो नहीं लो, नहीं लो, लो। माइंड ने कहा 6 महीना नहीं लिया, छूट चुकी है, डॉक्टर ने भी बोला है नहीं लेना। फिर इधर से माइंड ने लिया, ये इतनी जो टेंशन है, ये मन शांत कैसे होगा? फिर माइंड ने कहा सो जाओ, ठीक हो जाएगा। फिर माइंड ने कहा नींद कैसे आएगी? क्योंकि पुराना अनुभव क्या है, नींद कैसे आती है जब माइंड स्ट्रेस्ड है? कोई सब्सटेंस लेना है उसको साइलेंस करने के लिए। ये जब माइंड ये सारी थॉट्स क्रिएट कर रहा था, उस दिन इंटेलेक्ट ने क्या डिसीजन ले लिया?
0: चलो भी ले लो,
1: 1 दिन लेने से कुछ नहीं होगा। 1 दिन लिया, वायरिंग शुरू हो गई, और वो थी बहुत स्ट्रांग बहुत सालों की।
0: तो फिर ऑटोमेटिक मोड पे आ गया।
1: फिर सेकेंड डे ही ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएंगे।
0: आ गया था
1: नहीं, ऑटोमेटिक मोड पे आ गए। वो कैसे पता चलेगा कि सेकेंड डे 1 घंटा नहीं लगेगा डिसीजन लेने में?
0: नहीं, सेकंड डे तो टाइम हो, शाम का टाइम होते अपने हाथ क्लास में चला गया।
1: सी द डिफरेंस, फर्स्ट डे 1 घंटा लगा, सेकेंड डे कोई टाइम नहीं लगा। मतलब क्योंकि वायरिंग पुरानी थी, सेकेंड डे पर माइंड और इंटेलेक्ट का रोल बंद हो गया, वो फायरिंग हो चुकी है, वी वेंट बैक टू इट। कितना इम्पोर्टेंट है सस्टेन करना।
0: फिर मैं ऐसे डॉक्टर ढूंढता था जो कि बोले कुछ नहीं होता ले लो।
1: सी
0: ये हाल था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के पास गया, सब बोले नहीं नहीं नहीं, ये बीमारी के बाद तो नहीं लेना चाहिए। कोई कुछ बोले, कोई, फिर एक ने बोला कुछ नहीं होता है, इसमें क्या है, तुम गिल्ट फील करके ले रहे हो, वो जो स्ट्रेस से नहीं पीने का वो ज्यादा तुमको तकलीफ दे रहा है, ले लो, आई एम हैप्पी, चलो ले लो।
1: अब ये जो नॉलेज मिली, क्योंकि इंटेलेक्ट किस आधार पर डिसीजन लेता है, इंटेलेक्ट में जो नॉलेज हम भरते हैं, क्यों ज्ञान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भाई बहने सेंटर पर आते हैं, कहते हमें सिर्फ मेडिटेशन करनी है, हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइलेंस में बिठाओ, मेडिटेशन कराओ, एक्सपीरियंस कराओ, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जो ज्ञान होगा ना अंदर, उस आधार से डिसीजन लेंगे। आपने जैसा
0: बहुत काम करता है ज्ञान, ये ज्ञान, तो मैंने, मेरा अपना
1: ज्ञान नॉलेज। आपने जैसे ही उस डॉक्टर से ये नॉलेज लेकर अंदर भरी कि कुछ नहीं होता, गिल्ट क्रिएट करना ज्यादा नुकसानदायक है, अल्कोहल उतना नहीं नुकसान करता, ये भी एक नॉलेज थी। ये नॉलेज से इंटेलेक्ट ने आगे के लिए क्या डिसीजन ले लिया? इट्स ओके, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दिस इज नॉट डैमेजिंग फॉर मी। इतना लो और गिल्ट क्रिएट करो, दैट इज डैमेजिंग। नॉलेज, राइट नॉलेज इज नीडेड फॉर द राइट डिसीजन, फॉर द राइट संस्कार टू गेट क्रिएटेड।
0: राइट,
1: फिर वो मेहनत करनी पड़ी। इसलिए ज्ञान भी बहुत ध्यान से लेना चाहिए कि कौन सा ज्ञान हम ले रहे हैं जो मेरे लिए सही है। अब ये 3 स्टेजेस जब हमने देखी, मन, बुद्धि, संस्कार, एक बार वो संस्कार बन गया तो वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया। मतलब थॉट, इंटेलेक्ट, संस्कार, जैसा संस्कार वैसी थॉट, इट्स साइकिल। और जब संस्कार में चला गया, फर्स्ट 2 स्टेजेस आर लॉस्ट। अब ये हमने स्थूल आदतों पे देखा कि सिगरेट, अल्कोहल, कोई भी हैबिट, सेम लॉ विल अप्लाई टू हमारी सूक्ष्म आदतें, हमारे सोचने के तरीके, हमारे पैटर्न्स, हमारे बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका, वो भी तो एक रिकॉर्डिंग ही बन रहा है। लेकिन वो जो आपने लास्ट टाइम आर्टिकल पढ़ा, वो हमें एक कन्विक्शन देती है, कोई भी संस्कार, एंड कोई भी मींस कोई भी संस्कार, कितना भी पुराना हो, कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी कड़क हो, इट कैन बी चेंज्ड। हम कोई भी संस्कार के लिए ये नहीं कह सकते ये आदत तो मेरी
0: छोड़ नहीं सकती,
1: चेंज नहीं होती। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ दोज फ्यू डेज, और उसमें अगर अपने आप को राइट नॉलेज और पावर दी मेडिटेशन से, तो वो चेंज करना।
0: यू हैव टू मेक इट योर बिलीफ।

0: यू हैव टू हैव फुल फेथ इन दैट, यू हैव टू वॉन्ट इट. आपको चाहिए वो परिवर्तन. फिर उस परिवर्तन के लिए आप ज्ञान लेते हैं, आप मेडिटेशन से आत्मा की ताकत बढ़ाते हैं, फिर आप सारा दिन में अटेंशन रखते हैं, फिर थोड़े दिन में वायरिंग चेंज हो जाएगी.
1: मैं क्या करता था, छोड़ना छोड़ना छोड़ना छोड़ना छोड़ से बोलता था, वांट नहीं था, लेकिन वांट वाली डिजायर ही नहीं थी कि right. छोड़ना है, वांट करना है, और आता भी नहीं था
0: कॉन्शियसनेस में. नहीं,
1: पहली बात तो ये सब चीजें लाना ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में.
0: ये सब चीजें लानी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. हाउ ट्रू कि कोई ऐसी आदतें,
1: तो थॉट लेवल से अगर शुरू से चले जाओ इस पे, ये ज्ञान में आप जो बता रहे हैं, शुरू से बच्चों को या थॉट लेवल से ही सिखा दें यहाँ, तो पूरा आगे जाके ना पहले इसको ऐसी आदतें पकड़ेंगे, ना फिर छोड़ने में इतनी तकलीफ होती छोड़ेंगे.
0: तो हमारे आज के बच्चों को लेकिन ये सीखने की जरूरत है ना कि पीयर प्रेशर में आकर, दोस्तों को देखकर, वातावरण को देखकर कोई ऐसी बात शुरू न करें.
1: आप बोल रहे आज के बच्चे,
0: हाँ.
1: मैं बोल रहा हूँ हम अबव 50, हम लोग, हमारी ग्रुप में. जब मैंने बोला कि मैंने कुछ व्रत रखा हुआ है कि थोड़े दिन तक मैं खाली टोमेटो जूस पीऊंगा, तो बैठ के जब जूस पीता था तो एक तो मेरे पीछे पड़ गया, कब तक होगा यार, और कितने दिन तेरा व्रत है? मैंने है. बाद में उन्होंने रूल पास कर दिया, जो हमारे साथ शाम को ड्रिंक नहीं पिएगा, हमारे साथ नहीं खेलेगा.
0: That's okay, yeah.
1: That's peer pressure. आप बोल रहे स्कूल में peer pressure मेरी एज में पड़ा मुझे.
0: उस टाइम बुद्धि सही निर्णय ले. This is the role of the intellect.
1: Finally, I to left them.
0: No, that's why for all of us. That's what for all of us.
1: छोड़ दिया मैंने.
0: बुद्धि उस टाइम सही निर्णय ले कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड्स. कई लोग कहते हैं करियर
1: कैसे
0: के लिए
1: होगा कि जो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है.
0: नहीं, कई लोग कहते हैं करियर में हमारे इसमें करना पड़ता है. यू नो सम रीजन द माइंड विल गिव, एन इंटेलेक्ट विल टेक इट एंड मेक अ डिसीजन. कोई ऐसा निर्णय ना ले जो ऐसा संस्कार बन जाए जो फिर संस्कार बदलने में इतनी उसको मेहनत करनी पड़े.
1: करियर में सिस्टर मैंने भी देखा है, कई लोग बोलते हैं हमको उनके साथ ड्रिंक लेनी पड़ती है, हमको एंटरटेन करना पड़ता है, लेकिन जब आप उन्हीं लोगों को बोलते हैं, बिजनेस पीपल को, कि आई एम अ वेजिटेरियन, तब क्यों नहीं लेना पड़ता है? वो लोग थोड़ी रोकते हैं आपको.
0: राइट राइट.
1: इफ यू से कि आई एम जस्ट अ टीटोटलर, तो वो तो बिजनेस से मतलब है उसको.
0: ये हमें मालूम है सब कुछ, लेकिन माइंड थॉट्स अलग अलग क्रिएट करेगा ना.
1: आपका अच्छा प्रोडक्ट हो तो वो आपको ड्रिंक करते हुए नहीं करते देखेगा, या वो अच्छे रेट पे आप दे रहे हो, अच्छी चीज दे रहे हो, वो देखेगा.
0: राइट. तो ये माइंड को ये सारी थॉट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, फिर इंटेलेक्ट को सही डिसीजन लेना पड़ता है, फिर उसको कर्म में लाना है. एक बार संस्कार बन गया, फिर करियर में कोई भी बातें आए, फ्रेंड्स कुछ भी कहें, लोग आसपास कुछ भी कहें, कोई ऐसी बात भी हो जहां सारी दुनिया एक तरफ हो, हम अकेले हो. ये तो सिगरेट अल्कोहल तो छोटी बातें है ना, जीवन में कोई ऐसी बातें भी आ सकती हैं जहां ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जहां हम अकेले खड़े होंगे, लेकिन आत्मा में उतनी ताकत होगी कि वो कर सकती है, क्योंकि वो इस छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों को क्रॉस करके विल पावर को क्या कर लिया, बढ़ा लिया. अब अगर हमारी कोई चीज संस्कार बन चुकी है, हमें ऑप्शन की स्टेज पर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे आपने कहा उस दिन ऑप्शन आए, थॉट्स फिर से क्रिएट हुई, इंटेलेक्ट को फिर से डिसीजन लेना पड़ा, और फिर उस दिन हमने फिर वो कर लिया. मतलब अब संस्कार को चेंज करने के लिए थॉट्स में ऑप्शंस फिर से क्रिएट करनी पड़ेंगे. जब तक थॉट्स में फिर से ऑप्शंस नहीं क्रिएट होंगे, वो उसी तरह से चलता जाएगा. जैसे सपोज आप रोज सुबह, लेट्स से आप रोज सुबह उठने के बाद अगर चाय पीते हैं, ये आप सपोज पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, ठीक है. आप रोज सुबह चाय पीते हैं, आज आपके घर एक नया स्टाफ मेंबर आया, आपने उसको बताया कि मुझे 7 बजे चाय देनी है, तो वो पहले दिन आपको पूछेगा साहब क्या लेकर आऊं, चाय कॉफी क्या लेकर आऊं आपके लिए, तो आप कहोगे चाय. तो उस दिन वो स्टाफ ने आपको ऑप्शन दी थी कि चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, नींबू पानी लाऊं, कोकोनट वाटर लाऊं, वो ऑप्शंस देगा. उस दिन इंटेलेक्ट ने क्या डिसीजन लिया, चाय. मतलब आपने डिसीजन दिया चाय. सेकेंड डे वो फिर पूछेगा सर क्या लेकर आऊं, सेकेंड डे भी आपने कहा चाय. कितने दिन पूछेगा,
1: उसको मालूम है फिर सब चाय पीते तो अपने आप ले आएगा,
0: उसको मालूम है। अब अगर वो तीसरे चौथे पांचवे दिन फिर पूछता रहे तो आप उसको क्या कहेंगे?
1: मैं बोलूंगा कल कितने दिन बताओ, आपको मालूम नहीं है
0: टाइम पे हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, वो रोज 7 बजे चाय लेकर आएगा। कितने दिन तक वो रोज सुबह 7 बजे चाय लेकर आएगा?
1: जब तक आप मना नहीं करेंगे।
0: जीवन भर ला सकता है, मतलब जब तक आप मना नहीं करेंगे, विच मीन्स इस केस में जो आपका स्टाफ मेंबर है वो मन है जो आपको ऑप्शन देता है, सर चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, नींबू पानी लेंगे, 3-4 दिन ऑप्शन देता है। आप जो हैं वो बुद्धि है जो निर्णय देती है चाय, सेकेंड डे फिर कहती है चाय, थर्ड डे फिर कहती है चाय, फिर आपने कहा वो पूछना बंद कर देता है तो आपका भी बोलना बंद हो जाएगा ना कि चाय चाय, बोलना ही नहीं है। अब क्या होने वाला है, चाय का कप ऑटोमेटिकली 7 बजे टेबल पर पहुंच जाएगा। आत्मा का संस्कार बन गया, ठीक बन गया, ये अब जीवन भर चलेगा कि 7 बजे चाय आ जाएगी टेबल पर, अनलेस एक दिन आपको नई पीस ऑफ नॉलेज मिले, न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ने कहा टी इज नॉट गुड फॉर यू, यू स्टार्ट अनदर ऑप्शन। अब आपके पास ऑप्शन है ग्रीन टी, आपके पास ऑप्शन है हर्बल टी, आपके पास ऑप्शन है नींबू पानी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इतने साल हम ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हमारे संस्कार में बन गया था। अब आज आप घर जाते हैं और अपने उस स्टाफ को कहते हैं कल सुबह 7 बजे नींबू पानी, तो ये लुक सेट यू, सर चाय नहीं पीनी, वो ऐसे ही नहीं कि वो इमिजिएटली मान जाता है नींबू पानी लाने के लिए, ये तो चाय नहीं पीनी, रोज तो आप चाय पीते थे, तो कहोगे नहीं कल से नींबू पानी। अगले दिन मॉर्निंग में 7 o'clock ही विल डेफिनेटली आस्क यू वंस,
1: आर यू श्योर
0: सर क्या लेना है, चाय या नींबू पानी? वो नहीं लाएगा नींबू पानी इस तरह से सीधा,
1: सही बात,
0: पूछेगा वो। उस दिन बुद्धि को क्या रहना पड़ेगा,
1: स्ट्रॉन्ग,
0: नींबू पानी, ठीक है। एक दिन वो पूछेगा, फिर 2 दिन वो पूछेगा, 3 दिन वो पूछेगा, किसी दिन ये हो सकता है आपका थोड़ा सा सर दर्द होगा, वो देखेगा कहेगा सर चाय नहीं पीना इसलिए सर दर्द हो रहा है, लाओ चाय, बुद्धि को कहना होगा
1: नहीं,
0: नहीं। कितने दिन,
1: थोड़े दिन
0: के बाद वो नींबू पानी आपके टेबल पर 7 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएगा, ना वो पूछेगा ना आपको डिसीशन लेना पड़ेगा, अब नींबू पानी आपकी वायरिंग में आपके संस्कार में फिट हो गया, जीवन भर नींबू पानी चलेगा। कितने दिन लगने वाले हैं, बट वी हैव टू,
1: सर दर्द भी बंद हो जाएगी,
0: वो तो बंद हो ही जाने वाला है, लेकिन थोड़े दिन सर दर्द होगा। मतलब कोई भी संस्कार हम चेंज करना चाहेंगे, कुछ दिन मन पूछेगा गुस्से के बिना कैसे काम चलेगा, वापस नहीं बोलेंगे तो हम कमजोर हैं क्या, मतलब इसका मतलब वो आए वो बोल के चले गए, हमने कुछ बोला ही नहीं ऊपर से, ये मन वो स्टाफ मेंबर आके बोलेगा सर ऐसे कैसे चाय नहीं पीनी, वो सब बोलेगा। बुद्धि को उस टाइम डिसीशन लेना है, न्यू वे ऑफ लिविंग, हैप्पियर एंड हेल्दियर वे ऑफ लिविंग नहीं करना, नहीं उल्टा जवाब देना है, ये थोड़े दिन चलेगा। अब जब आप वापस जवाब नहीं देंगे, थोड़े दिन अनकंफर्टेबल भी अंदर लगेगा, मन कहेगा बोल देना चाहिए था, थोड़ा तो बोल देना चाहिए था, ऐसे कैसे वो इतना आकर बोल के चले गए, ये स्टेज को हमने क्रॉस करना है,
1: करके चले गए और आप चुप रहे
0: करके चले गए, हाँ सी ये मन सब बोलेगा अंदर,
1: मन भी बोलेगा लोग भी ताने मारेंगे,
0: तो ये सब स्टेज हमें क्रॉस करनी है, ये सब दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम कोई सिर्फ चाय कॉफी अल्कोहल के नहीं होते, विड्रॉल सिम्टम हर संस्कार को चेंज करने के होते हैं, बिकॉज वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग। लेकिन वो 5-6 दिन 8-10 दिन आपको स्ट्रॉन्ग होकर बुद्धि को वो ही निर्णय देना पड़ेगा, नींबू पानी नींबू पानी नींबू, हो गया उसके बाद वायरिंग चेंज। अब आपके आसपास सब लोग चाय पिए, कुछ भी हो, आपका सर भी दर्द हो रहा हो, नींबू पानी आपके जीवन का हिस्सा, आपका संस्कार बन गया है, सो वी ओनली हैव टू पॉज एंड पे लिटिल अटेंशन टू फ्यू डेज ऑफ संस्कार परिवर्तन, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में नई रिकॉर्डिंग हो गई, उसी के थ्रू वर्क होगा वो।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर, नई रिकॉर्डिंग हम अगले एपिसोड में करेंगे।
0: थैंक यू शांति।
1: थैंक यू सो मच।
2: When we give up an addiction, the recording of that habit is still in our sanskars. When we are with people or in places which become a stimulus for us, sometimes the recording gets triggered and we may go back to the addiction. So, for some time, we need to keep away from the stimulus. Neurons that wire together, fire together. The soul has a recording of the experience it had with that particular addiction. In the presence of the stimulus, the desire for the same experience might take the soul back to the addiction. So, we need to give the soul a blissful experience through meditation, so that it does not seek that experience elsewhere. We use addictions only to experience happiness temporarily, to feel energized, to distract the mind away from stress, hurt, and negative emotions. When we use spiritual knowledge and meditation to heal our negative emotions, we will not need the addiction to feel better. Knowledge is information we take in. As will be the quality of information, so will be the quality of thoughts. Intellect will also take the decision based on the information it has, and the sanskar will get created. Spiritual knowledge enables the soul to create pure thoughts and take the right decision to create elevated sanskars.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 5559 660.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। और पिछली बार हमने आई स्पेशलाइजेशन के बारे में बातें की थी, ऑप्थल्मोलॉजी के बारे में बातें की थी डॉक्टर सचिन जी से, और आज हम लोग करियर इन गायनेकोलॉजिस्ट, जी हाँ, इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ विशेष डॉक्टर दीप्ति दाते हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं। और आप भी इंदौर से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय से गायनेक का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो चलिए डॉक्टर दीप्ति दाते का बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू।
3: कैसे हैं आप?
4: बहुत बढ़िया।
3: जी जी जी, डॉक्टर दीप्ति जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। और मैं चाहूँगा कि आपका गायनेकोलॉजी बनने का जो यात्रा है, आपने कैसे इसको एज ए करियर चुना, या पहले से ही आपको मालूम था कि मुझे गायनेक बनना है, या बाद में आपने अपना डिग्री करते करते या ट्वेल्थ के बाद आपने डिसाइड किया?
4: एक्चुअली मेरा तो, मैं कहूँगी कि सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर दीप्ति दाते MBBS DGO हूँ, गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन PG किया है।
3: अरे वाह।
4: और 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ गायनेकोलॉजी की। तो मेरे केस में तो ऐसा रहा कि मतलब बचपन से ही मेरा सपना था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि अच्छा, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में डॉक्टर्स थे, मैं उनको देखती थी। और बचपन से ही मतलब स्कूल में जैसे सिखाया जाता है नोबल प्रोफेशन है, तो मेरी भी उस तरह की वृत्ति थी पहले से ही कि मतलब मुझे लोगों की सर्विस करनी है, उनको सुख देना है, उनके सफरिंग्स को दूर करना है, ऐसा मेरे मन में पहले से ही था। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता था कि डॉक्टर बन के ही हो सकता है उस समय में, जब बचपन से, और फिर देखा भी था आसपास डॉक्टर्स को, तो मतलब मुझे यही फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी कि कोई ऐसे सफर होते हुए आए और हम उन्हें ठीक करें, तो उनको जो खुशी मिलती है तो वही सच्ची कमाई मुझे लगती थी। मतलब तो मैं ऐसे कैरियर के हिसाब से उसको नहीं लिया था, मेरे को तो मतलब एक लाइफस्टाइल वो चाहिए थी कि जिसमें मैं मदद कर सकूं लोगों की। मतलब मैं ऐसा कुछ चुनू, क्योंकि शुरू से ही मतलब बाबा पहले से ही मतलब मेरे ऊपर हाथ रहा है, मैं हमेशा टॉपर ही रही हूँ, तो मतलब हमेशा से पढ़ाई में अच्छा रहने के कारण मदद मिलती गई, और अपने आप ही मतलब दिमाग में आया कि डॉक्टर बन के ही मेरा जो सपना है कि लोगों की मदद करूं और उनके दुख दूर करने में उनकी सहायता करूं, तो वो इसी के थ्रू हो सकता है। तो इसमें बाबा की मदद मिलती गई, एंट्रेंस एग्जाम जो रहता है, उस टाइम पे हमारे टाइम PMT चलता था, तो जैसे आगे बढ़ते जाते हैं 10th 11th में, आजकल सभी को पता लगता रहता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इस तरह से पढ़ाई करनी, इस तरह से अपीयर होना है, तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना रहता है 12th के बाद, फिर उसके बाद कॉलेजेस चूज करना रहता है आपको। तो बाबा हर कदम पे मदद करता गया, अपने आप ही राहें सुलझती गई। मतलब जैसा सिर्फ मेरे मन में ही एक गुड इंटेंशन था कि मुझे ऐसा ना, तो मैं उस टाइम सोचा था कि मैं इस पे से बहुत पैसा कमाऊंगी या कुछ, मुझे ऐसा कुछ उसके थ्रू पैसा कमाने का मेरा इंटेंशन नहीं था। तो मतलब मैं यही विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आपके हाई गोल्स हो, मतलब आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो कभी पैसा कमाने वाला इंटेंशन रख के नहीं करना, आपके मन में गुड इंटेंशन होना चाहिए उस चीज के लिए, तो आपका सपना जरूर पूरा होता है। मतलब भगवान साथ देता है आपको सपना पूरा करने में, क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है। तो मतलब जैसे बचपन से हम सुनते आए थे कि ये डॉक्टर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट टू गॉड होते हैं, तो फिर मतलब वही फीलिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि हम भी कुछ सोसाइटी के लिए कर पाए। तो अगर जो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही मतलब स्टूडेंट्स के लिए संदेश रहेगा कि अपने मन में अच्छी भावना रख के करना, तो यू विल बी अ गुड डॉक्टर। सिर्फ एक सक्सेसफुल या बहुत नाम वाला डॉक्टर होने से इतना मतलब नहीं रहता, जितना आप एक अंदर से एक बहुत गुड डॉक्टर हो, जिनको देख के, पेशेंट्स को देख के ही खुशी हो, वो अपनी सफरिंग्स शेयर कर पाए। क्योंकि जैसे हमें भी MBBS के टाइम पे ये सिखाया गया था कि आपका सिर्फ दवाइयाँ लिखने का काम करना है, बीमारी ठीक करने का, ऑपरेशन करने का काम नहीं है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मतलब उनकी जो मेंटल स्टेट है, क्योंकि जैसे ही कोई रोगी भी होता है तो वैसे ही मन से भी कमजोर रहता है वो, और जैसे आजकल प्रूव हो गया है कि मतलब साइकोसोमेटिक डिसीजेस जो है वो 95% स्ट्रेस के कारण हो रही हैं, तो ये खाली फिजिकल लेवल पे नहीं है, ये चीजें जो है वो मेंटली जो वीक रहते हैं वहां से शुरू होती हैं बीमारियां जो है, तो आपको उनको मानसिक सहारा भी देना बहुत जरूरी, तो उसके लिए आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए पहले कि आप उनको इस तरह से संभाल पाए। तो मतलब ये सब चीजें पॉइंट्स दिमाग में रख के फिर आप करें, और अंदर बहुत स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए किसी के कहने के लिए कि पेरेंट्स का प्रेशर है कि डॉक्टर बनना है, या फिर आपका बहुत सपना है कि आप बहुत पेशेंट से पैसा कमाओ, ऐसे इंटेंशन से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर जब स्ट्रांग डिजायर रहता है तभी आप इस प्रेशर मतलब, क्योंकि डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट कोर्स है और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी रहती है, कंटिन्यूस मोटिवेशन लगता है और बहुत लंबा कोर्स है, और इतना इजी प्रोसेस नहीं है MBBS करके PG करके और अपने को मतलब प्रोफेशनल लाइफ में सेटल करना, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो मोटिवेशन जो है वो तभी मिलता है जब आपको अंदर से इच्छा हो डॉक्टर बनने की, और उसमें भी अगर आपको अच्छा इंटेंशन हो कि मुझे कुछ सोसाइटी की मैं मदद कर पाऊँ, तो वो आपको बहुत मदद करता है आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके सहारे आप मतलब इजीली ये सब चीज़ें, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं, पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है सभी बोलते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छा मोटिवेशन है तो फिर आप इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। और पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब जैसे अभी तो हमें जैसे ज्ञान मिल गया है ब्रह्म कुमारी में, मैं 11 साल से चल रही हूँ, तो अब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि उस टाइम हम भी स्ट्रेस लेते थे कि भाई कैसे मार्क्स आएंगे क्या होंगे, तो ये स्ट्रेस के कारण नहीं करना, अपना उस पढ़ाई करते जाना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाना है ड्यूरिंग MBBS, और जहाँ से भी मदद मिले टीचर्स से या फिर अपने सीनियर्स से उनसे मदद ले लेके आगे बढ़ते जाना है, तो वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली डिफ़िकल्ट कोर्स है, टाइम देना पड़ता है और आपका समय काफ़ी सारा जाता है इसमें, तो जैसे सबसे पहले तो 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम से MBBS करना है, और उस दौरान आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लें कि क्योंकि क्लिनिकल वो लगती हैं पोस्टिंग्स, उसमें आप सारे डिपार्टमेंट्स में जाके आपको पता चलता है किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, किस तरह का मतलब किस फील्ड में क्या है, तो उस टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसी दौरान आप PG के लिए भी तैयारी कर लें, तो फिर जब PG वाला एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें फिर रैंक के हिसाब से भी आपको चूज़ करना रहता है, तो उसमें भी मेरा मतलब एक संदेश ये भी रहेगा कि जैसे सपना तो रहता है अपना कि हमें इसी फील्ड में करना है, मतलब इसी ब्रांच में करना है PG, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता, आप तो मतलब किसी भी ब्रांच में कर लें, और अगर आपके मन में सेवा भाव है तो आप किसी भी ब्रांच में कर रहे हैं तो आप वो सेवा भाव अपने पेशेंट्स को मतलब उनके प्रति दे सकते हैं, तो उसमें इतना ब्रांच का बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए कि मुझे तो बस यही ब्रांच में जाना है दूसरी ब्रांच में नहीं जाना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आप उस फील्ड में अच्छे मतलब क्योंकि रैंक का आजकल बहुत ज़्यादा रहता है, अपने हाथ में चीज़ें नहीं रहती हैं कभी कभी, तो उससे फ्रस्ट्रेट ना हुए कि मतलब मुझे ये फलाना ब्रांच चाहिए थी और नहीं मिली, मुझे उसमें करना पड़ गया, तो आप उसी में करके यही ईश्वर की इच्छा समझ के उसी में आगे करके उसमें आगे सक्सेस अपनी करें और पूरा मन लगा के करें, और इस इंटेंशन से करें कि मुझे तो बस लोगों की सेवा करनी है, उनकी सफरिंग्स दूर करनी है, तो आप जरूर उसमें सक्सेसफुल होंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: इसके लिए थोड़ा नॉलेज भी अपने आप मिलता ही जाता है सीनियर्स से, मतलब MBBS के दौरान भी, और फिर आपका पोस्टिंग्स जो इंटर्नशिप में भी पोस्टिंग्स लगती हैं उसमें भी पता चल जाता है कि कौन कौन से ब्रांचेस से आपका किस में इंटरेस्ट है, आपको खुद ही डेवलप हो जाता है उस चीज़ में, उस फील्ड में इंटरेस्ट, तो फिर उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी PG में आप ऐसे बहुत ज़्यादा वो ना रखें कि मुझे बस इसी इसमें करना है, सारी ब्रांचेस अच्छी हैं अगर आप उसको ऑनेस्टी से कर रहे हैं और अपने प्रोफेशन में आगे जाके भी उसको ऑनेस्टी से कर रहे हैं तो यू आर सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, तो उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको यही डॉक्टर यही स्पेशलिस्ट बनना है, क्योंकि अभी सारी ब्रांचेस में सारी फील्ड्स में बहुत स्कोप है।
3: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग विशेष MBBS के बाद आप जो है स्पेशलाइजेशन किसी में भी कर सकते हैं, वो आपके रुचि के अनुसार, और आपने अपना जो यात्रा है वो आपने बताया कि डॉक्टर फैमिली होने के नाते मुझे भी बचपन से यही सपना था कि डॉक्टर बनूं, और आपने ये भी देखा कि भाई एक सेवा भाव के हिसाब से आपको हमेशा ये दूसरों को हेल्प करने का जो अंदर से भाव था उसको वो आप डॉक्टर के फील्ड में देखते थे। डॉक्टर दूसरों को हेल्प करता है, और कोई भी दर्दी आता है डॉक्टर के पास तो वो अच्छा होकर जाता है, तो दुआएं भी देता है, डॉक्टर को भी अच्छा लगता है। तो नेस्ट गॉड इसीलिए डॉक्टर को कहा गया है कि दूसरों के दर्द को कम करते हैं। तो ये भाव जो है आपके अंदर प्योर इंटेंशन था सेवा का, जिसकी वजह से आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम डॉक्टर दीप्ति जी से बातें कर रहे हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है और जो ख़ास इन चीज़ों को कैसे हम लोग समझें और इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे उन्होंने अभी आपको एक इंटीमेशन तो दे दिया कि पढ़ाई आपको ध्यान से करना है, थोड़ा सा अगर आप हिम्मत करके इन चीज़ों को कर लेते हैं और प्योर इंटेंसेंटिक इन एक प्योर भावना से अगर आप करते हैं तो आपको ईश्वर की मदद मिल जाती है और आप इसमें स्पेशलाइज कर ही लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन। जी हाँ, डॉक्टर दीप्ति से बातें हो रही है, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे हैं। और डॉक्टर दीप्ति जी से बातें हो रही हैं और आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो चलिए डॉक्टर दीप्ति जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी बातें हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये जो गायनेकोलॉजिस्ट है, ये आपने क्यों चॉइस किया? इसके पहले आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे ही, लेकिन फिर भी इसमें स्पेशलाइजेशन करने का कोई कहानी है क्या?
1: एक्चुअली पीपीजी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी। आई स्पेशलिस्ट के लिए भी था, सर्जरी के लिए था, एनेस्थीसिया के लिए था,
0: अच्छा,
1: और एक गायनी के लिए भी था। और उन सब में मुझे डिग्री का कोर्स भी मिल रहा था और इसमें डिप्लोमा का था, क्योंकि मैं जैसे बताया पहले भी कि आजकल तो जो रैंक्स आती है उसके हिसाब से ही हो पाता है आपके पास। आप अपने हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे एमडी करना है तो एमडी ही मिल जाएगा। तो गायनी में डिप्लोमा था मिल रहा था, बाकी सब मुझे डिग्री कोर्स मिल रहा था। तो भी मतलब वो छोड़ के मैंने गायनी इसलिए चूज किया कि कहीं ना कहीं जैसे बचपन से मेरे अंदर संस्कार था, मतलब पेरेंट्स ने मुझे ऐसे कभी लड़की समझ के नहीं ट्रीट किया, क्योंकि मैं शुरू से भी पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो हम मेरे दो बड़े भाई हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये लड़की है इसको कम पढ़ाना है। तो मैं हमेशा से उसी इसमें रही कि हम बराबर के हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसे गायनेकोलॉजी में तो ये कि प्योर मतलब विमेन्स के लिए है सर, और देखा गया है मतलब समाज में थोड़ा सा दबी हुई रहती है महिलाएं, तो मतलब उनके प्रति मतलब मेरे को एक वो था कि इनका भी वैसी बने पोजिशन सोसाइटी में जैसे मैं खुद हूँ। मतलब मेरे को कभी ऐसे हीन भाव से नहीं देखा गया कभी मेरे फैमिली में।
0: हाँ,
1: तो मैं अपने मन से उनको जितना सपोर्ट दे सकूं, मैं अपने अपने से मतलब उनको मॉरल सपोर्ट, क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ मतलब जैसे आती हैं सारी फीमेल पेशेंट्स ही मेरे पास रहती हैं, तो
0: जी,
1: अपने अपने घर की कहानी सुनाती रहती, तो मेरे से जितना हो पाता है बाबा की मदद से शक्ति से मैं उनको मॉरल सपोर्ट देती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सफरिंग्स उनकी मतलब रहती ही हैं, तो इस हिसाब से मैं सोचा कि मैं इसी फील्ड में काम करूंगी विमेंस के लिए, तो मतलब डबल उसमें सेवा हो जाएगी, एक तो शारीरिक तौर पे भी हो जाएगी और उनको मॉरल सपोर्ट के लिए मिल जाएगा। तो मैं लास्ट मोमेंट पे जाके मैं दूसरा एमडी लेने वाली थी, वो छोड़ के मैं लास्ट मोमेंट बाबा ने मुझे शायद डिप्लोमा के लिए टच कर दिया कि ये लो और इसमें आप सेवा करो आगे से। तो इस तरह से गायनेकोलॉजी में मैंने चूज किया।
0: तो इसमें बहुत ही अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी यहाँ पर एक इंसाइट ज़रूर मिल रहा होगा। कई बार हम लोग सोच के कुछ और आते हैं और हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर या ऊपर वाले की जो है कृपा बनी रहती है। आप उसमें अच्छा करेंगे तो शायद उन्होंने आपके लिए कोई सीक्रेट जो है करियर छुपा के रखा होगा जो आपको संतोष और सेटिस्फैक्शन देता है। कई बार हम लोग अपने मन से सोचते हैं कि हम अपने कलीग्स या अपने दोस्तों को देख कर या फिर हम पैसे को देख कर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमें वो चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन अंदर से जो सेटिस्फेक्शन है, संतोष जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। फिर उसके लिए हमारा मन हमेशा जो है एक कमी रह जाती है, सुकून जो पाना चाहते थे वो रह जाते हैं। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि सरकमटेंसेस अगर ऐसा कुछ आता है और आपको अपना जो चॉइस है उसको अगर चेंज करना पड़े तो बिल्कुल कीजिएगा आप, और देखिए आपको बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस और सीक्रेट ऑफ गॉड का आपको देखने को मिलेगा। और किसी भी चीज़ को आप करें, दिल से करें, तो अच्छा ही होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और दीप्ति जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज के समय में गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके पास क्या चैलेंजेस रहती हैं? जी,
1: गायनेकोलॉजी का तो जैसे शायद आम लोगों को तो पता नहीं होगा, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी में सभी को पता है कि सबसे स्ट्रेसफुल ब्रांच है।
0: जी, जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: क्या रात बेरात आपको उठ के नींद से उठ के तुरंत भागना है डिलीवरी के लिए, और जब तक मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी गायनेकोलॉजी पे होती है, क्योंकि दो लाइफ से डील करते हैं। तो जिनको भी लेना है अगर गायनेकोलॉजी, तो बहुत कमिटेड रहें और इसके लिए तैयार रहें कि आपको नींद को, अपने आराम को, अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बहुत बार।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अगर इसकी तैयारी है तो ही लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल है। लेकिन आजकल उसमें भी ऐसी थोड़ी सिंपल सब स्पेशलिटीज आ गई हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है और उसमें भी गायनिक अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा इतना इमरजेंसी का वो नहीं रहता। लेकिन अदरवाइज टू स्टार्ट विथ, अगर आप सिर्फ पीजी डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको इमरजेंसीज तो हमेशा उसके लिए रेडी रहना ही पड़ता है। उसमें भी आपको थोड़ा सा अपने मन को मजबूत भी रखना जरूर रहता है, क्योंकि हर हमेशा आपके हिसाब से चीजें चले ऐसा नहीं होता. समटाइम्स आपको एडवर्स आउटकम्स भी मिलते हैं, तो उसके लिए अपने मन को मजबूत रखना रहता है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, बाकी जो भी रिजल्ट हो वो तो जैसे हम बोलते हैं कि पहले से ड्रामा में सब फिक्स है ही. तो उसके लिए अपने मन की मजबूती रखें, ऐसे मतलब डिसअपॉइंट नहीं हो जाए, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाए. तो बहुत बड़ा मतलब एक गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब मैं अपने 20 साल की प्रैक्टिस में तो ये कहूंगी कि मतलब ज्ञान में आने के बाद ही मैं खुद को संभाल पाई, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी. क्योंकि हम चाहते तो हैं कि अच्छा हो सब, लेकिन एक ये ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से अब रिस्पॉन्ड करेगी हर बार, जैसा किताबों में लिखा हुआ वैसा नहीं होता है. तो प्रैक्टिस में देखते देखते आप सीखते हैं, लेकिन एक चीज को आप दूसरे पर अप्लाई नहीं कर पाते, हर एक का केस अलग अलग रहता है. तो उसमें जब ईश्वर का सपोर्ट आपके ऊपर रहता है तब आप बहुत स्मूथली चीजें कर सकते हैं. तो इसलिए भगवान में तो आपको भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है. जब हम पीजी में पहली सर्जरी करते हैं तो हमारे सीनियर्स हमें सिखाते हैं कि पहले भगवान का नाम लो, जिसको भी आप मानते हो उनको याद करो, फिर सर्जरी चालू करो. तो उससे एक एक्स्ट्रा शक्ति तो मिलती ही है. तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर्स के प्रोफेशन में तो ईश्वरीय शक्ति काम करती ही है, ये हम स्वयं नहीं इतना मजबूत नहीं है कि जो कर सकते हैं, वो ऊपर से करा रहा होता है. और अगर इस फीलिंग से करेंगे तो जरूर सब कुछ अच्छा ही होता है. और अगर कभी एडवर्स आउटकम हो भी तो आपके ऊपर उसका ऐसा फ्रस्ट्रेशनल इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो तो ड्रामा में जैसा है कभी, ये तो सभी लोग आजकल तो मीडिया के कारण इतना पता चलता भी है कि कभी अच्छा रिजल्ट मिलता है कभी नहीं भी मिलता. तो उसका स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें मतलब जैसा जो होना है उसी के हिसाब से होगा ही वो. बस हम अपनी तरफ से ऑनेस्टी से करते जाएं.
0: डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि इमरजेंसी वाली जो बात है वो गायनेकोलॉजी में हमेशा रहता ही है, क्योंकि मैटरनिटी आप देखेंगे हमेशा रात को होता है 12 के बाद जो है, मोस्टली डिलीवरीज जो है आफ्टर 12 टू मॉर्निंग 6 के पहले ये सारी चीज़ें होती हैं, और उस समय डॉक्टर को जो है जागना ही पड़ता है, उनके स्टाफ को भी जागना पड़ता है. तो ये एक चीज़ है, और इसमें आपने जैसे कहा कि दो जिंदगी के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप, और इसीलिए आपका जो है जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाता है. तो थोड़ा सा कमिटमेंट है इसमें, और आप अगर कर लेते हैं तो अच्छा कमा भी लेते हैं और अच्छा नाम भी होता है, और आपको दुआएं भी बहुत मिलती हैं. तो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनको काफ़ी दुआएँ मिली हैं, और बहुत ही अच्छा एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, एक अच्छा जो है क्रीम नाम जो रहता है, और हमेशा बच्चे का डिलीवरी होने के बाद उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको अगर ठीक करते हैं आप तो ज़िंदगी भर माता पिता याद करते हैं हर बार कि हमारा डिलीवरी इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर ने किया था. वरना कहीं भी अगर जिक्र होता है घर में तो वो आपका नाम ज़रूर लेते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारी आपके पास रहता है. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और उसके बाद डॉक्टर साहिबा से हम उनके कुछ अनुभवों को सुनेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी आज आई है, पहले तो डिलीवरी सभी लोग घर में करते थे और अभी हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी हो गया, ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, और आज गायनेकोलॉजी में टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट के लिए, उसके बारे में जानेंगे. तो कहीं मत जाइएगा, आप सुनाए हैं पर करियर ऑप्शन डॉक्टर दीप्ति जी से. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: के साथ।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति जी हमारे साथ हैं, आप इंदौर से हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी अच्छी बातें आपसे सुनी। और अब मैं चाहूँगा डॉक्टर दीप्ति जी कि गायनेक में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आए हैं। वैसे ही हम लोग स्टोरीज जो सुनते हैं घर में, उस समय तो गाँव में भी एक माई होती थी, वो सभी का डिलीवरी करती थी और तभी कोई मना सर्जरी की बात नहीं आती थी, ना डॉक्टर की बात आती थी, वो अपने आप ही सब ठीक हो जाती थी। तो वो चीज़ें और अभी जो टेक्नोलॉजियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि दोनों चीज़ें अब बताइए। शुरू शुरू में आप जब नया इस फील्ड में आए तो उस समय कैसे काम करते थे और आज जो टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में बताइए जी।
2: जैसे कि हर फील्ड में मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है, मेडिकल फील्ड में तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जैसे पहले तो मतलब एक्सरे से ही पता किया जाता था कि बेबी कैसा पोजीशन कैसी है, तो जबकि वो सेफ नहीं होता था, तो भी अब कुछ ना कुछ जानना है इसलिए एक्सरे से पता किया जाता था। और पहले मतलब जैसे एक्चुअली जो ऑब्स गायनी ब्रांच है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, तो पहले तो वो ऑब्स्टेट्रिक्स ही था, मतलब कि डिलीवरियां कराना, लेकिन अब वो गायनेकोलॉजी का भी पार्ट काफ़ी सारा हो गया, तो काफ़ी लोग डिग्री लेके उसके बाद गायनेकोलॉजी फील्ड में भी चले जाते हैं, जो जिसका डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। तो

0: हम तो रोज डिलीवरी वाले पेशेंट्स को देखते हैं, वो बेचारे इतने दर्द में रहती हैं, उनसे इतनी सिंपैथी लगती है। मतलब ये सभी को पता ही है कि मतलब लेबर पेंस बहुत मतलब दर्दनाक होते हैं, तो उसमें भी लेबर एनाल्जेसिया वगैरह आ गया, तो मतलब एक डिलीवरी भी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो गया है मतलब महिलाओं के लिए। मतलब उससे डर, जैसे उसका डर बैठा हुआ रहता था महिलाओं की, भाई क्या होगा डिलीवरी के टाइम, इतना दर्द कैसे सहन करेंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ आ गई है कि लेबर एनाल्जेसिया जो आ गया उसमें दर्द का पता ही नहीं चलता है और बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है माताओं का। फिर उसके बाद में जो दूसरी मतलब ब्रांचेस है, काफ़ी लोग डिग्री लेके फिर गायनेकोलॉजी ब्रांच में चले जाते हैं, उसमें बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं, इनफर्टिलिटी है, लेप्रोस्कोपी है, तो उसमें काफ़ी मतलब एडवांसमेंट बहुत हो गया, रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, तो और उसमें इनफर्टिलिटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है अभी, PRP वगैरह, जो जो ऐसे केस लगते थे कि ये तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो होगा ही नहीं सक्सेसफुल, उसमें भी आजकल सक्सेस रेट मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, 60-70% रेट तक मतलब सक्सेस रेट हो गया है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें पूरा काम कर रहा है अभी, तो उस लेवल पर जाके मतलब जीन के लेवल पर काम कर रहे हैं कि जो ऐसी बीमारियाँ जो कि जन्मजात ही थी, जिनको जो बच्चे पैदा हो जाते थे और जिंदगी और माँ बाप उनको संभालते रहते थे वैसी स्टेज में मेंटल रिटार्डेशन और ऐसे, तो उसके लिए जेनेटिक लेवल पे ही वो उसको ठीक कर देते हैं, तो फिर वो सही हो जाता है, वो मतलब जीन के लेवल पे भी करेक्शन कर दे रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काफी सारे मतलब नई नई टेक्नोलॉजी से जो जो गड़बड़ियां हैं उनको सही करते जा रहे हैं। फिर जैसे लेप्रोस्कोपी है तो उसमें की होल सर्जरी है, तो मतलब बिना इंसिशन का बिना टाके का ऑपरेशन हो जाता है, तो उसमें पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है वो, क्योंकि वो एक दिन में ऑपरेशन हुआ दूसरे दिन चल के घर में भी चले जाते हैं और अपना रेगुलर सब काम भी कर सकते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, क्योंकि इसका मतलब फायदा बहुत ज्यादा है पेशेंट को। पहले तो 8-8 दिन डिलीवरी तक के पेशेंट पड़े रहते थे, आजकल तो दूसरे दिन ही चलवा देते हैं उनको और 3-4 दिन में घर भी जा सकते हैं, और की होल सर्जरी में तो सभी पेशेंट्स को बहुत आराम मतलब लगता है, मतलब उसके लिए क्या उसके कारण ये हो गया टेक्नोलॉजी के कारण कि जो मन में डर था लोगों का ऑपरेशन का कि वो निकल गया कि अरे बहुत दर्द होगा ऑपरेशन के बाद, तो चलना फिरना बंद हो जाएगा, रेस्ट 2-3 महीने लेना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसके कारण ये सारे डर निकल गए हैं, ना आपको ज्यादा रेस्ट करना पड़ता है, दूसरे दिन आप चल के घर जा सकते हैं और दर्द भी बिल्कुल नहीं होता, पेनलेस हो जाती है सर्जरी, तो ये सारे फायदे होते हैं। फिर वो सर्जन फ्रेंडली भी होते हैं, मतलब ऑपरेशन जो सर्जन कर रहे हैं उनको भी इतना ज्यादा थकान नहीं होती उसमें, फिर रोबोटिक सर्जरीज में तो और ही ज्यादा मतलब, और उसके साथ प्रेसिशन भी ज्यादा आ गया है, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा आ गई है, क्योंकि हमको ज्यादा अच्छे से वो चीजें दिखती हैं आंखों की बजाय और मैग्नीफाई होके दिखती हैं चीजें, तो टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली बहुत फायदा बहुत ज्यादा मिल रहा है लोगों को, तो उनका डर थोड़ा निकलता जा रहा है, मतलब कि सर्जरी के लिए जो डर है ऑपरेशन के लिए उससे दूर हो रहे हैं।
1: डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, और ये जो नया टेस्ट टू बेबी का जो आपने जिक्र किया, इसमें क्या AI और फिर जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, थोड़ा सा बताएंगे?
0: उसमें जो है ना एक जैसे काफ़ी सारे टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए किया जाता है बेसिकली कि जो नेचुरल तरीके से कंसेप्शन नहीं हो रहा, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स रहते हैं, तो उसमें से बहुत सारे अननोन फैक्टर्स रहते हैं जो कि पता ही नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो और जैसे पुराना जैसे अंदर जो लाइनिंग होती है यूट्रस में उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, तो वो जैसे खराब हो डैमेज्ड हो तो फिर ऐसे पेशेंट्स के लिए था कि अरे इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनको तो फिर वो अडॉप्ट ही करना पड़ेगा, तो लेकिन अब उसके लिए भी मतलब जो एंडोमेट्रियम को भी हेल्दी बनाने के लिए पेशेंट के ही ब्लड से वो लिया जाता है सैंपल, उसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, PRP प्रिपेयर करा जाता है पेशेंट का ही खुद का, किसी से डोनेट करके नहीं, और फिर उसको डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है एंडोमेट्रियम में, तो वो हेल्दी एंडोमेट्रियम बन जाती है, तो फिर वो एटमॉस्फेयर पैदा करती है कि मतलब वहाँ पे कंसेप्शन का ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आजकल चल रही है, तो मतलब जो जैसे पुराने TB के केस थे जिनको पहले TB हुआ रखा है तो उनका फिर ऐसे नेचुरल तरीके से नहीं हो पाता, तो ये सब टेक्नोलॉजी से उनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मेरे ही 2-3 पेशेंट जिनको मैंने रेफर किया था उसके लिए वो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया उसमें, तो वो मतलब जहाँ पे नाउम्मीदी थी वहाँ पे वो पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है उन लोग का, तो इस तरह की काफ़ी सारी, और जिनके जीन के लेवल पे जिनको बीमारियां डिटेक्ट हुई हैं वो उसी के मतलब प्री जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं उसको, तो उसमें पहले ही वो पेरेंट्स का वो लेके क्रोमोसोम्स लेके स्टडी कर लेते हैं, और उस लेवल में अगर खराबी हो, क्योंकि क्या है ये एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है पेरेंट्स पे अगर कोई ऐसा ये रहता है।

0: दिव्यांग
1: जेनेटिकल
0: दिव्यांग बच्चा कोई
1: दिव्यांग
0: पैदा हो तो
1: बच्चा
0: वो बर्डन बहुत हो जाता है, तो उसको
1: बिल्कुल
0: उसी लेवल पे पहले ही
1: ठीक
0: कंसेप्शन के
1: है।
0: पहले ही मतलब डिटेक्ट कर लिया जाता है कि इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते ऐसा होगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस या परेशानियों से बचाव के लिए आ गई हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं।
1: जी। डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात है आपने बताया कैसे टेक्नोलॉजी आज जो है हेल्पफुल है हम सभी के लिए, बहुत ही अच्छा मददगार बन रहा है, और जो बाद में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी ठीक किया जाता है, ये आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बाद हमारे विद्यार्थी मित्रों को ऑप्शन क्या क्या है, सिर्फ हॉस्पिटल या प्रैक्टिस, इसके अलावा कौन कौन सी जगह पर वो काम कर सकते हैं? जी
0: देखिए, सबसे पहले तो पीजी करने के बाद फ्रेशर्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम किस फील्ड में जाएं। तो आजकल जैसे इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे पास भी जैसे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा 50% पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के ही आते हैं, तो उसमें जाना बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए बहुत फेलोशिप्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती हैं, एक्सपीरियंसेस ले लें। फिर किसी किसी को जिनको सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो वो लैप्रोस्कोपी वाला फील्ड ले लें, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है आजकल और बहुत सेटिस्फाइंग है, क्योंकि आप पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट देते हो, पेशेंट खुश होकर जाते हैं, कोई चीरा नहीं लगता तो कोई दर्द नहीं होता और वो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है वापस। आजकल सब वर्किंग रहती हैं लेडीज भी, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, अपने काम पे वापस जा सकती हैं। तो इसके लिए बाहर से थोड़ा डिग्री वगैरह ले लें तो अच्छा रहता है, मतलब लैप्रोस्कोपी के लिए एक बार, मतलब शुरू में पीजी के बाद ही निकल, मतलब ये सारे फेलोशिप्स कर लें, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस शुरू करने के बाद फिर उतना टाइम, मतलब ऐसा फिर वो नहीं रह जाता इतना ज्यादा अपना, क्योंकि पढ़ाई का उतना वो थोड़ा बीच में गैप आ जाता है। तो पढ़ाई करते हुए ही जब एक बार पीजी हो गया उसके बाद ही सारे फेलोशिप्स कर लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में उतरें, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो फिर इनफर्टिलिटी और लैप्रोस्कोपी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं और आजकल की नीड भी है, ज्यादातर लोग मतलब एक्सपेक्ट भी करते हैं कॉमन पब्लिक कि ये इन्हीं चीजों में ज्यादा जाते हैं। तो मतलब पीजी होने के तुरंत बाद ये एक 2-3 साल और लगा दें और इसमें फेलोशिप्स वगैरह करके फिर अपनी प्रैक्टिस चालू करें, तो फिर उसमें ज्यादा मतलब सक्सेस मिलती है, क्योंकि इसी के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उसमें फिर बाद में फिर लगता है एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद कि अरे हम ये वाला कर लेते फेलोशिप तो अच्छा रहता, उससे अच्छा पहले ही कर लें
1: तो
0: फिर प्रैक्टिस
1: चालू कर दे। हाँ, उसी के साथ साथ हो गया,
0: साथ ही साथ
1: तो
0: हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई के उसमें रहते ही फ्लो में,
1: बिल्कुल,
0: तो उसी
1: बिल्कुल,
0: के साथ हो जाता
1: वो
0: है,
1: भी जाता है, नहीं तो फिर बाद में वापस करने
0: फिर
1: की
0: वापस फिर डे वन से शुरू करना पड़ता है, तो उतना वो नहीं रहता ड्राइव।
1: सही बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने बताया डॉक्टर दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप?
0: मैं ये जो विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेरा यही मैसेज है कि आप मन में सेवा भाव रखें और सच्ची भावना रखें। आप इस हिसाब से नहीं प्रोफेशन को चूज करें कि ये दूसरे प्रोफेशंस जैसे नहीं है कि जहां पैसा कमाया जाता है। जैसे मेरे भी जो सब कजिन्स वगैरह हैं जो दूसरे फील्ड्स, मतलब जो नॉन मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, वो भले ही मतलब उनका ज़्यादा स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उससे कंपैरिजन कभी ना करें कि, क्योंकि ये कंपैरिजन मैंने भी देखा है अपने फ्रेंड्स में, सब में आता ही है कि भाई वो दूसरे प्रोफेशन में है और उनका ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है। तो हम इसके लिए डॉक्टर नहीं, ये प्रोफेशन नहीं चूज़ करें कि हमें पैसा कमाना है उसे, क्योंकि ये है ही ऐसा प्रोफेशन ही अलग है ये, तो ये कमर्शियलाइज उसको ना करें, मतलब अपने अंदर सेवा भाव रखें, अच्छी भावना रखें और ईश्वर को मतलब ये समझ के कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया ये कार्य करने के लिए, वो मुझसे करवा रहा है, तो इस भावना से करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे और स्ट्रेस फ्री और पीसफुल लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि इस चैलेंजिंग और डिमांडिंग प्रोफेशन में भी आप आराम से पीसफुल लाइफ जी सकते हैं ऐसी भावना के साथ में।
1: जी डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया, और डॉक्टरी पेशा में या मेडिकल फील्ड में जब भी आप आए तो आपका इंटेंसिटी जो है बहुत प्योर होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेस पाते हैं और दुआएं मिल जाती हैं। दूसरों से कंपैरिजन कभी मत कीजिए। तो ये संदेश था डॉक्टर दीप्ति जी का। आप सभी विद्यार्थी मित्र इसे जो है याद रखें और इसी उद्देश्य को लेकर आप जन कल्याण सेवा के लिए आप इस फील्ड में आए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ डॉक्टर दीप्ति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छी बात है आपने बताया गायनेकोलॉजी के बारे में। चलिए विद्यार्थी मित्रों, दीप्ति जी का संदेश और उनका एक्सपीरियंस आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा करियर बनाने में, करियर फ्रेम करने में। तो आप अपना करियर अच्छे से फ्रेम करें, सोच समझ के फ्रेम करें और मैं चाहूँगा कि एक दो बार इस एपिसोड को ज़रूर सुने आप नेट के माध्यम से, और फिर अपने करियर को फ्रेम करें, अपना करियर अच्छा बनाएं, ब्राइट फ्यूचर हो आपकी, अपना और माता पिता का नाम रोशन करें, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए करियर के बारे में आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: बच्चों कैसे हो तुम लोग?
1: बहुत अच्छे
2: दीदी।
0: लग रहा है सैंडी की थोड़ी सी तबीयत खराब है आज।
2: हाँ
3: मुझे भी लग रहा।
0: क्या हुआ सैंडी?
2: कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस हो रही है।
0: कभी कभी गर्मियों के दिन में तबीयत खराब हो जाती है।
2: हाँ ये बात तो है।
0: तो रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओ।
3: ज्यादातर ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है।
0: ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है, ये तो है।
2: और आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ इसीलिए।
0: ट्रैवल अगर गर्मियों में किया जाए तो फिर तो बॉडी का सारा पानी सूख जाता है। बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और आराम की।
2: हाँ दीदी
0: है ना। अच्छा चलो, आज तुम ट्रैवल करके आए हो तो चलो हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं।
3: ओके
2: ओके।
0: तो तुम लोग की फेवरेट जगह, घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है?
3: दिल्ली, मेरी माउंट आबू।
0: माउंट आबू?
3: हाँ।
0: और भुवना?
4: मेरी तो कूर्ग।
0: कूर्ग, ये कहाँ पे है?
4: कर्नाटका।
0: कर्नाटका में? क्या वो आपके घर के पास है?
4: नहीं।
0: आप कूर्ग घूमने कब गए थे?
4: लास्ट समर हॉलीडेज गए 2015
0: में। अच्छा, कितने टाइम के लिए और किसके साथ गए थे?
4: मैंने मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया और अंकल के साथ गई।
0: अरे वाह। और वहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
4: मुझे वहाँ सबसे अच्छा वो क्लब लगा जहाँ हम रुके थे, क्योंकि वह स्विमिंग पूल इतना अच्छा था कि हम दिन भर वहीं थे। और नेक्स्ट डे हमने एक तलकावेरी, एक प्लेस है जहाँ कावेरी रिवर स्टार्ट होती है, वहाँ गई। वहाँ का फॉग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मोमेंट थी वो जब हम महसूस करते हैं। वो बहुत कूल था वह जगह, हिल स्टेशन है ना इसलिए।
0: अच्छा, वो एक हिल स्टेशन है।
4: हाँ,
0: इसीलिए वहाँ पे ठंडी होगी।
4: हम्म।
0: और आपने इतने सारे दिनों में वहाँ पे क्या क्या देखा?
4: कॉफी एस्टेट्स, फिर बहुत सारे टेम्पल्स देखा मैंने, और एक रिवर के पास गई जहाँ हम खेल रहे थे पानी के साथ में और मेरे भैया।
0: अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या बोला?
4: कॉफी एस्टेट।
0: कॉफी एस्टेट्स, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा?
4: मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीज और कॉफी प्लांट्स देखी मैंने। कॉफी के पत्ते जैसे निकालते वो स्मेल बहुत अच्छी।
0: क्या आपने वहाँ कॉफी पी?
4: नहीं, वो सीजन नहीं था ना।
0: अच्छा, मतलब सिर्फ कॉफी को बनते हुए देखा और बहुत सारे टेम्पल्स देखे।
4: हाँ।
0: अरे वाह, जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। घूमने का मन कर रहा है ना सैंडी?
2: हाँ दीदी,
3: सुन के तो ऐसा लग रहा है हम भी वहाँ घूम रहे
2: चले।
0: हाँ, यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो रही है, ठंडी जगह जाने में तो मजा आता है। और सैंडी, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है?
2: दिल्ली।
0: दिल्ली? दिल्ली तुम कब गए थे?
2: इसी वेकेशन में।
0: इसी वेकेशन में गए थे। दिल्ली में सबसे अच्छा क्या लगा?
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल? हाँ, लोटस टेम्पल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। लोटस की शेप का नजर आता है दूर से देख के।
2: हाँ।
0: और बताओ, दिल्ली में कौन कौन सी जगह तुमने देखी?
2: तुमिनार, फिर इंडिया गेट और अक्षरधाम, कालका मंदिर, बहुत सारी जगह घूम लोग हमने।
0: मतलब बहुत सारे मंदिर तुमने घूमे। और उसमें से सबसे फेवरेट जगह
2: लोटस टेम्पल
0: लगी।
2: और कुतुब मीनार।
0: और कुतुब मीनार लगी।
3: हाँ। कुतुब मीनार तो कभी भूल ही नहीं सकता।
2: नहीं।
0: अच्छा, कुछ स्पेशल अलग रहा है कुतुब मीनार के साथ?
2: हाँ।
0: क्या
2: वहाँ पे काफी एंजॉय किया मैंने और पंकज ने।
3: वहाँ हमें एक नए फ्रेंड भी मिले जो फॉरेन के थे।
0: अच्छा, वहाँ आप लोग नए फ्रेंड्स मिले इसीलिए वो जगह स्पेशल हो गए। और दिल्ली में बस इतनी जगह गए? रेड फोर्ट नहीं गए?
3: रेड फोर्ट
2: गए थे ना, फिर क्लब भी गए, फिर मॉल भी गए, बहुत सारे
0: मॉल गए।
2: हाँ, वर्ल्ड स्क्वायर, एमएक्स मॉल, बहुत सारे मॉल घूमे।
0: दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं।
2: हाँ।
0: और मेट्रो में ट्रैवल किया कि नहीं?
2: खूब
3: मेट्रो में तो
2: पूरे दिन मेट्रो में, मेट्रो कार्ड बनवाया, पूरे दिन मेट्रो में घूमे।
0: मेट्रो में घूमने में मजा आता था
2: बहुत। पंकज तो बोले यहीं रुक जाते,
3: हमें तो ऐसा लगता था कि मेट्रो में ही अपना घर बना ले।
0: इतना अच्छा लगता था मेट्रो में।
3: हाँ।
0: और इंडिया गेट कैसा लगा?
2: इंडिया गेट तो अच्छा ही था, वहाँ से तो अपन थोड़ा घूम भी गए थे ना।
3: हम वहाँ खो गए थे।
0: खो गए थे।
2: हाँ।
0: अलग हो गए थे दोनों?
2: नहीं, साथ में थे।
3: रास्ता खो गए थे।
0: अच्छा, वहाँ से मेट्रो स्टेशन का रास्ता खो गए थे?
3: नहीं, टैक्सी स्टैंड का।
0: और अमर जवान ज्योति देखी कि नहीं?
3: देखी, बहुत अच्छी थी।
0: अच्छा लगा?
3: हाँ, वो ज्योति हमेशा जलती रहती नहीं है।
2: और वहाँ पे इंडिया गेट में खास बात और देखी, उस पे जो जो लोग शहीद हुए हैं सबका नाम लिखा हुआ उसके ऊपर।
0: और वो ज्योति हमेशा जलती रहती। हाँ। है
3: यदि वो ज्योति क्यों जलती है?
0: क्योंकि वो उन शहीदों की याद में जलाई जाती है और उनको हम हमेशा सल्यूट करते हैं।
3: हाँ।
0: हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो जवानों के जो शहीद हुए उनके लिए वो ज्योति हम हमेशा जलाए रखते हैं। वो एक सिंबल की तरह है, उसको कंटिन्यू जलाया जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। और जब स्पेशल ओकेशंस होते हैं तो वहाँ परेड होती है, और खूब सारी भीड़ होती है उन्हें देखने के लिए।
2: हाँ, ऐसे टीवी में देखा है।
0: टीवी में देखा है। और दिल्ली कितने दिनों के लिए गए थे आप लोग?
3: 10 दिन।
0: आप लोग अकेले गए कि मम्मी पापा के साथ?
3: हम दोनों फ्रेंड्स गए थे, दीदी के साथ।
2: दीदी के साथ,
0: दीदी के साथ गए थे। अच्छा, अरे वाह। चलो, आप लोग देश की राजधानी को देख के आए। बहुत अच्छी बात।
3: हमने राजस्थान की राजधानी भी देखी,
2: जयपुर।
0: अच्छा, मतलब दिल्ली के बाद जयपुर का टर्न था। तो पंकज, तुम बताओ जयपुर में तुम्हारा फेवरेट क्या था?
3: जयपुर में मेरा फेवरेट था WTP मॉल।
0: WTP मॉल? मॉल अच्छा क्यों लगा सबसे ज्यादा?
3: वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी, और उसके बाहर जो लाइट्स लगी हुई है वो बहुत स्पेशल लाइट्स है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को।
0: मतलब कुछ कलरफुल लाइट्स?
3: कलरफुल लाइट्स है, बहुत अच्छी।
0: अच्छा, तब तो देखना पड़ेगा। और जयपुर में क्या क्या देखा?
3: और जयपुर में तो कुछ खास नहीं, बस अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया।
0: हवा महल नहीं देखा?
3: नहीं।
0: अच्छा, जयपुर में हवा महल है। और जयपुर को पता है क्या कहते हैं?
2: पिंक सिटी।
0: और पिंक सिटी क्यों कहते हैं जयपुर को?
2: वहाँ की सारी दीवारें गुलाबी गुलाबी नजर आती
0: है। हाँ, और पुराना जयपुर देखा आप लोगों ने?
3: हाँ। नहीं, मैंने नहीं देखा।
0: मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय किया।
2: हाँ।

0: और भुवना, मैंने सुना है आपने बहुत सारी जगह घूमी है।
1: हाँ।
0: क्या आप कभी कंट्री के बाहर भी गए हो?
1: हाँ, मैंने यूकेजी में मस्कट गई।
0: मस्कट गए हो, तो आपको कुछ याद है मस्कट का?
1: मुझे लूलो मॉल याद है।
0: मॉल याद है, और वहाँ पे तो आप बच्चे होगे तो आपने खूब इंजॉय किया होगा।
1: हाँ।
0: है ना? और इंडिया में आप कहाँ कहाँ गए हो?
1: मैं भी राजस्थान गई, मेहरानगढ़ जोधपुर में, हवा महल, कुंभलगढ़, गुरु शिखर।
0: इतनी सारी जगह?
1: मैंने वो अरावली माउंटेन्स गई वहाँ, और मैंने जब ऊपर की इतना हवा रही थी, बहुत अच्छा फील हुआ। मैं जे बहुत प्लेजेंट था, और मैंने एक राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी।
0: अरे वाह, राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी, कलरफुल कलरफुल।
1: हाँ।
0: वहाँ पे आप शाम को गए होगे, सनसेट देखा कि सनराइज देखा?
1: सनसेट।
0: सनसेट देखा, कैसा लगा सनसेट देखने में?
1: बहुत अच्छा।
0: और कौन सी जगह? जोधपुर गए आप? जोधपुर कैसा लगा?
1: वो तो बहुत ब्लू सिटी है, तो इसलिए बहुत कूल रहा।
0: कूल रहा। वहाँ पे क्या क्या देखा?
1: मेहरानगढ़।
0: मेहरानगढ़, और वो क्या है?
1: वो एक महल है।
0: अच्छा, महल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
1: जब हम छत में गए, वहाँ सब ब्लू सिटी दिख रहा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: मतलब महल की छत से पूरी सिटी ब्लू नजर आ रही थी?
1: हाँ।
0: अरे वाह, फिर तो व्यू बहुत ही अच्छा होगा। और राजस्थान में आप कहाँ गए?
1: मैंने अच्छा
0: कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
1: हाँ।
0: है ना? उनका जन्म स्थान आप देख के आए?
1: हाँ।
0: और वहाँ तो बहुत ऊपर चल के जाना पड़ता है ना?
1: हाँ।
0: तो थके नहीं?
1: नहीं, मैंने एक वंडर भी देखा, राजस्थान का बादल महल।
0: अच्छा, और वो वंडर क्या है?
1: जहाँ हम, वो बहुत ऊपर है, हमें बहुत तीर चढ़ना पड़ेगा, और जब हम ऊपर चलेंगे तो वहाँ हम बादल को छू सकते हैं।
0: वहाँ से सिर्फ बादल नजर आते हैं?
1: हाँ, बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा था ना? बादल महल तो मैंने भी देखा। और बताओ, कहाँ कहाँ घूमे हो पंकज?
2: और हम दिल्ली में अक्षरधाम घूमे।
0: अच्छा हाँ, अक्षरधाम को हम कैसे मिस कर सकते हैं?
2: बहुत स्पेशल जगह है वो भी।
0: स्पेशल जगह है,
3: खास करके वाटर शो नाइट का।
0: आप लोगों ने वो देखा?
2: हाँ, हाँ। बहुत अच्छा है।
0: क्या क्या देखा उसमें, हमें बताओ तो।
2: वाटर शो ऐसा है कि जब वहाँ फवारे से वाटर निकलता है, और ऐसा लगता है कि एक म्यूजिक चल रही है और उस पे वो वाटर डांस कर रहे हैं।
0: अच्छा।
3: हाँ दीदी।
0: और क्या उसके पहले उसमें कोई थीम भी होती है? लाइट एंड साउंड शो देखा आप लोगों ने?
2: हाँ, वही लाइट एंड साउंड शो कहते हैं उसको।
0: उसमें एक बार तो दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश का पूरा शो भी दिखाया गया था। मेरे ख्याल से अलग अलग थीम पे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है।
2: हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ और देखा था।
0: हाँ, और वाटर और म्यूजिक के थ्रू वो थीम को रिप्रेजेंट किया जाता है।
3: काफी इंटरेस्टिंग था।
0: काफी इंटरेस्टिंग था ना, मजा आया
3: बहुत।
0: और वहाँ पे वो जो बड़ी सी जगह है जहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, खुला खुला आसमान के नीचे इतने सारे लोगों के साथ भी कितना मजा आता है ना।
2: बहुत अच्छा था। और वो खास करके टेम्पल, जिसमें ऐसा लगता है कि पूरा गोल्ड का बना हुआ है।
3: वहाँ की कैंटीन भी अच्छी।
2: इसे तो हमेशा खाने का ही।
0: नहीं, अच्छी बात है, अगर जगह अच्छी और खाना भी अच्छा हो तो डबल डबल अच्छा हो गया ना।
3: मैं पहले कैंटीन नहीं था कहीं भी।
0: और कहाँ घूमे हो? दिल्ली के अलावा कहीं घूमने गए हो?
3: कोटा।
0: कोटा, कोटा में क्या देखा?
3: मैंने कोटा में वहाँ पे एक परमाणु ऊर्जा बनाते हैं ना अपने, जो लाइटें आती पूरे राजस्थान में, वो देखा है।
0: अच्छा, उसको कैसे बनाते हैं आपने?
3: हाँ,
0: देखा?
3: हाँ, वहाँ पे अंदर गए थे हम, स्कूल से गए थे जब घूमने गए थे, तब स्कूल से कुछ प्रोग्राम था हमारे जिम्नास्टिक होता है, तो उसमें हमारी टीम गई थी। तब सर में 6 लोग थे, तब सर हमको घुमाने ले गए, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। कुछ चंबल करके कोटा में है, उस पानी से लाइट बनता है वहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
0: पानी से लाइट बनती है? अरे वाह।
3: अपनी ज़्यादातर राजस्थान में सब जगह लाइट वहीं से आता है, परमाणु ऊर्जा।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ देख के आए आप। और कोटा में तो कोचिंग सेंटर बोलते हैं ना?
3: हाँ, बहुत।
0: मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं?
3: स्टूडेंट। और कोटा में खास बात ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये लाव कर रखा है कि घर को भी स्कूल बना सकते हैं वहाँ।
0: घर को भी स्कूल बना सकते हैं?
3: हाँ।
0: और वो कैसे?
3: क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, बहुत पढ़ाई काफी अच्छी है कोटा की।
0: पढ़ाई अच्छी है,
3: नॉलेज बहुत काफी है कोटा में।
0: लेकिन घर को स्कूल कैसे बना सकते हैं?
3: जैसे ना कि मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव दे रखा है कि
2: मतलब अगर किसी घर में कोई एजुकेटेड व्यक्ति है तो खुद का क्लास खोल सकता है।
3: हाँ,
0: उसे अलग से परमिशन की जरूरत नहीं।
3: नहीं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा वहाँ पे। ये हमने बहुत कर, जब जहाँ रुके थे पास में कोचिंग सेंटर था, इतनी भीड़ हम तस्वीर से बस वही देखते थे।
0: वहाँ पे तो देश भर से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं ना।
3: हाँ।
0: दूर दूर से आते हैं। तो आप लोग भी थोड़ी पढ़ाई करके नहीं है?
3: नहीं,
2: हम तो बस देखने गए थे।
3: हम तो बस खेलने के लिए गए थे। हमारा वहाँ पे उमेश सिंह स्टेडियम था, तो हमारे वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा शो, मतलब जिन्माष्टमी का शो था हमारा, तो सुबह जाना होता शो करने के लिए और शाम को।
0: अच्छा,
3: क्योंकि मैं जिन्माष्टमी में रह चुका हूँ ना, स्टेट लेवल खेल के आ चुका हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खेलने के बहाने आपको घूमने को मिल गया।
3: हाँ, पांचवा रैंक आया था हमारा, हमारी टीम का।
0: अरे वाह, चलो इस पे हम लोग तालियां बजाते हैं।
3: थैंक यू।
0: तो ये पता है बच्चों, ये भी अच्छी बात है, जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं, खेलने में अच्छे होते हैं, तो उसके साथ साथ भी आपको घूमने की कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं।
3: हाँ,
0: है ना। और पंकज, आप और कहाँ घूमने गए हो? जब आप छोटे थे क्या तब कहीं घूम के आए?
2: जब मैं छोटा था तब तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ घूमने गया था।
0: इतने छोटे भी नहीं,
2: ऐसी कोई मोमेंट याद नहीं है।
0: अच्छा, अपने आपका जो घर है, आप लोग आबू रोड में रहते हो, ये भी तो टूरिस्ट प्लेस है, माउंट में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं।
3: हाँ दीदी।
0: तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ, यहाँ तो आप लोग बहुत घूमे होंगे।
2: यहाँ तो हमने हर जगह घूम रखा है।
0: तो यहाँ की जगह के बारे में कुछ बताओ।
2: यहाँ मैं सुंदर माता मंदिर घूमने गया था।
0: वहाँ पे क्या है?
2: वहाँ पे बस एक मंदिर है, बहुत बड़ा है और फेमस मंदिर है।
0: फेमस है, बहुत पुराना है।
2: और वहाँ एक सैंड की हिल है।
0: सैंड की हिल है, अच्छा,
3: पूरा रीति रीत।
0: अच्छा,
2: इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
0: और भुवना, तुम्हारे घर के पास कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत फेमस है?
1: चार मीनार।
0: पहले हम सबको बताओ आपका घर कहाँ है?
1: मेरा घर तो थोड़ा दूर है चार मीनार से, मारेटपल्ली में।
0: अच्छा, और वहाँ कौन कौन सी जगह है जो आपने घूमी है?
1: मैंने चार मीनार घूमा, फिर गोलकंडा।
0: गोलकंडा क्या है?
1: वो एक महल है जहाँ राजा रहते थे, वो एक कैपिटल होता था हैदराबाद का पहले।
0: हैदराबाद का कैपिटल, ओके। और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं?
1: वो एक्चुअली रुइन हो गई, हाफ तो रुइन हो गई, इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं देखा, फिर देख के आ गई बस
0: देख के आ गई। और आपके घर में कौन कौन सी घूमने की जगह है?
1: जब मैं छोटी थी मैं चेन्नई गई, वहाँ क्वींसलैंड गई मैं।
0: क्वींसलैंड?
1: बहुत छोटी थी।
0: वो जगह आपको याद है?
1: हाँ, फोटोज में देखी। और मैंने जू गए।
0: जू में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं।
1: हाँ,
0: आपका फेवरेट कौन सा है?
1: मेरा फेवरेट रैबिट।
0: रैबिट तो बहुत क्यूट होते हैं। और पंकज सैंडी, अपने शहर के बारे में हमें और नहीं बताओगे?
3: माउंट आबू हमारा काफ़ी अच्छा है।
2: हमारा शहर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है,
0: क्योंकि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन।
3: हाँ, माउंट आबू को अपने राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं।
0: राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, अरे वाह। और कौन कौन सी घूमने की जगह है? अगर कोई आपके शहर घूमने आता है तो उसे कहाँ कहाँ लेके जाओगे?
3: दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
0: दिलवाड़ा का जैन मंदिर,
3: जिसे इतिहास में पढ़ा भी जाता है।
0: वहाँ की खासियत क्या है सैंडी?
3: खासियत है वहाँ की महावीर भगवान की मंदिर है, 880 किलो सोने की है।
0: अच्छा, और वहाँ की जो कारीगरी
3: सुपर,
0: वो तो देखने लायक है।
3: उन्हें लोग बुक्स में पढ़ते हैं और देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं।
0: वहाँ की एक एक दीवार में अलग अलग नक्काशी और कारीगरी है।
2: इस मंदिर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ
3: कारीगरी नहीं की गई।
0: और कितना सुंदर और बड़ा मंदिर है।
3: हाँ दीदी, बहुत।
0: दिलवाड़ा मंदिर तो सच में बहुत।
3: और कहा जाता है कि दूसरे देश के लोगों ने शायद उसे वार करने की कोशिश करी, इस मंदिरों पे तोड़ने की कोशिश करी, पर उस मंदिर में कुछ भी, एक खरोच भी नहीं आई।
0: पर एक खरोच भी नहीं आई,
3: ऐसा मेरे पापा से सुना मैंने।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सी कहानियाँ हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं।
3: हाँ,
0: और कौन कौन सी जगह है?
3: अचलगढ़, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग है।
0: अच्छा, अचलगढ़ आप लोग गए हो?
3: हाँ, मैं एक बार गया था फैमिली के साथ। हाँ,
0: माउंट में तो वैसे कहीं भी घूमने चले जाओ अच्छा।
3: अचलगढ़ में पापा बता रहे थे कि वहाँ दो भैंस है जो वहाँ पे दूध दही की नदियों बहती थी।
0: अच्छा,
3: हाँ,
0: इसका मतलब है कि दूध घी दही सब हाँ, कुछ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था।
3: हाँ, और वो दो भैंस पी जाते हैं, तो उनको शायद किसी राजा ने गोली मार दिया था, तो वो पत्थर के बन गए थे, अभी भी वहाँ पर है।
0: अच्छा, ऐसी कहानी मशहूर है।
3: हाँ, और हम लोग देख के अभी भी वो है, ऐसे दो भैंस वहाँ पर
0: जो पत्थर की भैंस है वो हाँ, वहाँ पे,
3: और अभी भी गोली मारी उसकी निशानी उस पे है।
0: अच्छा
3: हाँ।
0: ये तो देखना पड़ेगा,
2: मैं भी देखना चाहता हूँ।
3: ठीक है, चलो।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्यूचर में घूमने का मौका मिले, किसी एक जगह जाने का मौका मिले, देश में या विदेश में, तो वो जगह कौन सी होगी?
3: मेरी तो अमेरिका।
0: अमेरिका? और अमेरिका क्यों?
3: बस अमेरिका अच्छा लगता है, अमेरिका जाना।
2: टीवी में अच्छा लगता,
3: टीवी अच्छा लगा।
0: टीवी में और फिल्मों में हम हाँ। अमेरिका देखते हैं और अमेरिका बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए अमेरिका जाना है। और बाकी की चीजें तो अमेरिका जाके पता चलेगी
3: कि कैसा है।
0: तो सैंडी जब बहुत सारी पढ़ाई करके एक अकाउंटेंट बन जाएगा, फिर अमेरिका घूम के आएगा।
3: हाँ।
0: और हम सबको लेके नहीं जाओगे?
3: हाँ, मैं लेके जाऊंगा ना दीदी, बिल्कुल, पहले मैं जाके आऊंगा, देखो अच्छा है तो ले जाऊंगा।
0: अच्छा, और पंकज?
2: मैं लंदन जाना चाहता हूँ।
0: लंदन जाना चाहते हो? लंदन क्यों जाना चाहते हो?
2: वो प्लेस मुझे नाम से ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वहाँ देखना है कि वहाँ क्या है जो इतना फेमस है वो।
0: अच्छा हाँ, लंदन का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, जब भी हम विदेश की बात करते हैं लंदन का नाम तो ज़रूर आता है।
2: हाँ दीदी, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ वहाँ ऐसा क्या है जो फेमस है।
0: वहाँ ऐसा क्या है जो वो इतना फेमस है, ये ढूंढने के लिए आप लंदन जाना चाहते हैं?
2: हाँ,
3: खोज करेगा पंकज।
0: ठीक है, आप दोनों साथ में जाके खोज करके आना।
3: ठीक है।
0: और भूमना, आप कहाँ जाना चाहते हो?
1: मैं पेरिस जाना चाहती हूँ।
0: आप पेरिस जाना चाहते हो? अच्छा, और पेरिस क्यों जाना चाहते हो?
1: क्योंकि मैं एक वंडर देखना चाहती हूँ इस वर्ल्ड का, ईफिल टावर।
0: अच्छा, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनमें से एक वंडर आप देखना चाहते हो?
1: हाँ।
0: क्या किसी ने इंडिया का
1: ताजमहल
0: देखा है? देखा है?
3: हाँ।
0: मतलब आप आगरा गए हो?
3: हाँ, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो गांव जा रहे थे, बीच में आगरा ट्रेन लेट थी, तो फिर वहां से स्टेशन से पापा ले गए थे, 10-15 मिनट के लिए गए थे हम।
0: अच्छा, तो वहां पे क्या देख के अच्छा लगा?
3: सबसे मस्त वहां की नदी, जो पास से नदी निकल रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। वहां की आगरा की पूरी ताजमहल है, उसका पूरा परछाई उस नदी में दिखती है।
0: नदी में दिखती है।
3: हाँ।
0: और वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है, है ना?
3: हाँ।
0: और इंडिया के वंडर की बात की और वर्ल्ड का एक वंडर भूमना देखना चाहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई मुश्किलें आती हैं?
3: ऐसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती हैं।
0: जैसे?
2: जैसे कई बार खो जाते हैं रास्ता।
3: जैसे हम दिल्ली में खो गए थे।
0: दिल्ली में खो गए थे, फिर मिले कैसे?
3: हम साथ में खोए, मतलब बस रास्ता भूल गए।
0: रास्ता भूल गए
3: तो
0: रास्ता भूल जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
3: हमने गूगल खोला।
0: गूगल खोला? हाँ, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है।
2: लेकिन
0: हाँ।
2: फिर भी मुझे एक मेन पॉइंट याद था जहाँ से हम वापस जा सकते थे।
0: इसीलिए जब आप घूमने जाएं तो
3: मैं थोड़ा डर गया।
0: आप थोड़ा डर गए थे कि कहीं गलत ना चले जाए?
3: हाँ, जबकि पंकज सही जा रहा था।
0: होता है कभी कभी, जब हम डर जाते हैं तो सही भी हमें सही नजर नहीं आता।
3: हाँ, थोड़ा मैं जल्दी हड़बड़ा जाता हूँ इस बात के लिए।
0: और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है?
3: कि पेशेंस रखना चाहिए।
0: हमें पेशेंस रखना चाहिए और सही रास्ता खोजने के लिए इंतजार करना चाहिए। गूगल है, आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको विश्वास के पात्र लगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। और कभी भी एक व्यक्ति के डायरेक्शन पर ना जाके 3-4 लोगों से वो डायरेक्शन कंफर्म करें, तभी आगे बढ़ें।
3: ओके दीदी,
0: है ना?
2: हाँ दीदी,
0: उसे कहते हैं क्रॉस चेक करना। 3-4 लोग तो आपको एक साथ गलत नहीं बताएंगे।
3: हाँ।
0: है कि नहीं?
2: कुछ लोग मजाक भी करते हैं।
0: कुछ लोग मजाक कर सकते हैं या गलत बता सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 लोगों से आपने क्रॉस चेक किया तो मतलब आप सही रास्ते तक पहुंच जाओगे, है ना?
3: हाँ दीदी।
0: और दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा मजा आता है कि फैमिली के साथ?
3: दोस्तों के साथ।
0: और पंकज?
2: फ्रेंड्स के साथ।
0: भुवना?
1: फैमिली के साथ।
0: भुवना को फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। फैमिली के साथ मजा नहीं आता पंकज और सैंडी को?
3: मजा आता है पर उतना नहीं,
0: क्योंकि दोस्तों के साथ ज्यादा मस्ती करते हैं।
3: हाँ।
0: लेकिन फैमिली के साथ भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके साथ वो टाइम हमें घर पे कभी कभी नहीं मिल पाता, सब लोग अपने अपने जॉब में व्यस्त होते हैं, इसीलिए जब भी फैमिली को लेके जाओगे तभी भी और इन्जॉय करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करना।
3: ठीक है दीदी।
0: और सैंडी भी हमें कोई जगह के बारे में बताने वाले हैं क्या?
3: हाँ, अंबाजी मंदिर, जो कि हम पैदल गए थे घूमने के लिए।
0: पैदल? कितनी दूर?
3: यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। मैं और पंकज जब अंबाजी मंदिर में नवरात्रि चलते हैं तो काफ़ी लोग पैदल जाते हैं, अच्छी मान्यता होती है, तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम पैदल पैदल गए थे।
0: पैदल पैदल गए थे?
3: हाँ, फिर सुबह जाके वहाँ हालत खराब हो गई थी हम लोगों की, दर्शन तक ये नहीं सो गए,
0: मतलब इतना चले कि थक गए।
3: थक गए।
2: हाँ, तो बहुत मजा आया।
3: हाँ,
0: दोस्तों के साथ सफर में भी ज्यादा मजा आता है घूमने से ज्यादा।
3: फर्स्ट टाइम पैदल पैदल गए थे हम लोग कहीं।
0: पैदल पैदल
3: पता
0: नहीं लगा था आप लोग को पैदल चल के जाने में?
3: रात को 8 बजे निकले थे ना,
2: फिर 5 घंटे
0: पैदल चले थे
3: लगातार।
0: ठीक है बच्चों, आज हमने ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सी बातें की।
3: हाँ दीदी,
0: अभी तो तुम लोग छोटे छोटे हो और इतनी सारी जगह घूम के आए हो, और जब और बड़े हो जाओगे तो और जगह जब घूमने जाओगे तो इंजॉय करने के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश करना।
3: हाँ
2: दीदी, अभी तो सिर्फ इंडिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है,
0: बाद में विदेशों की भी करेंगे।
3: हाँ।
0: और जहाँ भी जाएंगे उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, ताकि वो हमेशा हमारे और भी काम में आए। ओके, आज की ये बातचीत हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कॉलेज में। हम पहले कहीं मिले नहीं।
1: सॉरी, डोंट रिमेम्बर।
0: तुम, मेरा मतलब है आप रमा से नहीं?
1: शी इज डेड। माय नेम इज रोजी।

लगता है कि यहाँ

ब्रदर ओ सिस्टर दोस्त कहाँ कोई तुम सा नहीं कोई सिस्टर चलेगी जाने दो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: कवरिया है आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। ओ सवरिया होय होय ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। ओ गुजरिया होय ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया। ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना दे बावरिया आके सी भी लगी दिल में जैसे खटरिया ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया
0: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया।

0: मेरे लिए?
1: अगर आप कबूल करें तो।
0: मेरी जरूरत नहीं कि इनकार करूं, आइए। लेकिन अचानक मुझे कैसे इस लायक समझ लिया?
1: आपने मुझे जिंदगी का मुकाबला करने की हिम्मत दी, बदले में ये बहुत छोटा तोहफा है।
0: राजी खोल के देख सकता हूँ?
1: जरूर।

0: तो नहीं।
1: शालिनी देवी, अगर आप मुझे अमर बनाना चाहती हैं तो ये आपकी भूल है। अगर आप मेरे साथ इसलिए मुलाकात बढ़ाना चाहती हैं कि मुझ में आपका अमर नजर आता है, तो आप समझ सकती हैं कि मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर मैं आपको अमर की याद दिलाता हूं तो आपसे दूर रहना पसंद करूंगा। हाँ, अगर अमर को भुलाने में आप भी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे अपना साथी समझिए।
0: गलती से मैं आपको अपना दोस्त समझ बैठी।